0: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
1: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
2: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
1: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
2: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
1: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
3: मुरादाबाद
1: से संपर्क कीजिए।
2: नियम और शर्तें लागू।

जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही

0: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
1: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
0: पता लाइन पर प्रकाश नगर चौराहा मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
2: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
3: तक का टाइम है।
4: मेरे पैसे वापस कर। पैसे
5: तेरे को शर्म नहीं आई? माँ के कंगन गिरवी रखते हुए
3: मेरे पैसे वापस नहीं दिए तो तेरे घर को आग लगा दूंगा।
6: अब मेरे पास आत्महत्या करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा।
7: रुको रुको बेटा।
6: अरे बाबा कहाँ से आ गया, जल्दी कूदना पड़ेगा।
7: क्या हुआ बेटा?
6: बाबा जी, बड़ा आदमी बनने के चक्कर में मैंने कर्ज ले लिया और इस कर्ज ने मुझे बर्बाद कर दिया। बाबा जी मैं हार गया। बाबा जी मैं हार गया।
7: हार गया? अरे हारे का सहारा ही तो है श्री श्याम जी।
6: श्याम जी?
7: हाँ हाँ श्याम जी, ये हैं हमारे श्री खाटू श्याम जी।

0: पर बाबा, बाबा जी, बाबा जी। भैया ये खाटू श्याम जी कहाँ आएगा?
1: अच्छा खाटू श्याम जी जाना आपको, यहाँ से 500-600 किलोमीटर दूर है।
0: पाँच छह

0: कहाँ जा रहे हो?
1: खाटू श्याम जी जा रहे
0: हैं। चलो रास्ते में छोड़ देता हूँ, मैं भी जा रहा हूँ। आ जाओ भाई आ जाओ, मैं छोड़ दूंगा रास्ते में, मैं भी जा रहा हूँ। आ जाओ

0: भाई जी देखो दर्शन भी हो गए बाबा जी के, अब चलो घर छोड़ देता हूँ तुम्हें।
1: बाबा जी अब तो मेरा घर भी यही है, सब कुछ यही है।
0: चलो अब क्या बोल सकता हूँ तुम्हें, जैसे श्याम जी की मर्जी। ठीक है फिर मैं चलता हूँ।

मैं चुप होकर भी हर बात हूँ, मैं दिन होकर भी अंधेरी रात हूँ। तू चिंता मत कर मेरी गोरा, मैं दूर होकर भी तेरे साथ हूँ।

मैं दूर होकर भी तेरे साथ हूँ।

0: AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश सरकार ने होनहार छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने का फैसला किया है। उच्च शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी को बढ़ाने और पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर को कम करने के लिए ये कदम उठाया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को लागू करने के लिए दिशा निर्देशों को मंजूरी दी गई।
2: योजना के तहत सरकार न केवल स्कूटर बल्कि उसका बीमा, पंजीकरण, हेलमेट, आवश्यक सहायक उपकरण और 4 लीटर पेट्रोल भी मुहैया कराएगी। दिव्यांग छात्राओं, शहीदों की बेटियों और गरीब परिवारों की बेटियों के लिए आय सीमा की शर्त में छूट भी दी जाएगी। राज्य सरकार का कहना है कि ये योजना उच्च शिक्षा में बेटियों की भागीदारी बढ़ाएगी और खासतौर पर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों की छात्राओं के लिए कॉलेजों और विश्वविद्यालयों तक पहुंचना आसान बनाएगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मध्य प्रदेश विधानसभा ने समान नागरिक संहिता UCC विधेयक पारित कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सदन में विपक्ष के हंगामे और विरोध के बीच ये विधेयक पारित हुआ।
3: UCC के प्रमुख प्रावधानों के अनुसार प्रदेश में एक से अधिक विवाह मान्य नहीं होगा। तलाक की प्रक्रिया कानूनी होगी और महिला पुरुष को समान उत्तराधिकार का अधिकार मिलेगा। लिव इन रिलेशनशिप में 1 महीने के भीतर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा और विवाह का रजिस्ट्रेशन ग्रामीण स्तर तक जरूरी किया जाएगा। हालांकि आदिवासी समाज को इससे अलग रखा गया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष पर मर्यादा का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। श्री नवीन ने कहा कि सरकार सदन में नीट सहित सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है।
4: मैं कहूंगा कांग्रेस और विपक्ष के साथियों से, हम संसद के पटल पर हर प्रकार के संवाद के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन आपकी जो मर्यादाएं तोड़ने की परंपरा बनती जा रही है, जो अराजकतावादी सोच आपके अंदर विकसित हो रहा है, निश्चित रूप से इससे देश कहीं न कहीं दुखी है और देश अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है।
1: भारत ने विश्व व्यापार में अपनी बढ़ती भूमिका पर बल देते हुए जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन की व्यापार नीति समीक्षा में नियम आधारित, पारदर्शी और भेदभाव रहित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की प्रतिबद्धता दोहराई है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने वैश्विक व्यापार प्रणाली में भारत की भूमिका तथा व्यापार संधि, उदार विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और विकासशील देशों के बीच सहयोग से व्यापारिक संबंध मजबूत करने के प्रयासों पर बल दिया। वाणिज्य विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत समावेशी वैश्विक विकास में भरोसेमंद और विश्वसनीय साझेदार है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
5: चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु का मुकाबला भारत की ही उन्नति हुड्डा से होगा। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन भी आज अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। पुरुष सिंगल्स के ही शुरुआती दौर में आज आयुष शेट्टी का सामना अलवी फरहान से होगा। पुरुष डबल्स में MR अर्जुन और हरिहरन अम्स करुणन, मिक्स्ड डबल्स में रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गड्डे तथा तनिषा क्रेस्टो और ध्रुव कपिला भी चुनौती पेश करेंगे। इसके अलावा हॉकी इंडिया ने हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा की है। विश्व कप 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स में आयोजित किया जाएगा। भारतीय टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार की जयंती पर उनका स्मरण किया है। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि समाज के प्रति उनकी सेवा और महाराष्ट्र के विकास में उनका योगदान सदैव याद रखा जाएगा। फ्रांस की संसद ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का ऐतिहासिक विधेयक पारित कर दिया है। संसद के दोनों सदनों में सांसदों ने इस विधेयक के समर्थन में वोट दिया। इसके तहत स्कूल में विद्यार्थियों के मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर भी पाबंदी लगा दी गई है। इस फैसले से फ्रांस सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश बन जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अगस्त 2028 से जेनेरिक दवाओं के आयात पर भारी शुल्क लगाने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य अमेरिका में इन दवाओं का उत्पादन बढ़ाना है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि 1 अगस्त से अमेरिका में आयात होने वाली सभी जेनेरिक दवाओं पर 2 साल तक कोई शुल्क नहीं लगेगा। मौसम विभाग ने आज गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। अगले 2-3 दिनों के दौरान पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश और पंजाब में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नास।
6: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर नीट पेपर लीक मामले को लेकर विपक्ष के धरने, छात्रों के विरोध प्रदर्शन और पेपर लीक पर प्रधानमंत्री मोदी के बयान संबंधी समाचार सबसे ऊपर छाए हुए हैं। नवभारत टाइम्स का शीर्ष समाचार है, जंतर मंतर पर लौटी भीड़, पीएम के घर के बाहर से विपक्ष के नेता हटाए। पत्र ने प्रधानमंत्री मोदी के कथन को भी सुर्खियों में जगह दी है, पेपर लीक के दोषियों को नहीं बख्शा। दैनिक जागरण की सुर्खी है, प्रधानमंत्री मोदी ने नीट पेपर लीक को बताया घोर पाप। राजस्थान पत्रिका, लोक सत्य, दैनिक ट्रिब्यून और अमर उजाला ने धरना दे रहे विपक्षी नेताओं की तस्वीरें भी प्रमुखता से छापी हैं। जनसत्ता और दैनिक भास्कर ने सिक्किम में एक निर्माणाधीन सुरंग ढहने से हुई मजदूरों की मौत के समाचार को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। पत्रों ने केंद्र और राज्य सरकार की ओर से मजदूरों के आश्रितों को अनुग्रह राशि की घोषणा का उल्लेख करते हुए सुरंग के प्रवेश द्वार और राहत अभियान का चित्र प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने पॉजिटिव न्यूज स्तंभ के अंतर्गत राजस्थान के आंधी गांव का उल्लेख किया है, जिसे बायोटेक वैज्ञानिक डॉक्टर सुदीप्ति अरोड़ा ने 100% कचरा रहित और आत्मनिर्भर बना दिया है। पंजाब केसरी ने कमर्शियल जहाज पर हुए रूसी हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत के बाद रूसी राजनयिक को तलब किए जाने का समाचार सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने इसी खबर पर आधारित संपादकीय को शीर्षक दिया है, सुरक्षा की फिक्र। पत्र का कहना है कि भारत से हर साल बड़ी संख्या में लोग रोजगार के लिए विदेश जाते हैं और वहां से विदेशी मुद्रा यहां भेजते हैं, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूती मिलती है। मगर सवाल ये है कि विदेश में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है।
1: और लीजिए अंत में सुनिए मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तर मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में बड़े विस्तार का आह्वान किया। दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह। भारत आज चंडीगढ़ में ब्रिक्स देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की 3री बैठक की अध्यक्षता करेगा। भारतीय नौसेना आज पनडुब्बी रोधी स्वदेशी युद्धपोत INS मालवण का कर्नाटक के कारवर में जलावतरण करेगी। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने होनहार छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने की योजना मंजूर की। भारत ने जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन की व्यापार नीति समीक्षा में नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की प्रतिबद्धता दोहराई। और चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज पीवी सिंधु का मुकाबला होगा उन्नति हुड्डा से। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू कॉल्स फॉर सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन ऑफ इकोनॉमिक एंगेजमेंट बिटवीन इंडिया एंड नॉर्थ मैसेडोनिया। अर्जेस बिजनेसेस फ्रॉम बोथ कंट्रीज टू मूव बियॉन्ड ट्रेड एंड बिल्ड लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप्स। India to host 3-day meeting of BRICS health ministers in Chandigarh beginning today. Indian Navy to commission indigenous anti-submarine warfare shallow water craft INS Malwan at Karwar in Karnataka today. Uttar Pradesh cabinet approves scheme to provide free scooty to meritorious female students of the state. India reaffirms its commitment to rule-based multilateral trading system at WTO trade policy review in Geneva. And PV Sindhu to take on compatriot Unnati Hooda in China Open Badminton Tournament today. And now the news in detail. President Drobdi Murmu has called for expanding India-North Macedonia economic ties, urging businesses from both countries to move beyond trade and forge long-term partnerships based on investment, technology and innovation. Addressing the India-North Macedonia Business Forum in Skopje, President Murmu said her visit, the first ever by an Indian president to North Macedonia, reflects India's strong commitment to strengthening relations. President Murmu also invited North Macedonia to collaborate with India on digital public infrastructure, highlighting the success of India's UPI platform in promoting financial inclusion.
8: आर्थिक सहयोग हमारे द्विपक्षीय संबंधों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर भी सहमत हुई। हमने आईटी, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स तथा टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और फिल्म मेकिंग सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा। हम स्वास्थ्य सेवा में सहयोग पर अपने द्विपक्षीय अग्रीमेंट को भी रिन्यूअल कर रहे हैं।
7: Our correspondent covering the president's visit to North Macedonia has filed this report.
9: President Murmu said India's pharmaceutical industry is well placed to invest in North Macedonia through joint manufacturing of medicines and medical devices for the wider Balkan and European markets. She also encouraged partnerships in food processing, cold chain logistics, renewable energy, artificial intelligence, cyber security, and startup ecosystems. The president invited North Macedonia to join initiatives such as International Solar Alliance, the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, and the Global Biofuels Alliance. She also extended an invitation to participate in the World Audiovisual Entertainment Summit WEBS to be held in India next year. This is Subhashree Mahapatra from Skopje, North Macedonia.

0: मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
1: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
2: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
3: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
4: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार्क मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
5: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
6: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है FM मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो FM मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
0: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

सुप्रभात, नमस्कारम, गुड मॉर्निंग जी, कैसे हाल चाल है। बहुत ही खूबसूरत मौसम है आज की सुबह और बहुत ही प्यारी सी सुबह है और इस सुबह में हम आप सभी का इस्तकबाल करते हैं, दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हन जी कैसे हाल चाल है, वेलकम बैक है, एक सुपर डुपर वाला गुड मॉर्निंग है। श्रोताओं, बहुत ही खूबसूरत सी सुबह में आप सभी का मैं पूरे दिल से वेलकम करता हूं अपने स्टेशन ऑफ द नेशन पे। जी हाँ, आप जुड़ चुके हैं आपके शहर के अपने देसी रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे आरजे आनंद के साथ। प्रोग्राम है आपका अपना फेवरेट बिंदास मॉर्निंग। आज बुधवार का दिन है, बुध करे सुख, बहुत ही खूबसूरत दिन। एंड अगर बात करें अभी हम समय की तो स्टेशन क्लॉक में वक्त हुआ है 8:22। बच्चे स्कूल चले गए हैं, चलो बहुत ही बढ़िया। आज तो सुबह से बच्चे स्कूल जाने में लगे हुए हैं क्योंकि मौसम जो है बहुत ही बढ़िया हो गया, सूरज चाचू प्रकट हो चुके हैं सुबह सुबह। दोस्तों, इसी बात के साथ आनंद भी यहाँ पर आ गया है। अब अगले 2 घंटे आप मेरे साथ करने वाले हैं ढेर सारा फन, बहुत सारी जानकारियां और तमाम सारे प्यारे प्यारे गाने जिनको सुन के आज की सुबह हो जाएगी आपकी और भी तरोताज़ा और भी बेहतरीन, आपको मज़ा आ जाएगा। फिलहाल एक प्यारा सा विचार कहते हैं, गलतियां वही करते हैं जो कुछ करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपसे गलती हो रही है तो उसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं। देखिए, गलतियां जो है इंसान से हो जाती हैं, जाने अनजाने में अगर आपसे कोई गलती हो रही है तो वो गलती नहीं है, वो आपकी लाइफ का एक सबक है। बट अगर आप बार बार जानबूझकर गलतियां कर रहे हैं फिर तो ये तो फिर गलत बात है, ये सच में बहुत बड़ी मूर्खता है। तो इस चीज़ को बिल्कुल मत करिए, कोई गलती हो रही है उसे दोहराइए मत, उससे कुछ सीखिए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए। और गलती करने से कभी मत डरिए, हम इंसान हैं, AI नहीं। चलिए दोस्तों, आज का सिलसिला शुरू करते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गाना जो आपकी सुबह को बनाएगा और भी खास। एक मॉर्निंग डोज आपको देने आ गया हूँ आपकी रेडियो सेट पे, आप बनी रहेंगे मेरे साथ। मौसम का क्या रहेगा, आज का मिजाज जरूर आपको बताऊंगा और क्या कुछ खास चल रहा है हमारे आसपास के लोकल फॉर वोकल में, इस पर भी बात करेंगे ना। तो बस आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए, सुनते रहिए आरजे आनंद को। वेरी गुड मॉर्निंग।

0: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग,
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा। अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
2: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
1: पर पापा।
2: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
1: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद।
3: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला।
1: अरे तो भाई गुस्सा क्यों होते हो, यहाँ इंसाफ भी मिलेगा और एंटरटेनमेंट भी, एंटरटेनमेंट भी, क्योंकि आप सुन रहे हैं आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6, जो कहता है रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और दिल से कहिए जियो बिंदास।

जितनी कमाल के गाने थे ना, उतनी कमाल की वर्ल्ड क्लास की मूवी थी दिल है तुम्हारा से भी आपने ट्रैक एंजॉय किया। नदीम श्रवण का म्यूजिक, उदित नारायण एंड अलका याग्निक जी की युगल आवाजों में बेहतरीन गीत अभी आप सुन रहे थे। वेलकम बैक हियर वंस अगेन, यू आर लिसनिंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे। आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट प्रोग्राम बिंदास मॉर्निंग। एंड श्रोताओं, हर दिन की तारीख बहुत खास होती है, बहुत ही स्पेशल होती है, वैसे ही आज 22 जुलाई का दिन भी बहुत खास है, बहुत ही स्पेशल है और इतिहास में बहुत सारी चीज़ें हर दिन हम सेलिब्रेट करते हैं। तो आइए अब आपको बताते चलें आज का दिन क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों खास है। लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं समय, 8:38 हो गए हमारे स्टेशन की घड़ी में और आज 22 जुलाई की सुबह है, बुधवार का दिन है यानी वेंसडे की मॉर्निंग है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको बताते चलें कि भैया देखिए हर दिन का इतिहास बहुत खास होता है, वैसे ही आज का दिन भी बहुत खास है। आपको बता दें सन 2001 में शेर बहादुर नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने थे आज ही के दिन। और आपको बता दें आज ही के दिन जो है शांति के लिए 1976 में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली बेटी मेक्सिको को जो है, मेक्सिको में आज ही के दिन इनको गिरफ्तार किया गया था श्रोताओं। और आपको बताते चलें आज का दिन इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि आज भारत का राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को भारत के संविधान द्वारा अपनाया गया था आज ही के दिन 1947 में। तो ये जो दिन है वो अपने आप में और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है इस बात को लेकर, जब राष्ट्रीय ध्वज की बात आती है तो बिल्कुल ये दिन स्पेशल तो होना बनता है। और आज 22 जुलाई को आपको बताते चले सन 2009 में सूर्य ग्रहण 19वीं सदी का सबसे लंबा और पूर्णी सूर्य ग्रहण माना गया था श्रोताओं आज ही के दिन। बात करें आज के दिन जन्मे कुछ खास कलाकारों की, तो सबसे पहले नाम आता है बेहद ही प्रसिद्ध और पार्श्व गायक मुकेश जी का। इनका जन्म हुआ था आज ही के दिन 1923 में 22 जुलाई को। जी हाँ श्रोताओं, खूबसूरत गीतों से जो है अगर हम बताएं तो एक सदी सजी हुई है। मुकेश कुमार की आवाज़ में अपना ही एक अलग मैजिक था। इनका पूरा नाम था मुकेश चंद्र माथुर। इनका जन्म आज के दिन हुआ था 22 जुलाई 1923 में, यानी कि 1923 में दिल्ली में इनका जन्म हुआ श्रोताओं। आपको बताते चलें आज के दिन जो है हम इनको याद कर रहे हैं और इनकी आज जो है हम जन्मदिन पर इनको याद करना तो बनता है। और कलाकार की सबसे खूबसूरत बात होती है वो हमारे बीच में हो ना हो लेकिन उनके गीत हमेशा हमारे जहन में गूंजते रहते हैं। खूबसूरत फिल्मों में गीत गाए हैं मुकेश जी ने, जैसे मेरा नाम जोकर, आनंद, कभी कभी, सत्यम शिवम सुंदरम, संगम, अंदाज, ये तमाम वो फिल्में हैं जिसमें हमने मुकेश साहब को सुना है। और उनका उनका जो गाने का अंदाज़ है वो इतना खूबसूरत है बहुत ही। अब बात मुकेश साहब की हो रही है तो ज़रूर हम उनका एक बहुत ही खूबसूरत गीत आपके लिए प्ले करेंगे इस स्टेशन पर। बाकी श्रोताओं, और एक और नाम जुड़ जाता है आज ही के दिन इतिहास के पन्नों को जो और भी स्पेशल बनाता है, इनका भी जन्म आज ही के दिन हुआ था। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट हिम्मत शाह जो भारत के प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं। 1933 में इनका जन्म हुआ था आज ही के दिन। तो ये आज के दिन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो है मैंने आपके साथ शेयर करी श्रोताओं। अगर आप भी मेरे साथ कुछ अच्छी बातें शेयर करना चाहते हैं तो बिल्कुल आपका स्वागत है, आप भी कर सकते हैं।

चलिए श्रोताओं, बात हो रही थी मुकेश साहब की, तो उनका एक प्यारा सा गीत मैं आपके लिए प्ले कर रहा हूँ आज की सुबह। बहुत ही खूबसूरत गीत है, बहुत ही प्यारा गीत है, इसको सुनते हुए आगे बढ़ेंगे। और मैं आपको सच बताऊं तो हर दिन कुछ ना कुछ स्पेशल रहता ही है, एंड आज की जो तारीख है वो भी स्पेशल है। क्यों स्पेशल है वो डेफिनेटली मैं बताऊंगा। आज का दिन ही बहुत खास है यार, बहुत ही खूबसूरत गाना मुकेश साहब की आवाज़ों में निकल गया। ये जो मुकेश कुमार और उनके साथियों की आवाज़ आई है, बहुत ही प्यारा गीत है, सुनते हुए आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग।

0: बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
1: क्या मेरी कसम,
0: मिस कर दिया तो रीलोड।
2: चाय चाय चाय,
0: सुनिए बिंदास मॉर्निंग्स आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552। 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे ITM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद।
1: NAC द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक।
0: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में।
1: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई।
0: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी।
1: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
2: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।
3: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा। 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।
4: मेरा इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है,
5: लेकिन सोनिया
4: डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं।
5: नामुमकिन नामुमकिन नामुमकिन।
0: लेकिन बॉलीवुड के गाने पकड़ना बहुत ही मुमकिन है। सुनिए एफएम मुरादाबाद 89.6 पे 90s बॉलीवुड के अमेजिंग गाने। ट्यून इन कीजिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए।

0: स्वागतम अभिनंदन एक बार फिर से। बहुत ही खूबसूरत गीत अभी आपने एंजॉय किया। कब तक चुप बैठे और ढोलना, बिल्कुल चुप मत बैठो यार, आपको कुछ तो बोलना पड़ेगा। 8:54 हो गए, ढेर सारे मैसेज पहुंचे हैं। जुल्फी भाई जुड़ चुके हैं मेरे साथ, लिखते हैं आनंद जी गुड वाली मॉर्निंग, आपके गाने सुन के तो मन प्रसन्न हो जाता है और आज का मौसम बहुत औसम है यार। थैंक यू सो मच। शिखा जी मुझे कह रही है आनंद जी ऑफिस के लिए निकल चुकी हूँ, अपनी गाड़ी में बैठी हूँ, ट्रैफिक बिल्कुल नहीं है, रोड बहुत अच्छे हैं, मजा आ रहा है गाड़ी चलाने में, क्या बात है, और मौसम बारिश के बाद और भी औसम हो गया है। ये तो है, सुबह सुबह सूरज चाचू को देख के ना मेरा मन भी थोड़ा सा प्रफुल्लित हो गया था, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर बादल जो है दोपहर के बाद हल्के फुल्के छाए रह सकते हैं। टेम्परेचर अभी 28 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है, आगे चल के 32 डिग्री सेल्सियस पहुँच सकता है। एंड अगर बात करें एयर क्वालिटी की तो एयर क्वालिटी थोड़ी सी तो ठीक है, बिकॉज बारिश के बाद पोल्यूशन थोड़ा कम हो गया है। हवा की बात करें अगर अपन तो हवा जो है आज अच्छी खासी चलने वाली है, 8 किलो प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं रहेंगी और आगे चल के थोड़ी कम भी हो सकती हैं। बाकी ह्यूमिडिटी बिल्कुल ओके है, वेदर कूल कूल दिख रहा है। अभी सूरज चाचू आपको नजर आ रहे हैं बाहर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही तगड़ी वाली वाइब जो है सूरज चाचू दे रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, आप जो है एंजॉय करते रहो, मौसम कैसा भी हो अपने आप को खुश रखने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। अगला मैसेज तारिक भाई का पहुंचा है, हाय आनंद गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? मैं बहुत ही बढ़िया हूं गाइस, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच इतने प्यारे मैसेज करने के लिए। ये चमनलाल साहब जुड़ चुके हैं पुतली घर रोड से, एक मैसेज मेरे पास पहुंचा है यहां पर परिणीता का। ये परिणीता मुझे कहती है आनंद जी सुबह सुबह मोटिवेशन जिंदगी में बहुत जरूरी होता है, जैसे कुछ लोगों के लिए चाय बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वैसे ही मोटिवेशन विचार हमारी लाइफ को थोड़ा सा और यू नो खास बनाते हैं। हां जी आई एग्री विद यू 100%। एक मैसेज मेरे पास आ पहुंचा है, ये कहां से पहुंचा है चलिए आपको बताते हैं। इस वक्त ही हमें बरेली में सुन रहे हैं, सिविल लाइंस बरेली से मैसेज पहुंचा है मेरे पास, इनका नाम तुषारिका है, गुड मॉर्निंग पहुंचाती हैं और लिखती हैं हेलो आनंद कैसे हैं आप, आपको सुन के बहुत अच्छा लग रहा है, फील वेरी अमेजिंग, ओ नाइस, थैंक यू सो मच तुषारिका जी। एक और संदेश पहुंचा है ये हमारे पास, ये बबली अनजान गीता कश्यप लक्ष्मी कश्यप संतोष कश्यप जी का, लिखते हैं हाय गुड मॉर्निंग सुप्रभात, हमारी ओर से भी सभी मुरादाबाद को गुड मॉर्निंग। और ये उस्मान टेलर साहब जिला मुरादाबाद ग्राम बीजना से जुड़े हैं, गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं। मुरादाबाद यूपी से रणवीर सिंह जेठालाल लिखते हैं आज 22 जुलाई का दिन बहुत ही खास है आनंद जी, बिल्कुल जी हमने इसके विषय में अभी बात भी करी थी। इसके अलावा दोस्तों आज वर्ल्ड ब्रेन डे मनाया जाता है, यानी कि विश्व मस्तिष्क दिवस जो है आज सेलिब्रेट किया जाता है, इस पर भी हम बात करेंगे। और आपके दिमाग के घोड़े दौड़ाने के लिए हमारे पास भी है एक बहुत ही अमेजिंग सा सवाल, डेफिनेटली थोड़ी देर में पूछूंगा। बाकी आप जहाँ भी निकल रहे हैं विश यू ऑल द बेस्ट, अगर आप अपने ऑफिस जा रहे हैं या आप बच्चों को छोड़ के आ रहे हैं या आप जहाँ भी जा रहे हैं, हमारी तरफ से तो भैया आज के दिन की आपको 100 में से 100 वाली बधाइयाँ। आई होप ये आपका दिन आपको बेहतरीन रिजल्ट देकर जाए।
1: बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद भाई को गुड मॉर्निंग।
0: गुड मॉर्निंग जी,
1: बुधवार की सुबह बहुत ही अच्छा नज़ारा बनारस का, खूबसूरत मौसम, और इस खूबसूरत मौसम में FM मुरादाबाद इंजॉय कर रहे हैं जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है, और सुरीले गाने सुनने को यहाँ मिलता है और बहुत ही अच्छी जानकारियाँ देते हैं आनंद भाई। तो सभी लोग FM मुरादाबाद जुड़ जाएं, और जो लोग ड्यूटी पे निकल रहे हैं तो थोड़ा सी गाड़ी चलाते हुए हेलमेट का उपयोग करें और गाड़ी तेज ना चलाएं, सभी से यही निवेदन है। और FM मुरादाबाद सभी लोग सुनते रहें और अपना मैसेज पहुंचाते रहें। आनंद भाई गुड मॉर्निंग फिर से आपको, मौसी मंसारी बनारस से जुड़ा हुआ।
0: क्या बात है, बनारस से देखिए मोहसिन साहब हमारे साथ सुबह सुबह जुड़ गए और आप मुरादाबादी अभी तक नहीं जुड़े, ये जोरदार तालियां बनारस वाले भाई के लिए, यानी कि मोहसिन जी आपके लिए ढेर सारी तालियां आज की सुबह। और बाकी जो लोग नहीं जुड़ रहे हैं भाई, आपसे भी रिक्वेस्ट है आप भी अपनी ऐसी सुंदर सुंदर आवाजों में कुछ तो प्यारा प्यारा पहुंचाइए यार, हमें इंतजार है आपके प्यारे मैसेजेस का। लेडीज एंड जेंटलमैन, जो लोग आम लवर है ना, मैंगो लवर, उनके लिए बहुत ही मजे वाला जो है आज का दिन सेलिब्रेट किया जाता है। कौन सा दिवस है आज उसके बारे में बताऊंगा। बॉलीवुड के एक बहुत ही खूबसूरत आवाज का बर्थडे है, बॉलीवुड में एक बहुत ही कमाल की अभिनेत्री ने डेब्यू किया था आज के दिन साल सन 2018 में। कौन है वो कमाल की अभिनेत्री, बहुत ही कमाल की फैबुलस एक्टर है, उनके बारे में बात करेंगे। और जिनका आज बर्थडे है वॉइस एक्टर का, उनके बारे में बात करेंगे, बहुत ही कमाल के लीजेंड सिंगर है यार। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक निकल गया है आपके रेडियो सेट पर। वक्त हो गया है 8:59, सिर्फ 1 मिनट बचा है 9 बजने में। जी सर क्या कह रहे हैं आप, जरा कहिए।
2: माँ।
0: सच्ची बात, उदित साहब की आवाज साथ में अलका याग्निकी देंगी साथ। ब्यूटीफुल सॉन्ग टाइटल ट्रैक निकल गया है तेरे नाम का, आपके रेडियो सेट पे एंजॉय करेंगे आनंद के साथ।

0: बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
1: कहा मेरी कसम?
0: मिस कर दिया तो रीलोड।
2: चाय चाय चाय।
0: सुनिए बिंदास मॉर्निंग्स आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।

0: क्या सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
2: स्किन एलर्जी, मस्त से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2 निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद, 7983153386।
3: तारीख मिलती रही है लेकिन इंसाफ नहीं मिला।
1: अरे तो भाई गुस्सा क्यों होते हो, यहाँ इंसाफ भी मिलेगा और एंटरटेनमेंट भी, क्योंकि आप सुन रहे हैं आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6, जो कहता है रेडियो बजाते रहे।

0: लिए गुनगुनाते रहिए और दिल से कहिए जियो बिंदास।
1: Hey, you're tuned into FM Moradabad 89.6 FM.
2: हाँ जी, कैसे हालचाल है? गुड मॉर्निंग, दूसरे घंटे की शुरुआत हो गई है एंड दिस इज माय लास्ट आवर। 9:05 हो गए हैं। 22 जुलाई 2026 आज वेंसडे की सुबह है। आप बहुत ही खूबसूरत वाइब के साथ निकल रहे हैं। ऑल द वे बेस्ट आप जहां भी जा रहे हैं। मेरे पास खूब सारे बड़े कलरफुल मैसेज आ रहे हैं, उसके लिए थैंक यू वेरी वेरी मच। इतने प्यारे प्यारे व्हाट्सएप पहुंचाने के लिए आई एम सो ग्लैड यार, बिकॉज सुबह सुबह इतने अच्छे मैसेज आप लोग करते हैं और तरह तरह की खबरें हम आपको पहुंचाते हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन आप भी हम तक पहुंचाते हैं। तो ये जो एक सिलसिला, ये जो एक कारवा बनता है ना, ये बहुत ही मतलब माइंड ब्लोइंग हो जाता है यार। चलो बिना किसी देरी के, आज वर्ल्ड ब्रेन डे मनाया जाता है यानी, और इसी बात पे आपके दिमाग की कसरत कराने के लिए छोटा सा सवाल पूछता हूँ। आप मुझे व्हाट्सएप करके जरा जल्दी से बताओ, ऐसी कौन सी सब्जी है जो बिना कटे बनती है? जरा मुझे दिमाग लगा के बताना, देखते हैं कितने लोगों को पता है, कितने लोगों को नॉलेज है अपनी वेजिटेबल्स की, कितने बॉयज को, कितने जेंट्स को नॉलेज है। यार देखो, मुझे भी बहुत ज्यादा नहीं है, मैं आपको जेनरली बता रहा हूँ। बट सी, दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन आई वांट टू आस्क यू कि आज की सुबह वेंसडे मॉर्निंग में आप मुझे बताओ ऐसी कौन सी वेजिटेबल है जो बिना कटे बन जाती है, बिना काटे ही सब्जी बन जाती है। देखो लेडीज तो आंसर बता ही देंगे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ भाई साहब, आप ही बता दो यार। आज वर्ल्ड ब्रेन डे के मौके पे आपके दिमाग को थोड़ा तेज करने के लिए मैंने सोचा कुछ तो स्पेशल पूछा जाए। हालांकि बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, बट सी आप बता सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जरा मुझे व्हाट्सएप करके फटाफट पहुंचाओ, ऐसी कौन सी वेजिटेबल है जो बिना कटे बन जाते हैं, बताओ मुझे। अभी बात कर लेते हैं मुरादाबाद में क्या स्पेशल चल रहा है एंड, लेकिन उससे पहले एक वॉइस नोट और मेरे पास पहुंचा है, जरा आइए इनको भी सुन लेते हैं। ये कहाँ से क्या पहुंचाते हैं इनकी आवाज।
3: ना चादर बड़ी कीजिए, ना ख्वाहिशें दफन कीजिए, चार दिन की जिंदगी है बस चैन से बसर कीजिए, ना परेशान किसी को कीजिए, ना हैरान किसी को कीजिए, कोई लाख गलत भी बोले बस मुस्कुराकर छोड़ दीजिए, ना झूठा किसी से कीजिए, ना झूठा वादा किसी से कीजिए, कुछ फुर्सत के पल निकालिए, कभी खुद से भी मिला कीजिए, अपनी एलर्जी के लिए साथियों FM मुरादाबाद सुना कीजिए। हेलो दोस्तों, मैं संदीप गुप्ता हूँ धोली बाराबंकी उत्तर प्रदेश से और आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहो, गुनगुनाते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। ओके, धन्यवाद।
2: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, आपने कम शब्दों में बड़ी बेहतरीन बात कह दी कुलदीप साहब, ये जोरदार तालियां। देखिए लखनऊ धौली बाराबंकी से कुलदीप जी जुड़ गए हैं, बनारस से मोहसिन जी जुड़ गए हैं, बरेली से मैडम जुड़ गई हैं, आप क्यों नहीं जुड़ रहे हैं यार? आप भी जुड़िए ना हमारे साथ 9837896896 पर आप मुझे मैसेज पहुंचा सकते हैं और मेरे क्वेश्चन का आंसर भी पहुंचाइए ना। आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेजेस। बहुत ही सिंपल सवाल मैंने आज आपसे पूछा है एंड इसका आंसर तो आप ही करोगे बॉस। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आज की मॉर्निंग, ऐसी कौन सी वेजिटेबल है, ऐसी कौन सी सब्जी है जो बिना कटे बन जाती है? गूगल मत करना, बहुत सिंपल सवाल है। मैं इंतजार करूँ आपके मैसेजेस का, लौट कर आता हूँ तो बताता हूँ कौन सी वो कमाल की फैबुलस एक्टर थी जिन्होंने आज के दिन डेब्यू किया था बॉलीवुड में। बहुत ही कमाल की सुपरहिट अमेजिंग एक्ट्रेस हैं, उनके बारे में बात करते हैं भी, लौट कर आते हैं। लेकिन उससे पहले एक अमेजिंग गाना आपके रेडियो सेट पे बॉडीगार्ड से निकल गया है। एंजॉय कीजिए, रेडियो की वॉल्यूम बढ़ाइए एंड सुनते जाइए बिंदास मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग।

0: Rima.
1: नलायक का बेटा। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्कारम, क्या हाल चाल?
2: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

ब्यूटीफुल ट्रैक आपके रेडियो से निकल गया है, कुणाल गांजावाला की आवाज एंड साथ में वसुंधरा देंगी साथ, विशाल शेखर का म्यूजिक, बहुत ही प्यारा गाना है। वेंसडे की सुबह आप सुन रहे हैं आरजी आनंद को, वेरी गुड मॉर्निंग है जी। आई विल बी राइट बैक एक बहुत ही अच्छी बात के साथ लौट कर आता हूँ, फिलहाल गाना सुनो जी।

कमाल की फिल्म रेडियो जॉकी का रोल प्ले किया था प्रीति जिंटा एंड सैफ अली खान ने इस मूवी के अंदर। सलाम नमस्ते, बहुत ही बढ़िया गाना भी आपने सुना। मैं जी की हालचाल है सुनियो, तुसी सुन रहे हो तुम्हारे शहर का अपना रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। हां जी, सुबह की चाय होगी आपकी। एलो जी, कैसी बात कर रहा हूँ मैं, अभी पाची 9:17 हो रहे हैं तो सुबह की चाय तो कब की हो गई होगी, अब तो आपको वो हेल्दी ब्रेकफास्ट वाला टाइम चल रहा होगा। चलो बहुत बढ़िया, मुझे पता है बाबी जी आराम से बैठे हैं, बच्चे स्कूल चले गए हैं, आराम से फ्री होकर आप रेडियो सुन रहे हैं, आराम से जो है चाय शाय कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया, करते रहो। आपको बता दें आज का दिन बहुत ही स्पेशल है, ये दिवस हर साल जो है बहुत ही स्पेशल हो जाता है 22 जुलाई का, बिकॉज आज ही के दिन जो है राष्ट्रीय ध्वज दिवस की हम बात कर रहे थे अभी थोड़ी सी देर पहले। मैंने आपको बताया भी था इतिहास के पन्नों में आज का दिन क्यों स्पेशल है, तो आपको बता दें भाई साहब आज इंडियन नेशनल फ्लैग को आधारिक रूप से जो है वो अपनाया गया था। ये दिवस हर साल 22 जुलाई को मनाया जाता है और उस दिन इंडियन जो है वो नेशनल फ्लैग को आधारिक रूप से आज के दिन अपनाया गया। तिरंगे में केसरिया, सफ़ेद और हरा रंग जो है शामिल होता है। आप सभी को पता है बीच में अशोक चक्र जो है वो स्थापित है एंड यह दिवस एक राष्ट्रीय एकता और गर्व का प्रतीक है। सो आज के दिन इसको सेलिब्रेट किया जाता है एंड हम भी अपने तिरंगे को सल्यूट करते हैं एंड वेरी वेरी अमेजिंग डे। आज का दिन बहुत ही खास, बहुत ही मेमोरेबल डे। इसके अलावा आज जो है स्वाद, सुगंध और स्वास्थ्य का एक समृद्ध संगम, यस आई एम टॉकिंग अबाउट मैंगो, आम। आम ये ना केवल फलों का राजा है बल्कि हमारी कृषि और संस्कृति का भी प्रतीक माना जाता है। आज के दिन जो है नेशनल मैंगो डे मनाया जाता है, तो हैप्पी नेशनल मैंगो डे यानी कि राष्ट्रीय आम दिवस। इस बार तो मैंने बहुत ज़्यादा मैंगो नहीं खाए यार, मतलब पता नहीं क्यों इस बार टाइम नहीं मिल पाया, कुछ ऐसा हो सकता है। सो एनीवे आज का दिन जो मैंगो लवर हैं उनके लिए ये स्पेशल जो डे है वो मनाया जाता है, नेशनल मैंगो डे। अगर आप आम शाम खाने के शौकीन हैं तो डेफिनेटली आप ज़रूर खाइए। आप मुझे भी बता सकते हैं क्या ये टाइम बेस्ट है मैंगो खाने का, जो अभी टाइम चल रहा है, जो अभी सीजन चल रहा है, क्या इसमें हम डेफिनेटली आम खा सकते हैं, क्या लगता है आपको, डेफिनेटली आप मुझे व्हाट्सएप करके बताना। चलो आगे बढ़ते हैं, ज्यादा रिपीट नहीं करेंगे चीजों को। अभी मेरे पास ढेर सारे मैसेज पहुंच रहे हैं, हाय गुड मॉर्निंग, एक छोटी सी शुरुआत आपको जिंदगी में बहुत आगे लेकर जा सकती है। आनंद गुड मॉर्निंग, हाय दिस इज मी तन्विका, गुड मॉर्निंग जी, कैसे हाल चाल है। ये गायत्री नगर से मैसेज पहुंचा रही है मुझे आज की मॉर्निंग, थैंक यू सो मच, हमारे साथ आप जुड़ रही हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज की सुबह ढेर सारे मैसेज आ गए, मैंने आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछा था, ऐसी कौन सी वेजिटेबल, ऐसी कौन सी सब्जी है जो बिना कटे जो है बन जाती है आज की मॉर्निंग, एंड आप लोगों ने जो उस पर धांसू आंसर दिए हैं वो जरूर मैं थोड़ी देर में आप तक पहुँचाऊंगा। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं क्या कुछ आने वाला है हमारे

थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था एक बहुत ही कमाल की फैबुलस एक्टर थी जिन्होंने आज के दिन जो है डेब्यू किया था। यस, तो मैं बात कर रहा हूँ किन की, मैं बात कर रहा हूँ जानवी कपूर की। आज के दिन साल 2018 में उनकी एक बहुत ही बढ़िया फिल्म आई थी, कल्ट क्लासी मूवी एंड काफ़ी सुपरहिट मूवी रही थी। ईशांत खट्टर साथ में थे, मूवी बहुत ही अच्छी थी, एक मराठी फिल्म के ऊपर जो है ये बेस्ड मूवी थी एंड वेरी वेरी टिपिकल और मतलब कमाल की मराठी मूवी थी वो एंड उसके ऊपर ये फिल्म थी, करण जौहर के प्रोडक्शन में बनी बहुत ही अच्छी फिल्म। एंड इसी मूवी के साथ जो है एक जानवी कपूर ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था आज ही के दिन। अच्छा आपको पता है जानवी कपूर की डेब्यू मूवी कौन सी? अगर नहीं पता है तो मैं उनका एक गाना प्ले करूंगा, शायद आप पहचान जाएंगे। ईशांत खट्टर के साथ उनकी बहुत ही कमाल की फिल्म आई थी आज ही के दिन एंड बॉलीवुड में डेब्यू करके उन्होंने भाई साहब जो रॉक मचाया ना उसके बाद, क्या मैं आपको बताऊँ, एक बहुत ही कमाल की बॉलीवुड की एक ऐसी फेमस अभिनेत्री की बेटी हैं जानवी कपूर, आप सभी जानते हैं। सो आज के दिन उन्होंने अपने करियर को जो है शुरू किया, आज ही के दिन जो है कदम रखा बॉलीवुड में, उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़के नहीं देखा। आज आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ किस लेवल पर जानवी कपूर काम कर रही है।

0: चलिए श्रोताओं आगे बढ़ते हैं और थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत प्यारे प्यारे मैसेज कर दिए हैं एंड उन्हीं की डेब्यू फिल्म का एक गाना निकाल रहा हूँ आपके रेडियो सेट पर। शायद अब आप पहचान जाएंगे कौन सी मूवी का गाना था, बहुत ही कमाल का ट्रैक। एंड वंस अगेन मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ अपना सवाल, अगर आपने जवाब नहीं दिया है तो प्लीज़ पहुँचाइए। आज की मॉर्निंग में आपसे पूछ रहा हूँ ऐसी कौन सी वेजिटेबल है जो बिना काटे बन जाती है, अगर आपको पता है तो डेफिनेटली व्हाट्सएप कीजिएगा। अजय अतुल की आवाज़ बहुत ही प्यारा गाना, अमित भट्टाचार्य ने लिखा इस ट्रैक को, ईशान खच्चर एंड जानवी पिक्चराइजेशन, बहुत ही प्यारा गाना। चलिए साथ में इंजॉय करते हैं, ये वेंसडे की सुबह है, 9:22 स्टेशन क्लॉक में वक्त हुआ है यानी कि 9:22 और अभी घड़ी की सुइयां इशारा कर रही कि बेटा एक एड ब्रेक का टाइम हो रहा है, छोटा सा एड ब्रेक आ रहा है, उसके बाद ये ब्यूटीफुल ट्रैक आप तक पहुंचेगा इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे, तो आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए।
1: बसंती इनके सामने मत नाचना।
2: अरे भैया नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
3: सिर दर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
4: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
3: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
5: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना, आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
3: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
6: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
4: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
6: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना, पुराना सोना लाओ नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर, 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर, किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी, 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक खुशियां अनेक, आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद, कॉल करें 7055070
7: 0552।

0: क्या बात है, इतना कमाल का ये गाना, बहुत ही प्यारी फिल्म थी ये। एंड मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, बहुत ही अल्टीमेट मूवी थी। 20 जुलाई को रिलीज़ हुई थी ये, साल 2018 की ये मूवी थी। जानवी कपूर का डेब्यू था इस मूवी से। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत ही कमाल की फिल्म थी यार, 2018 में आई। एंड इसी मूवी से तो जानवी ने शुरुआत की थी अपने करियर। वेलकम बैक यू वंस अगेन 927। ढेर सारे मैसेज आपके आ रहे हैं, उसके लिए दिल से थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं और अभी फटाफट से आपको बता देते हैं वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको आप करके अपनी लाइफ में हमेशा फिट एंड हेल्दी रह सकते हैं। 5 हैबिट अगर आपने फॉलो कर ली ना, तो आपकी लाइफस्टाइल बहुत डिफरेंट हो जाएगी। सबसे पहले तो यार देखो, जितना हो सकता है ना, सिंपल, सादा और पौष्टिक और संतुलित भोजन का जो है आप इस्तेमाल कीजिए अपनी लाइफ में, ठीक है। अपनी थाली में संतुलित भोजन को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दीजिए। रोज़ जो है आप वॉक कीजिए, व्यायाम कीजिए और योगा, जो कि आपके हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। तनाव मुक्त रहिए, अच्छी नींद लीजिए। जब तक आप अच्छी नींद नहीं लेंगे, उतनी ज़्यादा जो है दिक्कतें फिर बढ़ेंगी, क्योंकि अच्छी नींद ही आपके पूरे दिन को एनर्जेटिक बनाती है। परिवार और दोस्तों के साथ हो सकता है तो थोड़ा समय ज़रूर बिताएं। जब फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आप होते हैं तो इससे जो है आपके अंदर हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो आपको जो है बहुत ज़्यादा खुश रखने में हेल्प करते हैं। सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए। अपने जितनी सोच को आप पॉजिटिव रखेंगे, उतनी ही आपकी लाइफ अच्छी और बेहतर से बेहतरीन होगी। छोटी छोटी चीज़ें इनको ज़रा फॉलो करके तो देखिए यार, लाइफ आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देने वाली है। एंड कल मैंने आपको बताया था कि भैया भारत में जो है अब पहली डेंगू वैक्सीन आ गई है भारत के अंदर। एंड ये 4 साल से लेकर 60 साल तक के लोगों को जो है इसे लगाने की अनुमति मिल चुकी है। अभी हमारे पास ढेर सारे संदेश तो आप लोग पहुंचा ही रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी ढेर सारे आप लोगों ने सही सही जवाब भी दिए हैं, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। किसी ने मुझे मैसेज किया है, हाय गुड मॉर्निंग आनंद, कैसे हालचाल हैं? सुबह सुबह आप गाने बहुत अच्छे प्ले करते हैं, बहुत ही बढ़िया लगता है आपका प्रोग्राम सुन के, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है। अरे वाह, कोशिश तो यही करते हैं बॉस कि सुबह सुबह आपको इन्फॉर्मेशन भी दे सकें। कांवड़ यात्रा को लेकर मुरादाबाद में भी जोरों शोरों से तैयारी चल रही है। इनफैक्ट पूरे उत्तर प्रदेश में जो है सावन से पहले ढेर सारी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बहुत सारी तैयारियां जो है अपने उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कर रही हैं, ताकि जो कांवड़ भाई हैं उनको किसी भी तरीके की कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो अभी आपको बता दें, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से एक ऐलान और हुआ है, योगी सरकार की तरफ से। जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है उन स्टूडेंट को जो है मिल सकता है एक बहुत ही ग्रैंड तोहफा। हाँ जी, स्कूटी का तोहफा जो है उनको मिल सकता है, और ये तोहफा उनको मिलेगा जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट कर चुके हैं। और इसके लिए कुछ और भी कहीं ना कहीं गाइडलाइंस होंगी, अभी तो फिलहाल वो नहीं आई हैं, जैसे ही आएंगी मैं डेफिनेटली आप तक पहुँचाऊँगा। तो जो लोग अच्छी तरीके से ग्रेजुएट कर चुके हैं, ग्रेजुएशन जिनकी कंप्लीट हो चुकी है, उनके लिए एक अच्छी खबर हो सकती है। अगर आप डार्क चॉकलेट खाने में बिलीव करते हैं, तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन भी है डार्क चॉकलेट खाने वालों के लिए, और एक छोटी सी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन भी है। देखो यार, हर चीज़ के फायदे और नुकसान दोनों ही होते हैं, तो आप भी जानते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं जो बताना भूल गया हूँ आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट, सावन में नॉनवेज फ्री रहेगा वाराणसी कैंट स्टेशन। हाँ जी, बनारस वालों के लिए ये खबर हो सकती है। आपको बता दें भैया, 30 जुलाई से शुरू हो रहे हैं पवित्र श्रवण मास को लेकर जो है, अब काशी भी पूरी तरह तैयार हो चुका है, पूरी तरह जुड़ गई है बनारस की नगरी, पूरी तरीके से जो चमकाई जाएगी। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक और नई चीज़ ये हुई है कि भैया, इस वर्ष 28 अगस्त से चलने वाले सावन के दौरान जो बहुत ही खूबसूरत बाबा विश्वनाथ के वहाँ दर्शन होते हैं, एंड जहाँ 65 से 70 लाख श्रद्धालु जो है हर साल वाराणसी दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं, तो ऐसे में वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को सावन के दौरान नॉनवेज मुक्त जो है कराने के लिए उसे घोषित कर दिया गया। मतलब आसपास में कहीं पर भी वहां पर अब नॉनवेज नहीं मिलेगा, यानी कि आप जो है अच्छे से शुद्ध शाकाहारी खाना खा सकते हैं। अगर आपके मन में है कि हम वाराणसी जा रहे हैं बाबा के दर्शन करने, तो एक आपके लिए एक अच्छी गुड न्यूज़ है। आगे बढ़ते हैं। हाय गुड मॉर्निंग आनंद जी, कैसे हालचाल हैं? गुड मॉर्निंग सर, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, आप क्या खाकर आते हैं? मैं एक कप चाय भी कराया हूँ आज की मॉर्निंग, और मैंने कुछ भी नहीं खाया है। आपको बताए जापान के अंदर एक डरावना ऑफर निकला है, वहां पर एक भूतिया होम है एंड उसमें एक घर, मतलब एक बहुत ही घर है जिसके अंदर ना कहते हैं वो भूतों का बंगला है जापान में, और उसमें रुकने के लिए वो एक रात के वहां पर 52,000 रुपए लेते हैं। पहली बात तो यार मुझे समझ रहा है भूतों के घर में लोगों को जाना क्यों है, और वो जा रहे हैं तो इतनी अच्छी खासी अमाउंट दे रहे हैं जिसे सुन के मतलब इंडियंस बोलेंगे माय गॉड, मतलब सिर्फ 52,000 रुपए एक रात रुकने के लिए आपको वहां पर देने होंगे, वो भी इसलिए कि आपको महसूस करना है क्या सच में वहां पर भूत होते हैं क्या। बड़ी अजीबो गरीब चीजें होती हैं यार, मतलब आप सोचिए ना, ये जापान की एक इन्फॉर्मेशन है जहाँ पर जो है बताया जा रहा है कि लोगों को इतनी ज्यादा क्यूरियोसिटी होगी, इतना दिलचस्प जो है दिलचस्पी लोग दिखा रहे हैं यहाँ पर रहने के लिए कि वो इतने रुपए देने को तैयार है कि हमें जो है वहां पर रुकना है। क्या कर सकते हैं यार, अलग अलग चीजें चलती हैं। एनीवेज मॉर्निंग शो है यार आपको, हम यहाँ पर सोने नहीं आपको जगाने आते, आपको बिल्कुल नींद नहीं आएगी। एक बॉलीवुड के बहुत ही धाकड़ वाले बॉलीवुड सिंगर का बर्थडे है, कौन है वो कमाल के सिंगर उनके बारे में मैं डेफिनेटली अभी आपको बताऊंगा। एक थोड़ा सा उनका गाना प्ले करूंगा, उससे आपको पकड़ के बताना है वो कौन से सिंगर की आवाज़ है। एक छोटा सा ट्रैक डेफिनेटली निकलेगा अभी आपके रेडियो सेट पे इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। बाकी आप लोग जो मैसेज कर रहे हैं उसके लिए थैंक यू सो मच यार, सबने बहुत ही प्यारे मैसेज किए हैं। मैंने आपसे कहा था ना आज वर्ल्ड ब्रेन डे के मौके पर, आप बताओ आपके दिमाग की कसरत कराने के लिए सवाल पूछा था, मुझे बताओ ऐसी कौन सी वेजिटेबल है जो बिना कटे बन जाती है। ढेर सारे मैसेज आए हैं आप लोगों के, थैंक यू वेरी मच, इनक्रेडिबल यार। रेडियो वाले आनंद को गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं विकी सागर जी। मयंक शर्मा जुड़े हैं पीतल नगरी से, मुझे याद आया मयंक जी कल आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, कल मैं पीतल नगरी गया था और उधर पीतल नगरी के आसपास में गांव था देवापुर, वहां पर हम गए थे किसी प्रोग्राम के लिए, वहां के लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। पीतल नगरी में काफी बढ़िया बाजार लगा हुआ था, लेकिन यार वहां की रोड थोड़ी सी गड़बड़ है, तो मैं चाहूंगा अगर वहां पे कोई मतलब रेडियो के थ्रू अगर मुझे कोई सुन रहा है तो इधर की रोड भी यार थोड़ी सही कराओ। पीतल नगरी यार इतना बढ़िया नाम है मुरादाबाद का पीतल नगरी, सड़कें भी वहाँ की थोड़ी चमचमाती भी होनी चाहिए ना, एक तो वाटर लॉगिंग हो जाती है तुरंत जैसे ही पानी भरता है आसपास सड़कों में, पानी जमा हो जाता है उससे बड़ी दिक्कत होती है यार। लेकिन वेल पीतल नगरी बहुत ही बढ़िया यार, कल मैं गया मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड एक और मैसेज आया, हाय गुड मॉर्निंग आनंद, हाउ आर यू, आप मेरे एरिया में आइए, बहुत ही प्यारा एरिया है हमारा भी। अच्छा जी, जरूर आएंगे, नाम लिख के बताओ कौन सा एरिया है। मैसेज पहुंचा है, हाय गुड मॉर्निंग, कैसे हाल चाल है, मेरा नाम मनप्रीत है, आनंद गुड मॉर्निंग कैसे हो भाई, मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। हाय गुड मॉर्निंग रेडियो वाले आनंद को प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सर आपका शो सुन रहे हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है एंड काफी बढ़िया गाने आप प्ले करते हैं, इसको सुन के मन जो है गार्डन गार्डन हो जाता है। मौसिन अंसारी जी कह रहे हैं गाने बहुत ही अच्छे प्ले हो रहे हैं, थैंक यू सो मच। नीतू जी जुड़ गई हैं लाइन पर ढक्का से, लिखती हैं आनंद जी वेरी गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं, धूप निकली हुई है और हवाएं चल रही हैं ठंडी ठंडी, सच में मौसम बहुत ही प्यारा है और आपके सॉन्ग बहुत प्यारे लग रहे हैं, प्रोग्राम और एंटरटेनमेंट दोनों ही बहुत अच्छा कर रहे हो आप, थैंक यू वेरी वेरी मच नीतू जी, आई एम सो हैप्पी। हाय वेरी गुड मॉर्निंग जी, आप कैसे हैं रिहाना, मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। आज की सुबह जैसे हम उठे और हमने धूप देखी तो लगा था यार सर्दियों वाली धूप आ गई, मतलब इतनी प्यारी सी धूप लग रही थी, एक तो बारिश के बाद जब धूप आई ना इतना सुंदर लग रहा था मौसम आया है, मैं तो थोड़ी देर धूप में ही बैठा रहा है, मैंने कहा चलो आज विटामिन डी ले लेते हैं, इतना अच्छा था ना सुबह सुबह का धूप, अगर आपने मिस कर दिया तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ये गाना डेफिनेटली आप तक पहुंचेगा, लेकिन उससे पहले कुछ एड ब्रेक का टाइम हो रहा है बिकॉज स्टेशन क्लॉक में वक्त हुआ है 9:35, 9:35 हो गए हैं, आप सुन रहे हैं आरजे आनंद। इस गाने से पहले मैं चाहूंगा मेरी तारीफ कर दो यार।
1: अरे भैया इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 FM।
2: तीस वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे ITM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद,
3: नैक द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक,
2: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में,
3: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई,
2: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी,
3: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
4: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।
5: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
6: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीज एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।

जेंजी का तो पता नहीं, लेकिन जो मिलेनियल्स हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा गाना होगा ये, बिकॉज ये गाना वो है जो आपकी फ्लैश बैक मेमोरी को ना एकदम ताजा कर देगा। और ऑफकोर्स कर दिया होगा यार, आपको फ्लैश बैक में लेके होगा ये गाना। स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में बहुत मैंने इस गाने को एंजॉय किया यार, बहुत ही अच्छा से गाना। हालांकि इसके तो बहुत सारे भी रीमिक्स आ गए हैं, बहुत सारे अलग अलग रिक्रिएशंस वाले सॉन्ग्स आ गए हैं इसी में। वंस अगेन वेलकम बैक, 9:42 वेंसडे की सुबह, आज 22 जुलाई है। जैसे मैंने बताया, जानवी कपूर ने आज के दिन डेब्यू किया था बहुत ही कमाल की फिल्म धड़क से, जो है उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी आज के दिन साल 2018 में। और अभी अरमान मलिक का बर्थडे हम सेलिब्रेट करते हैं आज की सुबह, तो उन्हीं का जो है यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा गाना मैं प्ले करूँगा। एंड आपको मुझे बताना है ये गाना कौन सी फिल्म का है। बहुत सारे लोगों ने ऑफकोर्स ये गाना बहुत बड़ी सुना होगा एंड बहुत ही अच्छा गाना है ये। सो आप मुझे आज की सुबह मैसेज करके बता सकते हो अगर आपको समझ में आ जाए तो मूवी का नाम, कौन सी फिल्म का गाना है। बहुत ही अल्टीमेट सॉन्ग है, बहुत ही प्यारा ट्रैक है। सो 3, 2, 1 गो स्टार्ट। सुनो जरा इसको और मुझे बताओ व्हाट्सएप करके ये गाना मैंने कौन सी फिल्म से लिया है आज की मॉर्निंग।

बहुत प्यारा ट्रैक है, बहुत ही कमाल की स्टार कास्ट थी और बहुत ही अच्छी फिल्म है। अगर आपको पता है कौन सी फिल्म का गाना है तो आप मुझे मैसेज करके जरूर बताइएगा 9837896896 पे, मुझे इंतजार रहेगा। आज अरमान मलिक का भी बर्थडे होता है 22 जुलाई को। अगर आज की तारीख में आपका बर्थडे होता है तो आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हो बॉलीवुड के धांसू कमाल के सिंगर अरमान मलिक के साथ। कौन सी फिल्म का गाना है?

करके जामे। चलो भाई मैसेज करो, बड़े भाई छोटे भाई जितने भी लोग सुन रहे हैं जो भी सुन रहे हैं फटाफट व्हाट्सएप करके मुझे बता दो अभी जो आपने सुना है वो कौन सी फिल्म का गाना है। चलो अभी गिप्पी गिरवाल का गाना एंजॉय करो।

0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा। 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681। 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे ITM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद।
1: NAC द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक।
0: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में,
1: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई।
0: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी।
1: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
0: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।
2: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

ब्यूटीफुल ट्रैक अभी आपने एंजॉय किया। ये क्या मतलब सॉन्ग था यार, इसे सुन के मजा आ गया। अरिजीत सिंह की आवाज, एनिमल का गाना सतरंगा इश्क, वेरी वेरी ब्यूटीफुल ट्रैक। ये वेंसडे की सुबह 9:53 हो रहे हैं स्टेशन की घड़ी में। एंड आपको बताते चलिए, मानसून में मिलने वाले जामुन सिर्फ स्वाद ही नहीं बल्कि सेहत का भी खजाना माने जाते हैं। आपको बताते चलिए, आयुष मंत्रालय के अनुसार यह पाचन को बेहतर बनाने और ब्लड शुगर मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपके, एंड साथ ही साथ आपकी इम्यूनिटी को भी बहुत ज़्यादा फायदे पहुंचाता है जामुन। यस, अगर आप जामुन खाते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है, आपके दिल के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, आपके पाचन तंत्र को तंदुरुस्त रखता है, एकदम बढ़िया रखता है और आपकी स्किन को भी एकदम चकाचक बना के रखता है। आपकी स्किन को बहुत सारे इसके फायदे होते हैं, इंस्टेंट एनर्जीज आपको मिलती है। साथ ही साथ जामुन अगर आप मानसून में खाते हैं तो ये बहुत ही हेल्दी माने जाते हैं आपकी बॉडी के लिए। तो अगर आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं इस मानसून, चाहते हैं कि भैया आपके चेहरे पर चमक जो है वो बनी रहे, तो 100% आप जामुन का इस्तेमाल कीजिए। जामुन तो आजकल वैसे भी मार्केट में बहुत ही बढ़िया बढ़िया आ रही हैं, सो डेफिनेटली मैं चाहूँगा कि आप जामुन का सेवन ज़रूर से करें।

0: एंड एक और इन्फॉर्मेशन आई है, उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस जो एक चिकित्सा सुविधा योजना इसकी शुरुआत की है। इसके तहत पात्र कर्मचारियों और उनके परिवार को 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिलेगा एंड सरकारी और पैनल में शामिल निजी अस्पतालों में हेल्थ कार्ड के जरिए इलाज कराया जा सकेगा। तो जो भी इस शिक्षा विभाग में जो कर्मचारी है उनके लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का। That's so nice, यार। आज की सुबह मैंने आपसे पूछा एक बहुत ही फैंटास्टिक क्वेश्चन, आज अरमान मलिक का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं तो मैंने कहा है बताओ जरा कौन सा गाना है। ये तो आपको पता ही है यार, गाना तो आपको डेफिनेटली पता है, बट ये कौन सी फिल्म का गाना है, विच मूवी, आपको मुझे मूवी का नाम बताना है।
1: आज पहली बार जो ऐसे मुस्कुराया हूं,
0: लास्ट मौका दे रहा हूँ आपको, बता दो बड़ा बहुत ही अच्छा गाना है, बहुत ही अच्छी फिल्म है यार। चलो मैसेज करना है आपने मेरे को 9837896896 पे अपने नाम के साथ अपना सही जवाब, उसको पहुंचा देना है मेरे नंबर पे। मैं वन सेकेंड रिपीट कर रहा हूँ, 9837896896 इस नंबर पे आप मुझे इमीडिएटली मैसेज करेंगे अपने नाम के साथ अपना सही जवाब एंड बताएंगे मुझे कौन से फिल्म का ये गाना है।

फटाफट से अभी मैसेज करो अपना नाम, अपने शहर का नाम, विच सिटी, कहाँ से हो आप एंड क्या है सही वाला जवाब, उसको सेंड करना है किधर बाबा, मेरे व्हाट्सएप पर सेंड करना है 9837896896 पे, ठीक है। इंतजार कर रहा हूँ मैं आपके व्हाट्सएप मैसेजेस का, ऑलरेडी मेरे पास ढेर सारे मैसेज आ गए हैं, बट मैं आपके मैसेज का ही वेट कर रहा हूँ पाजी। आप भी मुझे डेफिनेटली व्हाट्सएप करके बता सकते हैं आज की सुबह, अगर आपको पता है इसका राइट आंसर तो देर मत करो यार, फटाफट से उठाओ अपना फोन, जल्दी से टाइप कर दो अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना सही जवाब, ठीक है जी। फिलहाल आने वाला गाना इसी को सुनते हुए आगे बढ़ेंगे।

0: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
2: आज बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
3: क्या मेरी कसम,
2: मिस कर दिया तो रीलोड।
4: चाय चाय चाय,
2: सुनिए बिंदास मॉर्निंग्स आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
5: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
6: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
7: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
6: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
8: आवश्यक सूचना, 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन की मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
9: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पी या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारी वादा।
2: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास
1: मॉर्निंग। सुबह के 10 बज चुके हैं, ये बताना भी बहुत जरूरी है। आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6, जहां पर बातें होती हैं दिल से दिल तक। ढेर सारे लिसनर्स मेरे साथ जुड़े हैं आज की सुबह, आप सभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इनफैक्ट 10:01 हो गए हैं, कभी धूप कभी बादल, इन्हीं बातों के साथ हम भी आगे बढ़ रहे हैं जी।

0: मैं अपना वेट चेक करके बताऊंगा गुरुबाजी कितना है, आप टेंशन ना लो।
1: कतल करे लाख कतल।
0: चलो जी फटाफट से एक बात बता देता हूँ भैया, आप इंटरनेट के बिना भी UPI पेमेंट जो है कर सकते हैं। एक नया फीचर लेकर आने वाला है, NPCI जो है एक नए फीचर लाने की तैयारी में लग चुका है कि भैया अब जो है बिना इंटरनेट के भी UPI हो सके। जी हाँ, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है एक नई फीचर्स को इनरोल करने वाले हैं उन लोगों के लिए भैया, यानी कि आम लोगों के लिए जो इंटरनेट UPI का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए ये एक अच्छी खबर जो है बताई जा रही हो सकती है। आने वाले टाइम में, आने वाले जो टाइम है, जो समय है, उसमें इंटरनेट के बिना भी UPI पेमेंट हो सकता है। तो ये तो एक अच्छा फीचर मुझे लग रहा है होने वाला है, एंड मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छी चीज है, होनी भी चाहिए। आपको बता दें 17 सालों के बाद बड़े पर्दे पर वापस कर रही है 3 Idiots, क्या बात है, बहुत ही ब्लॉकबस्टर मूवी, आपकी मेरी हम सभी की फेवरेट 3 Idiots एक बार फिर से सिनेमाघरों में लौटने की तैयारी में है। 17 सालों के बाद मेकर्स इस फिल्म को री रिलीज करने की प्लानिंग बना रहे हैं, एंड ऐसे में फैंस को एक बड़े पर्दे पर देखने के लिए एक बार फिर से वो एक्साइटेड हो गए हैं। कहानी काफी मेमोरेबल है, ऑफ कोर्स आपने मूवी देखी होगी तो डेफिनेटली आपको पता है। सो आने वाली 4 सितंबर 2026 को आप सभी के नजदीकी सिनेमाघरों में एक बार फिर से कम बैक करेगी 3 Idiots एक बार फिर से बड़े पर्दे पर। आप देखने के लिए एक्साइटेड है, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। चलिए लौट कर आते हैं, बताते हैं कौन है आज के शो का हमारा लकी वाला सुपरस्टार। 10:03 वेंसडे की सुबह सुन रहे हैं आनंद को।

0: ब्यूटीफुल ट्रैक गुरु रंधावा की आवाज में अभी आपने एंजॉय किया, एक बहुत ही अच्छा गाना कतल, और अभी एंजॉय करिए तालियां। बहुत ही अच्छे अच्छे जवाब मैंने आज आपसे वर्ल्ड ब्रेन डे के मौके पे पूछा था। ऐसी कौन सी वेजिटेबल है जो बिना कटे बन जाती है, और क्या आप लोगों ने फनी फनी आंसर भेजे हैं। भैया ने कहा है, भैया गोभी को हम बिना कटे बना सकते हैं। भाई कैसे, मतलब कैसे बना सकते हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है यार। और एक भाई ने तो बिल्कुल अलग ही बात कर दी कि उड़द की दाल जो है वो बिना कटे बनती है। भाई मुझे मारो, क्या ही हो रहा है। एक मैसेज हो रहा है कि सोया बड़ी बिना कटे बनती। हाँ आई थिंक कह सकते हो सोया बड़ी, बट मैं ग्रीन वेजिटेबल की बात कर रहा था। वेजिटेबल्स में सोया बड़ी आती होगी, ये मुझे नहीं पता आती है नहीं आती है, लेकिन ग्रीन वेजिटेबल्स में तो नहीं आती है। ठीक है जी, तो मैं सिर्फ ग्रीन वेजिटेबल की बात कर रहा था कि ग्रीन वेजिटेबल यानी कि हरी सब्जियों में ऐसी कौन सी सब्जी है जो हम बिना कटे बना सकते हैं। एंड यही बताने के लिए ढेर सारे व्हाट्सएप पहुंचे थे मेरे पास। आई एम वेरी वेरी हैप्पी, थैंक यू वेरी मच इतने प्यारे मैसेज करने के लिए। आप सभी लोग इतने बढ़िया हो यार, जरा इनका सुनते हैं इन्होंने क्या जवाब पहुंचाया। जी मैम, हेलो, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? दोबारा से प्ले करते हैं इनका वॉइस।
1: राधे राधे
0: राधे राधे
1: जी, आनंद जी, मटर को बिना काटे बनाया जाता है।
0: अच्छा जी, क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया है। थैंक यू सो मच मैम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, एकदम सही जवाब था आपका। मुझे पता था यार, देखिए लेडीज तो जीत ही जाती है, लेकिन बस जेंट्स को जो है अपने भाइयों को तो टल्ली होगा नाचण दे। अरे भैया पता नहीं कौन सी सब्जी बिना कटे बनती होगी। सुनिधि चौहान की इसी आवाज के साथ यानी कि इसी बढ़िया गाने के साथ आपको मैं टाटा बाय बाय करूंगा, लेकिन उससे पहले मैंने एक और सवाल पूछा था, आज अरमान मलिक का बर्थडे यार, तो आपको मेरे को बताना था कि ये गाना कौन सी फिल्म से लिया था।

0: व्हाट्सएप करना था आपने मेरे को एंड ढेर सारे आए मैसेजेस, सभी लोगों ने दिए हैं एक से बढ़कर एक सही जवाब। एब्सोल्युटली दिस इज राइट आंसर, सनम रे, बहुत ही प्यारी फिल्म थी। कंग्रेचुलेशन डॉक्टर सुरेश एंड इसके अलावा पल्लवी जी, ये दोनों मेरे को सही जवाब पहुंचाते हैं, साथ में कुसुम जी जुड़ी थी राइट आंसर के साथ, बहुत बहुत बधाइयां। और लोगों ने भी सही जवाब दिए हैं, तो चलिए बिना किसी देरी के आपके मैसेजेस को जरा शामिल करते हैं। कॉल पे तो कनेक्टिविटी बन नहीं पाई, बट मैंने यहाँ पर बिना किसी देरी के जो है आपके जवाब को शामिल कर लिया। रणवीर जी जुड़ गए मेरे साथ आज की सुबह सही जवाब के साथ, एंड भारती जी जुड़ गई ही मेरे साथ, लिखती हैं शिमला मिर्च भाई मुझे मारो, वो कैसे मैम बिना कटे कैसे बन जाएगी आप मेरे को जरा बताओ। ये सही जवाब पहुँचा रहे दुर्गेश सैनी कल्याणपुर से, एंड भूपेश शर्मा जी मेरे साथ जुड़े हैं सही जवाब के साथ, एंड लाइन पार से लक्ष्मी जी जुड़ गई हैं, इसके अलावा चंदन नगर से डीके रोड़ा जुड़े हैं, मोहसिन अंसारी जी जुड़ चुके हैं आज की सुबह मेरे साथ सही जवाब के साथ, लिखते हैं डांस करने पे मजबूर कर दे तो इतने अच्छे गाने प्ले करते हो, बिल्कुल यार कोशिश करते हैं। सनम रे मूवी का टाइटल ट्रैक है, थैंक यू सो मच मिस्टर भल्ला। हाय गुड मॉर्निंग आनंद जी, कैसे हालचाल हैं। बबलू सैनी मुंबई महाराष्ट्र से जुड़ रहे हैं सही जवाब के साथ, एंड ये लिखते हैं आनंद भाई कभी देवापुर आओ तो हमें मैसेज करना, उधर कल्याणपुर गांव में हम भी रहते हैं। वैसे अगर आप चाहते हैं कि आपके गांव में हम जल्दी से आएं अपनी पूरी टीम के साथ आके एक बढ़िया सा जो है वहां पर प्रोग्राम करें, तो आप जरूर मुझे बताइएगा, यहां मैसेज कर दीजिएगा, जितने भी आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के लोग मुझे सुन रहे हैं अपना नाम और नंबर मैसेज करिएगा अपने गाँव के नाम के साथ, हम जल्दी आपके गाँव में आएंगे। हाय गुड मॉर्निंग बेबी राधिका हमें सुन रहे हैं, गुड मॉर्निंग हेलो हेलो कैसे हैं आप। भावना नैनीताल से जुड़ गई हैं आज की सुबह, इसके अलावा नॉनेश कुमार जी जुड़ गए हैं, लिखते हैं उड़द की सब्जी बिना कटे बनती है ओ भाई साहब। राजा कश्यप जी जुड़े हैं साथ में, लिखते हैं हाय गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से हेलो हेलो जी, आपको भी हेलो हेलो आज नहीं। चलो जी 10:09 हो रहे हैं पाजी, जाना पड़ेगा।
1: की बात कर रहे हैं, श्रीदेवी की ये बेटी हैं, इनकी पहले मूवी धड़क थी जिसके हीरो थे ईशान खट्टर।
0: क्या बात है यार, सारी नॉलेज रखती हैं अलका जी आप, मानना पड़ेगा, माइंड ब्लोइंग।
1: आनंद जी जो आपने म्यूजिक चलाया है वो सनम की मूवी से है। अच्छा। और आपका प्रोग्राम काफी अच्छा चल रहा है, तरह तरह की जानकारी मिल जाती है कि हमारे शहर में, हमारे प्रदेश में, हमारे देश में और देश के बाहर के बारे में भी न्यूज में पता चल जाता है कि आपका प्रोग्राम सुनकर।
0: बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद मैम, थैंक यू। आप भी बहुत एक्टिव रहती है नो डाउट, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, जो बड़ी सी स्माइल आपके चेहरे पे आई है उसको बना के रखिए, दोस्तों आप भी अपने चेहरे पे ऐसे स्माइल रखते हुए आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच गाइस आज की सुबह जुड़ने के लिए, कल मिलते हैं सुबह, टिल देन टुमारो मॉर्निंग, रखिए अपना ढेर सारा ख्याल और ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, रेडियो बजाते रहिए। दोपहर के बाद मौसम थोड़ा सा बदल सकता है तो अपना जरा खास ख्याल रखिए, ये जो वेदर है ये कभी धूप कभी गर्मी, ये जो है ढेर सारी बीमारियां भी लेकर आ सकता है, तो ऐसे में अपने फैमिली के साथ जरा अपना खास ख्याल रखिए। कुछ टेक्स्ट मैसेज आए थे, हाय गुड मॉर्निंग जी कैसे हालचाल है, सृष्टि मेरे साथ जुड़ी है आज की सुबह, गुड मॉर्निंग पहुंचाती है। हाय गुड मॉर्निंग हेलो आनंद कैसे हाल चाल है, हाय दिस इज मी नेहा, हाय नेहा गुड मॉर्निंग। रोहन भी मेरे साथ जुड़े हैं आज की सुबह, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। अभी के लिए मैं जाता हूँ, 10:10 हो गए, खुशी स्टूडियो में आ गई, आप उनके साथ कीजिए ढेर सारी बात, उनको दीजिए ढेर सारा प्यार और सुनते रहिए ऐसे ही एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए गुनगुनाते रहिए। आई अगेन रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं कि आपके गांव में हम लोग एफएम रेडियो वाले आपके क्षेत्र में आए, ढेर सारे प्रोग्राम्स करें, अच्छी अच्छी चीज़ें जो है आपके साथ सेलिब्रेट करें, तो आप अपना नाम, अपने क्षेत्र का नाम और अपना नंबर जरूर भेजिएगा। आप कौन से एरिया में रहते हैं मुरादाबाद के, कौन से ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, जरूर पहुंचाइएगा, जल्दी हम आपके यहाँ पहुंचेंगे और करेंगे आपसे ढेर सारी बातचीत। फिलहाल के लिए लेता हूँ अब जाने की इजाजत, कल सुबह सवेरे एक नई वाइब के साथ, नई एनर्जी के साथ, कुछ और नए गानों के साथ, कुछ और नई तरह तरह की इन्फॉर्मेशन के साथ होगी मेरी आपकी मुलाकात। तब तक के लिए टिल देन टुमारो मॉर्निंग, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, साइनिंग ऑफ।

0: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा। 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।
1: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए, क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
2: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
1: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
2: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
1: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
0: मुरादाबाद
1: से संपर्क कीजिए।
2: नियम और शर्तें लागू।
3: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
0: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है, क्योंकि वो सुनती है FM मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो FM मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

म्यूजिक मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

क्या बात है दोस्तों, ब्यूटीफुल सॉन्ग अभी आपने सुना, बहुत ही खूबसूरत सा राबी शेरगिल साथ में शाहिद मालिया के खूबसूरत सी आवाज में, ये अमेजिंग ट्रैक आपके लिए खुशी ने प्ले किया आज की मॉर्निंग। मैंने कहा भाई इतनी ब्यूटीफुल वेनेसडे मॉर्निंग है तो कुछ तो खास होना चाहिए। और अभी आपने ये प्यारा सा ट्रैक सुना, बोले यार दिल किथे चलिया, और सच कहूँ ना मेरा दिल तो आप सबके पास ही चला आया है। इतने प्यारी सी वेनेसडे मॉर्निंग में आपका साथ मिल जाए, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी आरजे खुशी, और आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6। दोस्तों आज 22 जुलाई है, हर दिन अपने आप में एक नई शुरुआत, नई ऊर्जा और नई उम्मीद, एक नई मुस्कान लेकर आता है। इसीलिए इस दिन को भी खास बनाइए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि मॉर्निंग मसाला में अभी बहुत कुछ बाकी है। कहीं मत जाइए एवरीवन, बने रहिए, सुनते रहिए फिर मुरादाबाद 89.6। एंड आप भी मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, उसके लिए आपको मुझे व्हाट्सएप करना होगा, तो फटाफट से अपने मैसेज पहुंचाइएगा। नंबर मैं आपको बता देती हूँ, 9837896।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी।

0: कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस।
1: उत्सव ज्वेलर्स आभूषण एक खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
2: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
3: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे। हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना?
4: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
3: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।

0: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्कार, आप सभी का वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और दोस्तों, आज 22 जुलाई है, हमारे देश के इतिहास का एक बेहद गौरवशाली दिन। आज ही के दिन 1947 में संविधान सभा ने तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय ध्वज में अपनाया था, इसीलिए हर साल 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में याद किया जाता है। दोस्तों, हमारा तिरंगा जो है केवल एक झंडा नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों की पहचान, सम्मान और स्वाभिमान का प्रतीक है। और दोस्तों, जानते हैं तिरंगे के हर रंग का क्या संदेश है? श्रोताओं, तिरंगे में सबसे ऊपर होता है केसरिया रंग, और केसरिया रंग हमें साहस, त्याग, बलिदान और निस्वार्थ सेवा की प्रेरणा देता है। ये बताता है कि देश और समाज के लिए समर्पण का भाव ही सच्ची देशभक्ति है। और बीच में आता है व्हाइट कलर, जी हाँ, सफेद रंग सत्य, शांति, ईमानदारी और पारदर्शिता का प्रतीक है। ये हमें जीवन में सही रास्ते पर चलने और सभी के साथ समानता का संदेश देता है। और श्रोताओं, नीचे आता है ग्रीन कलर, जी हाँ, हरा, जो समृद्धि, विकास, प्रकृति, हरियाली और खुशहाली का प्रतीक है। ये हमें प्रकृति, वातावरण की रक्षा और संतुलन जीवन जीने की प्रेरणा भी देता है। और अब बात करते हैं अशोक चक्र की। सफेद पट्टी के बीच बने गहरे नीले रंग का 24 तिल्लियों वाला अशोक चक्र न्याय, धर्म, प्रगति और निरंतर आगे बढ़ते रहने का प्रतीक भी है। दोस्तों, इन 24 तिल्लियों का संदेश है जीवन कभी रुकना नहीं चाहिए, समय चलता रहता है, इसी लिए हमें भी मेहनत, ईमानदारी और अच्छे कर्मों के साथ लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए। दोस्तों, तिरंगा हमें सिखाता है केसरिया जैसे साहस रखें, सफेद जैसी सच्चाई अपनाएं, हरा जैसी खुशहाली और प्रकृति से प्रेम करें, और अशोक चक्र की तरह जीवन में कभी रुके नहीं। और आज राष्ट्रीय ध्वज दिवस पर आइए एक संकल्प लें, हम अपने देश, अपने संविधान और अपने तिरंगे का हमेशा सम्मान करेंगे और भारत को और भी मजबूत, स्वच्छ, समृद्ध और एकजुट बनाने में अपना योगदान देंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और सुनते हैं एक देशभक्ति गीत, लौट कर आते हैं, उसके बाद करेंगे आपसे और भी बातें एंड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आज के दिन होने वाली है, आप तक पहुंचाने वाली आरजी खुशी है। दोस्तों, आप भी इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपने संदेश मुझे पहुंचा सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर रहेगा 9837896896, 9838 96, 98 3786। आप अभी अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो स्माइल कीजिए, सफ़र दूर भले ही हो लेकिन जब आप मुस्कुराते हुए सफ़र में होते हैं ना तो सफ़र आसान लगता है। और आगे बढ़ते रहिए, आप भी अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंच जाएंगे।

0: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
2: कोई मिल गया, कोई मिल गया।
1: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

क्या बात है दोस्तों, ब्यूटीफुल ट्रैक अभी आपने सुना फ्रॉम द मूवी है जवानी तो इश्क होना है। दोस्तों खुशी आपका स्वागत करती है फिर मुरादाबाद 89.6 पर। और आज की सुबह बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा एक मैसेज हमारे पास आया है, उसको देखकर सच में मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। एंड इतना प्यारा सा मैसेज, और कौन है जनाब, कहाँ से उन्होंने अपना मैसेज भेजा है, ये सब हम आपको भी बताने वाले हैं। दोस्तों आपका इतना प्यार यहाँ पर मिलता है एवरी मॉर्निंग हमें, तो मतलब क्या करें, हम खुद को रोक नहीं

पाते हैं, इवनिंग मॉर्निंग आपसे मुलाकात करने चले आते हैं। और हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है नितिन जी का, कहते हैं गुड मॉर्निंग मैम, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। और ये कहते हैं कि मैं अपनी डियर वाइफ आंचल के लिए एक ट्रैक सुनना चाहता हूँ मैम। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, ये ट्रैक में डेडिकेट करना चाहता हूँ। अगर संभव हो तो प्लीज ये कार्यक्रम में गीत जरूर बजाएगा। एंड बहुत बहुत धन्यवाद, मोस्ट वेलकम सर। बट आपने बताया नहीं है कि आपने अपना मैसेज कहाँ से भेजा है, ये भी हमें बताइएगा नितिन जी। वैसे आपने अपना जो नाम है वो पंजाबी में लिखा है, तो आप पंजाब से हैं? और कितना खूबसूरत गीत है ना दोस्तों, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। सच कहूँ, हर पत्नी को अपनी तारीफ सुनना बहुत अच्छा लगता है। सुबह सुबह अगर पति प्यार से दो मीठे बोल बोल दे, एक छोटी सी तारीफ कर दे, तो पूरा दिन मुस्कुराते हुए निकल जाता है, क्योंकि वो भी सुबह से शाम तक पूरे परिवार का ख्याल रखती हैं बिना शिकायत के। तो क्यों ना आज आप भी अपने जीवन साथी से कह दें, तुम खूबसूरत हो, तुम मुस्कुराने की वजह हो। और इसी प्यारे से मैसेज के साथ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास किन का आया है वो भी हम यहाँ पर शामिल कर लेते हैं। ओके सर, कहते हैं कि नहीं मैम, मैं मुरादाबाद से ही हूँ। ओके सर, आप मुरादाबाद से हैं, लेकिन आपने जो प्रोफाइल में अपना नाम लिखा है वो पंजाबी लैंग्वेज में चूज किया हुआ है, तो मुझे लगा शायद पंजाब से हैं। पर कोई बात नहीं, आप मुरादाबाद से हैं, ये भी हमें जानकर अच्छा लगा। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट मैसेज आया है मोहम्मद साबिर परवाना जी का, और ये मैसेज हमें पहुँचाते हैं मधुबनी बिहार से। कहते हैं आरजे जी, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सर। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अंजान जी का, साथ में साइना नवाज हैं, हसन नवाज हैं। और ये कहते हैं आरजे खुशी जी को हमारा आदाब, आपको भी आदाब सर। आपका आदाब हमने एक्सेप्ट किया सर, थैंक यू। आप इतनी दूर से हमें सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है जब दूर दूर से हमारे श्रोता कार्यक्रम में जुड़ते हैं एवरी मॉर्निंग। दोस्तों आप भी अपने संदेश हमें पहुंचाएगा, नंबर मैं आपको बताती हूँ 9837896896। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, और एक खूबसूरत सा गीत सुनते हैं, उसके बाद लौट कर आते हैं। एंड आज और क्या कुछ स्पेशल है सब आपको धीरे धीरे खुशी यहाँ पर बताएगी। बस आप बने रहिएगा, मुस्कुराते रहिए और इस खूबसूरत गीत का आनंद लीजिए। एंड आपके घर में भी कोई फैमिली मेम्बर्स हैं, आपको लगता है कि वो मेरे लिए इतना कुछ करती हैं, मेरा ख्याल रखती हैं, मेरा ख्याल रखते हैं, तो आप आज उनको क्या कहना चाहेंगे बताइए ज़रा, शर्माइए मत, बता दीजिए आज। किसी का दिन बन जाएगा यार।

0: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे IFTM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद
1: नैक द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक
0: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में
1: चाहे फार्मेसी हो मैनेजमेंट कंप्यूटर इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी लॉ एग्रीकल्चर साइंस एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई
0: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी
1: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट
2: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077
3: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर निकट सर्किट हाउस दिल्ली रोड मुरादाबाद

क्या बात है दोस्तों, अमेजिंग ट्रैक अभी आपने सुना फ्रॉम द मूवी सुल्तान से। दोस्तों आज 22 जुलाई है और साल 2026 के 365 दिनों में से 203 दिन बीत चुके हैं और अब इस साल के सिर्फ 162 दिन बाकी हैं। अगर आपने अपनी किसी सपने या लक्ष्य की शुरुआत अभी तक नहीं की है तो आज से बेहतर दिन कोई हो ही नहीं सकता है। तो हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है, तो अगर आपने कुछ डिसाइड किया है अपनी लाइफ में, कुछ अचीव करने का, कुछ गोल्स हैं आपके तो अभी तक नहीं किया है तो आज से शुरुआत कर सकते हैं आप, क्योंकि अभी आपके पास 162 डेज बाकी हैं। समय मैं आपको बता देती हूँ, 10:52 स्टूडियो की घड़ी में राइट नाउ हो चुके हैं और दोस्तों आज 22 जुलाई है। आज पूरी दुनिया में मनाया जाता है विश्व मस्तिष्क दिवस। जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड ब्रेन डे। दोस्तों हमारे शरीर का सबसे अद्भुत और सबसे शक्तिशाली शारीरिक अंग है मस्तिष्क यानी ब्रेन। लगभग 1.3 से 1.4 किलोग्राम वजन वाला हमारा दिमाग शरीर के हर छोटे बड़े काम को नियंत्रित करता है। सोचना, समझना, याद रखना, बोलना, चलना, महसूस करना और फैसले लेना, ये सब हमारे मस्तिष्क की देन है। विश्व मस्तिष्क दिवस मनाने का उद्देश्य लोगों को मस्तिष्क के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना, क्योंकि स्वस्थ दिमाग ही स्वस्थ जीवन की पहचान है। दोस्तों अपने मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए कुछ आसान टिप्स मैं आपको बता देती हूँ। सबको पता ही है लेकिन फिर भी खुशी आपको बता देती है। देखिए जहाँ से कुछ अच्छी सलाह मिलती है ना तो ले लेना चाहिए, है ना। कुछ जान ही रहा है, कुछ आ ही रहा है। तो दोस्तों हर रोज आपको 7 से 8 घंटे की प्रॉपर अच्छी नींद लेनी है, पौष्टिक भोजन खाना है, खासकर हरी सब्जियां, फल, मेवे। ओमेगा 3 भरपूर आहार और रोज कम से कम 30 मिनट व्यायाम या 30 वॉक कर सकते हैं। एंड नई चीजें सीखिए, किताबें पढ़िए, कोई अगर आपके अंदर स्किल्स है, कोई आपका पैशन है, कोई हॉबीज आपकी है, अगर आपको अच्छा लगता है सिंगिंग करना, डांस करना एंड उसके अलावा कुकिंग करना, आजकल तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, एंड कोई मेहंदी आर्टिस्ट है, कोई मेकअप आर्टिस्ट है, तो जो भी आपको अच्छा लगता है आप वो एवरी डे कर सकते हैं, क्योंकि कुछ जब हम नया सीखते हैं तो हमारा ब्रेन और ज़्यादा तेज़ी से काम करता है। एंड दोस्तों तनाव जो है ना, टेंशन को दूर रखना है अपने आप से, और टेंशन को दूर रखने के लिए क्या करना होगा, आपको योग करना होगा, ध्यान करना होगा। जी हाँ दोस्तों, मेडिटेशन जब आप करते हैं तो तनाव से दूर हो जाते हैं। एंड मोबाइल और स्क्रीनिंग का उपयोग संतुलित रखें, मतलब आपको क्या करना है, बैलेंस चीज़ें बैलेंस करके ही चीज़ों को मेंटेन करना है। लाइक जैसे आप मोबाइल चला रहे हैं तो एक टाइम फिक्स कर लीजिए कि मुझे इतने एक घंटा या फिर आधा घंटा 30 मिनट्स में को फ़ोन चलाना है, इतने घंटे फ़ोन चलाना है, उसके बाद नहीं यूज़ करना है। तो ये चीज़ें अगर आप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके अलावा और भी बात आपसे करेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ और भी मैसेज आए हैं, मैं उनको भी क्विकली शामिल करती हूँ। और एक सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, मैं आपसे मालूम करना चाहती हूँ, पर मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा इंतज़ार करा देते हैं अपने श्रोताओं को। हाँ मैं बहुत वेट कराती हूँ ना, चलो आप नहीं करवाऊँगी। और यहाँ पर जो मैसेज आए हैं मैं उनको भी जल्दी से शामिल कर लेती हूँ, क्योंकि सब भी सब्री से इंतज़ार कर रहे हैं ना। और हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है, खुशी जी जय श्री राम, गौरव टेलर जी का नवीन नगर मुरादाबाद से कहते हैं, कैसी हैं आप। मैं बहुत अच्छी हूँ सर, एंड कार्यक्रम बहुत ही बिंदास पेश कर रही हैं आप जानकारियाँ भी बहुत ही अमेजिंग देती हैं। एंड मुझे एक गाना सुनना है खुशी मैम, आए हो मेरी ज़िंदगी में तुम बहार बनके। अरे वाह, बहुत प्यारा गाना है, फ्रॉम द मूवी राजा हिंदुस्तानी, उदित नारायण जी की आवाज़ है। और इन्होंने एक थॉट बड़ा प्यारा सा शेयर किया है, ये मुझे बहुत पसंद आया है,
दोस्तों सर ने एक थॉट पहुंचाया है, वो क्या है मैं आपको बताती हूँ कि ईमानदारी से काम करने वाले शौक भले ही पूरे ना हो, ईमानदारी से काम करने वालों के शौक भले ही पूरे ना हो, लेकिन नींद जरूर पूरी हो जाती है ना दोस्तों। जो ईमानदारी से काम करता है ना, वो सुकून की नींद पाता है, और जो बेईमानी से काम करता है वो रात भर सोचता रहता है। तो आपको क्या करना है, ईमानदारी से अपने काम को करना है। उसके अलावा एक और मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है दुर्गेश सनी जी का, कल्याणपुर मुरादाबाद से। कहते हैं गुड मॉर्निंग खुशी मैम, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। और इन्होंने एक प्यारे से गाने की रिक्वेस्ट हमें भेजी है, सनम रे, तो सुनवाएंगे ये गाना। एंड आप ही अपने मैसेज जल्दी से पहुँचाइए, मैं इंतजार कर रही हूँ। और ये प्यारा सा गाना आप सभी के लिए ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 पर।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।

0: आइए आप भी भागीदार बनिए, वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 से जुड़िए।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
2: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
3: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

म्यूजिक मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

0: नो डाउट दोस्तों, जब खुशी आती है तो ढेर सारी खुशियाँ लेकर आती है, इसमें कोई शक नहीं है। वक्त हुआ है 11:09 और अभी आपने टाइटल ट्रैक सुना सनम रे अमेजिंग गाना, और इस ट्रैक की रिक्वेस्ट में भेजी थी दुर्गी सैनी जी ने। और दोस्तों मैं आपको बता देती हूँ, मैंने आपसे कहा था ना अभी ट्रैक प्ले करने से पहले मैंने आपको बताया था कि दोस्तों आज मेरा एक सिंपल सा सवाल है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा मजेदार भी है। एवरीवन, आज वर्ल्ड ब्रेन डे है तो इसी पर हमने एक सवाल आपके लिए चुना है। आप मुझे बताइएगा ऐसी कौन सी चीज है जिसे जितना इस्तेमाल करेंगे वह उतनी ही तेजी से आगे जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसी कौन सी चीज है जिसे जितना इस्तेमाल करेंगे वह उतनी ही तेज होती जाएगी। तो बताइएगा, ऑप्शन मैं आपको दे देती हूँ, ठीक है। ऑप्शन ए है मोबाइल, ऑप्शन बी है मस्तिष्क, ऑप्शन सी है घड़ी, ऑप्शन डी है टीवी। ऐसी कौन सी चीज है जिसे जितना इस्तेमाल करेंगे वह उतनी ही तेज होती जाएगी। इस सवाल का जवाब हमें पहुंचाएगा, नंबर मैं आपको बता देती हूँ, 9837896896, ये हमारा मोबाइल नंबर है। इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, अपना वॉइस नोट पहुंचा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। और यहाँ पर जो खूबसूरत मैसेज आए हैं मैं उनको भी क्विकली शामिल कर लेती हूँ। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है रानी नांगल से रिहाना जी का, कहती हैं गुड मॉर्निंग खुशी मैम, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी डियर। इन्होंने एक प्यारे से गाने की रिक्वेस्ट भेजी है, श्योर हम पूरी कोशिश करेंगे इसको प्ले करने की। उसके अलावा एक और मैसेज हमारे पास आया है रामपुर से शबनम जी का, साथ में राहत अली जी हैं, नेहा हैं, लाइबा काजमी हैं, कहती हैं खुशी मैम गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी डियर। और कहती हैं कि एक छोटी सी शायरी है आपके लिए, श्योर डियर हम ज़रूर इसको आपकी शायरी अपनी ज़ुबानी आप तक पहुँचाते हैं। इन्होंने बहुत प्यारी सी लाइनें लिखी हैं कि आपकी आवाज़ मेरी ज़रूरत, आपकी आवाज़ मेरी ज़रूरत, आपकी मोहब्बत मेरी आदत, आपकी मुस्कान मेरी राहत, आपकी खामोशी मेरी सज़ा, आपकी खुशी मेरी जिंदगी। क्या बात है यार, अमेजिंग मैम, थैंक यू सो मच। सच में ऐसा है ना, थैंक यू, इतना लवली, इतना स्वीट सा मैसेज आपने हमें पहुंचाया है, दिल से शुक्रिया। एंड उसके अलावा हमारे पास एक और मैसेज आया है, ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं कश्मीर से महराजुद्दीन जी, कहते हैं खुशी मैम गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। और हमारे पास एक प्यारा सा वॉइस नोट भी आया है तो मैं उसको प्ले कर लेती हूँ यहाँ पर जल्दी से, क्या भेजा है सर ने, उनकी आवाज़ भी सुन लेते हैं।
1: क्यों बोझ हो जाते हैं वो झुके हुए कंधे साहब, जिन पर चढ़कर कभी तुम दुनिया देखा करते थे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदलते, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदलते, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। नमस्कार, राधे राधे, आप सुन रहे हैं मॉर्निंग मसाला आरजे खुशी के साथ, और मैं आपका दोस्त भूपी शर्मा, नगर पंचायत पाक बड़ा से। सुनते रहिए फिर मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज, जिसको बजाना पड़ता है, गुनगुनाना पड़ता है और मुस्कुराना पड़ता है। और भेजते रहिए अच्छे अच्छे मैसेज, अच्छे अच्छे वॉइस नोट, नंबर है 98-378-96-896। जी हाँ, यही वही नंबर है जो आपकी आवाज़ को पहुँचाएगा पूरे देश तक, पूरे संसार तक और अपनों तक। नमस्कार, राधे राधे, खुशी जी गाना सुना दीजिए, तुमसे बना मेरा जीवन सुंदर सफल सलोना।
0: थैंक यू सो मच भूपी शर्मा जी, मुझे लगता है कि अभी आप शायद कुछ काम भी कर रहे थे एंड नहाते नहाते तो रिकॉर्ड नहीं करके भेजा आपने। थैंक यू सो मच अपना वॉइस नोट पहचाने के लिए, शुक्रिया बहुत बहुत। एंड दोस्तों यहाँ पर कुछ गाने हम प्ले करते हैं, उसके बाद लौट कर आते हैं, फिर भी आप मुझे बताइएगा। एक मैंने बड़ा इंटरेस्टिंग सा आपसे क्वेश्चन पूछा है आज की मॉर्निंग, आज वर्ल्ड ब्रेन डे है तो इस खास मौके पर कुछ तो खास होना चाहिए ना, अपने श्रोताओं से दोस्तों का ना छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं हम। वैसे नो डाउट यार, सभी इंटेलिजेंट हैं हमारे लिसनर, बस एक छोटा सा हिंट देने की, यू नो एक छोटा सा हिंट देते हैं वो सारे आंसर हमें पहुंचा देते हैं। आज का मेरा क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे जितना इस्तेमाल करेंगे वह उतनी ही तेज़ होती जाएगी। ऑप्शन में आपको देती हूँ, ऑप्शन ए है मोबाइल, ऑप्शन बी है मस्तिष्क, ऑप्शन सी है घड़ी, ऑप्शन डी है टीवी। तो जल्दी से अपना सही जवाब पहुंचाइए, हम इंतजार कर रहे हैं। वैसे बहुत सारे मैसेज आपके आ गए हैं, थैंक यू सो मच एवरीवन। लेकिन जिन्होंने अभी रेडियो ऑन किया है, अभी अभी मुझे सुनना स्टार्ट किया है, उनको हमने ये क्वेश्चन फिर से बताया है। तो जल्दी से मुझे अपने मैसेज पहुंचाइएगा, बाकी एक प्यारा सा बेहतरीन सा ट्रैक आप सभी के लिए। और इस गाने की रिक्वेस्ट हमें भेजी है रिहाना जी ने, सुनते हैं।

0: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
1: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
0: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
1: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
0: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
2: मुरादाबाद
0: से संपर्क कीजिए।
1: नियम और शर्तें लागू।
3: सिरदर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
4: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 rupees एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
5: म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

हेलो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं मॉर्निंग मसाला शो विद आरजे कृषि। और वक्त मैं बताती हूँ, 11:25 हो चुके हैं, 11:25। और आज की सुबह मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा था, बहुत इजी सा। मैंने आपसे मालूम किया था दोस्तों कि ऐसी कौन सी चीज है जिसको जितना इस्तेमाल करते हैं वो उतनी ही तेज होती जाती है। और हमारे श्रोताओं के जो जवाब आए ना, मैं तो भरी जावा, मेरे को यकीन नहीं था, यकीन था लेकिन इतने सारे सही जवाब आएंगे ये मैंने नहीं सोचा था। और दोस्तों हमारे श्रोताओं ने जो जवाब दिए हैं ना, उनका नाम भी हम यहाँ पर शामिल करेंगे। और श्रोताओं ने तो आज कमाल कर दिया है दोस्तों। देखिए, सही जवाब था दिमाग, ब्रेन। जी हाँ दोस्तों, और सबसे पहले सही जवाब हमें पहुंचाया है योगेंद्र जी ने, योगेंद्र चौहान जी ने। तो इनके लिए हो जाए जोरदार तालियां, क्योंकि इन्होंने दिया है राइट आंसर। सबसे पहले इन्होंने सही जवाब पहुंचाया है आज की सुबह। ये बनते हैं आज के हमारे शो के ब्रेन सुपरस्टार। योगेश जी, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। और श्रोताओं, यहाँ पर

और भी हमारे श्रोताओं ने जवाब पहुंचाए हैं। कुछ तो कंफ्यूज हो गए थे लेकिन कुछ श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब पहुंचाए हैं। नेक्स्ट हमारे पास राइट आंसर हमें पहुंचाया है यहाँ पर, इन्होंने नाम नहीं लिखा है बट इन्होंने राइट आंसर पहुंचाया है दिमाग। एंड उसके अलावा एक और मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, ये हमें शुभ्रम जी ने सही जवाब पहुंचाया है। मैम सही आंसर है दिमाग, एग्जैक्टली मस्तिष्क राइट आंसर। उसके अलावा नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर किन का आया है मैं जल्दी से शामिल करती हूँ। हमारे पास सही जवाब हमें पहुँचाते हैं भूपी शर्मा जी, साथ में सपना शर्मा जी भी हैं और ये कहती हैं उत्तर है मैम ब्रेन, एग्जैक्टली राइट। और उसके अलावा हमारे पास मैसेज आया है ललिता कश्यप जी का नवी नगर मुरादाबाद से, कहती हैं गुड मॉर्निंग खुशी मैम, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी, और आपने जो अभी क्वेश्चन पूछा था उसका राइट आंसर है मस्तिष्क, एग्जैक्टली राइट। मैंने कहा था ना कि हमारे जो लिसनर हैं बहुत एक्टिव हैं, ऐसे नहीं कहते हैं हम अपने श्रोताओं को सुपरस्टार, भाई वो हैं। और दोस्तों अगर मैं आपसे पूछ लूं कि फलों का राजा कौन है तो आप यकीनन जवाब देंगे, आपका जवाब होगा आम। और आज दिन है उसी राजा के नाम, क्योंकि आज 22 जुलाई को राष्ट्रीय आम दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है जो नेशनल मैंगो डे। आम सिर्फ एक फल नहीं बल्कि हमारी गर्मियों की सबसे मीठी याद है, छुट्टियाँ, नानी का घर, पेड़ से तोड़े आम, आम रस, मैंगो शेक और ठंडी ठंडी आम की कुल्फी, इन सब का मजा ही कुछ और है, क्यों दोस्तों? भारत दुनिया में आम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, दुनिया के कुल आम उत्पादन का लगभग 40% से ज्यादा हिस्सा भारत में ही होता है। और दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा आम कहाँ उगाया जाता है? उत्तर प्रदेश आम उत्पादन में अनगणित राज्यों में से एक, इसके अलावा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, बिहार, गुजरात और महाराष्ट्र में भी बड़े उत्पादक राज्य हैं। और भारत की मशहूर आम की जो आम है वो दशहरी उत्तर प्रदेश की शान है। लंगड़ा आम जो बनारस का प्रसिद्ध आम है, जो सा बेहद मीठा और रसदार। केसर गुजरात की पहचान है। तोतापुरी जूस और पल्प बनाने के लिए मशहूर है। एंड बगनपल्ली सफेदा आम जो है वो आंध्र प्रदेश के लोकप्रिय आम है। एंड हिमसागर पश्चिम बंगाल का स्वादिष्ट आम। और दोस्तों आम खाने के फायदे भी बहुत सारे हैं, विटामिन ए और डी से भरपूर होता है, रोग प्रतिरोग क्षमता बढ़ाने में मदद करता है, आँखों और त्वचा के लिए भी लाभदायक है, एंड फाइबर होने से पाचन में मदद भी करता है। इतने सारे बेनिफिट्स हैं आम को खाने के, तो आज आम को आप खाइएगा ज़रूर। और भी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, सब आपकी साथ मुझे शेयर करनी है। लेकिन उससे पहले कुछ और भी गाने हैं जो यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कि खुशी जी हमें प्ले कर दीजिए, थोड़ा सा हम भी अपने श्रोताओं को उनका माइंड फ्रेश करते हैं एंड कुछ ऐसे गाने चलाते हैं जिस पर वो भी थोड़ा सा थिरके। तो चलो शुरू करते हैं एक प्यारा सा गाना आप सभी के लिए, और इस गाने की रिक्वेस्ट हमें भेजी है बबलू सैनी जी ने मुंबई महाराष्ट्र से। तो सुनते हैं ये प्यारा सा गाना।

0: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
1: कोई मिल गया,
2: कोई मिल गया।
3: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

बिल्कुल दोस्तों, हम तो आपसे कहते हैं कि दिल में अगर कोई भी बात है तो बोल दिया कीजिए हमसे। हम आपके दोस्त हैं और आप हमें नहीं बताएंगे। कहते हैं ना कि दोस्तों से कोई भी बात नहीं छुपाते हैं। तो अगर आपके पास कोई ऐसी बातें हैं जो लगता है कि हाँ खुशी मैम से शेयर करनी चाहिए, तो बिल्कुल कर सकते हैं। और एवरीवन, ये है आपके अपने शहर का एफएम मुरादाबाद 89.6 सामुदायिक रेडियो स्टेशन। वक्त में बता देती हूँ, 11:45 हो गए हैं और शो चल रहा है मॉर्निंग मसाला। दोस्तों, आज हम याद कर रहे हैं हिंदी सिनेमा के महान मशहूर गायक की, जी हाँ, मुकेश जी की। उनका जन्म 22 जुलाई 1923 को दिल्ली में हुआ था। मुकेश जी का पूरा नाम मुकेश चंद्र माथुर था। उन्होंने हिंदी फिल्में संगीत के सबसे भावपूर्ण गायकों में से गिना जाता है। उनकी आवाज़ में ऐसी सादगी और दर्द था कि हर गीत सीधे दिल को छू जाता था। यही वजह है कि उन्हें अक्सर दर्द की आवाज़ भी कहा जाता है। राज कपूर के लिए गाए उनके गीत आज भी अमर हैं। ऐसे कहा जाता है कि राज कपूर की आवाज़ अगर किसी ने पर्दे के पीछे बनकर दी है तो वो हैं मुकेश जी। उनके कुछ सदाबहार गीत भी हैं, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, जीना यहाँ मरना यहाँ, दोस्त दोस्त ना रहा, सावन का महीना, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल, कभी कभी मेरे दिल में एक प्यार का नगमा। मुकेश जी को अपने शानदार गायन के लिए कई फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिले। उनकी गायकी ने भारतीय संगीत को नई ऊंचाई दी। आज उनके जन्मदिन पर हम उन्हें भावनी श्रद्धांजलि और नमन करते हैं। उनकी आवाज़ समय के साथ पुरानी नहीं होती, बल्कि हर पीढ़ी के लिए दिल में नई जगह बनाती है। मुकेश जी की आवाज़ उन्हीं में से एक है। और दोस्तों, उन्हीं का एक प्यारा सा गाना मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया है जो मैं प्ले करने वाली हूँ, सावन का महीना। बहुत ही प्यारा सा एक गीत है, साथ में लता मंगेशकर जी की भी आवाज़ है। और इस गीत को सुनते हैं, उसके बाद लौट कर आते हैं हम।

दोस्तों, खूबसूरत से गाने के बाद खुशी फिर से हाजिर हो गई है आपके अपने एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। वक्त हुआ है 11:52 और दोस्तों हम आपको बता देते हैं कि अभी और भी अपडेट आपको देनी है और क्या कुछ है सब आपको पता लगेगा, लेकिन उससे पहले हमारे पास और भी मैसेज आए हैं, मैं उनको जल्दी से शामिल कर लेती हूँ। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है अजीत कसाना जी का, साथ में माया देवी जी हैं, ऋतिक हैं और आदित्य कसाना जी हैं। ये अपना मैसेज हमें पहुँचाते हैं लदावली जिला मुरादाबाद से। कहते हैं, राधे राधे, नमस्कार आरजी खुशी, कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ सर, आपकी ब्लेसिंग्स हैं। उसके अलावा एक और मैसेज हमारे पास आया है मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी जी का, साथ में इनके फ्रेंड्स भी हैं सैयद शारिक अली जी, महराज अंसारी जी, बाबू अंसारी जी। गुड मॉर्निंग खुशी जी, आप कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ सर, आपका शो सुन रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया। और सर ने भी सही जवाब दिया है, दिमाग, एग्जैक्टली राइट सर, इसको हम जितना इस्तेमाल करते हैं ये उतना ही ज़्यादा तेज़ होता है। एंड उसके अलावा एक और मैसेज हमारे पास सर राशिद नाथ जी का मैसेज आया है, बस इन्होंने अपना नाम लिखा है, उसके अलावा कुछ नहीं पहुँचाया है। एंड हमारे पास नेक्स्ट मैसेज यहाँ पर आया है, ये अमरोहा से मैसेज पहुँचाती है नेहा जी, कहती है नमस्ते खुशी मैम, आप कैसी हैं? मैं बहुत ही अच्छी हूँ। एंड इन्होंने कुछ और भी बातें लिखी हैं, ओके ये कहती हैं कि खुशी जी आप आ जाइएगा, आज हमने बनाई है सोयाबीन बिरयानी एंड मैम आपके लिए। अच्छा जी, थैंक यू सो मच, कोई बात नहीं नेहा, आप खाएंगे ना तो समझो खुशी ने खा लिया, ठीक है। और अब हम एक और इन्फॉर्मेशन आपको दे देते हैं दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन हम आपको देने वाले हैं। दोस्तों आज जन्मदिन है बॉलीवुड के सबसे मशहूर, लोकप्रिय और युवा गायकों में से एक अरमान मलिक जी का। उनका जन्म 22 जुलाई 1995 को मुंबई में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, अरमान मलिक का संगीत से रिश्ता बचपन से ही रहा है। वह मशहूर संगीतकार अनु मलिक के भतीजे हैं और संगीतकार अमाल मलिक उनके बड़े भाई हैं, लेकिन अरमान मलिक ने अपनी पहचान सिर्फ अपने परिवार के नाम से नहीं बल्कि अपनी मेहनत, लगन और शानदार आवाज़ से बनाई है। उन्होंने बहुत छोटी सी उम्र में ही संगीत मतलब गाना शुरू कर दिया था और रियलिटी शो सारेगामापा लिटिल चैंप्स में भी हिस्सा लिया। इसके बाद उन्होंने संगीत की विविध शिक्षा ली और अपने करियर को नई ऊंचाई तक पहुंचाया। अरमान मलिक ने हिंदी के अलावा तेलुगु, तमिल, कन्नड़, बंगाली, मराठी, गुजराती, पंजाबी और अंग्रेजी जैसे कई भाषाओं में भी गाने गाए हैं। उनकी मधुर आवाज़ ने उन्हें भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में पहचान दिलाई। उनके कुछ सुपरहिट गाने भी हैं, मैं रहूं या ना रहूं, बोल दो ना ज़रा, जो मैंने प्ले किया था, वजह तुम हो, सब तेरा, जब तक, पहला प्यार। और दोस्तों अरमान मलिक उन चुनिंदा भारतीय गायकों में शामिल हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी अलग पहचान बनाई है। उनकी आवाज़ युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय है। आज उनके जन्मदिन पर हमारी ओर से अरमान मलिक जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेहनत, जुनून और मधुर आवाज़ जब एक साथ मिल जाए ना तो एक अरमान मलिक जन्म लेते हैं। और दोस्तों हमारी तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं अरमान मलिक जी को, उन्हीं का एक प्यारा सा गाना सुनते हैं। वैसे ही अरमान मलिक जी के ट्रैक मुझे भी बहुत पसंद है और हमारे बहुत सारे श्रोता ऐसे हैं जिनको अरमान जी की आवाज़ बहुत खूबसूरत लगती है, मेरी तरह। चलो अभी गाना सुनो, उसके बाद लौट कर आती हूँ मैं।

0: ब्यूटीफुल ट्रैक अभी आपने सुना फ्रॉम द मूवी बागी से अरमान मलिक और साथ में श्रद्धा कपूर की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज में प्यारा ट्रैक। और दोस्तों हमारे पास कुछ प्यारे प्यारे वॉइस नोट भी आए हैं एंड मैं उनको चाहती हूँ कि क्विकली प्ले करूँ क्योंकि उनकी आवाज बहुत प्यारी है। एंड ये मैसेज हमें पहुंचाती है अपना वॉइस नोट सूर्यनगर लाइन पार से, इनका नाम है रेखा रावत। और क्या कहना चाहती है मैम, इनकी आवाज में ही सुन लेते हैं इनके दिल की बातें। तो चलिए प्ले करते हैं, क्या पहुंचाती है मैम।
1: मॉर्निंग आपकी। हेलो खुशी मैडम, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग। आपकी आवाज बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्यारी है। और आपने जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर है मस्तिष्क। थैंक यू,
0: मोस्ट वेलकम मैम। इतना स्वीट, इतना लवली आपने मैसेज पहुंचा है ना रेखा जी, सच बता रहे हैं हम आपके फैन हो गए हैं, हम आपके दीवाने हो गए हैं। इतना प्यार से स्माइल करके जो मैसेज भेजा है ना आपने, ओ हो हो, मेरा तो दिल ही लूट लिया। आपके लिए जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच मैम एंड थैंक यू एवरीवन वंस अगेन। आप सबने पार्टिसिपेट किया आज की मॉर्निंग और मुझे बहुत अच्छा लगा आप सभी के साथ कनेक्ट होकर। आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा आज का शो, आपने भी एंजॉय किया होगा। और अभी फिलहाल मुझे दीजिएगा जाने की अनुमति क्योंकि मेरे जाने का वक्त हो गया है। लेकिन हाँ, मैं आपसे प्रॉमिस करके चाहती हूँ मिलूंगी मैं आपको सी यू सून 3 से 5। तब तक के लिए सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए एंड हाँ अपना ख्याल।

0: भी रखना, ठीक है? चलो बाय।
1: दुखद दुर्घटना में जान मान की हानि पर शोक व्यक्त किया है। श्री राधाकृष्णन ने हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और वैज्ञानिकों, इंजीनियरों तथा तकनीशियनों को बधाई दी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ये उपलब्धि पर्यावरण अनुकूल परिवहन और मानवता के हित में वैकल्पिक हरित ऊर्जा के उपयोग की दिशा में भारत की प्रगति को और मजबूत करेगी। इसके बाद सभापति ने विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना मुद्दा उठाने की अनुमति दी। श्री खड़गे ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का मुद्दा उठाया, लेकिन विपक्ष और सत्ता पक्ष के हंगामे के कारण सदन को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से 16 मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक बंद रहेंगे। इनमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोर बाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। भारतीय नौसेना ने आज कर्नाटक के कारवार में माहे श्रेणी के दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आईएनएस मालवन को बेड़े में शामिल किया। ये भारत के स्वदेशी युद्धपोत निर्माण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस समारोह में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह मुख्य अतिथि थे। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने आत्मनिर्भरता की दिशा में नौसेना के प्रयासों की सराहना की।
2: आत्मनिर्भर भारत जो हमने एक सपना देखा है, हम उसके बहुत करीब आई जा रहे हैं। बहुत जल्दी इंडियन नेवी ने ये सपना अपना लिया था, हम लोगों ने देर करी है बल्कि, बिकॉज वेरियस सेक्टर्स टेक डिफरेंट टाइम्स टू ग्रो एंड आई थिंक इन एज फार एज नेवल शिप बिल्डिंग इज कंसर्न, इंडिया हैज ऑलवेज हैड एन एज एंड वी हैड कैरीड आवर लेगेसी फॉरवर्ड एंड इन मेकिंग शिप्स, सो वेरी गुड प्रोग्रेस हैज बीन मेड इन आत्मनिर्भरता एज फार एज शिप बिल्डिंग इज कंसर्न।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज फिलीपींस के मनीला में ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्रियों के साथ क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भागीदारी की। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उन्होंने हिंद प्रशांत भू राजनीतिक परिदृश्य की समीक्षा की और हाल के घटनाक्रमों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि भारत आसियान को केंद्र में रखते हुए स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत के प्रति वचनबद्ध है। इस बैठक से अलग डॉक्टर जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तरी मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में महत्वपूर्ण विस्तार का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। भारत ने ब्रिक्स 2026 की अध्यक्षता के तहत कल चंडीगढ़ में पारंपरिक पूरक और एकीकृत चिकित्सा पर ब्रिक्स सम्मेलन की सफलता पूर्वक मेजबानी की। ये सम्मेलन चंडीगढ़ में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा आयुष मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित ब्रिक्स स्वास्थ्य कार्यक्रम के 4 दिवसीय व्यापक कार्यक्रम का हिस्सा था। जम्मू कश्मीर में कटरा और त्रिकुटा पहाड़ियों में खराब मौसम के कारण आज लगातार चौथे दिन भी श्री माता वैष्णो देवी यात्रा स्थगित रही। तीर्थयात्रियों को यात्रा फिर शुरू होने के संबंध में आधिकारिक माध्यमों से अपडेट रहने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
4: अगर

0: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 rupees एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
1: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
2: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
1: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
2: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
1: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
3: मुरादाबाद से
1: संपर्क कीजिए।
2: नियम और शर्तें लागू।

0: आपने कहा कि अब हमारे पास तकनीक है, तो क्या सच में मलेरिया खत्म किया जा सकता है?
1: हाँ बिल्कुल, आज विज्ञान ने बहुत तरक्की की है। अब मलेरिया के लिए वैक्सीन भी आ चुकी है जो 25 देशों में दी जा रही है और हर साल लगभग 1 करोड़ बच्चों को सुरक्षा दे रही है। इसके अलावा नई दवाइयाँ आई हैं, लंबे समय तक असर करने वाले इंजेक्शन आए हैं और यहाँ तक कि मच्छरों को नियंत्रित करने के लिए नई तकनीक विकसित की जा रही है। अब जो मच्छरदानी इस्तेमाल हो रही है उसमें नई तकनीक है और 2024 में जो नई मच्छरदानियाँ बांटी गई उनमें से 84% अगली पीढ़ी की थी जो ज्यादा असरदार है।
0: तो क्या दुनिया में मलेरिया कम हुआ है?
1: हाँ, पिछले 20 सालों में बहुत बड़ी प्रगति हुई है। 2000 के बाद से अब तक 2.3 अरब मलेरिया के मामले और 1.4 करोड़ मौतें रोकी जा चुकी हैं। 47 देश ऐसे हो चुके हैं जहां मलेरिया पूरी तरह खत्म हो चुका है। कई देशों में मामलों की संख्या बहुत कम हो गई है और कुछ क्षेत्रों में तो 90% तक कमी आई है।
0: लेकिन फिर भी मलेरिया अभी खत्म क्यों नहीं हुआ?
1: यही सबसे बड़ी चिंता है। 2024 में अभी भी 28.2 करोड़ मलेरिया के मामले सामने आए हैं और 6.1 लाख लोगों की मौत हुई है। इसका मतलब है कि हमने प्रगति तो की है लेकिन अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है।
0: सबसे बड़ी चुनौतियाँ क्या हैं?
1: चुनौतियाँ कई हैं। पहली चुनौती है दवाइयों के प्रति प्रतिरोध। कुछ जगहों पर मलेरिया की दवाइयाँ पहले जितनी असरदार नहीं रही हैं। दूसरी चुनौती मच्छरों का कीटनाशकों के प्रति प्रतिरोध। और तीसरी समस्या है जाँच में दिक्कत। कुछ मामलों में टेस्ट सही परिणाम नहीं दे पाते। और एक नई समस्या है, नए तरह के मच्छर जो शहरों में भी फैल रहे हैं।
0: क्या मलेरिया सभी जगह समान रूप से होते हैं?
1: नहीं, ये ज्यादातर गरीब और पिछड़े इलाकों में ज्यादा होते हैं जहाँ साफ पानी की है, स्वास्थ्य सुविधाएं कम है, वहाँ ये बीमारी ज्यादा फैलती है। इसलिए इसे खत्म करना सिर्फ स्वास्थ्य का नहीं बल्कि समानता का भी सवाल है।
0: और क्या सिर्फ वैज्ञानिक समस्याएं हैं या और भी दिक्कतें हैं?
1: नहीं, सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां भी बहुत बड़ी हैं। 2024 में मलेरिया के लिए लगभग 3.9 अरब डॉलर का फंड मिला जबकि जरूरत 9.3 अरब डॉलर की थी, मतलब आधे से भी कम पैसा मिल रहा है। इसके अलावा कई जगहों पर युद्ध, बाढ़, सूखा और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं भी मलेरिया को बढ़ा रही हैं।
0: भैया, आपने पहले फंड की कमी की बात की थी, इसे आसान भाषा में समझाइए।
1: देखिए, मलेरिया से लड़ने के लिए दवाइयाँ चाहिए, मच्छरदानियाँ चाहिए, जांच मशीनें चाहिए,

0: कहते हैं कि दुनिया के सारे रंग हमारी आंखों से ही खूबसूरत लगते हैं, लेकिन जरा सोचिए अगर यही नजरें धीरे धीरे धुंधली होने लगे और हमें इसका पता भी ना चले तो क्या होगा। डायबिटीज यानी शुगर सिर्फ दिल किडनी या शरीर को ही नहीं बल्कि हमारी आंखों की रोशनी पर भी गहरा असर डालती है। आज हम इसी बेहद ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं। हेलो हाय नमस्ते, कैसे हाल चाल है? आप सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़। मैं हूं आपका दोस्त आरजे आनंद। प्रोग्राम है आपका अपना फेवरेट हेलो डॉक्टर, और आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीएल गुप्ता आई इंस्टीट्यूट से डॉक्टर ईशा आचार्य जी हमारे बीच में मौजूद हैं, और आज आपकी आंख के पर्दे के विषय में तमाम छोटी छोटी बातों पर आज हम महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। वेलकम टू एफएम मुरादाबाद। जोरदार तालियां। हाउ आर यू डूइंग, कैसे हैं आप, पहले तो ये बताएं।
1: थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया इस चीज के लिए, और आई थिंक ये बहुत जरूरी है हमारे सारे
0: जितने भी लिसनर्स हैं, जितने भी ऑडियंस हैं,
1: बिल्कुल लिसनर्स हैं, उन लोग के लिए बहुत जरूरी ये मुद्दा है जो कि पता होना चाहिए।
0: क्योंकि मैम होता क्या है ना ईशा मैम, मैं बीच में बोल रहा हूँ, क्योंकि आंखों को सिर्फ हमें ऐसा लगता है कि आंखें जो हैं सिर्फ उसमें ज्यादा कुछ नहीं होता, काला मोतिया और मोतिया बिंद सिर्फ ये छोटी छोटी चीजें पता होती है, इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें होती है जिन पे हमें बात करना बहुत जरूरी है। जैसे कि आज हम बात करने वाले आंख के पर्दे के बारे में, जो कि बहुत ही अहम और बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारी आंखों का। तो आज इस पर ही बात करने के लिए डॉक्टर ईशा आचार्य जी हमारे बीच में है। सो मैम मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपको हमारे एफएम स्टूडियो में आके कैसा लग रहा है?
1: बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है।
0: पहले आपके बारे में जानना चाहूंगा, थोड़ा सा आप लिसनर्स को अपने बारे में बताएं।
1: तो मैं रेटिना स्पेशलिस्ट हूँ और सीएल गुप्ता में काम करती हूँ मुरादाबाद, और इसमें बेसिकली रेटिना के बारे में लोगों को पता नहीं होता। रेटिना होता है आंख का पर्दा, तो पर्दा सबसे जरूरी अंग इसलिए है क्योंकि जो भी दिखाई देता है वो उसी के वजह से दिखाई देता है। अगर पर्दा सही नहीं रहेगा तो शायद लोग कुछ ना देख पाए। तो इसलिए पर्दे के बारे में लोगों को ज्यादा पता नहीं होता। कोई भी आंख के बारे में सोचता है तो हर कोई सबसे पहले मोतियाबिंद ही सोचता है,
0: और
1: सिर्फ मोतिया ही आंख का भाग नहीं होता है, और भी जरूरी हिस्से होते हैं जिसमें से सबसे जरूरी अंग जो है वो है पर्दा। और इसमें काफी सारी बीमारियां होते हैं, जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो तो डायबिटिक रेटिनोपैथी के ऊपर है, पर इसमें और भी बीमारियां होती है जो कि हम वो वक्त के साथ पता लगे।
0: बिल्कुल। अच्छा मैम सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगा डायबिटिक रेटिनोपैथी क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए जरा हमारे लिसनर को।
1: हाँ जी, तो बेसिकली डायबिटिक रेटिनोपैथी नाम में ही लिखा है कि डायबिटिक मतलब जो भी लोगों को ब्लड शुगर की प्रॉब्लम होती है, बीमारी होती है, वो चीज पर्दे में भी असर करने लग जाती है। तो इसको देखने के लिए हमें पर्दे का ही चेकअप कराते रहना चाहिए। तो ये पर्दा क्या है इसको समझाने के लिए मैं यही कहूंगी कि जैसे मान लीजिए एक कैमरा होता है, कैमरा का जो आगे का शीशा होता है वो तो हो गया आपका लेंस, जिसको हम मोतिये के लिए बोलते हैं, पर उसके बाद भी जब हम फोटो खींचते हैं तो जो फिल्म में सब कुछ कैप्चर होता है वो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। अगर फिल्म ही नहीं हुई तो आगे फोटो भी नहीं निकलेगा।
0: बिल्कुल।
1: तो ये जो फिल्म है यही हमारा पर्दा होता है, यही हमारा रेटिना होता है। तो अगर यही नहीं रहेगा तो आगे कुछ नहीं दिखाई देगा। तो इसीलिए हमें डायबिटीज में सबसे जरूरी चीज जो है वो है पर्दा, वही अफेक्ट होने लग जाती है, इसलिए हमें पर्दे का चेकअप कराते रहना चाहिए, और उसी से ही हम डायबिटिक रेटिनोपैथी जैसी बीमारियों को पकड़ सकते हैं।
0: सुन रहे हैं प्रोग्राम हेलो डॉक्टर, जिसमें आज आपका साथ निभा रहे आरजे आनंद, और आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहे हैं। दोस्तों आगे बढ़ेंगे एक और सवाल के लिए, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
2: ओहो, ना जाने ये खांसी कब पीछा छोड़ेगी।
3: अरे सिर्फ खांसी ही क्यों, अपनी सेहत से जुड़े सारे सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए हर रोज दोपहर 12:30 बजे एफएम मुरादाबाद का स्पेशल प्रोग्राम हेलो डॉक्टर। यहाँ आपको मिलेंगे शहर के जाने माने अनुभवी डॉक्टर्स, तो सुनना मत भूलिए हर रोज दोपहर को 12:30 बजे प्रोग्राम हेलो डॉक्टर। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए गुनगुनाते रहिए।
0: ब्रेक के बाद वेलकम बैक है, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6। मेरा नाम आनंद है, शो का नाम है हेलो डॉक्टर, और आज हमारे साथ सील गुप्ता आई इंस्टीट्यूट से हमारे बीच में डॉक्टर ईशा आचार्य जी हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं। ढेर सारी बातें कर रहे हैं आज हम। डॉक्टर साहब मुझे तो सिर्फ अभी तक यही पता था कि आंखों में अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आंखों का एक ही डॉक्टर होता है, एक ही स्पेशलिस्ट होता है, और आज भी बहुत सारे लोगों को यही पता है। तो क्या जैसे आपने अभी आंख के पर्दे के बारे में बात करी, क्या इसका कोई अलग स्पेशलिस्ट होता है?
1: हां जी बिल्कुल। तो बेसिकली पहले मैं थोड़ा इंट्रो दे दूं कि मैंने MBBS और अपना MD दोनों ही दिल्ली से करा है, तो MBBS तक तो हम लोग डॉक्टर हो गए, लेकिन MD में हम बनते स्पेशलिस्ट। जब मैं बनी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, जिसे हम बोलते हैं आंखों की डॉक्टर, पर उसके बाद भी एक सुपर स्पेशलिटी होती है जिसका हम फेलोशिप करते हैं, वो मैंने नारायण नेत्रालय बैंगलोर से किया है। वहाँ पे मैंने पर्दे का पूरा स्पेशलाइजेशन अपना करा, जो कि 2 साल की और होती है स्पेशलाइजेशन।
0: ओके, तो मैम मेरा यही क्वेश्चन था आपसे अभी, आपने बहुत अच्छे से अपने बारे में बताया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। हमारे लिसनर्स को थोड़ा सा ये बताइए मैम कि जैसे अभी मैंने आपसे पूछा कि आईज के बहुत सारे डॉक्टर होते हैं, क्या मुझे तो नहीं पता था, आप जैसे आंखों के पर्दे की स्पेशलिस्ट हैं अलग से, तो हमारे लिसनर्स को तो ये पता नहीं, मुझे भी नहीं पता था अभी तक, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या सच में अलग अलग आंखों में जो समस्याएं होती है उसके अलग अलग एक्सपर्ट होते हैं, जैसे कॉर्निया के अलग हो गए मोतिया बन के इस तरीके से?
1: हाँ जी बिल्कुल, तो जो मैं ये फेलोशिप की बात कर रही थी, यहीं पर ही आके हम लोग सुपर स्पेशलिस्ट बनते हैं, जहाँ पे बेसिकली कॉर्निया होता है जिसको हम पुतली के डॉक्टर बोलते हैं, बाकी मोतिये का तो होता ही है, उसके अलावा काले मोतिये का अलग होता है, और फिर हम पर्दे के डॉक्टर हो गए, ऐसे और भी स्पेशलाइजेशंस होते हैं जिसमें लोग करते हैं। तो ये सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि आंख का डॉक्टर होने से कंप्लीट हो गया, आंख का डॉक्टर मतलब वो सिर्फ MD है, पर उसके बाद जिसने स्पेशलाइजेशन किया है वो जाके फाइनली एक सुपर स्पेशलिस्ट बनता है, जैसे मैं पर्दे की डॉक्टर।
0: ओके, सो लिसनर्स आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि अगर आंख में कोई भी समस्या है तो उसका एक डॉक्टर नहीं है, हमारी आंखों में बहुत सारी ऐसी चीजें जिसके अलग अलग स्पेशलिस्ट है, जैसे आंख का पर्दा, अभी उसकी स्पेशलिस्ट हमारे बीच में मैम मौजूद है। मैम क्या हर डायबिटीज के मरीज को ये बीमारी हो सकती है, और या फिर कुछ लोगों में इसका खतरा कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है?
1: तो ये जरूरी नहीं है कि हर डायबिटीज के मरीज को ही ये बीमारी हो, पर हर डायबिटीज का मरीज बिल्कुल एक रिस्क में जरूर होता है, उसको ये डायबिटिक रेटिनोपैथी बनने का रिस्क जरूर हो सकता है।
0: ठीक है,
1: पर जो कुछ मरीज जिनमें ये रिस्क ज्यादा बढ़ जाता है, वो तब जब या तो उनकी शुगर अनकंट्रोल्ड रहे, सही ना रहे, बहुत लंबे समय तक उनको शुगर रहे, और उसके अलावा उनको अगर BP की भी दिक्कत रहती है, साथ में कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत रहती है, और भी कोई शारीरिक प्रॉब्लम रहती है, तो उसमें भी डायबिटीज का रिस्क बढ़ सकता है।
0: ओके, तो मैम इसके सिम्टम्स क्या होंगे, जैसे किसी को कैसे पता चले, या ये बिना लक्षण के भी बीमारी बढ़ सकती है?
1: हाँ जी बिल्कुल बढ़ सकती है, एक्चुअली इसके कुछ स्टेजेस होते हैं, ये शुरुआत होती है माइल्ड और मॉडरेट से, धीरे धीरे वो सीवियर पे पहुंचती है, और फिर उसके बाद सीवियर के बाद की भी कहानी होती है। जो माइल्ड मॉडरेट स्टेज है, हो सकता है ये पेशेंट को पता ही ना लगे, कोई लक्षण ही ना हो, पर इसके बाद जो स्टेजेस पहुंचते हैं वो ज्यादा सीवियर होने लग जाते हैं, तो हम नहीं चाहते कि मरीज सीधा हमारे पास तब पहुंचे जब उसको लक्षण आए और उसकी सिवेरिटी बहुत बढ़ चुकी हो, तो इसीलिए उसको साल में एक बार न एक बार कराना चाहिए पर्दे का चेकअप, क्योंकि ये सारी चीजें पर्दे के चेकअप में ही पकड़ में आती है, शुरुआत लक्षण से नहीं होते, शुरुआत साइंस से होते हैं जो कि हम पकड़ते हैं, तो वो जरूरी है।
0: ओके, अच्छा मैम अक्सर कुछ लोग कहते हैं भाई शुगर कंट्रोल है तो इसलिए आंखें भी सुरक्षित होंगी, तो क्या ये पूरी तरीके से सही है?
1: नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि बहुत बार मरीज तो अपना शुगर नाप रहा है लेकिन उसको नहीं पता उसके पूरे दिन भर में कितना वेरिएशन हो रहा है। दूसरी चीज, कुछ कुछ टेस्ट भी होते हैं जो ये बताते हैं एवरेज शुगर कंट्रोल कितना है, वो भी कराते रहना चाहिए लोगों को, पर उसके बावजूद भी अगर सब कुछ सही भी चल रहा है, अगर मरीज को बहुत लंबे समय से शुगर है और साथ में जैसे मैंने बताया BP और इन सब की दिक्कत है, तो भी पर्दे में दिक्कत आना शुरू हो सकती है, इसलिए सिर्फ शुगर कंट्रोल रहने से ही वो चेकअप ना कराए ये मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगी, उनको हमेशा साल में एक बार चेकअप कराते रहना चाहिए।
0: ओके, अच्छा मैम अगर बात करें इनकी डाइट की, इनके खान पान की, तो कौन कौन सी चीजें हैं जो इनको बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए?
1: देखिए शुगर के मरीज को ऑब्वियसली शुगर कंट्रोल तो रखना ही है, तो उनको अपने शुगर और कार्बोहाइड्रेट डाइट जो है उसको कम करके रखना होगा, जितना हो सकता है अगर वो प्रोटीन्स बढ़ाए और गुड लो कार्ब में रहते हैं तो ही उनको फायदा देगा।
0: ओके,
1: बाकी उनको डेफिनेटली एक न्यूट्रिशनिस्ट और अपने डायबिटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करते रहना चाहिए अपने डाइट के लिए, और जितना हो सके अपना शुगर कंट्रोल में रखें।
0: ओके, सो आई होप लिसनर्स आज आपको तमाम सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी जो कहीं ना कहीं आपको नहीं पता है, और अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने सवाल 9837896896, हमारे स्टूडियो का नंबर है, अपना नाम और अपने शहर का नाम और अपना सवाल हमें जरूर पहुंचाइएगा। अगर आप सोशल मीडिया हैंडल फॉलो करते हैं तो हमें भी फॉलो कीजिए, हमारा ऑफिशियल ID है FM मुरादाबाद 89.6 FM के नाम से। आनंद के साथ है प्रोग्राम में आपका अपना फेवरेट हेलो डॉक्टर, और आज इस प्रोग्राम में डॉक्टर ईशा आचार्य जी, आज उनसे ढेर सारी बातें हम कर रहे हैं, आंख के पर्दे के ऊपर तमाम सारी बातें हो रही है, और मैम इसी बीच में आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, जो डायबिटीज के मरीज होते हैं उनको अपनी आंखों की जांच कब और कितने समय में करानी चाहिए, और ये कितनी इंपॉर्टेंट है?
1: हाँ जी, तो ये बताने से पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि डायबिटीज सबको लगता है शायद एक उम्र के बाद आती है।
0: हाँ जी मैम, और ये जरूरी है जानना कि किस एज में यू नो ये हो सकती है ये प्लीज आप बताइए।
1: तो मेनली सबको यही लगता है कि ये बुढ़ापे की बीमारी है, एक एज के बाद जाके आएगी। वो जो हम बोल रहे हैं वो होता है टाइप 2 डायबिटीज,
0: ठीक है।
1: पर अभी ये भी है कि टाइप 1 डायबिटीज भी एक चीज होती है जिसमें जो बच्चा होता है, बल्कि शुरुआत में ही ये डिटेक्ट हो

0: जाता है कि उसमें इंसुलिन ही नहीं बन रहा होता है, तो शुगर अपने आप ही बढ़ता रहता है इन बच्चों का। तो इन लोग को इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज बोला जाता है, क्योंकि वो इंसुलिन उनको बाहर से देना पड़ता है तब जाके उनका शुगर कंट्रोल में रहता है। तो ऐसे लोगों को, मतलब ऐसे बच्चों को भी डायबिटीज की शिकायत हो जाती है। अब कब कब चेकअप होना चाहिए ये डिपेंड करता है कि वो टाइप 1 डायबिटीज है या टाइप 2 है। टाइप 2 जैसे कि मैंने कहा, एक उम्र के साथ जैसे जैसे बढ़ के आती रहती है। टाइप 2 डायबिटीज वालों को तो जैसे ही डिटेक्ट हुआ उसी टाइम एक बार पर्दे का चेकअप करा लेना चाहिए। जबकि टाइप 1 डायबिटीज जो होता है उनके शुरुआत के 5 साल में वो डायबिटिक रेटिनोपैथी का रिस्क इतना नहीं होता है, तो उनको शुरू के 5 साल के बाद जाके एक चेकअप करा लेना चाहिए, भले उसके बाद हर साल एक एक बार चेकअप कराते रहना चाहिए। फर्क क्या है, जो ये यंग लोग हैं जिनमें टाइप 1 डायबिटीज होती है काफी हद तक सिवियर हो सकती है वक्त के साथ, तो उनको भी एक टाइम के बाद रेगुलर चेकअप कराते रहना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया 5 साल के बाद से उनको रेगुलर चेकअप शुरू करवा देना चाहिए, क्योंकि वो भी उतने ही रिस्क में होते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी के जितना एक टाइप 2 डायबिटिक होगा। तो इसीलिए उम्र की बात की जाए तो दोनों ही यंग या फिर जो ओल्ड इंडिविजुअल्स हैं उन दोनों में ही हमें डायबिटिक रेटिनोपैथी की स्क्रीनिंग करती रहनी चाहिए।
1: ओके, थैंक यू सो मच मैम। अच्छा मैम, जैसे कुछ ग्रामीण इलाके में लोग होते हैं, शहरी लोग या गांव के लोग, अक्सर जांच को टाल देते हैं कि अभी नहीं, फिर करा लेंगे, बाद में करा लेंगे। तो इस तरीके के जो लोग टाल मटोल करते हैं और ये रिस्क लेते हैं अपनी आंखों के प्रति, उनको आप क्या कहना चाहेंगे, उनके लिए?
0: ये बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि डायबिटिक रेटिनोपैथी जो मैं बोल रही हूँ ये अंधेपन तक मरीज को ले जा सकती है। इसलिए इतना इंतजार ना करें कि अंधापन पहुंच जाए और हम उसके आगे जाके कोई ट्रीटमेंट ना कर पाए। इसलिए उसको उसी स्टेज पे पकड़ना है जब वो ट्रीटेबल हो, जब उसका हम इलाज कर सके। तो इसलिए उनको रेगुलर बेसिस पे चेकअप कराना ही चाहिए, टालने से कोई फायदा होना नहीं।
1: मैम, अगर किसी को डायबिटिक रेटिनोपैथी हो जाए तो क्या उसकी आंखों की रोशनी वापस आ सकती है?
0: हाँ जी, जैसे मैंने कहा कि इसके स्टेजेस होते हैं, सही स्टेज पे सही इलाज किया जाएगा तो रोशनी आ सकती है। एंड स्टेज तक नहीं पहुंचने देना है, क्योंकि तब आंख की रोशनी बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है।
1: ओके, ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। दोस्तों, आप लगातार हमारे साथ बने हुए, मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ, अगर आप कुछ भी आंखों से रिलेटेड पूछना चाहते हैं, कोई भी आप अगर सवाल करना चाहते हैं, तो आपका बिल्कुल स्वागत है। आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ हमारे स्टूडियो के नंबर के जरिए 9837896896 पर आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। मैम, एक और सवाल मैं यहाँ पर पूछना चाहूंगा, क्या मोबाइल, लैपटॉप या लंबे समय तक जो स्क्रीन देखते हैं, क्या उनको ये समस्या और ज्यादा गंभीर उनको हो सकती है?
0: नहीं, इसका रिलेशन लंबे टाइम या स्क्रीन यूसेज से नहीं होता है, इसका प्योर रिलेशन होता है शुगर की वजह से। तो एग्जैक्टली होता क्या है, जब ब्लड शुगर पूरे टाइम तक लंबे समय तक बढ़ा रहता है तो आंखों की जो रक्त की नसें होती हैं उसमें सूजन आ जाती है। उसकी वजह से कभी कभी या तो सूजन पर्दे में बहुत ज्यादा आ सकती है, या ये नसें अगर फट जाए तो आंख के अंदर अचानक से ब्लड भी आ सकता है। तो ये सारी वजह होती है जिससे रोशनी अचानक से गिर सकती है। तो इसीलिए हमें चेकअप कराते ही रहना चाहिए, क्योंकि एक बार वही जैसे मैंने बताया, अगर बहुत ज्यादा ब्लड आ जाए और धीरे धीरे पर्दा उखड़ने लगे, वो एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे मुश्किलें बढ़ जाती हैं और रोशनी आने की संभावना भी धीरे धीरे कम होती चली जाती है।
1: ओके मैम, क्या धुंधलापन भी इन सब चीजों से कनेक्ट है क्या, आंखों में अगर हल्का हल्का सा धुंधलापन आने लगे?
0: आंखों का धुंधलापन इसी सब से होता है, अगर पर्दे में सूजन आ जाए या पर्दे में ब्लड आ जाता है या खून आ जाता है तो धुंधलापन इसमें बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इसके अलग अलग इलाज होते हैं जो हम करते हैं।
1: ओके, अच्छा मैम, सपोज किसी को ये प्रॉब्लम है और उसको ये पता कैसे चले कि उसको ये समस्या हो रही है, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं?
0: तो जैसे कि मैंने कहा कि शुरुआत स्टेज में तो हो सकता है सिम्टम्स हो भी नहीं पेशेंट को, और धीरे धीरे अब सिम्टम्स आना शुरू होता है मतलब ऑलरेडी बात बिगड़ चुकी है। तो धुंधलापन से ही शुरुआत होती है, कभी कभी काले तिलमिले जैसे अचानक से दिखने लग जाए तो इसका मतलब आपके आंख में ब्लड आ रहा है, ये शिकायत हो सकती है। तो धुंधलापन, काले तिलमिले दिखना, ये सारी चीजें असर करा सकती है।
1: डॉक्टर साहब, एक तो हमारे भारत में मैं कहूंगा ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हमारी आंखों में कुछ भी होता है ना, हम तुरंत मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, हम कोई भी एक ड्रॉप खरीदते हैं, आई ड्रॉप, और उसको अपनी आंखों में डाल लेते हैं बिना सोचे समझे, बिना पूछे। तो क्या ये करना चाहिए?
0: बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैंने सुना है और देखा भी है कि मरीज जाके बस फार्मेसिस्ट से पूछ लेते हैं और दवा डालने लग जाते हैं। वो नहीं जानते किस दवा का अपना खुद का साइड इफेक्ट होता है। वो तो लंबे समय तक डालते रहते हैं, अपना चेकअप टालते रहते हैं, पर तब तक में वो जो दवा है वो अपना साइड इफेक्ट कर चुका होता है। और जब वो हमारे पास आते हैं, बहुत बार उन्हें काले मोतिया की शिकायत या उनकी पुतली खराब होने की शिकायत, ये सारी चीजें भी हो सकती। तो ये चीज बिल्कुल मैं रिकमेंड नहीं करूंगी। उनको कुछ भी दिक्कत हो सबसे पहले किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर को ही दिखाना चाहिए और उस हिसाब से ही दवा चलानी चाहिए।
1: ओके मैम। सो दोस्तों अभी रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, वापस आते हैं, आप कहीं मत जाइए, आप सुनते रहिए ऐसे ही आपके शहर का अपना रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 प्रोग्राम में आपका अपना फेवरेट हेलो डॉक्टर।
2: ओहो ना जाने ये खांसी कब पीछा छोड़ेगी।
1: अरे सिर्फ खांसी ही क्यों, अपनी सेहत से जुड़े सारे सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए हर रोज दोपहर 12:30 एफएम मुरादाबाद का स्पेशल प्रोग्राम हेलो डॉक्टर। यहां आपको मिलेंगे शहर के जाने माने अनुभवी डॉक्टर्स, तो सुनना मत भूलिए हर रोज दोपहर को 12:30 प्रोग्राम हेलो डॉक्टर। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए गुनगुनाते रहिए। एक बार फिर से आपका स्वागत है, आप जुड़े हुए हैं आपके शहर के अपने रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम के साथ। गाड़ी अगर चला रहे हैं तो आराम से चलाइए, ध्यान सड़क पे और कान रेडियो स्टेशन पे लगाइए। हाँ जी, फिलहाल शो चल रहा है आपका अपना फेवरेट हेलो डॉक्टर, और आज इसमें हम ढेर सारी बातें कर रहे थे आंखों के पर्दे के बारे में, और अब जाने का समय हो गया है, बहुत सारी नॉलेज वॉलेज हमने शेयर कर दी। हाँ जी, हाँ कोई बात नहीं, आपने बीच में गाने भी सुने मुझे पता है। वेल वेलकम बैक है मैम, आपको बोरिंग तो नहीं लग रहा है ना, हमने आपसे ज्यादा सवाल तो नहीं पूछ लिए ना। हमारे लिसनर कह रहे होंगे ईशा जी को परेशान कर दिया आज आनंद ने, इतने सारे सवाल पूछ डाले। वेल मैम सारे क्वेश्चन वो हैं जो हमारी ऑडियंस से रिलेटेड है कहीं ना कहीं, एंड मैं उम्मीद करता हूँ आपको डेफिनेटली अच्छा लगा होगा क्योंकि अब चलने का समय हो रहा है। फिर जाने से पहले मैं चाहूंगा जितनी भी डिस्कशन हमने की अगर इनमें से कुछ ट्रीटमेंट्स के बारे में आप बताना चाहें।
0: हाँ जी बिल्कुल, तो जैसे मैंने बताया कि डायबिटिक रेटिनोपैथी में या तो सूजन बन सकती है या ब्लड आ सकता है या पर्दा उखड़ भी सकता है, तो इनके अलग अलग ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। अगर पर्दे में सूजन वगैरह आता है तो डॉक्टर आपको आंख में इंजेक्शन लगाने के लिए भी रिकमेंड कर सकते हैं। जो ब्लड और ये सब आता है कभी कभी उसमें हमें आंख में लेजर भी करना पड़ता है, पर कभी अगर एंड स्टेज तक पहुंच रहा है और पर्दा उखड़ने की स्थिति आ रही है या जो ब्लड आया है वो साफ हो नहीं रहा है तो हमें ऑपरेशन भी करना पड़ता है जिसे हम विट्रेक्टमी ऑपरेशन कहते हैं। तो ये सारे हमारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। इसके अलावा ऑब्वियसली ब्लड शुगर कंट्रोल और ये सब आपको ध्यान देना ही है, तो ये हमारा फुल ट्रीटमेंट ऑप्शंस होता है।
1: ओके, और मैम चलते चलते कोई एक जो आप देना चाहें हमारे तमाम लिसनर्स को जो इस वक्त आपको मुरादाबाद में सुन रहे हैं, खास तौर पर उन लोगों को जो डायबिटीज से पीड़ित हैं जिन्होंने अभी तक बिल्कुल भी जांच नहीं कराई है, उनको आप क्या संदेश देंगे? और साथ
0: देखिए, अभी सारी जनता के लिए आंखों का चेकअप का मतलब होता है कि बस चश्मे का नंबर ले ले और उनका काम हो गया, तो यही मैंने आज पूरे टॉक में अपना बताया है कि सिर्फ चश्मे का नंबर या सिर्फ मोतियाबिंद यही दो चीजों से आंख की बीमारियां नहीं होती है, और पर्दे की प्रॉब्लम जैसे कि डायबिटिक रेटिनोपैथी जैसी प्रॉब्लम भी होती है मरीजों को, तो इसलिए साल में एक बार चेकअप होते रहना चाहिए। बाकी डिपेंड करता है, अगर आपकी शुगर की दिक्कत बढ़ गई है तो कुछ डॉक्टर आपको 3 से 6 महीने पे भी बुला सकते हैं, और अगर आपका इलाज भी शुरू हो गया है तो हो सकता है आपको हर महीने भी बुलाया जाए, तो इसलिए इस चीज को नजरअंदाज नहीं करनी है, आपको चेकअप कराते रहना है। और जब भी आप किसी जनरल ऑप्थल्मोलॉजिस्ट पे भी जाएं जो सिर्फ जनरल चेकअप कर रहे हैं, उनको भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपको पर्दे का चेकअप कराना है। पर्दे के चेकअप के लिए एक बहुत जरूरी संदेश ये है कि वो हम पुतली फैला के करते हैं, एक ड्रॉप डाला जाता है जिससे थोड़ा धुंधलापन रहता है कुछ समय तक, और वो पुतली फैला के ही हमें पर्दा ज्यादा अच्छे से दिखाई देता है। तो कभी भी कहीं जाए सिर्फ चश्मे का नंबर लेके ना आए, और अगर आप जा रहे हैं तो आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं कि आपको पर्दे का चेकअप कराना है तो आपकी पुतली फैला के प्रॉपर चेकअप की जाए। ये सब चीजें अगर आप भी इन्फॉर्म्ड रहेंगे तो अगर आपको कोई और डॉक्टर देख रहा है जिसने चेकअप नहीं कर रखा या किसी तरह से मिस हो गया है, आप उनको ये चीज बोल सकते हैं और आपका प्रॉपर थरो चेकअप हो सकता है।
1: थैंक यू सो मच डॉक्टर ईशा आचार्य जी हमारे बीच में थी, एंड इन्होंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी। सीएल गुप्ता आई इंस्टीट्यूट से आज हम ढेर सारी बातचीत कर रहे थे मैम आंखों के पर्दे के बारे में, हमने तमाम छोटे छोटे मुद्दों पर जो आज तमाम सारी इन्फॉर्मेशन दी है उसके लिए थैंक यू सो मच, और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे जितने भी श्रोता इस वक्त हमें सुन रहे हैं ऑफकोर्स उनको ये बहुत इन्फॉर्मेटिव लगने वाला है, एंड आई एम श्योर आप दोबारा फिर से आना चाहेंगे हमारी मुरादाबाद की जनता के लिए फिर से कुछ और ढेर सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आएंगी।
0: बिल्कुल, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे बुलाया, और ये बहुत जरूरी था कि आपके जनता तक ये बात पहुंचे
1: डेफिनेटली,
0: और वो इस चीज की इम्पोर्टेंस को समझे।
1: थैंक यू सो मच,
0: हमेशा स्वस्थ रहे और वो हमेशा ऐसे ही अच्छे से देखते रहे।
1: क्या बात। सो डॉक्टर ईशा चलते चलते मैं आपसे एक छोटी सी एडवाइस लेना चाहता हूँ, पूरे मुरादाबाद क्या एक एडवाइस देना चाहेंगी चलते चलते?
0: हाँ जी, तो मैं एक ही लाइन में इस चीज को समाप्त करना चाहूंगी, दैट राइट ट्रीटमेंट एट राइट टाइम कैन सेव योर साइट।
1: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस मैम, थैंक यू सो मच, लवली टॉकिंग टू यू। एंड गाइज आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए, सुनते रहिए ऐसे ही आपका फेवरेट प्रोग्राम हेलो डॉक्टर। ये तो चल ही रहा था, बाकी रेडियो स्टेशन भी सुनते रहिए गाइज, फिर मिलेंगे एक और नए एक्सपर्ट के साथ कुछ और नई महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तो अभी के लिए मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, फिलहाल के लिए घड़ी की सुई मुझे टिक टिक करके इशारा कर रही है आनंद अब तेरा जाने का समय हो गया है, बहुत बातें होगी, तो चलिए रखिए अपना ढेर सारा ख्याल, पानी पीते रहिए और खूब सारा अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, एक आंखों का बढ़िया गाना छोड़ के जा रहा हूँ, कहीं मत जाइए, बाय बाय।

0: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
1: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
0: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
1: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
0: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
2: मुरादाबाद
0: से संपर्क कीजिए।
1: नियम और शर्तें लागू।

और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा, पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिड़ला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध का मुद्दा उठाया। श्री बिड़ला ने विपक्ष से सदन के संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा। इस कारण लोकसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा में भी यही स्थिति देखने को मिली। कार्यवाही शुरू होते ही सभापति सीपी राधाकृष्णन ने हाइड्रोजन से चलने वाली देश की पहली रेलगाड़ी के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और वैज्ञानिकों, इंजीनियरों तथा तकनीशियनों को बधाई दी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ये उपलब्धि पर्यावरण अनुकूल परिवहन और मानवता के हित में वैकल्पिक ऊर्जा के उपयोग की दिशा में भारत की प्रगति को और मजबूत करेगी। इसके बाद सभापति ने विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना मुद्दा उठाने की अनुमति दी। श्री खड़गे ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का मुद्दा उठाया, लेकिन विपक्ष और सत्ता पक्ष के हंगामे के कारण सदन को स्थगित कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा कल प्रधानमंत्री आवास के गेट के बाहर बिना अनुमति धरने पर बैठने की कड़ी निंदा की है। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास की गरिमा को जानते हुए भी श्री गांधी ने गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया। भाजपा सांसद ने सुरक्षा प्रोटोकॉल के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा सर्वोपरि है। दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से 16 मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक बंद रहेंगे। इनमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। भारतीय नौसेना ने आज कर्नाटक के कारवार में INS कादम्बा नौसेना बेस पर माही श्रेणी के दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्धपोत INS मालवन को बेड़े में शामिल कर लिया। INS मालवन 8 पनडुब्बी रोधी युद्धपोतों में से दूसरा युद्धपोत है। इसमें 80% से अधिक स्वदेशी उपकरण और तकनीक का उपयोग किया गया है। इस समारोह में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर एयर चीफ मार्शल ने आत्मनिर्भरता की दिशा में नौसेना के प्रयासों की सराहना की।
1: आत्मनिर्भर भारत जो हमने एक सपना देखा है, हम उसके बहुत करीब आई जा रहे हैं। बहुत जल्दी इंडियन नेवी ने ये सपना अपना लिया था, हम लोगों ने देर करी है बल्कि, बिकॉज वेरियस सेक्टर्स टेक डिफरेंट टाइम्स टू ग्रो एंड आई थिंक इन एज फार एज नेवल शिप बिल्डिंग इज कंसर्न, इंडिया हैज ऑलवेज हैड एन एज एंड वी हैव कैरीड आवर लेगेसी फॉरवर्ड एंड इन मेकिंग शिप्स। सो वेरी गुड प्रोग्रेस हैज बीन मेड इन आत्मनिर्भरता एज फार एज शिप बिल्डिंग इज कंसर्न।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज फिलीपींस के मनीला में आयोजित क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। एक संयुक्त वक्तव्य में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। साथ ही आसियान की एकता और केंद्रीय भूमिका के लिए अपने अटूट समर्थन की पुष्टि की। बैठक के दौरान उन्होंने हिंद प्रशांत पर आसियान के दृष्टिकोण का समर्थन करने के लिए क्षेत्रीय चुनौतियों और अवसरों पर ध्यान केंद्रित किया। समुद्री और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों तथा आपात कार्रवाई जैसे विषयों पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान डॉ जयशंकर ने अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। जम्मू कश्मीर में कटरा और त्रिकुटा पहाड़ियों में खराब मौसम के कारण आज लगातार चौथे दिन भी श्री माता वैष्णो देवी यात्रा स्थगित रही। तीर्थयात्रियों को यात्रा फिर शुरू होने के संबंध में आधिकारिक माध्यमों से जानकारी लेने की सलाह दी गई है। चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के आयुष शेट्टी ने आज पुरुष सिंगल्स में इंडोनेशिया के अलवी फरहान को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर, और मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी खुशी। आप सुन रहे हैं आपका अपना खास कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, जहां हम बात करते हैं उस मिट्टी की जो परंपरा में भी आगे है और विकास में भी सबसे आगे है। और मेरे साथ,
1: और आज का हमारा सफर है स्वादों की नगरी, आध्यात्मिक की धरती और संस्कृति की धड़कन काशी की ओर।
0: आज हम जानेंगे कि कैसे उत्तर प्रदेश सरकार की एक जनपद एक व्यंजन योजना बनारस के पारंपरिक स्वादों को लोकल से ग्लोबल बना रही है।
1: तो तैयार हो जाइए काशी के जाए कहानियों और संस्कृति से भरे इस खास सफर के लिए,
0: क्योंकि यही है विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश।

0: जहां सुबह गंगा के घाटों पर उतरती है और गलियों में कचौड़ियों की खुशबू बहती है, वो शहर है बनारस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी खुशी और हम आपको लेकर चलने वाले हैं उस शहर में जहां स्वाद सिर्फ जुबान पर नहीं दिलों में उतरता है।
1: और मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे रीना। अरे भैया, ये वो शहर है जहां सुबह अलार्म से नहीं गर्मा गर्म कचौड़ियों की खुशबू से खुलती है।
0: वाह क्या बात, काशी की गलियों में सुबह सुबह छनछनाती कचौड़ियां, जलेबी की मिठास, पान की गुलियां और ठंडाई की ठाट सब मिलकर ऐसे एहसास देते हैं जैसे पूरा शहर स्वाद की कविता लिख रहा हो।
1: और अब यही है स्वाद लोकल से ग्लोबल बनने जा रहा है। योगी सरकार की एक जनपद एक व्यंजन यानी ODOC योजना के तहत काशी पारंपरिक व्यंजनों को नई पहचान मिल रही है।
0: ये सिर्फ आर्थिक योजना नहीं बल्कि सांस्कृतिक पूर्ण जागरण। सोचिए, बनारस की गलियों से उठती खुशबू अब विदेशों तक पहुँचेगी।
1: और सिर्फ पहुँचेगी नहीं, दिल जीत लेगी।
0: तो चलिए शुरुआत करते हैं उस स्वाद से जिसके बिना बनारस की सुबह अधूरी है, बनारस की कचौड़ी।
1: अरे वाह, नाम सुनते ही भूख लग गई। बनारसी कचौड़ी की खासियत ही अलग है। पूरे देश में कचौड़ी मिल जाएगी लेकिन बनारसी कचौड़ी का जवाब नहीं।
0: देसी घी से सना हुआ कड़ा आटा, अंदर उड़द की दाल, मसाले पिट्ठी और धीमी धीमी आंच पर तली गई कुरकुरी कचौड़ी, फिर उसके साथ आलू टमाटर की सब्जी।

0: घोड़ा, चना, घुंघरी और मीठी इमली की चटनी। उफ,
1: अरे भैया, साथ में गर्मा गर्म जलेबी हो जाए तो फिर बनारस की सुबह सफल है।
0: सबसे खूबसूरत बात तो ये है कि फास्ट फूड के दौर में भी बनारसी कचौड़ी ने अपना परंपरागत स्वाद बरकरार रखा है। पीढ़ियों से लोग इसी कारोबार से जुड़े हैं।
1: और अब ODCO योजना के तहत इस दुकानदारों को आधुनिक पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग की मदद मिलेगी, ताकि बनारसी कचौड़ी का स्वाद दुनिया तक पहुंचे।
2: हमारा नाम है विकास श्रीवास्तव और हम यहाँ के मैनेजर बानी। हम योगी जी के ये पहल से बड़ा खुश बानी और कोटि कोटि प्रणाम महाराज जी के करतनी, जो उनकी पहल एक जनपद एक व्यंजन बहुत ही बढ़िया है। इससे जैसे हमन के व्यापारी गणबाणी तो बहुत हमन के भी फायदा बा और जोन हमारी जनता आवतिया वह लोगन के बहुत जोन बा।
0: दोस्तों, योगी सरकार की ODOC पहल सिर्फ बनारस के स्वादों को पहचान दिलाने की योजना नहीं है, बल्कि उन हजारों परिवार के सपनों को नई उड़ान देने का अभियान भी है, जो पीढ़ियों से इन पारंपरिक व्यंजनों को जीवित रखे हुए हैं।
1: बिल्कुल, सोचिए जो कारीगर, हलवाई, पान व्यवसायी और छोटे उद्यमी वर्षों से अपने हुनर के दम पर बनारस की पहचान बनाए हुए हैं, सरकार की योजनाओं का भी मजबूत सहारा मिल रहा है।
0: ODOC के माध्यम से पारंपरिक व्यंजनों से जुड़े लोगों को परीक्षण, कौशल विकास, आधुनिक तकनीकों की जानकारी और व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जा रहा है।
1: इतना ही नहीं, विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से ऋण सुविधाओं, वित्तीय सहायता और स्वरोजगार के अवसर तक उनकी पहुंच को भी मजबूत किया जा रहा है, ताकि छोटे कारोबार बड़े उद्यमों में बदल सके।
0: सरकार की सोच साफ है, स्थानीय स्वाद को व्यावसायिक बाजार तक पहुंचाना और स्थानीय लोगों की आय को बढ़ावा देना।
1: यही कारण है कि अब बनारसी कचौड़ी, ठंडाई, तिरंगा बर्फी, लौंग लता, मलियो और बनारसी पान जैसी व्यंजनों आकर्षक पैकेजिंग, आधुनिक ब्रांडिंग और डिजिटल मार्केटिंग से जोड़ा जा रहा है।
0: पर्यटन मेलों, खाद उत्सवों और बड़े आयोजनों में भी इन पारंपरिक व्यंजनों को विशेष स्थान दिया जा रहा है, ताकि देश विदेश से आने वाले पर्यटक काशी के स्वाद से रूबरू हो सके।
1: इसका सीधा लाभ स्थानीय दुकानों, मिठाई निर्माताओं, पान व्यवसायियों, उद्योग उत्पादकों, किसानों और छोटे व्यापारियों तक पहुंचेगा।
0: यानी ODOC योजना सिर्फ व्यंजनों का विकास नहीं कर रही, बल्कि पूरी संस्थानीय अर्थव्यवस्था को गति दे रही है।
1: और यही तो योगी सरकार की विकास परक सोच की खासियत है। विरासत की सुरक्षा रहे, रोजगार भी बढ़े और काशी के स्वाद की महक दुनिया भर में पहुंचे।
0: सचमुच अब वह दिन दूर नहीं जब बनारस की गलियों में जन्मे ये पारंपरिक स्वाद अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी अपनी अलग पहचान बनाएंगे।
1: अब बात करते हैं बनारस की शान ठंडाई की।
0: अरे, बनारस और ठंडाई जैसे गंगा और घाट, यहाँ साल भर ठंडाई पी जाती है, लेकिन होली पर इसकी बात ही अलग होती है।
1: पक्के महल की गलियों में जब सिल पर काली मिर्च, बादाम, पिस्ता और इलायची पीसी जाती है, तो उसकी खुशबू पूरे मोहल्ले को बनारसी बना देती है।
0: ठंडाई बनाने की प्रक्रिया भी कम दिलचस्प नहीं। रात भर भीगी बादाम, पिस्ता, गुलकंद, केसर, गुलाब जल, फिर सबको पीस कर दूध में मिलाना और आखिर में कपड़े से छान कर मलाई के साथ परोसना। आजकल तो मूंगी, चॉकलेट और रोज फ्लेवर तक आ गए हैं, लेकिन असली बनारसी ठंडाई वही है जिसमें मिट्टी, महक और बनारस का दिल हो। दोस्तों, अब जिस मिठाई की बात होने जा रही है, वो सिर्फ स्वाद नहीं, इतिहास भी है।
1: जी हाँ, तिरंगा बर्फी, जिसे स्वतंत्रता आंदोलन में भी अपनी भूमिका निभाई।
0: जब अंग्रेजों ने तिरंगा झंडे पर रोक लगाई थी, तब बनारस के हलवाइयों ने तिरंगे जैसी मिठाई बनाकर लोगों में देशभक्ति का जोश जगाया था।
1: सोचिए, मिठाई भी आंदोलन का हथियार बन सकती है।
0: हरे रंग के लिए पिस्ता, सफेद के लिए बादाम और केसरिया रंग के लिए केसर। खोए से बनी ये मिठाई सिर्फ स्वादिष्ट नहीं, बल्कि देशभक्ति का प्रतीक भी है।
1: और अब इसे GI टैग भी मिल चुका है, यानी इसकी पहचान अब आधारिक रूप से बनारस से जुड़

0: जैसे मिठास का कोई त्योहार मनाया जा रहा हो।
1: पहले इसका आकार बड़ा हुआ करता था, लेकिन समय के साथ इसे छोटा और सुविधाजनक बना दिया गया है ताकि लोग आसानी से खा सकें और साथ ले जा सकें।
0: शाम के समय बनारस की मिठाई की दुकानों में गरम समोसे और लोंग लता की जोड़ी बस दिल खुश कर देती है।
1: अगर बनारस आए और कुल्हड़ वाली लस्सी ना पिए तो समझिए यात्रा अधूरी है।
0: बिल्कुल, ताजे दही को मथनी से खूब फेटा जाता है, फिर उसे हल्की मिठास, बर्फ और ऊपर मलाई की मोटी परत
1: और कुल्हड़ की सौंधी खुशबू, वाह, जैसे खुद स्वाद बन गई हो। ये सिर्फ पिए नहीं, गर्मी से राहत देने वाला बनारस की पहचान है।
0: अब बात उस चीज की जिसके बिना बनारस की पहचान अधूरी है।
1: जी हाँ, बनारसी पान।
0: और भाई, यहाँ पान खाया नहीं जाता, पान जमाया जाता है।
1: ताजे महकते पत्ते, कत्था, चूना, गुलकंद, सौंफ, इलायची, नारियल बारूदा और फिर प्यार से तैयार की गई ग्लोरी।
0: साधारण पान से लेकर शाही पान तक हर स्वाद का अपना फैन क्लब है।
1: हिंदी फिल्मों और गीता में भी बनारसी पान को दुनिया भर में मशहूर कर दिया और इसी सांस्कृतिक पहचान को देखते हुए इसे GI टैग भी मिला है।
0: बनारस में पान सिर्फ स्वाद नहीं, मेहमान नवाजी और अपनापन है।
1: अब हम बात करेंगे उस मिठाई की जो सिर्फ सर्दियों में मिलती है और मुंह में जाते ही गायब हो जाती है।
0: मलाई और काशी की बेहद खास और पारंपरिक मौसमी मिठाई।
1: इसे बनाने की प्रक्रिया किसी कला से कम नहीं। दूध को उबालकर पूरी रात खुले आसमान के नीचे रखा जाता है ताकि ओस की नमी उसमें उतर जाए।
0: सुबह उठते मथकर झाग निकाला जाता है, फिर उसमें केसर, इलायची और पिस्ता बादाम मिलाए जाते हैं।
1: इतनी हल्की कि मुंह में रखते ही घुल जाए, यही वजह है इसे बादलों की मिठास भी कहा जाता है।
0: और खास बात, ये सिर्फ सुबह घंटों तक ही मिलती है, देर हुई तो मलाई खत्म।
1: काशी के इन व्यंजनों में सिर्फ स्वाद नहीं, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पीढ़ियों की मेहनत छिपी है।
0: और अब एक जनपद एक व्यंजन योजना इस स्वादों को वैश्विक मंच देने जा रही है।
1: इसके तहत पारंपरिक व्यंजनों की ब्रांडिंग, आधुनिक टेक्नोलॉजी, आकर्षक पैकेजिंग और प्रभावी मार्केटिंग पर काम किया जा रहा है।
0: सबसे अहम बात गुणवत्ता, स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। सभी उत्पादकों को खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुसार प्रमाणित किया जाएगा।
1: यानी अब बनारस का स्वाद सिर्फ गलियों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि दुनिया के हर कोने तक पहुंचेगा।
0: और इसे स्थायी रोजगार बढ़ेगा, पर्यटक को नया आयाम मिलेगा और बनारसी कारीगरों की मेहनत को वैश्विक पहचान मिलेगी।
1: तो दोस्तों, आज की इस स्वाद भरी यात्रा में हमने जाना कि काशी सिर्फ मंदिरों और घाटों की नगरी नहीं बल्कि भारत की पाक विरासत का धड़कता हुआ दिल है।
0: यहाँ की कचौड़ी में सुबह की रौनक है, ठंडाई में त्योहारों की मस्ती, पान में अपनापन और मलाइयों में मौसम का जादू।
1: जब ये स्वाद दुनिया तक पहुँचेगा तब सिर्फ व्यापार नहीं होगा बल्कि भारत की संस्कृति का वैश्विक उत्सव होगा।
0: तो अगली बार बनारस जाए तो सिर्फ घूमिए मत, बनारस को चखिए भी।
1: नमस्कार, फिर मिलेंगे एक नए सफर, नए स्वाद और नई कहानी के साथ।
2: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
3: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई BP, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम सोच बदलो और आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। दिस इज फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन मुरादाबाद शहर का। और दोस्तों आज सोच बदलो का टॉपिक बहुत ही कमाल का है और इस सोच बदलो के टॉपिक में मैं अकेला नहीं

0: मेरे साथ और भी हमारे साथी हैं जो हमारा साथ देंगे इस कार्यक्रम में। दोस्तों आज का टॉपिक है शायद हर घर की सच्चाई जो बन चुका है, वो एक ऐसा टॉपिक जिसपे आज के समय में बात करना बहुत जरूरी है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट घर में सब लोग एक साथ बैठे होते हैं लेकिन फिर भी हम किसी की बात नहीं सुनते, किसी से बात नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारे हाथ में होता है मोबाइल। यस, आज पूरा का पूरा मुद्दा होने वाला है मोबाइल फोन, और ये बहुत जरूरी डिस्कशन बन चुका है। तो मैंने सोचा सोच बदलो प्रोग्राम में इस पर बात करने के लिए मैं अकेला क्यों। तो आज हमारे साथ हैं आरजे रीना, आरजे कुमकुम और एक हमारी खास मेहमान शैली जी। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हाल चाल है आप लोगों के?
1: थैंक यू आनंद। सच कहूँ तो आजकल कई घरों में लोग एक दूसरे के पास बैठते जरूर है लेकिन कनेक्ट मोबाइल से रहते हैं, परिवार से नहीं।
2: बिल्कुल सही कहा। पहले लोग खाना खाते समय एक दूसरे से बात करते थे लेकिन आजकल तो सब मोबाइल में ही देखते हुए बैठे रहते
3: हैं। रीना जी और कुमकुम जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और सबसे दुख की बात यह है कि बच्चों से लेकर बड़े तक सब धीरे धीरे मोबाइल के इतने आदि हो गए कि घर की हंसी और बातचीत कम हो जा रही है।
0: क्या बात है, थैंक यू सो मच गाइज। बिल्कुल, तो दोस्तों आज का प्रोग्राम बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। दिल थाम के बैठिए और सुनते रहिए आपका पसंदीदा कार्यक्रम सोच बदलो। रुकते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद लौट कर आएंगे। आप सुनते रहिए आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6।

0: श्रोताओं वेलकम बैक एक बार फिर से। दोस्तों जरा सोचिए, एक परिवार हॉल में बैठा है, पापा मोबाइल में रील्स देख रहे हैं और मम्मी व्हाट्सएप चला रही है, बच्चे गेम्स खेल रहे हैं, लेकिन कोई किसी से बात नहीं कर रहा है। क्या यही परिवार है?
1: पहले लोग दिन भर बातें शेयर करते थे, आज क्या हुआ, कैसा दिन रहा,
0: बिल्कुल।
1: लेकिन अब रिप्लाई सिर्फ इतना होता है, ठीक है, क्योंकि ध्यान मोबाइल में होता है।
0: बिल्कुल सही कहा,
2: बिल्कुल सही रीना जी। और यही धीरे धीरे रिश्तों में दूरियां बढ़ा देता है और घर के लोग साथ रहकर भी अकेले महसूस करने लगते हैं।
3: बिल्कुल सही कहा आपने कुमकुम जी, मोबाइल गलत नहीं है, लेकिन जरूरत से ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल रिश्तों को कमजोर कर देता है, बस ये है।
0: सही कहा शैली जी आपने, टेक्नोलॉजी जरूरी है लेकिन फैमिली टाइम उससे भी ज्यादा जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है। और मैं सच बताऊं श्रोताओं, ऐसा मेरे साथ या शैली जी के रीना कुमकुम के साथ नहीं है, हर घर की कहानी हो गया है शैली जी। और मुझे लगता है कि सच बताऊं तो मोबाइल के हम इतने आदी हो गए हैं कि आजकल हम वॉशरूम में भी मोबाइल लेके जाते हैं। शैली जी आप इस पे क्या कहना चाहेंगी?
3: और कई बार पेरेंट्स खुद मोबाइल में इतने डूबे और बिजी होते हैं कि बच्चों को कैसे वो सिखाएंगे कि उन्हें क्या करना है जब वो खुद ही इतना बिजी है।
0: बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और रीना तुम्हें क्या लगता है?
1: बिल्कुल सही कहा तुमने, तो मैं यही कहना चाहूंगी, अगर हम सच में अपने रिश्तों को मजबूत बनाना चाहते हैं तो हमें कुछ छोटी छोटी आदतें बदलनी होगी, जैसे खाना खाते समय मोबाइल दूर रखना, फैमिली टाइम फिक्स करना, बच्चों से खुलकर बातें करना, सुबह और रात कुछ समय बिना फोन के बिताना।
2: बिल्कुल सही कहा, क्योंकि याद रखिए दोस्तों, बच्चों को सबसे ज्यादा जरूरी एक्सपेंसिव मोबाइल फोन की नहीं है बल्कि हमारे परिवार के समय और प्यार की होती है।
3: बिल्कुल सही कहा, और जब परिवार में बातचीत बढ़ती है तभी प्यार बढ़ता है, समझ बढ़ती है और सच में सोच बदलती है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, और मुझे लगता है मोबाइल की दुनिया में रिश्ते में जैसे मानो कहीं खो से जा रहे हैं, पास बैठकर भी लोग दूर हो गए हैं। मतलब एक टाइम था जब लोग एक दूसरे से बात करना पसंद करते थे, एक समय था जब लोगों को एक दूसरे की चिट्ठियों का इंतजार होता था, वहीं आज एक सेकंड के अंदर व्हाट्सएप पे हम लोग मैसेज करते हैं और थोड़ी देर के बाद वो ऐसे लगता है जैसे हमारे पास सब कुछ आ गया है। लेकिन उसका जो मजा था ना वो एक अलग ही था। अगर मैं शैली जी सबसे हटके बात करूं आप लोगों से गाइज, तो अभी जो ये व्हाट्सएप का ट्रेंड चल गया और उससे पहले जो चिट्ठियों का ट्रेंड था उसमें क्या था शैली जी, कितना मजा आता था उसमें?
3: उसमें बहुत मजा आता था, उसमें हम वेट करते थे।
0: करेक्ट, और हम भेजने के लिए भी हमें बहुत प्रोसेसिंग फॉलो करनी पड़ती थी।
3: अब तो क्या है कि मतलब एक बेचैनी रहती थी, वो हमने आज मम्मी को लेटर भेजा है या पापा हमारे बाहर है उन्हें लेटर भेजा है तो रिप्लाई क्या आएगा, कब रिप्लाई आएगा, और जो वो रिप्लाई पर तो उन्हें सजो के रखते थे। आज भी लोग पोस्ट कार्ड को सजो के रखे हुए हैं, लेटर बॉक्स जो आज भी हम देखते तो हमें खुशी से महसूस होती है।
0: तो मुझे लगता है कि देखिए सोच बदलने की जरूरत तो यहाँ पर है कि लेटर का ट्रेंड भले ही खत्म हो गया है, व्हाट्सएप का ट्रेंड आ गया है। आई नो व्हाट्सएप अच्छी चीज है, टेक्नोलॉजी हमारे और आपके फायदे के लिए बनी है, अच्छी बात है, हम लोग कनेक्टेड हैं, बट कहीं ना कहीं सोच ये बदलना है कि हम जब परिवार के साथ होते हैं, स्पेसिफिक टाइम बिता रहे होते हैं, परिवार को जो टाइम दे रहे होते हैं उसमें एक दूसरे से बात करना कितना जरूरी है। शैली जी आपको क्या लगता है?
3: परिवार में एक दूसरे से बात करना, तभी तो हमें पता चलेगा कि कौन परेशान है।
0: करेक्ट,
3: किसके मन में क्या बात, आजकल लोग आप सोचो कि मतलब काउंसलिंग करा रहे हैं लोग। इतना स्ट्रेस बढ़ गया है, क्यों? क्योंकि आपके पास घर में भी एक व्यक्ति नहीं है जिससे आप अपनी बात कह पाए। पेरेंट्स के पास बच्चों के लिए टाइम नहीं है, बच्चों के पास पेरेंट्स के लिए टाइम नहीं है,
0: क्योंकि सब अपनी अपनी दुनिया में
3: बिजी है। तो बिजी होने के बाद भी हमारे पेरेंट्स भी बिजी होते थे, मम्मी घर के कामों में, पापा बाहर, लेकिन फिर भी हम लोग शाम का खाना बैठ के खा रहे हैं। तो कोई बच्चा अगर नहीं खा रहा है तो उसे पूछा भी क्या प्रॉब्लम है, बेटा आज क्या हुआ ऐसा जो आप खाना नहीं खा रहे हो, या आज आप उदास क्यों है?
0: सही कहा आपने।
4: वो कहते हैं ना दोस्तों कि असली कनेक्शन वाईफाई से नहीं दिल से होता है। जब लास्ट में शाम के टाइम हम पूरी फैमिली एक साथ बैठ के खाना खाते थे तो चार बातें हुआ करती थी, लोगों को समझा जाता था, एक दूसरे को समझा जाता था, अपने ड्रीम्स के बारे में बात की जाती थी। अब लोग अपने मोबाइल फोन में ही इतना घुस गए हैं कि सारी चीजें उसी में देखते हैं।
3: और मुझे लगता है कि ये जो हम लोग में होता था ना कि इंतजार, पहले इंतजार करते थे हम रिप्लाई का, आज वो इंतजार खत्म हो गया है तो पेशेंस लेवल भी कम हो गया है
1: जी। और आज बात ना ईगो पे आ जाती है कि अगर आपको मैसेज कर रहा है तो आप क्या मतलब करते हैं इंसान कि यार अभी नहीं रिप्लाई देंगे, हम थोड़ी देर बाद रिप्लाई देंगे इसको।
3: बिल्कुल, पहले कम बातें होती थी, रिश्ते ज्यादा लंबे टिकते थे।
1: बिल्कुल,
3: अब बातें ज्यादा होती हैं,
1: रिश्ते कम टिकते हैं।
0: क्या बात है। चलिए दोस्तों ये बातें चलती रहेंगी, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद लौट कर आएंगे।
5: हेलो 9821026212 BPL, अरे 9820026235।

0: वेलकम बैक है एक बार फिर से आप सभी का एफएम मुरादाबाद पे प्रोग्राम है सोच बदलो। और सोच बदलो का हमारा आज का जो टॉपिक है वो है मोबाइल फोन जो है रिश्तों को कहीं ना कहीं कमजोर करता जा रहा है, खत्म करता जा रहा है। मम्मी घर में होती है, पापा घर में होते हैं, हम सब घर में होते हैं, लेकिन उसके बाद भी नाश्ते के लिए एक टाइम था जब मम्मियां 100 गालियां देकर उठाती थी शैली जी। और आज का टाइम है कि मम्मी सिर्फ एक छोटा सा मैसेज कर देती है, नाश्ता रेडी है टेबल पे, ऊपर से नीचे आ जाओ, है ना। तो ये ट्रेंड कहीं ना कहीं हमें हमारे घर के पेरेंट्स को भी चेंज करना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है।
1: हाँ बिल्कुल चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि नाश्ता रेडी है, पहले सब लोग जब टेबल पे आ जाते थे तभी नाश्ता लगता था, अब सबके कमरों में ही पहुंचा दिया जाता
0: था। और पहले
1: बेटा हम तुम्हारा रूम में, मतलब हाँ, मैं
0: आप रेस्ट करो,
1: आप रेस्ट करो, मैं वहीं पहुंचा रही हूँ। क्यों वहीं भाई, सब साथ में बैठ के नाश्ता।
2: और पहले टाइम का भी फिक्स होता था, अब भूख नहीं है, अभी नहीं खा रही, मैं थोड़ी देर बाद खा लूंगी, अब तो ये हो गया है।
1: अब नाश्ता हो रहा है 11 बजे 2 बजे, आप खाना कैसे खा लोगे।
2: इनफैक्ट हम उठ ही लेट रहे हैं,
0: मतलब दिनचर्या भी कहने के मोबाइल की वजह से, क्योंकि लोग
1: तो
0: लेट लाइट
1: आ गए। पहले की लेडीज घर में खाना बनाने के बाद कढ़ाई सिलाई बुनाई सारे काम कर लेती। अब लेडीज को खाना बनाने के बाद टाइम ही नहीं है
2: बिल्कुल,
1: क्योंकि वो सुबह का नाश्ता लेट, फिर दोपहर का खाना लेट, और चीजें लेट। पहले लोग ऑफिस चले गए, हम लोग की मम्मियों को हमने स्वेटर बुनते देखा है, मैंने तो आज तक एक स्वेटर नहीं बुन पाया क्योंकि टाइम ही नहीं है।
2: टाइम तो तब होना कि हम समय पर सोए, समय पर उठे, अब उठते ही इतने लेट हैं। पहले टाइम के पंचुअल हुआ करते थे, अब हम टाइम को समझते नहीं है।
0: टाइम को इसलिए नहीं समझते,
1: पंचुअल भी अगर ना बोलो तो हम टाइम की वैल्यू
0: समझते थे। एग्जैक्टली,
3: टाइम की वैल्यू उतनी नहीं की जाती जैसे पहले की जाती थी,
1: और जो टाइम की वैल्यू आज भी करते ना वो सक्सेस है।
0: ये तो बात बिल्कुल सही कही है, तो मतलब सोच बदलने की जरूरत यहाँ पर नहीं है कि आप किससे बात कर रहे हो, किससे नहीं, जरूरत है सही चीज को मेंटेन करने की, है ना। अगर आप सही तरीके से चीजों को मैनेज करोगे तो मुझे लगता है बेहतर चीजें हो सकती है। और सबसे जरूरी बात, हर चीज फोन में ही मत ढूंढो,
2: बिल्कुल।
0: अगर आप घर पे हो, परिवार के साथ हो, रिलेटिव के यहाँ जा रहे हो, तो उनसे बात करो।
1: आप सोचो आजकल चैट जीपीटी जो आया है वो इतना पॉपुलर क्यों है,
0: लोग उससे बात कर रहे हैं,
1: क्योंकि लोगों के पास व्यूज ही नहीं रह गए हैं। आप लोगों को पहले, अगर कोई अगर नॉन प्रोफेशन बंदा है जिन्होंने कभी माइक हाथ में नहीं थामाया, अगर आप किसी को दे दोगे ना वो बोल नहीं पाएगा, उसके पास शब्द ही नहीं होंगे, डिक्शनरी कम हो गई है क्योंकि आपने इतनी बातचीत कम हो, आप एवरी थिंग के लिए आप डिपेंड हो गए हो सोशल मीडिया पे, वेबसाइट्स पे, इस पे और उस पे, तो फिर क्या ही होगा, आपके अपने पर्सनल व्यूज ही नहीं रह गए, आप अपने माइंड का यूज ही नहीं कर रहे हो, और जहाँ यूज कर रहे हो आप कहाँ कर रहे हो ये तो पता ही है।
0: ये बिल्कुल सही कहा आपने, तो मुझे लगता है कि देखिए दिक्कतें टेक्नोलॉजी से नहीं है, दिक्कतें मोबाइल चलाने से नहीं है, दिक्कतें सिर्फ बात करने से हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हर चीज हमारे लिए कन्वीनियंट होनी चाहिए, इजीली होनी चाहिए, हम इस इजी के चक्कर में मोबाइलों में इतना घुस गए हैं। आजकल आप देखो ना, घर बैठे बैठे हम चाहते हैं हर चीज आ जाए। आजकल दूध लेने का एक बहाना होता था कि हम सुबह दूध लेने जाएंगे, आजकल ये दूध लेने भी नहीं जाते, क्यों, सब कुछ तो ऑनलाइन हो गया है।
1: पहले चलो ठीक है, कुछ चीजों के लिए तो निकलना ही पड़ता था, अब तो बिल्कुल नहीं निकलना है, कि हमने अपने आप को इतना डिपेंड कर लिया है। हम लोग पैदल स्कूल जाते थे,
0: सोचो
1: आजकल बच्चे को हम बैग लेकर के बस तक भी पहुंचाने जाएंगे,
2: छोड़ने जाते हैं
1: और उनका बैग उठा के बस से भी घर पे लाएंगे।
0: सही कहा आपने, तो दोस्तों मतलब कुल मिला के यह है कि बात आलस की तो नहीं कर रहे हैं, आज हम बात हम कर रहे हैं कि हमारे जो परिवार, हमारे कनेक्शन कम हो रहे हैं, उसकी सबसे बड़ा कारण है, उसका सबसे बड़ा रीजन है हमारा मोबाइल फोन। और मोबाइल फोन इसलिए क्योंकि हम सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी मोबाइल पे ही दिखाते हैं, हम परिवार के साथ होते हुए भी ऐसा महसूस करते हैं कि हम फैमिली के साथ नहीं है। अगर सोचो हम चार लोग यहाँ पे अगर अपने अपने मोबाइल में लग जाए तो कौन एक दूसरे से बात करेगा,
2: कोई भी जी
0: सोचने की बात है, और ना हम एक दूसरे को जान पाएंगे ना समझ पाएंगे।
1: आजकल जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हो गए उनका मजा किरकिरा क्यों हो गया है, क्योंकि वहाँ जाके लोग वहाँ की खूबसूरती नहीं देखते हैं। हिस्टोरिकल प्लेस पे जाइए, वहाँ की कहानी समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं ये, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि या कौन सा व्यू हम देख लें, यहाँ पे हमारा फोटो सबसे बेस्ट,
2: फोटो वीडियो
0: कैप्चर करो उसको ही।
1: खाने के टेबल पे खाना रखा है लेकिन आपको उसको टेस्ट नहीं पता है कि आपने आज ठीक था, बाद में अगर एक डिश, चार डिश में से एक डिश आपने ऐसी टेस्ट के लिए, वो खाना अच्छा नहीं था, बाकी की चार आपने स्वाद ले ही नहीं पाए,
2: क्यों, हमारा ध्यान तो फोन में होता है, पहले हम फोटो खींचते हैं, स्नैप भेजते हैं, और फिर वही टाइम हो जाता है चलो चलो।
1: हम लोगों के टाइम में एक ऐसे आता था हिंदी में, ज्ञान के अभिशाप और चमत्कार
2: जी,
1: तो मतलब वो हर, मतलब जब भी देखो वो एक सबसे रखा ही होता था क्वेश्चन पेपर में वो, तो उस टाइम पे मुझे वो इतना नहीं समझ आता था, मगर आज मुझे समझ में आता है। ऐसा नहीं है, मोबाइल अच्छी चीज है, हम लोगों को बहुत अच्छी चीजें मिली हुई है कि हम लोगों को बहुत कुछ प्रोग्रेस कर सकते हैं, अपना करियर बना सकते हैं, लेकिन हम अपना टाइम कहाँ दे रहे हैं ये मैटर करता है,
2: बिल्कुल
1: किस चीज पे दे रहे हैं, पॉजिटिव चीज पे दे रहे हैं या निगेटिव चीज पे दे रहे हैं। पॉजिटिव भी है इसमें, निगेटिव भी है।
0: सही कहा आपने। तो दोस्तों आप सुनते रहिए ऐसे ही सोच बदलो प्रोग्राम, और अभी हम लौट कर आते हैं एक छोटे से गाने के बाद।

0: इस गाने के बाद वेलकम बैक है शैली। जाते जाते रीना कुमकुम, आप लोग क्या कहना चाहोगे हमारे युवा पीढ़ी से, जो लोग घर में बैठ के बातें कम मोबाइल ज्यादा चलाते हैं उन लोगों?
1: मैं यही कहना चाहूंगी, देखिए हर घर में जितने भी मेंबर्स है ना, हर घर में सभी के पास फोन है। तो पहली बात पेरेंट्स से मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आपके पास फोन है तो जो बच्चे हैं जो 12th तक अभी पढ़ाई कर रहे हैं उनको फोन ना दे। अगर आप उनको फोन नहीं देंगे तो वो देखिए और भी आगे बढ़ेंगे अपनी लाइफ में। हमें तो ये पता है ना कि हमने बच्चों को फोन दे दिया, वो पढ़ ही रहा होगा, लेकिन आप देखने नहीं जा रहे कि उस कमरे में वो पढ़ रहा है या वीडियो देख रहा है, क्या कर रहा है। तो अगर आप फोन दे भी रहे तो उस चीज का ध्यान रखिए कि बच्चा कब क्या किस टाइम क्या कर रहा है।
2: बिल्कुल सही कहा आपने, फोन नहीं देना चाहिए। लेकिन कई टाइम ना हमें टीचर्स ऐसे प्रोजेक्ट दे देते हैं कि बच्चों को काम होता है फोन से, इसलिए पेरेंट्स उनकी सुविधा के लिए देते हैं, पर वो ना फोन
1: यूटिलाइज हमें अच्छे तरीके से करना चाहिए,
2: सुविधा के लिए दिए जाते हैं, क्योंकि उन सुविधाओं से हम आगे बढ़ सके, अपने अपने करियर के लिए सोच सके, अपने फ्यूचर के बारे में आगे देख सकें कि हमारा पढ़ाई में और चीजों में क्या क्या कर सकते हैं। पर वो डिपेंड इतने हो जाते हैं उस फोन पे, उसके आदि बन जाते हैं एक तरह से।
3: मैं सभी पेरेंट्स से कहना चाहूंगी कि जब भी वो बच्चों के सामने मोबाइल देखें या खुद भी देखें तो मोटिवेशनल चीजें ज्यादा देखें, जिससे उन्हें कुछ लगे कि हाँ मम्मा या पापा हमें ये चीजें देखती है, तो उनके दिमाग पे भी वही छाप पड़ जाती है।
4: बिल्कुल,
3: तो वो भी कहीं ना कहीं उनके दिमाग पे लगे कि हाँ ये चीज ठीक है उसको।
4: और बच्चों को भी टाइम दीजिए, आप खुद नहीं फोन में रहेंगे बच्चे। अब आजकल मैम ये होता है कि बच्चे आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन आप काम में बिजी होते हैं या फिर फोन चला रहे हो या फिर मासी का फोन आ गया, तो भैया तो समझो बेटा।
3: तो सबसे ज्यादा यंगस्टर को काउंसलिंग की जरूरत पड़ रही है इस समय,
4: सबसे
3: ज्यादा स्ट्रेस। लोग काउंसलिंग ले रहे हैं स्ट्रेस रिलीज करने के लिए, कि मुझे उनके पास बात करने के लिए लोग नहीं है। साइड चल गई है, आइए बात करिए।
4: बिल्कुल, अब इंसान वहाँ टाइम दे रहा है लेकिन अपने फैमिली को कम।
2: मैं श्रोताओं से यही कहना चाहूंगी कि जैसे हम लोग देखते हैं ना, ड्रामास देखते हैं या कोई भी ड्रामा आप देखते हो कंट्री के बाहर का, उसमें ना एक टाइम दिया जाता है कि नो मोबाइल टाइम, फैमिली का टाइम जो रहता है उस मोबाइल को ना एक बॉक्स में डाल दिया जाता है। तो ऐसा हमारे यहाँ भी होना चाहिए, आप सबको अपनी फैमिली में एक टाइम ऐसा बनाना चाहिए, यहाँ सब फैमिली एक साथ रहेगी, मोबाइल को एक बॉक्स में रख दिया जाएगा कुछ टाइम के लिए।
1: चलिए श्रोताओं, अब हम लेते हैं यहाँ से जाने के विदा।
0: बिल्कुल, इजाजत लेंगे, लेकिन सब लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे मैसेज दिए और मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, सोच जब बदलेगी जब हम उसकी शुरुआत करेंगे, उसकी शुरुआत मुझे और आपको ही करनी है श्रोताओं। तो मोबाइल एक अच्छी चीज है हमारी फैसिलिटी के लिए, इस गवर्नमेंट ने बनाई है, टेक्नोलॉजी का अच्छा फायदा आपको जरूर मिलेगा और मिल भी रहा होगा आई एम श्योर। बहुत सारे लोग आजकल बहुत सारी चीजें कर भी रहे हैं, बट इसका यह मतलब नहीं है कि अपने रिश्तों को भूल जाएं, अपने परिवार को भूल जाएं। परिवार को क्वालिटी टाइम दीजिए और फैमिली से भी कहना चाहता हूं, स्पेशली अगर आप मुझे सुन रही हैं, वर्किंग लेडी हैं, आप वुमेन वर्किंग वुमेन हैं, तो डेफिनेटली अच्छी बात है, आप जो भी कर रही करती रहिए, ऑल द वे बेस्ट। बट उसके साथ ही साथ अगर आप घर जा रही हैं तो उसके बाद एक पर्टिकुलर टाइम अपने बच्चे के साथ जरूर बिताएं, उससे पूछें आज उसने स्कूल में क्या किया, उसके स्कूल में कैसा रहा उसका टाइम, उसने किसके साथ टाइम बिताया। अगर आप फादर हैं तो आप भी अपने बच्चों के साथ स्पेशल टाइम डेफिनेटली सेलिब्रेट करें और एक वीकेंड में ऐसा दिन जरूर निकालें जिसमें नो मोबाइल, एटलीस्ट एक घंटा ही सही, बट वो आप जरूर करें, कहीं बाहर जाएं, एक्टिविटीज करें, फन करें, बट मोबाइल को थोड़ा सा तवज्जो कम दें, मतलब जब आपको लगता है स्पेशली परिवार के लिए टाइम है। तो ये चीज आप कीजिए, सोच अपने आप बदलेगी, बाकी कोशिशें आपको करनी पड़ेंगी, हम भी आपके लिए कोशिश करते रहते हैं प्रोग्राम के जरिए कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक्स लाएं और आपको जगाएं। बाकी के लिए सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनते रहिए, है आपके शहर का अपना फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। फिर से बोलेंगे रेडियो
2: बजाते
3: रहो, गुनगुनाते रहो।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया, बाय।

0: विजिट करो।
1: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपके अपने शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 और मैं हूं आपके साथ आपकी खुशी लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, जहां हम आपको मिलवाते हैं उत्तर प्रदेश के उन खास पहचान से जो परंपरा, स्वाद और विकास का अनोखा संगम है।
1: और मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे रीना। आज लेकर आई हूं एक ऐसे स्वाद की कहानी जो दशकों से लोगों की जुबान पर राज कर रही है, एक ऐसा स्वाद जिसके बिना मुरादाबाद की पहचान अधूरी मानी जाती है।
0: जी हाँ दोस्तों, जब भी मुरादाबाद का नाम आता है तो सबसे पहले याद आती है पीतल नगरी। दुनिया भर में अपने पीतल के बर्तनों और हस्तशिल्प के लिए मशहूर मुरादाबाद आज एक और खास पहचान बना चुका है।
1: बिल्कुल, अब मुरादाबाद सिर्फ पीतल के लिए नहीं बल्कि अपनी मशहूर मूंग दाल के लिए पूरे देश में जाना जाता है।
0: सुबह की हलचल, बाजारों में लोगों की चहल पहल और दुकानों से उठती गर्मा गर्म मूंग दाल की खुशबू, आय हाय हाय,
1: ऐसा लगता है जैसे हर गली कह रही हो मुरादाबाद आए हो तो मूंग दाल चखे बिना मत जाइए।
0: यही कारण है कि आज देश के अलग अलग राज्यों से आने वाले लोग यहाँ की मूंग दाल का स्वाद लेने जरूर पहुँचते हैं।
1: और अब उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयासों से इस पारंपरिक स्वाद को राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी मिल रही है।
0: मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में स्थानीय खानपान और पारंपरिक व्यंजनों को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं
1: और इन्हीं प्रयासों का हिस्सा है एक जिला एक व्यंजन यानी ODOC योजना, जिसके तहत मुरादाबाद की मूंग दाल को विशेष पहचान दी जा रही है।
0: दोस्तों, आखिर क्या खास है मुरादाबाद की मूंग दाल में?
1: इसका राज छुपा है इसी की पारंपरिक विधि और बेहतरीन मसालों में।
0: सबसे पहले चुनी जाती है उच्च गुणवत्ता वाली धुली हुई मूंग दाल, फिर उसे साफ करके खास तरीके से भिगोया जाता है।
1: इसके बाद धीमी आंच पर दाल को इस तरह पकाया जाता है कि उसका हर दाना मुलायम रहे लेकिन टूटे नहीं।
0: पर शुरू होता है असली जादू।
1: देसी घी या शुद्ध तेल में जीरा, हींग, हरी मिर्च, अदरक और खास मसालों का तड़का लगाया जाता है।
0: जब यह तड़का दाल में मिलता है तो उसकी खुशबू दूर दूर तक फैल जाती है।
1: ऊपर से डाला जाता है हरा धनिया, नींबू का रस और कभी कभी हल्की सी देसी घी की धार,
0: बस यही बनाती है मुरादाबाद की मूंग दाल को सबसे अलग।
1: कहते हैं कि जिसने एक बार इसका स्वाद चख लिया वह दोबारा मुरादाबाद आए बिना रह नहीं पाता।
0: खास बात यह है कि यहाँ की मूंग दाल सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि पौष्टिक भी होती है।
1: इसमें प्रोटीन, फाइबर और कई जरूरी पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, इसीलिए यह स्वाद के साथ साथ सेहत का भी ख्याल रखती है।
0: मुरादाबाद की कई पुरानी दुकानें पिछले 50 से 70 वर्षों से इसी पारंपरिक स्वाद को बनाए हुए हैं।
1: पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है यह कला, आज भी उसी मेहनत और ईमानदारी से आगे बढ़ रही है।
0: सुबह के नाश्ते से लेकर शाम की हल्की भूख तक मूंग दाल हर समय लोगों की पहली पसंद बनी रहती है।
1: कई लोग इसे कुरकुरी नमकीन के रूप में पसंद करते हैं, तो कई लोग गर्मा गर्म मसालेदार दाल के रूप में।
0: यही विविधता इसे हर उम्र के लोगों का पसंदीदा व्यंजन बनाती है।
1: दोस्तों, किसी भी पारंपरिक व्यंजन को आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि सही पहचान भी जरूरी होती है।
0: उत्तर प्रदेश सरकार की ODOC योजना का उद्देश्य यही है कि हर जिले के प्रसिद्ध व्यंजन को नई पहचान मिले।
1: इसी के तहत स्थानीय उद्यमियों, महिला स्वयं सहायता समूहों और छोटे कारोबारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
0: आधुनिक पैकेजिंग, ब्रांडिंग, फूड सेफ्टी, मानकों और डिजिटल मार्केटिंग की जानकारी भी दी जा रही है।
1: अब मुरादाबाद की मशहूर मूंग दाल सिर्फ स्थानीय बाजारों तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि देश और विदेश के ग्राहकों तक पहुंचेगी।
0: इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा, छोटे व्यापारियों की आय बढ़ेगी और महिलाओं के लिए भी नए अवसर तैयार होंगे। सोशल मीडिया पर भी अब हैशटैग मुरादाबाद दाल तेजी से लोकप्रिय हो रही है।
1: लोग इसकी तस्वीरें, वीडियो और स्वाद का अनुभव साझा कर रहे हैं।
0: एक समय था जब मुरादाबाद को सिर्फ पीतल नगरी के नाम से जाना जाता था,
1: लेकिन आज यह शहर अपने पारंपरिक स्वाद, संस्कृति और स्थानीय व्यंजनों के कारण भी नई पहचान बना रहा है।
0: तो दोस्तों, अगली बार जब आप मुरादाबाद आएं,
1: वहाँ के शानदार पीतल उद्योग को जरूर देखिए,
0: शहर की ऐतिहासिक विरासत को जानिए
1: और सबसे जरूरी,
0: मुरादाबाद की मशहूर मूंग दाल का स्वाद जरूर चखिए,
1: क्योंकि यह सिर्फ एक व्यंजन नहीं
0: बल्कि मुरादाबाद की मेहनत, परंपरा और मेहमान नवाजी की पहचान है।
1: और जब स्थानीय स्वाद को विकास का साथ मिलता है,
0: तो एक जिले की पहचान पूरे देश की शान बन जाता है।
1: विकास का प्रदेश, उत्तर प्रदेश।
0: सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: कार्यवाही, नीट परीक्षा पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। युद्धपोत आईएनएस मालवन भारतीय नौसेना में शामिल, क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले दो दिनों के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। और चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अलवी फरहान को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार मॉनसून सत्र के पहले दिन से ही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस चर्चा के लिए नियमों का निर्धारण किया जाना चाहिए। श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा प्रश्न पत्र पर गहन चर्चा चाहती है। उन्होंने कहा कि बहस जितनी भी लंबी चले उतनी लंबी होनी चाहिए और यथाशीघ्र शुरू होनी चाहिए। श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार ने विपक्षी दलों को इस मुद्दे पर खुली चर्चा के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन उन्होंने इस तरह की बाधाएं खड़ी की जिससे प्रतीत होता है कि वे संवाद में शामिल नहीं होना चाहते।
1: देखिए, जो ऑपोजिशन पार्टी बोलना चाहते वो तो बोलना ही है चर्चा के दौरान, हम मना नहीं कर सकते, लेकिन चर्चा को रोकने के लिए आप अगर कंडीशन डालेंगे तो इसका मतलब आप चर्चा नहीं चाहते हैं। हमने जब खुले दिल से ऑफर किए सरकार की ओर से कि हम चर्चा चाहते हैं, तो उसको व्यवधान डालने के लिए कोई कंडीशन ऐसा डालेंगे ताकि चर्चा ही ना हो, ये तो ठीक बात नहीं है।
0: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास के पास विरोध प्रदर्शन करना विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार को दर्शाता है।
2: संवैधानिक पद पे रह के संविधान की गरिमा को तार तार किया, उनका ये आचरण बहुत ही खतरनाक मंशा से वो भारत में दूसरे देशों का नकल करके यहाँ उपद्रव कराना चाहते हैं।
0: भाजपा सांसद डॉक्टर सतीश पूनिया ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन करके कांग्रेस पार्टी पर अराजकता फैलाने का आरोप लगाया। इस बीच कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि विद्यार्थियों का संघर्ष वास्तविक है और वे बदलाव की मांग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आज कहा कि केंद्र सरकार विद्यार्थियों के साथ है और देश के युवाओं के भविष्य की रक्षा करना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने युवा नेतृत्व वाले विकास के मंत्र को विकसित भारत को मजबूत करने की नींव बनाया है।
3: आप सब जानते हैं कि नीट जैसा एग्जाम जिसमें 20 से 22 लाख कैंडिडेट्स अपियर होते हैं उसकी तैयारी में 6 महीने लगते हैं, लेकिन मात्र 37 डेज में नीट का री एग्जामिनेशन किया गया और रिजल्ट भी मात्र 25 दिन में आप सभी के सामने ला खड़ा कर दिया गया। जो री एग्जामिनेशन हुई उसमें टेक्नोलॉजी को लेवरेज करा गया ताकि कहीं पर भी अगर किसी भी प्रकार का लूप होल हो उसको कर्ब किया जाए, उसको प्लग इन किया जाए।
0: सुश्री स्वराज ने बताया कि सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पेपर लीक के 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया और अब वे सभी जेल में हैं। उन्होंने कहा कि आरोपियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा कल प्रधानमंत्री आवास के गेट के बाहर बिना अनुमति धरने पर बैठने की कड़ी निंदा की है। नई दिल्ली में भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास की गरिमा को जानते हुए भी श्री गांधी ने गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया। भाजपा सांसद ने सुरक्षा प्रोटोकॉल के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा सर्वोपरि है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले और विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए और राज्यसभा दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। दोपहर 12 बजे पहले सदन के बाद जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्ष ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन के सुचारू संचालन के लिए विपक्ष से सहयोग करने का आग्रह किया। इससे पहले जब लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू करने के लिए एकत्रित हुई तो अध्यक्ष ओम बिड़ला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नीट पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध का मुद्दा उठाया। श्री बिड़ला ने विपक्ष से सदन के संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा। इस कारण लोकसभा को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का मामला उठाया। अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि सरकार इस मामले पर चर्चा के लिए तैयार है और चर्चा के समय को लेकर सभी को एकमत होना चाहिए। हंगामा जारी रहने पर श्री बिड़ला ने सदन को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया। राज्यसभा में भी यही स्थिति देखने को मिली। दोपहर 12 बजे पहले सदन के बाद जब सदन दोबारा शुरू हुआ तो विपक्ष ने नीट मामले पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। उपसभापति हरिवंश ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्रश्नकाल संसदीय कार्यवाही का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और ये सदस्यों का अधिकार है।
4: आजादी के 50 साल बाद सदन ने यह संकल्प लिया था कि किसी भी हालत में क्वेश्चन आवर और जीरो आवर चलाएंगे। ये मेंबर्स के आवर है। आपके प्रश्नों को के उत्तर तैयार करने में कितना श्रम जाता और जनता का धन जाता है, आप इसकी कल्पना करिए। आपको प्रश्न पूछने का अवसर मिलता है, प्लीज अपनी सीट पर बैठिए और क्वेश्चन आवर चलने दीजिए।
0: बार बार अपील करने के बावजूद विपक्षी सदस्यों ने

0: AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय नौसेना ने आज कर्नाटक के कारवार INS कदंबा नौसेना बेस पर माही श्रेणी के दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्धपोत INS मालवन को बेड़े में शामिल कर लिया। INS मालवन 8 पनडुब्बी रोधी युद्धपोतों में से दूसरा युद्धपोत है। इसमें 80% से अधिक स्वदेशी उपकरण और तकनीक का उपयोग किया गया है। इस समारोह में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर एयर चीफ मार्शल ने आत्मनिर्भरता की दिशा में नौसेना के प्रयासों की सराहना की।
1: आत्मनिर्भर भारत जो हमने एक सपना देखा है, हम उसके बहुत करीब आई जा रहे हैं। बहुत जल्दी इंडियन नेवी ने ये सपना अपना लिया था, हम लोगों ने देर करी है बल्कि, बिकॉज वेरियस सेक्टर्स टेक डिफरेंट टाइम्स टू ग्रो एंड आई थिंक इन एज फार एज नेवल शिप बिल्डिंग इज कंसर्न, इंडिया हैज ऑलवेज हैड एन एज एंड वी हैव कैरीड आवर लेगेसी फॉरवर्ड एंड इन मेकिंग शिप्स। सो वेरी गुड प्रोग्रेस हैज बीन मेड इन आत्मनिर्भरता एज फार एज शिप बिल्डिंग इज कंसर्न।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि IASV त्रिवेणी पर सवार होकर पहली बार सभी सेनाओं की महिला सदस्य समुद्री अभियान समुद्र प्रदक्षिणा ने न केवल पृथ्वी का चक्कर लगाया बल्कि इस असाधारण उपलब्धि से करोड़ों भारतीयों को गौरवान्वित भी किया। उन्होंने IASV त्रिवेणी को आत्मनिर्भर भारत और भारत के नवाचार क्षमताओं और आत्मविश्वास का जीवंत उदाहरण बताया। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज फिलीपींस के मनीला में आयोजित क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। एक संयुक्त वक्तव्य में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई, साथ ही आसियान की एकता और केंद्रीय भूमिका के लिए अपने अटूट समर्थन की पुष्टि की।
2: In this era of volatility and disruption,
3: उथल पुथल के इस दौर में आपूर्ति श्रृंखला पर सबसे अधिक दबाव दिख रहा है। ऊर्जा, भोजन और स्वास्थ्य सुरक्षा को अब हल्के में नहीं लिया जा सकता। इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करना बहुत जरूरी है। वर्ष 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष के तौर पर मनाया जाएगा। साथ ही भारत और आसियान दोनों ही अपने भविष्य को लेकर उम्मीद से भरे हैं, इसलिए चुनौतियों का सामना करते हुए भी हमें मौकों पर पूरी तरह ध्यान देना चाहिए।
2: इवन वाइल एड्रेसिंग चैलेंजेस,
0: बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। डॉ. जयशंकर ने कहा कि बैठक में भारतीय अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा है कि ईरान को हुर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण की अनुमति देना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और नौवहन की स्वतंत्रता के लिए एक बेहद खतरनाक कदम होगा। डॉ. जयशंकर ने आज फिलीपींस के मनीला में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठकों के दौरान फिलीपींस, रूस और सिंगापुर के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तरी मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में महत्वपूर्ण विस्तार का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने गुजरात, महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में कल तक मूसलाधार वर्षा और कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और विदर्भ में अगले 2-3 दिनों तक तेज बारिश होगी। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर है। 16 जिलों में पानी भरा हुआ है। राज्य में बाढ़ में 21 और लोगों की मौत हो गई है, जिससे मृतकों की कुल संख्या 31 हो गई है।
4: आधिकारिक रिपोर्ट्स के अनुसार राज्य में 872 गांव अभी भी जलमग्न हैं और 5,64,000 से भी अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। 24,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि पानी में डूबी हुई है। कामरूप और कामरूप महानगर जिलों में भी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, जहां 4,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। राज्य सरकार ने 71 राहत शिविर और 202 राहत

0: वितरण केंद्र स्थापित किए हैं। इन शिविरों में 12,000 से अधिक लोगों को आश्रय दिया गया है, जबकि 1,00,000 से अधिक प्रभावित लोगों को राहत सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। NDRF, SDRF, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज तथा स्थानीय प्रशासन की टीमें बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और राहत कार्य में लगातार जुटी हुई है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: जम्मू कश्मीर में कटरा और त्रिकुटा पहाड़ियों में खराब मौसम के कारण आज लगातार चौथे दिन भी श्री माता वैष्णो देवी यात्रा स्थगित रही। चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के आयुष शेट्टी ने आज पुरुष सिंगल्स में इंडोनेशिया के अलवी फरहान को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन भी आज अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज लगभग 1% की गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 753 अंक गिरकर 76,717 पर और निफ्टी 202 अंक की गिरावट के साथ 23,986 पर पहुंच गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में किसी भी नियम के तहत चर्चा के लिए तैयार। सरकार ने कहा, युवाओं के भविष्य की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। युद्धपोत INS मालवन भारतीय नौसेना में शामिल। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्रों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिनों के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आइए आप भी भागीदार बनिए, वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 से जुड़िए।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
2: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
3: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
2: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।

0: दिस साइड आर्जेरीना एफ एम मुरादाबाद 89.6 और हम फिर से लेकर आ गए आप सभी के लिए महिला मंच। आपको ही पता है कि रीना अकेली नहीं आती है मेरे साथ।
1: आई एम गुड, मैं बहुत ही अच्छी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप भी बहुत अच्छी होंगी। और बहुत ही खूबसूरत है हमारे शो का नाम महिला मंच, और इस महिला मंच में हम फिर से हाजिर हो गए दोनों। हाँ जी रीना जी, और खुशी तो आपके साथ रहती ही है। तो दोस्तों, आज हमारा विषय जो है, आज का जो कार्यक्रम है, वो बहुत ही खास है, जहाँ हम बात करते हैं समाज और जिंदगी से जुड़े उन मुद्दों की जो घर से जुड़े होते हैं। आज का विषय हमारा है लड़कियों की जिंदगी बचपन से शादी तक।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने। अक्सर देखा जाता है कि जैसे ही कोई लड़की 25 साल की होती है, घर परिवार और समाज की बातें शुरू हो जाती है। अब तो शादी कर दो, लड़की बड़ी हो गई है।
1: हाँ यार, ऐसा मैंने भी सुना है अक्सर आसपास में। धीरे धीरे ये बातें तानों में बदल जाती, घर वाले भी परेशान हो जाते हैं और लड़की भी सोच में पड़ जाती, क्या सच में उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला सिर्फ शादी ही है।
0: ये तो बिल्कुल सही कहा तुमने। आज हम समझेंगे कि एक लड़की की जिंदगी में बचपन, पढ़ाई, सपने, शादी

0: शादी के बाद की जिम्मेदारियां किस तरह से बदल जाती हैं।
1: बचपन और सपनों की दुनिया। हर लड़की का बचपन भी बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे किसी भी बच्चे का। वो भी सपने देखती है, डॉक्टर बनने का, टीचर बनने का, कुछ बड़ा करने का।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने, लेकिन कई बार समाज की सोच उसके सपनों को छोटा कर देती है। लड़कियों को अक्सर कहा जाता है, ज्यादा मत पढ़ो, आखिर शादी ही तो करनी है, घर का काम सीखो, यही काम आएगा।
1: लेकिन सच में ये तो कि हर लड़की को अपने सपने पूरे करने का हक है। अगर उसे सही मौका मिले तो वह अपने परिवार और समाज दोनों का नाम रोशन कर सकती है।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने। और अब हम बात करेंगे 25 साल और शादी का दबाव। महिला मंच में ही हम बात करते रहेंगे, बस श्रोताओं आप हमारे साथ बने रहिए आरजे रीना और आरजे खुशी के साथ। तो जैसे ही लड़की की एज 24 से 25 साल के आसपास होती है, घर घर में एक ही बात शुरू हो जाती है, अब इसके शादी कर दो। रिश्तेदार, पड़ोसी, समाज, सबकी नजरें लड़की की ओर और उनके परिवार पर होती हैं।
1: हाँ रीना, ये बात तो सही कह रही हो आप। कई बार तो ताने भी सुनने को मिलते हैं, अभी तक तो शादी हुई नहीं, लड़की घर में बैठी है। इन बातों से सिर्फ लड़की ही नहीं, उसके माता पिता भी बहुत परेशान हो जाते हैं।
0: लेकिन हमें यह समझना होगा कि शादी कोई मजबूरी नहीं बल्कि जीवन का एक बड़ा फैसला है, और यह फैसला लड़की की खुशी और उसकी इच्छा से होनी चाहिए। क्यों, सही कहा ना खुशी मैंने?
1: हाँ जी, बिल्कुल सही कहा है आपने, क्योंकि जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला है शादी के बाद की जिंदगी। शादी के बाद लड़की की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आता है। एक घर छोड़कर उसे दूसरे घर में नई जिंदगी शुरू करनी पड़ती है, नए लोग, नई जिम्मेदारियां, नया माहौल। कई बार उसे हर छोटे बड़े काम के लिए इजाजत लेनी पड़ती है, कहाँ जाना है, क्या करना है, सब कुछ पूछकर करना पड़ता है।
0: ये तो तुमने 100% सही बात कही है। ऐसे में लड़की को कई बार लगता है कि उसकी आजादी कम हो गई है, लेकिन अगर परिवार समझदार हो और लड़की को सम्मान दे तो शादी के बाद की जिंदगी भी खुशहाल और सुंदर हो जाती है। तो श्रोताओ, आप आरजे रीना और आरजे खुशी के साथ यूं ही आप हमारे साथ कनेक्ट रहिए आपके शहर का कम्युनिटी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। तो अब हम आगे बात करने वाले हैं लड़की की पहचान और आत्मनिर्भरता के बारे में। आज के समय में सबसे जरूरी है कि लड़कियां आत्मनिर्भर बने। अगर लड़की पढ़ी लिखी है, अपने पैरों पर खड़ी है, तो वह हर परिस्थिति में सामना कर सकती हैं।
1: एग्जैक्टली राइट रीना, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। शादी हो या ना हो, लड़की की पहचान सिर्फ किसी की बेटी, बहू या पत्नी होना नहीं है, उसकी अपनी भी एक पहचान है, उसके अपने सपने हैं, और समाज को ये समझना होगा कि लड़कियां बोझ नहीं बल्कि ताकत होती हैं।

0: अब हम जानने वाले हैं समाज के लिए संदेश। समाज को अपनी सोच बदलने की जरूरत है। लड़कियों को ताने देने के बजाय उनका हौसला बढ़ाना चाहिए, उन्हें पढ़ने, आगे बढ़ने और अपने फैसले खुद लेने का मौका देना चाहिए। अगर हम लड़कियों को सम्मान और बराबरी देंगे तो समाज भी मजबूत बनेगा।
1: तो दोस्तों, आज हमने साझा की एक लड़की की जिंदगी, बचपन से लेकर शादी और उसके बाद तक की कितने बदलावों से गुजरती हैं। जरूरत है कि हम लड़कियों को समझने, उनका साथ दें और उन्हें अपने सपने पूरे करने का मौका दें, क्योंकि जब एक लड़की आगे बढ़ती है तो उसके साथ पूरा परिवार और समाज आगे बढ़ता है। इसी संदेश के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं
0: और कल मिलेंगे हम सेम टाइम एंड सेम जगह।
1: तब तक के लिए साथियों, सुनते रहिए अपने शहर का कम्युनिटी रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। नमस्कार
0: नमस्कार श्रोताओं।

0: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए, क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
1: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
0: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
1: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
0: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
2: मुरादाबाद
0: से संपर्क कीजिए।
1: नियम और शर्तें लागू।
3: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। आप सभी का स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ और श्रोताओं, आज बहुत ही खूबसूरत सा दिन है वेडनेसडे का एंड खुशी हाजिर है आपका फेवरेट शो लेकर। हेलो फरमाइश, समय आपको बता देते हैं साथियों, वक्त हुआ है 3:11 और आप भी इस कार्यक्रम में कॉल लगा सकते हैं। उसके लिए मैं आपको अपना मोबाइल नंबर बता देती हूँ। हमारा ऑफिशियल नंबर है 9837896896। इस पर आप कॉल लगाइए और अपने मन पसंद के गाने सुनते जाइए। तब तक मैं सुनवाती हूँ आपको एक बहुत ही प्यारा सा ट्रैक अलका याग्निक जी की आवाज और साथ में उदित नारायण जी दे रहे हैं साथ। सुनते हैं एक बेहतरीन ट्रैक

0: बिल्कुल दोस्तों, हमें तो आपसे बातें करना बहुत ही अच्छा लगता है, तभी तो हम आते हैं एवरी मॉर्निंग 10 से 12 एंड दोपहर में 3 से 5। और आप सभी का अगेन खुशी वेलकम करती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने प्यारा से गाना सुना फ्रॉम द मूवी तेरे नाम। म्यूजिक डायरेक्टर थे हिमेश रेशमिया जी और इस गीत को लिखा था समीर जी ने। आवाज थी उदित नारायण साथ में अलका याग्निक जी की। और अभी बात करते हैं अपने कॉलर से, कौन हमारे साथ में कनेक्ट हुए हैं। हेलो फरमाइश। हाँ जी सर, नमस्कार, क्या नाम है आपका? जी नाम बताइएगा अपना। जी बताइएगा, कैसे हैं आप सब?
1: बहुत बढ़िया।
0: जी बताइएगा क्या
1: गाना सुनना?
0: हाँ हाँ बताइएगा, कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं आज?
1: एक लड़की थी उसे मैं प्यार करता था।
0: अच्छा ठीक है सर, सुनवाते हैं गीत आपको। तो चलिए श्रोताओं सुनते हैं सर के पसंद का ये प्यारा सा गाना फ्रॉम द मूवी। कौन सी है आप बता सकते हैं? अरे वाह क्या बात है, आपको पता रहता है। चलिए ये प्यारा सा गाना सुनते हैं, उसके बाद आपसे भी हम बातें करेंगे। बस आप कहीं मत जाइए, दिल से रेडियो को सुनते जाइए। और हाँ प्यारे प्यारे गाने गुनगुनाते रहिएगा। और हाँ कॉल करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, कभी पता चला कि आप कॉल करना ही भूल गए, इस गाने में खो गए। क्योंकि कुछ गाने ऐसे होते हैं ना जिसमें हम होते तो अपने मतलब घर पर ही हैं लेकिन दिमाग हमारा कहीं और चला जाता है। हाँ तो दिलवाली फिल्म का ये प्यारा सा ट्रैक सुनते हैं, उसके बाद आपके साथ फिर से कनेक्ट होते हैं।

0: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पी या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेवर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।

हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप सभी का वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। वक्त हुआ है 3:28। और दोस्तों, आप भी सोच रहे हैं ना कि खुशी जी को हम भी कॉल लगाएं, लेकिन क्या करें, नंबर बहुत व्यस्त आ रहा है। एंड मैं आपसे कहना चाहूँगी एवरीवन कि आप ना ट्राई करते रहिए, कुछ भी हो सकता है, शायद नेक्स्ट कॉलर आप ही हमारे शो की बन जाएं। तो आप ना ट्राई करने से हार मत मानिए, कंटिन्यू नंबर लगाइएगा, मुझे यकीन है आपका कॉल ज़रूर लगेगा। बस आप अपना प्रयास करते रहिए। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, जानेंगे उनकी भी फरमाइश यहाँ पर। हेलो फरमाइश। हाँ जी नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? जी जी बताइए।

0: रहेगा। कैसे हैं आप सब?
1: मैम अच्छे हैं।
0: हाँ जी, सब बहुत ही अच्छे हैं सर। आपकी ब्लेसिंग्स हैं, दुआएं हैं। आप बताइएगा, आज आपने कॉल किया है, क्या फरमाइश है आपकी?
1: मैम ये बड़े लंबे लंबे ऐसे बजा रही हो जैसे कि कपड़ा में जोड़ होते हैं ना, ऐसे करके बजा रही हो गीतों को। बढ़िया,
0: सॉरी क्या कह रहे हैं आप?
1: ये कह रहा हूँ कि पूरे मन के लंबे बजा रहे हो, थोड़ा कम करके बजाया करो, कॉल ज्यादा ले लिया करो।
0: सर एक्चुअली ना, फिर बहुत सारे श्रोताओं की रिक्वेस्ट होती है कि मैम हमें पूरा गाना सुनवाइए, तो इसमें हमारी गलती नहीं है ना, हमें सबका ख्याल रखना होता है।
1: जैसे कोई चीज ना होता तो वो तो चलो सही है, ये दिलवाले राजा हिंदुस्तानी पूरी
0: भारत
1: के अंदर ये
0: जी सर, अब क्या करें, श्रोताओं की पसंद ही इतनी प्यारी होती है और सब इतनी मेहनत से कॉल लगाते हैं, तो हम उनकी चीजों को छेड़छाड़ नहीं करना चाहते हैं। तो बाकी आप बताइएगा, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: मैं समसाम बेगम का गीत का बाहर फीलिंग से सैया दिल में आना रे, आके फिर में जाना रे, समतमातम सुनने वाले डॉक्टर गफर हुसैन, मोहम्मद तानी सिद्दी के राजा हुसैन, गफ्फार हाजी जी, मोहम्मद इशरत, मुकेश और साथ में मैं मारती
0: हूँ। ओके सर, शुक्रिया आपने हमें कॉल किया, सुनवाते हैं गाना आपकी पसंद का। मोस्ट वेलकम सर। तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं खूबसूरत सा गाना, उसके बाद आपसे भी बातचीत करेंगे, आप भी हमें कॉल लगाइएगा।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है फिर मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ। और अभी आपने प्यारा सा गाना सुना, सैया दिल में आना रे आके फिर ना जाना रे, बहुत ही प्यारा सा गाना जो आया था 1951 में शमशाद बेगम जी की खूबसूरत सी आवाज़ में। और अभी बात करते हैं हम अपने अगले कॉलर से, जानते हैं उनकी भी फरमाइश। हेलो फरमाइश। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? हेलो
1: जी, मैं आज का दिन का नजारा भी है खुशी जी, बड़ा ही प्यारा। तो आपकी शान है कबूल हो मोहब्बत भरा नमस्कार हमारा।
0: जी आपको भी नमस्कार सर, अपना नाम बताइएगा।
1: मैं जिला रामपुर ग्राम के टांडे से वसीम अकरम बात कर रहा हूँ मैम आपसे।
0: जी बताइएगा, कैसे हैं वसीम जी आप?
1: एकदम अच्छे हैं। और जब जब आपसे हेलो फरमाइश में बातचीत हो जाती है तो हाल चाल और भी अच्छे हो जाते हैं।
0: जी शुक्रिया आपका सर। और बताइएगा वहाँ का मौसम कैसा है?
1: देखिए मैम, गुरुग्राम के अंदर रात से बारिश हो रही है हल्की हल्की, काफी सुहाना मौसम हो रहा है और मौसम का आनंद ले रहे हैं, साथ में चाय पी रहे हैं और आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं, तो काफी अच्छा लग रहा है मैम।
0: शुक्रिया आपका सर। वहाँ पर बारिश हो रही है, चाय का लुफ्त उठा रहे हैं आप और गाने भी सुन रहे हैं, बताइएगा आज क्या फरमाइश है आपकी?
1: देखिए मैम, जब रामपुर से कॉल शामिल हो रही है तो मूवी का नाम है कब तक चुप रहोगी। और तुम मेरे सॉन्ग है मितवा भूल न जाना, कुछ टाइप के बोले।
0: अच्छा,
1: और मेरे साथ में मेरे दोस्त हैं।
0: जी बताइएगा।
1: डिस्ट्रिक्ट रामपुर ग्राम खेतांड से मोहम्मद कामिल। और जितने भी सुनने वाले हैं रेडियो साथी सुन रहे हैं, सभी के लिए सॉन्ग सुनवाना चाहते हैं।
0: जी सर, हम सुनवाते हैं प्यारा सा गीत आपको, आपने कॉल किया, शुक्रिया आपका।
1: थैंक यू मैम,
0: मोस्ट वेलकम सर। तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं वसीम अकरम जी की रिक्वेस्ट पर ये प्यारा सा ट्रैक मितवा भूल ना जाना रे, भूल ना जाना। एंड मैं आपसे बोलती हूँ कि आप कॉल लगाना मत भूल जाना, उसके लिए मैं याद दिला देती हूँ आपको, फिर से रिमाइंड करा देती हूँ एवरीवन, हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और हमें कॉल भी लगाते रहिए। ये प्यारा सा गाना सुनते हैं सब मिलकर।

0: 20 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे IIM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद
1: नैक द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक
0: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में
1: चाहे फार्मेसी हो मैनेजमेंट कंप्यूटर इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी लॉ एग्रीकल्चर साइंस एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई
0: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी
1: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट
2: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077
3: यार सोना कितना महंगा हो गया है काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता
4: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए
3: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना पुराना सोना लाओ नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस उत्सव ज्वेलर्स आभूषण एक खुशियां अनेक आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद कॉल करें 7055070552
5: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी हाई शुगर पील या हार्ट प्रॉब्लम किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज बांझपन का आधुनिक इलाज पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा अत्याधुनिक लेबर रूम OT SICU MICU हमारी पहचान है एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा

0: हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप सभी का आरजे खुशी स्वागत करती है हेलो फरमाइश कार्यक्रम में। और साथियों, अभी समय हुआ है 3:47 और अभी हमारे साथ एक हमारे लिसनर जुड़े हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप भी अगर कोई भी गीत सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का, तो मुझे तुरंत कॉल कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896-98-378-96-96। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, मैं मदन।
0: हाँ जी, आपको भी याद है आप सो, क्या नाम है आपका?
1: से बात कर रहा हूँ आपसे।
0: जी बताएगा, कैसे हैं आप सो?
1: हम तो सब बढ़िया हैं। आपके
0: जी, हमारे एफ एम मुरादाबाद में ये सभी प्रेजेंटर्स बहुत अच्छे हैं। आप बताइएगा, इस वक्त क्या कर रहे थे सर आप?
1: हम जो है प्रोग्राम सुन रहे हैं अपने फैमिली के साथ घर पर।
0: अरे वाह,
1: आप प्रोग्राम सुन रहे हैं, कह रहे हैं भी बहुत अच्छा प्रोग्राम पेश करती हैं। हेलो फरमाइए।
0: थैंक यू सो मच सर,
1: रोजाना आपका।
0: जी शुक्रिया। और अच्छा लगता है जब परिवार के साथ बैठकर रेडियो में कार्यक्रम आते हैं, सुंदर सुंदर, अच्छा लगता है ना, सुनते हैं तो।
1: जी,
0: तो आज
1: रेडियो 3 बजे खोल देते हैं।
0: अच्छा, 3 बजे ऑन कर देते हैं आप रेडियो? अच्छा अच्छा जी, बताएगा आप क्या सुनना चाहेंगे आज?
1: नाम
0: है

0: बाया के डोल है, पहले आंख लग गई फिर दिल मिल गई, इस तरह से डोले हैं डाने के।
1: जी जी ओके, तो ठीक है सर, ये सुनवाते हैं आपको गाना।
0: हमारे साथ में एक लोग हैं सेम भी कहीं डर के।
1: बताइएगा।
0: दाहिनी ओर है
1: जी,
0: है शुमाल है और वसीम है, दूसरा जहाँ है।
1: ओके,
0: और हमारे मिलने वाले डॉक्टर सैयद तारिक अली ऐसे दवाखाना से एहसास हुसैन अंसारी है,
1: यही सब लोगों के साथ। ओके ठीक है, आपके सभी दोस्तों के साथ सुनवाते हैं ये खूबसूरत सा गीत आपको। आपने हमें कॉल किया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए मैं दोस्तों सुनते हैं प्यारा सा ट्रैक, उसके बाद करेंगे आपसे भी बातचीत। बस आप कॉल लगाते रहिएगा।

0: तो दोस्तों, ये खूबसूरत सा गीत अभी आपने सुना रही ज़्यादा से, जो 1991 में आई थी। बहुत ही खूबसूरत सी ये फिल्म और गाना भी बहुत ही प्यारा था। तो दोस्तों, अभी बात करते हैं हम अगले कॉलर से और जानेंगे उनकी फरमाइश यहाँ पर। हेलो फरमाइश।
1: हेलो मैम, गुड आफ्टरनून।
0: हाँ जी, वेरी गुड आफ्टरनून। क्या नाम है आपका?
1: मैम, मेरा नाम पूजा है।
0: पूजा जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: मैम, नैनीताल से।
0: नैनीताल से पूजा जी हमारे साथ कनेक्ट हुई है। बताइएगा कैसे हैं आप और मौसम कैसा है वहाँ का?
1: मैम, बारिश हो रही है यहाँ पे 2 बजे से।
0: अच्छा, 2 बजे से बारिश हो गई है।
1: हाँ मैम, यहाँ पे कैसे है मौसम मुरादाबाद में?
0: मुरादाबाद में तो बादल हैं अभी, कभी धूप हो जाती है तो कभी बादल भी आ जाते हैं, लेकिन बारिश नहीं हुई है अभी आज।
1: यहाँ पे तो मैम हर रोज बारिश है।
0: अच्छा, वहाँ का मौसम बदलता रहता है ना, धूप भी निकल जाती है तो कभी बारिश भी हो जाती है। तो बताइएगा, और नैनीताल के बारे में, इतनी खूबसूरत वादियों में आप रहती हो।
1: जी मैम, कभी आइएगा
0: नैनीताल। हाँ बिल्कुल आएंगे। और आज आपने लॉन्ग टाइम के बाद कॉल किया है, कैसा लग रहा है आपको पूजा?
1: मैम, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है।
0: ओके।
1: मैंने सोचा नहीं था मेरा नंबर लगेगा।
0: हाँ, कभी कभी ऐसा होता है, जब हम नहीं सोचते तब हमारा कॉल लग जाता है।
1: हाँ, एक बार में ही मैंने जैसे ट्राई किया वैसे ही मेरा नंबर लग गया।
0: आप बहुत लकी हैं पूजा, आपने फर्स्ट टाइम ट्राई किया और आपका कॉल भी लग गया, देखिए।
1: हाँ
0: जी।
1: और आज ये लोग सब ठीक है?
0: हाँ जी, सभी प्रेजेंटर्स बहुत अच्छे हैं। आप बताइएगा क्या सुनेंगे आज आप?
1: मैम, मुझे गाना सुनना है आँखों पे मोहब्बत लिख दे।
0: ओ हो हो, क्या बात है जी, हम तो दिल पर भी लिख देते हैं।
1: मैम, हाँ, अभी के लिए गाना सुनना है मुझे, क्योंकि मैं बहुत टाइम के बाद आज जुड़ी हूँ ना आपसे।
0: जी जी जी, हमें भी बहुत अच्छा लगा।
1: वैसे मैं सुन तो नहीं पाऊंगी, एफएम तो मेरे फोन में है नहीं।
0: ओके, आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना।
1: जी मैम।
0: हाँ, आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले हुए ना, प्ले स्टोर पर जाकर आप एफएम मुरादाबाद डाउनलोड करना, फिर आप इजीली सुन पाएंगे हमें, ठीक है?
1: ओके मैम।
0: या तो ये प्यारा से गाना हम प्ले करते हैं। थैंक यू सो मच पूजा कॉल करने के लिए।
1: थैंक यू मैम,
0: मोस्ट वेलकम, बाय। अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा। जी, तो चलिए विवान सुनते हैं पूजा की पसंद पर ये प्यारा से गाना आंखों पे मोहब्बत लिख दे। बहुत ही खूबसूरत ट्रैक। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं ना अपने पसंद का, तो बिना किसी देरी के कॉल लगा दीजिएगा, मैं इंतज़ार कर रही हूँ।

0: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: स्किन एलर्जी, मस्त से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2 निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद, 7983153386।
2: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए, क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
3: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
2: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
3: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
4: मुरादाबाद
2: से संपर्क कीजिए।
3: नियम और शर्तें लागू।

0: हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ। और दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत सा दिन है आज बुधवार का। और ये प्यारा सा गाना भी आपने सुना सोनू निगम साथ में श्रेया घोषाल जी की बड़ी प्यारी सी आवाज। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, जानते हैं उनकी भी फरमाइश। हेलो फरमाइश। हाँ जी, क्या नाम है आपका? कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी बताइएगा, अभी कौन सी क्लास में स्टडी करते हो आप? अभी पढ़ाई करते हैं आप? कौन सी क्लास में पढ़ाई करते हो? सिक्स में स्टडी कर रहे हो। ओके, तो बताइएगा कैसा लगता है स्कूल जाना रेगुलर? अच्छा लगता है? ओके, और घर पर आके रेडियो सुनते हैं आप? अच्छा, बताओ आज कौन सा गाना सुनोगे
1: आप?
0: ओए होए, गाने का शौक भी है आपको?
1: क्या?
0: आपको गाना गाने का भी शौक है, गुनगुनाने का?
1: गाना सुनने का शौक है, गाने का शौक नहीं है।
0: अच्छा,
1: जाता है।
0: ओके, अच्छा गुनगुना लेते हो आप, तो चलो सुनवाते हैं प्यारा से गाना। थैंक यू कॉल करने के लिए।
1: Welcome.
0: तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं प्यारा सा ट्रैक। एंड दिलजीत दोसांझ साथ में सुखवीर और धवनी भानुशाली की बड़ी खूबसूरत सी आवाज में प्यारा से गाना फ्रॉम द मूवी गुड न्यूज से ये गाना सुनते हैं। उसके बाद आपके साथ फिर से हम भी कनेक्ट होने वाले हैं, तो जल्दी से कॉल लगाइएगा। नंबर मैं आपको बता देती हूँ, 9837896896। खुशी है आपके साथ, मुस्कुराइएगा।

0: तो दोस्तों इस खूबसूरत गाने की बात खुशी फिर से आ गई है आप सभी के लिए, ढेर सारी खुशियां लेकर और आप सभी की फेवरेट गाने यहाँ पर प्ले करने के लिए। तो दोस्तों हमें आप बिना किसी देरी की कॉल लगाइए, इतना आलस मत कीजिए, मैं बार बार कहती हूँ, हो थक गए हैं आप, चलिए कोई बात नहीं है, आराम से बैठिए, ग्लास पानी पीजिए और अपने प्यारे से चेहरे पर ना थोड़ी सी स्माइल भी रखिएगा। तो चलिए अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से और जानते हैं उनकी भी फरमाइश यहाँ पर। हेलो फरमाइश।
1: हेलो,
0: हाँ जी सर, क्या नाम है आपका?
1: जी मेरा नाम मोहम्मद अकरम।
0: जी अकरम जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: मैं करूला मुरादाबाद
0: से बात कर रहे हैं जी। बताइएगा क्या सुनेंगे आज आप? अच्छा, टाइटल ट्रैक सुनने हैं आपको। और बताइएगा सब कैसे हैं परिवार में आपके यहाँ पर?
1: मैडम सब बढ़िया है, आप बताइए।
0: हाँ जी सब बहुत अच्छे हैं, आपकी दुआएं हैं सर। तो ये गाना आप किनके साथ सुनना चाहते हैं? कोई आपके फैमिली मेंबर्स हैं, फ्रेंड्स?
1: मेरे दोस्त हैं सरताज खान
0: जी।
1: मेरे दोस्त हैं सरताज खान मेरे साथ।
0: ओके, तो आपके दोस्तों के साथ सुनवाते हैं ये गाना आपको। शुक्रिया आपने हमें कॉल किया सर। तो चलिए दोस्तों सुनते हैं सर की पसंद का ये गाना, टाइटल ट्रैक दुल्हन हम ले जाएंगे। आप हमें कॉल लगाइएगा, नंबर मैं आपको अगेन बताती हूँ, 9837896896। यह है आपके अपने शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6। आप एवरी डे शो को सुन सकते हैं, एवरी वन, मंडे टू सैटरडे, संडे ऑफ होता है, लेकिन मेरी छुट्टी नहीं होती उस दिन, तो आप टेंशन ना लें। लेकिन हाँ, ये फोन इन कार्यक्रम नहीं आता है, उसके अलावा नेक्स्ट बहुत सारे शोज होते हैं जो आते हैं। अभी फिलहाल इस गाने का आनंद लीजिएगा, मैं लौट कर आती हूँ, तब तक

हेलो हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून नहीं बोलेंगे हम, गुड इवनिंग ही बोलेंगे। पता है दोस्तों, वक्त हो गया है 4:21। हाँ जी, 4:21 हो चुके हैं राइट नाउ। और अभी आपने प्यारा सा ट्रैक सुना, कह दो कि तुम मुझसे दोस्ती करोगे। भैया हम तो आपसे दोस्ती कर चुके हैं, लेकिन आप ये कि हमें फ़ोन नहीं कर रहे हैं। हाँ तो जल्दी से फ़ोन कीजिए, अपनी दोस्ती निभाइए। हम तो अपने हिस्से की दोस्ती निभा रहे हैं आपसे। और हमारे पास अभी परी का कॉल आया था, और परी ने बहुत ही प्यारे सी गाने की रिक्वेस्ट भेजी है, एंड फ्रॉम द मूवी हम साथ साथ से। तो चलिए एवरीवन, परी की पसंद का गाना सुनते हैं, परी को थोड़ी सी खुशियां हम देते हैं, उसके बाद आपसे भी बातचीत करेंगे। तो तब तक आप मुझे कॉल लगाना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। मोबाइल नंबर हमारा सेम रहेगा, 9837896896। अब इस नंबर को आप याद कर लीजिएगा।

0: दोस्तों, सुना आपने ये खूबसूरत सा गाना अभी फ्रॉम द मूवी हम साथ साथ, और खुशी भी है आपके साथ, नो डाउट। एंड ये खूबसूरत सा गाना अभी आपने सुना, बड़ी खूबसूरत सी आवाज़, मैं आपको बता देती हूँ, अनुराधा पौडवाल जी की। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, जानते हैं उनकी भी फरमाइश यहाँ पर। हेलो फरमाइश।
1: हाँ जी।
0: हाँ जी सर, नमस्कार।
1: नमस्कार
0: जी, बताइएगा कैसे हैं आप?
1: बढ़िया सर, बढ़िया है।
0: ओके okay. हाँ जी, मैं भी ठीक हूँ। क्या नाम है आपका?
1: राजेंद्र यादव।
0: राजेंद्र यादव जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: हम ठाकुर द्वारा से बात कर रहे हैं।
0: ठाकुर द्वारा से बात कर रहे हैं जी, बताइएगा आज आपने कॉल किया है सर, क्या फरमाइश है आपकी?
1: फरमाइश है सपना चौधरी का गाना सुनवा दीजिए।
0: ठीक है, आपको सपना चौधरी जी की ट्रैक पसंद है
1: जी?
0: अच्छा, डांस वांस भी करते हैं आप?
1: नहीं, गाने सुनते।
0: आपकी नहीं में ही हाँ है, हम समझ गए। ओके, चलिए सुनवाते हैं आपको प्यारा से गाना सर। कॉल करने के लिए धन्यवाद आपका।
1: थैंक यू,
0: मोस्ट वेलकम। तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं राजेंद्र जी की पसंद पर ये प्यारा सा ट्रैक सपना जी का, और बहुत ट्रेंडिंग भी रहा है, एंड हमें भी बहुत पसंद है, आपको भी पसंद आएगा ये तो हमें उम्मीद है। तो चलो सुनते हैं सब मिलकर ये प्यारा सा गाना, लौट कर आने वाले हैं उसके बाद। तब तक आप भी प्रयास कीजिए, आपका भी कॉल लग जाए। देखिए, लक आजमाने में ना थोड़ी भी देरी नहीं करनी चाहिए, इसलिए मैं कहती हूँ कि कोशिश भी करो, लक भी आजमाओ, दोनों चीज़ें साथ दे जाती हैं कभी कभी।

0: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
1: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे IFTM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद।
2: नैक द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक।
1: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में।
2: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई।
1: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी।
2: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
3: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।
4: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
5: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे। हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना?
6: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
5: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
7: कोई मिल गया,
1: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: हेलो हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 और एवरीवन टाइम हुआ है अभी 4:34। मैं हूँ आपके साथ आपके दोस्त आरजे खुशी और अभी आपने प्यारा सा ट्रैक सुना, हरियाणवी गाना। एंड हरियाणवी ट्रैक बहुत ही प्यारे होते हैं दोस्तों, वो इंसान ना थिरकना चाहे ना वो भी थिरक जाता है। हरियाणवी गाने और पंजाबी गाने दोनों ऐसे होते हैं कि नाचने पर इंसान को मजबूर कर ही देते हैं। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, जानेंगे उनकी फई फरमाइश, वो कौन से गाना सुनेंगे आज। हेलो फरमाइश।
1: हेलो नमस्कार।
0: हाँ जी, आपको भी नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? जी बताइएगा, क्या करते हैं सर आप?
1: सर हम तो खेती किसानी करते हैं। मैं
0: अच्छा खेती करते हैं, तो खेती में क्या लगाया है इस वक्त आपके यहाँ पर?
1: खेती में इस समय धान की रोपाई की है।
0: अच्छा धान की रोपाई हो गई है सर
1: जी।
0: बताइएगा आज क्या सुनेंगे आप?
1: ये मैं नागिन फिल्म का गाना है, मैं गाने के बोल बता दूँ आपको।
0: जी जी बिल्कुल बताइएगा।
1: वही परदेशी मेरा दिल लगाया ले गया, मीठी मीठी अफीम कम दे गया।
0: अच्छा एक परदेसी मेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। हाँ
1: जी मैम, किसी का नाम लेना चाहें?
0: बिल्कुल बताइएगा।
1: ये हमारे करनपुर से नूर हैं।
0: हाँ हाँ।
1: और गोंदपुर खुद से हैं हमारे राजा हुसैन
0: जी।
1: ये भूतपुर आखा से मुकेश यादव।
0: ओके ठीक है सर, आपके दोस्तों के साथ सुनवाते हैं ये प्यारा सा गाना। तो एवरीवन सुनते हैं ये ब्यूटीफुल ट्रैक, उसके बाद करेंगे आपसे भी बातचीत। तब तक के लिए आप कहीं मत जाइए, मुस्कुराइए और रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा लीजिए क्योंकि गाना बहुत प्यारा है।

0: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
1: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
3: जा सिमरन, जा जी रहे अपनी जिंदगी।
0: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है, क्योंकि वो सुनती है FM मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो FM मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: दोस्तों अभी आपने प्यारा सा ट्रैक सुना फाल्गुनी पाठक जी की बड़ी प्यारी सी आवाज सावन में मोरनी बनकर छम छम नाचो। और सावन आने वाला है बहुत जल्द, बेसब्री से सभी को इंतजार है एंड वन वीक रह गया है। और आप भी मुझे इस कार्यक्रम में कॉल कर सकते हैं। एवरीवन, शो का नाम है हेलो फरमाइश, मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट आरजे खुशी एंड ये है आपके अपने मुरादाबाद शहर का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन। एवरी डे आप इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं, लेकिन हाँ कॉल वीक में एक ही बार कर सकते हैं ताकि ऑल लिसनर्स को भी इजीली कॉल लगाने का मौका मिल जाए। तो अभी बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से, जानेंगे उनकी भी फरमाइश यहाँ पर। हेलो फरमाइश। हाँ जी, क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम महर है दीदी।
0: महर, कहाँ से बात कर रहे हो आप?
1: मैं दीदी लाइन पार से।
0: लाइन पार में कहाँ से बात कर रहे हो?
1: हेलो।
0: हेलो, यस टेल मी।
1: हेलो दीदी, आपकी आवाज नहीं आ रही
0: है। नहीं, मुझे तो आपकी आवाज प्रॉपर आ रही है।
1: अच्छा दी।
0: जी बताइएगा, क्या करते हैं महर आप? बैरन सॉन्ग तो सुनवाएंगे, लेकिन मैंने आपसे जानना चाहा है कि आप क्या करते हो, अभी स्टडी करते हैं? महर, क्या पढ़ाई करते हो आप? सॉरी, क्या कर रहे हो? अच्छा अच्छा, ओके, फर्स्ट ईयर में है आप अभी, वेरी गुड। तो कैसे चल रही है आपकी स्टडी, बताइए हमें। चलिए, ऐसी अच्छी मेहनत करते रहिए और जो भी आप चाहते हैं वो सब आपको मिल जाए। सुनिएगा ये प्यारा सा गाना। मोस्ट वेलकम, टेक केयर डियर। तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं ये प्यारा सा गाना, उसके बाद लौट कर आते हैं। तब तक आपको भी मुझे ही फोन लगाना, तो जल्दी से मुझे कॉल लगाइएगा।

0: हेलो गुड इवनिंग माय डियर लिसनर्स, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। वक्त हुआ है 4:54। जी हाँ, 4:54 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में और हमारे कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं कि वो कहाँ से हमारे साथ में कनेक्ट हुए हैं अभी राइट नाउ। हेलो फरमाइश। हाँ जी, आपको भी नमस्कार आदाब। कैसे हैं आप, बताइएगा अपना हाल और अपना नाम भी बताइएगा सर।
1: मैं मोहम्मद अयूब अलाहाबाद से बात कर रहा हूँ, आपका नियमित लिसनर हूँ, लेकिन बीच बीच में गैप कर जाता हूँ, थोड़ा व्यस्तता है कामों में, लेकिन आपका चैनल सुनता रहता हूँ, फुर्सत मिलती है कामों से।
0: थैंक यू, आप बिजी होने के बाद भी टाइम निकालते हैं और यही होता है रेडियो के प्रति अच्छा असली रियल प्यार, क्योंकि हम कितने भी व्यस्त हों, अगर हम उनके लिए समय निकालते हैं तो सबसे बड़ा प्यार है।
1: जी जी बेशक, क्यों नहीं
0: जी। तो बताइएगा प्रयागराज का मौसम कैसा है सर?
1: इस समय जो है बादल महाराज विराजमान है प्रयागराज के, और हमारे छतों के ऊपर मंडरा रहे हैं, रिमझिम रिमझिम फुहार बरसा रहे हैं।
0: अरे वाह, बहुत ही खूबसूरत मौसम है आपकी प्रयागराज का।
1: जी जी जी, इस समय धान की खेती हो रही है, लोगों का हो भी गया है।
0: हाँ, काफी तो लग चुका है जी, काफी की धान की रुपाई हो चुकी है और अभी बाकी है, अभी तैयारी में है, जहाँ वर्षा नहीं हुई।
1: 5-7% या 10%
0: जी जी जी। तो बताइएगा आयुब जी, आज आपने कॉल किया है इतने लंबे समय के बाद, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आज आप?
1: छुट्टी लंबी थी क्योंकि गर्मी बहुत थी, इसलिए गर्मियों में बाहर निकलना अनावश्यक प्रॉब्लम देता है भैया, इसलिए अंदर रहो।
0: जी जी, बहुत अच्छी बात है सर। तो बताइएगा आज क्या फरमाइश है आपकी?
1: फिल्म थी दिलवर, 90s की फिल्म है।
0: हाँ,
1: उसमें कुमार सानू कविता किस्मोती के आवाज में गीत है
0: जी।
1: हम तुम यू मिलते रहेंगे, एक दिन प्यार हो जाएगा, मोहब्बत हो जाएगा।
0: ओके, तो ये खूबसूरत सा गीत आपको सुनवाते हैं सर, शुक्रिया आपने हमें कॉल किया।
1: आपका इजाजत तो अर्ज कर दे।
0: जी जी जी इरशाद।
1: सॉन्ग से रिलेटेड, जब लाख अदाओं की जरूरत ही क्या है, लाख अदाओं की जरूरत ही क्या है, जब हम फिदा ही तुम्हारी सादगी भर है।
0: वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत सी लाइनें थी सर ये।
1: शुक्रिया कुशल जी, गाना सुनवाइए सभी लिसनर साहब।
0: हाँ जी, हाँ जी, जी बिल्कुल, शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए सर। तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं ये प्यारा सा गाना फ्रॉम द मूवी दिलवर से, और अभी मुझे भी दीजिएगा जाने की अनुमति, लेकिन आप टेंशन ना लो, इधर एक और कुड़ी आ गई है, वो आपको करने वाली है फुल ऑन एंटरटेनमेंट का डोज देने वाली है। तो बने रहिएगा, चिपके रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। मैं मिलूंगी आपको टुमारो मॉर्निंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग। कॉल नहीं लगाए तो परेशान मत होइएगा, कल भी आपके पास मौका है, ठीक है? तो अभी फिलहाल चलते हैं और इस गाने का आनंद लीजिएगा आप सब।

0: जिम्मेदारी है।
1: उधर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि छात्रों का संघर्ष वास्तविक है और वे बदलाव की मांग कर रहे हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च के दौरान कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। न्यायालय ने अधिकारियों को सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी सहित पुलिस कार्रवाई से संबंधित सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। न्यायालय ने अधिकारियों को जवाब देने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 11 सितम्बर को होगी। सरकार ने दिल्ली में विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान लोगों के मरने के सोशल मीडिया के दावे का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इन दावों को असत्य बताया है। दिल्ली पुलिस ने पुष्टि की है कि प्रदर्शन के दौरान किसी की मौत होने की कोई खबर नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 61 वर्ष करने पर विचार करने का निर्देश दिया। न्यायालय की पीठ ने पूरे देश में जिला न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु को 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने की समान मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सरकारी नीतियों का उद्देश्य बच्चों सहित सभी उपयोगकर्ताओं के लिए एक मुक्त, सुरक्षित, विश्वसनीय और उत्तरदायी इंटरनेट प्रदान करना है। लोकसभा में श्री वैष्णव ने कहा कि 2023 में लागू डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के प्रोसेसिंग को विनियमित करने के लिए कानूनी ढांचा स्थापित करता है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठकों के दौरान कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की। डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है। चीन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने उन्नति हुड्डा को हराया, वहीं आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अलवी फरहान को शिकस्त दी। मौसम विभाग ने गुजरात, महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में कल तक मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और विदर्भ में अगले 2 से 3 दिनों तक तेज बारिश होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
3: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे। हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना?
4: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
3: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
5: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीज एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
6: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे आईटीएम यूनिवर्सिटी मुरादाबाद।
7: नैक द्वारा ए ग्रेड एनआईआरएफ में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक।
6: डिप्लोमा से पीएचडी तक सभी शिक्षा एक कैंपस में,
7: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई।
6: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी।
7: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
8: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।

क्या बात है जी, बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है। वो लड़े का आंख मारे। फिलहाल शाम का वक्त हो गया है श्रोताओं, गुड वाली इवनिंग है जी। समय की अगर मैं बात करूँ तो 5:10 हो चुके हैं इवनिंग मस्ती शो में, और आर्जेरीना आप सभी के बीच कनेक्ट हो गई है ढेर सारी बातें करने के लिए। और शुरुआत यानी कि देखिए, जब और आज का जो मतलब स्पेशल डे है ना, बहुत बहुत खास है, क्योंकि आज 22 तारीख के जो इतिहास के पन्ने हैं वो उसके बारे में जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आज उसके बारे में जानेंगे और देश दुनिया में क्या चल रहा है उसके बारे में भी जानेंगे श्रोताओं। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि जो नीट का पेपर है अब उसको ख़त्म कर दिया जाए। अब वो आखिरकार क्यों कहा जा रहा है, क्यों नहीं कहा जा रहा है, वो उसका क्या रीज़न है, अभी तो उसको बयान नहीं कर सकते। बस इतना हुआ है कि नीट का पेपर यानी कि हमेशा के लिए खारिज कर दो, ताकि जो स्टूडेंट है वो बहुत डिप्रेस हो जाते हैं, मानसिक तनाव से गुजरने लगते हैं, पूरा दिन रात बस स्टडी करते रहते हैं। तो अब आगे देखते हैं कि नीट के पेपर के ऊपर क्या आगे क्या बातें आ रही है निकल के, और साथ ही साथ जो पेपर लीक करने वाले थे वो तो हिरासत में पकड़े गए हैं, और होना भी चाहिए क्योंकि उसकी सजा बच्चे क्यों भुगते जो मेहनत कर रहे हैं, उनको किस चीज़ की सजा मिलनी चाहिए जो पेपर लीक करते, असली सजा तो उनको मिलनी चाहिए। हर कोई अपनी ड्यूटी निभा रहा है, हम किसी को गलत नहीं बोल सकते, लेकिन उनको ज़रूर गलत बोल सकते हैं जो इसके पीछे हैं, और उनको हमेशा फ्रीडम मिलता है, लेकिन इसके बाद अब यानी कि अच्छे से कार्रवाई की जाएगी ताकि इन फ्यूचर कोई भी पेपर लीक ना होए। चलिए फिलहाल ढेर सारी बातें करेंगे, आज गाना सुनते हैं।

0: क्या सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
2: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
3: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
2: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
3: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
1: मुरादाबाद
2: से संपर्क कीजिए।
3: नियम और शर्तें लागू।

क्या बात है जी, बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है। जब बताओ श्रोताओं, कोई एक चीज पसंद में आ जाए तो कैसे किसी और को पास जाए, है ना। यानी कि देखिए, आज का डे हमारे लिए बहुत खास है और वो सबका राजा होता है। राजा को छोड़ के कोई कहीं जाता है नहीं, जाता है ना, राजा के आगे हर कोई, हर प्रजा कहती है अरे राजा जी आ जाइए। वैसे आर्जेंटीना आप सभी के बीच आ गई है। गुड वाली इवनिंग है श्रोताओं, इवनिंग मस्ती शो में। समय की बात करूं तो 5:20 हो चुके हैं और आज 22 जुलाई बहुत खास है क्योंकि आज मनाया जाता है नेशनल मैंगो डे। आम को यूं ही नहीं फलों का राजा कहा जाता है, इसकी सैकड़ों किस्में होती हैं। दशहरी, लंगड़ा, चौसा, अल्फोस, केसर और सफेदा हर किसी का दिल जीत लेती है। इस स्वाद के साथ साथ आम में विटामिन ए, विटामिन सी, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं जो हमारी सेहत के लिए भी फायदेमंद होते हैं। भारत दुनिया के सबसे बड़े आम यानी कि उत्पादक अगर मैं बात करूं तो एक है जो आम सिर्फ एक फल नहीं बल्कि हमारे गर्मियों की यादों, परिवार के साथ बिताए पल और बचपन की मिठास का हिस्सा है। यानी कि देखिए, जब भी मैंगो का सीजन आता है ना तो हर फल एक तरफ लेकिन मैंगो का अलग ही मजा आता है। आप उसको चाहे रोटी के साथ खाओ, चाहे बनाना शेक बनाकर खाओ, चाहे आप उसको सिंगल ही खाओ, लेकिन आम को खाने का एक अलग ही मजा आता है। उसका जो स्वाद होता है ना, नेक्स्ट लेवल वाला स्वाद होता है। तो आपको देखिए, नाम आम के जो नाम है वो बहुत अलग अलग तरीके के नाम है। अगर आपको आम सिंपल खाना पसंद है या फिर सिर्फ और सिर्फ मैंगो शेक पसंद है, बहुतों को पसंद होता है कि भैया आम मुझे ना कोई काट के अच्छे से पीसेस में दे तब मैं खाऊं, वो खुद भी नहीं काटना चाहते क्योंकि आम का जो ऊपर वाला जो दाग होता है ना, अगर वो हाथ में लग जाता है तो वो थोड़ा मुश्किल से हटता है। इसीलिए बहुत से है ना आम मतलब काटने से बचते हैं, जैसे कि मैं हूँ। मैं अगर मेरे को कोई कह दे कि फैमिली में कि आम काट के तुम्हें देना है, मैं नहीं देती हूँ, मैं कह नहीं तुम ही काटो, फिर उसके बाद मैं दे दूंगी तुम्हें। मेरी ऐसी आदत है। लेकिन आम मैंगो शेक पीना, ओहो क्या बात है, जो ऊपर से ठंडी ठंडी मैंगो शेक मिल जाए तो मज़ा ही आ जाता है। और बचपन की बातें ही क्या करें जी, बचपन में यही नहीं देखते थे भैया कि आंधी है तूफान है, बस बगीचे में कूद जाते थे, ऊपर से मालिक जब डांट फटकार लगाते थे तब घर भाग के आते थे। अगर आपके आपने भी कुछ ऐसे किस्से और आपकी लाइफ में अपने बगीचे में आप गए हो और आपके मालिक ने डांटा हो कि भाई हमारे बगीचे में क्यों आए हो, कुछ ऐसे किस्से हैं आपके तो आप मुझे जरूर शेयर कर सकते हैं। नंबर है 9823789896। और आम का स्वाद यानी कि हर घर में हर बच्चे बच्चे को पसंद होता है। और मैं मतलब मैंगो है ना, जरूरी नहीं कि आप ऐसे खाओ, किसी के साथ भी उसको खा सकते हो, अलग ही उसका मजा आता है। ऊपर से आम पन्ना, आए हाय बड़े टेस्टी टेस्टी लगता है ना जी। चलिए, लेकिन आज 22 तारीख है यानी कि 22 तारीख इतिहास के पन्ने और तरफ भी इशारे कर रहे हैं। और आज का क्या इशारा है 22 जुलाई का, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद कनेक्ट होते हैं श्रोताओं। फिलहाल के लिए गाना बहुत ही शानदार।

0: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
1: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में

0: सबसे आगे ITM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद
1: नैक द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक
0: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में
1: चाहे फार्मेसी हो मैनेजमेंट कंप्यूटर इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी लॉ एग्रीकल्चर साइंस एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई
0: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी
1: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट
2: कॉल 9639004077
3: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई जिग करो स्वच्छता की जिद करो

हेलो जी, हेलो, गुड वाली इवनिंग है आरजे रीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। आज 22 जुलाई और 22 जुलाई का जो इतिहास है वो हमारे लिए बेहद बहुत खास है, क्योंकि आज ही के दिन यानी कि राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस मनाया जाता है।

यानी कि 22 जुलाई भारत के इतिहास में एक बेहद महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा में भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को आधिकारिक रूप से अपनाया गया। उस समय भारत को आजादी मिलने में सिर्फ और सिर्फ 24 दिन बाकी थे, इसीलिए हर साल 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस मनाया जाता है। तिरंगे का इतिहास। आजादी से पहले भारत के कई अलग अलग झंडे बनाए, लेकिन 1906 में कोलकाता में पहला राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। 1921 में आंध्र प्रदेश में स्वतंत्रता सेनानी पिल्लंगी वेंकैया ने महात्मा गांधी को एक ध्वज का प्रसारूप प्रस्तुत किया। बाद में इसमें बदलाव किए गए 22, और फिर वो दिन आया 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा में वर्तमान तिरंगे को भारत के लिए राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत में पहली बार यह तिरंगा आधिकारिक रूप से फहराया गया। तिरंगे के रंगों का महत्व बहुत खास है, बहुत ज्यादा है, यानी कि केसरिया साहस, त्याग और बलिदान का प्रतीक है। सफेद शांति, सत्य और ईमानदारी का प्रतीक है। हरा रंग जो कि नीचे के साइड होता है, केसरिया ऊपर, सफेद बीच में, हरा रंग नीचे, समृद्धि, विकास, कृषि और प्रतीक का प्रतीक माना जाता है, प्रकृति का प्रतीक माना जाता है। अशोक चक्र का महत्व, सफेद पट्टी के बीच में गहरे नीले रंग का अशोक चक्र बना है, इसमें 24 तिलियां होती हैं। यह सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया। इसका अर्थ है निरंतर प्रगति, न्याय और जीवन में आगे बढ़ते रहना। और तिरंगे का सम्मान हमें दिल और जान से करना चाहिए। झंडा कभी भी जमीन पर नहीं गिराना चाहिए, फटा या गंदा तिरंगा नहीं फहराना चाहिए। किसी भी प्रकार के कपड़े, मेज पोश या सजावट के रूप में इसका अनुसूचित उपयोग नहीं करना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना हर भारतीय का कर्तव्य है। और रोचक तथ्य, यानी कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का अनुपात 3.2 होता है। पहले राष्ट्रीय ध्वज केवल खादी से बनाया जाता था, लेकिन 2022 में हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया गया, जिसके बाद नियमों में कुछ बदलाव आए ताकि नागरिक अधिक आसानी से तिरंगा फहरा सके। इसीलिए कहते हैं ना, हर घर तिरंगा, यानी कि 15 अगस्त आने वाला है श्रोताओं, और इस 15 अगस्त पर हर घर पर, यानी कि हर घर तिरंगा फहराया जाता है। सो आज का दिन हमारे लिए बेहद बहुत खास है, क्योंकि तिरंगा केवल एक झंडा नहीं बल्कि 140 करोड़ों भारतीयों की एकता, गर्व और पहचान है। इसीलिए दिल से बोलिए जय हिंद, जय भारत, क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं और हमें अपने तिरंगे का सम्मान जरूर करना चाहिए। इसी पर एक बहुत ही शानदार गाना सुनते हैं श्रोताओं, और फिर लौट कर आते हैं, क्योंकि इस दिन हमारे झंडे को फहराया गया था जबकि हमारा देश आजाद होने में 24 दिन बाकी थे, लेकिन फिर भी हर भारतीय को दिल से और हर घर पर अपना तिरंगा जरूर फहराना चाहिए। 15 अगस्त दूर नहीं है श्रोताओं। सो एक प्यारा सा गाना सुनते हैं और फिर लौट कर कनेक्ट होते हैं आप सभी के।

0: करण जी, कितनों को लगता है कि बस अगर हमें प्रोटीन मिलेगी तो सिर्फ और सिर्फ चिकन मटन खाने से ही मिलती है? अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन है तो रुक जाइए और महसूस करके बताइए कि चिकन और अंडे यानी कि नॉन वेज खाने से ही हमें प्रोटीन मिलता है। सोचिए सोचिए, क्योंकि अभी म्यूजिकल ब्रेक के बाद फिर से कनेक्ट होती हूँ।
1: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
2: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
3: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
4: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
3: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
4: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरो सर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेस 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
5: कॉल 7500153841।
6: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: जी डिसाइड आरजेडी ने एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करूं तो 5:46 हो चुके श्रोताओं, बिल्कुल भी समय का पता नहीं चलता ना, क्योंकि समय का पहिया पूरी रफ्तार में चलता है। और बस हम कंफ्यूज रहते हैं कि अरे अभी तो टाइम है हमारे पास, लेकिन समय कैसे निकल जाता है बिल्कुल भी नहीं पता चलता है। तो अगर आपको लगता है कि प्रोटीन सिर्फ चिकन अंडे या पनीर में ही मिलता है तो जरा रुक जाइए, क्योंकि आज बात होगी हमारे देसी सुपरस्टार यानी कि राजमा की। ये छोटी है लेकिन बड़ा पैकेट, छोटा कहते हैं ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाल। ये छोटा सा दाना सिर्फ चावल और सिर्फ चावल का पार्टनर नहीं है, बल्कि प्रोटीन और फाइबर का भी दमदार सोर्स है। जो लोग नॉन वेज नहीं खाते उनके लिए राजमा बढ़िया ऑप्शन हो सकता है ना। यानी कि राजमा, जितना चिकन में प्रोटीन होता है उतना ही राजमा में होता है। साथ ही साथ इसमें कॉम्प्लेक्स कार्बन होते हैं जो शरीर में लंबे समय तक एनर्जी हमें पहुंचाते रहते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, राजमा को बिना भिगोए और अच्छी तरह पकाए मत खाइए, वरना पेट बोलेगा रे भाई आज तो छुट्टी कर ले, बस आज ऑफिस मत जा, वरना परेशान हो जाएगा। इसीलिए रात भर भिगोइए, अच्छे से उसको पकाइए, फिर मजे से खाइए। देखिए राजमा है ना, सिर्फ राजमा की सब्जी नहीं बनती है, उसको आप यानी कि हल्का सा ऑयल और हींग और ब्लैक पेपर डाल के, काला नमक डाल के हल्का सा उसको रोस्ट करके, प्याज खाते तो प्याज भी आप डालिए उसमें, टोमेटो भी डालिए, और हल्का सा बॉईल करने के बाद उसको उसमें भूनिए, उसके बाद नींबू डालिए और फिर खाइए। सुबह सुबह का आपका प्रोटीन वाला, भरपूर प्रोटीन वाला आपका ब्रेकफास्ट हो जाएगा, ठीक है जी। तो जरूरी नहीं कि राजमा सिर्फ और सिर्फ राजमा की सब्जी बनती है, इसको आप ब्रेकफास्ट में भी बॉईल करके अच्छे से इसको ब्लांच करिए तब खाइए, बहुत अच्छा लगता है। तो अगली बार जब घर में राजमा चावल बने तो सिर्फ फोटो मत खींचिएगा, दो प्लेट भी साफ कर दीजिएगा साथ ही साथ क्योंकि स्वाद भी और सेहत भी। और बहुतों को फेवरेट होता है राजमा चावल, मेरा तो सच में बहुत बड़ा फेवरेट है, यानी कि पहले नंबर पर आता है तो वो है मेरा राजमा ही चावल। तो आज आपको पता चल गया होगा श्रोताओं कि चिकन से ही हमें प्रोटीन नहीं मिलती है, बल्कि राजमा भी उतना ही भरपूर प्रोटीन वाला होता है। जो चिकन नहीं खाते, नॉन वेज नहीं खाते, वो राजमा खाइए, आपको उतना ही प्रोटीन मिलेगा। चलिए फिलहाल एक और गाना बहुत ही शानदार, उसके बाद लौट कर आते हैं।
1: भूख लगी जोरों की भूख लगी, मुर्गे की बांग हमें कोयल की भूख लगी।

डंग डिंग डंग डिंग डंग करती है। अमित मिश्रा की आवाज में बहुत ही खूबसूरत अपने गाना एंजॉय किया श्रोताओं। और समय की बात करूं तो 5:56 हो चुके हैं और अभी आप ट्रैफिक में हैं, यानी कि ऑफिस से घर के लिए निकल गए हैं, तो वेल डन। लेकिन साथ ही साथ यानी कि ट्रैफिक रूल फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। रेड लाइन का भी अपने पूरा पूरा ध्यान रखना है। अगर रेड लाइन का पूरा ध्यान नहीं रखते हैं तो कब आपके पॉकेट से पैसे उड़ जाएंगे आपको भी नहीं पता चलेगा। और साथ ही साथ हेलमेट सीट बेल्ट तो लगाना बहुत ज़रूरी है। और देखिए आज का जो मौसम है बड़ा ही सुनहरा, बड़ा ही प्यारा मौसम है, क्योंकि हवाओं के साथ कभी बादल कभी धूप, और ये जो मौसम है एकदम मौसम वाला है। और आज की तारीख यानी कि 22 जुलाई बहुत जगह 21 राज्यों में आंधी तूफान बारिश बताई गई थी आज। यानी कि आपने सुबह नोटिस किया तो 1 बजे बहुत ही जमकर बारिश हो रही थी आज, एकदम झकास वाली बारिश। तो आप अगर ट्रैफिक में हैं और कहीं काफी बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम है तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। नंबर है 9823789689। PSC की तरफ से आप जा रहे हैं तो आपको वहां भी ट्रैफिक जाम मिलेगा। रेलवे स्टेशन की तरफ से जाएंगे तो और भी, उस साइड तो आप कभी भी चले जाइए, बहुत ही रेयर होता है कि ट्रैफिक जाम ना मिले, अदरवाइज आपको ट्रैफिक जाम तो मिलता ही मिलता है। दिल्ली रोड के चले जाइए, उधर भी इस टाइम ट्रैफिक जाम मिलता है। तो अगर आप है अभी ट्रैफिक जाम में तो बिल्कुल मैसेज कर सकते हैं, ताकि और भी श्रोता है जो और यानी कि उस रूट से जाने वाले हैं वो थोड़ा बच सके और कम समय में अपने घर पहुंच सके। बहुतों को जल्दबाजी होती है कि भैया अब तो छुट्टी हो गई है, बस किसी तरह घर पहुंच जाए, बस देरी नहीं होनी चाहिए ना। लेकिन मैं कहती हूँ जी शाम का वक्त है, आराम से हौले हौले गाड़ी चलाइए, एंजॉय करते जाइए और मूड को बिल्कुल ही खराब नहीं करना है। जी आर्जरी ना आप सभी के बीच है, ठीक है जी, और आराम से घर पहुंचिए। चलिए फिलहाल गाना सुनते हैं, उसके बाद 6 बजे कनेक्ट होते हैं आप सभी के बीच।

0: 맞춘가?
1: मिनट में दो गोल किए, जबकि शाहरुख अली ने तीसरे और तेरहवें मिनट में दो बार गेंद को गोल पोस्ट तक पहुंचाया। इसके अलावा प्रहलाद राजभर, कनर गौतम और रोमित पाल ने भी एक एक गोल कर भारत की एक तरफा जीत में योगदान दिया। इसके बाद भारत का सामना चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से हुआ, जहां भारतीय टीम ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए 7-4 से जीत दर्ज की। भारत की ओर से करण गौतम ने 5वें, 9वें और 19वें मिनट में गोल कर हैट्रिक पूरी की। राहुल यादव मिनट में दो गोल किए, जबकि शाहरुख अली ने तीसरे और तेरहवें मिनट में दो बार गेंद को गोल पोस्ट तक पहुंचाया। इसके अलावा प्रहलाद राजभर, कनर गौतम और रोमित पाल ने भी एक एक गोल कर भारत की एक तरफा जीत में योगदान दिया। इसके बाद भारत का सामना चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से हुआ, जहां भारतीय टीम ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए 7-4 से जीत दर्ज की। भारत की ओर से करण गौतम ने 5वें, 9वें और 19वें मिनट में गोल कर हैट्रिक पूरी की। राहुल यादव मिनट में दो गोल किए, जबकि शाहरुख अली ने तीसरे और तेरहवें मिनट में दो बार गेंद को गोल पोस्ट तक पहुंचाया। इसके अलावा प्रहलाद राजभर, कनर गौतम और रोमित पाल ने भी एक एक गोल कर भारत की एक तरफा जीत में योगदान दिया। इसके बाद भारत का सामना चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से हुआ, जहां भारतीय टीम ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए 7-4 से जीत दर्ज की। भारत की ओर से करण गौतम ने 5वें, 9वें और 19वें मिनट में गोल कर हैट्रिक पूरी की। राहुल यादव
2: उधर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि छात्रों का संघर्ष वास्तविक है और वे बदलाव की मांग कर रहे हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च के दौरान कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और दिल्ली पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। न्यायालय ने अधिकारियों को सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी सहित पुलिस कार्रवाई से संबंधित सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड सुरक्षित करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी। सरकार ने दिल्ली में विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान लोगों के मरने के सोशल मीडिया के दावों का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इन दावों को असत्य बताया है। दिल्ली पुलिस ने पुष्टि की है कि प्रदर्शन के दौरान किसी की मौत होने की कोई खबर नहीं है। दिल्ली मेट्रो ने सुरक्षा स्थिति के कारण झंडेवालान मेट्रो स्टेशन भी बंद कर दिया है। इससे पहले 16 मेट्रो स्टेशनों को अगले आदेश तक बंद करने की घोषणा की गई थी। राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तरी मैसेडोनिया में आज स्कोपिये शहर के संग्रहालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि संघर्ष, असहिष्णुता और विभाजन से जूझ रही दुनिया में गांधी जी के संवाद, करुणा और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के आदर्श अत्यंत प्रासंगिक बने हुए हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठकों के दौरान कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है। सिक्किम के नामची जिले के समरदुंग स्थित सुरंग में बचाव दल ने 8 और शव बरामद किए हैं। अब तक 13 शव बरामद किए जा चुके हैं। शुरुआती खबरों के अनुसार सुरंग में 25 लोग फंसे हुए हैं। हालांकि खराब मौसम के कारण बचाव कार्य प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग ने गुजरात, महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में कल तक मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और विदर्भ में अगले 2 से 3 दिन तक तेज बारिश हो सकती है। चीन ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। आज महिला सिंगल्स मुकाबले में सिंधु ने हमवतन उन्नति हुड्डा को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
3: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पी या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: क्या बात है जी, बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया श्रोताओं। और समय की बात करूं तो देखिए दूसरे घंटे की शुरुआत हो गई है, यानी कि समय हो चुका है 6:10 और आप आरजे रीना के साथ कनेक्टेड। तो चलिए आज यानी कि वेदर की बात कर लेते हैं, कल का वेदर कैसा रहने वाला है। कल की तारीख 23 जुलाई, और 23 जुलाई को भी आंधी बारिश की चेतावनी दी जा रही है, और ये यानी कि कम से कम 12 जिलों में बारिश आंधी तूफान की संभावना है, और वो भी 85 मीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर आंधी तूफान बताई जा रही है, और ये 11 यानी कि यूपी राज्य में बारिश की आने की संभावना है, यानी कि बिहार, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश और गुजरात। अगर आप जम्मू कश्मीर घूमने के जा रहे हैं, घूमने की नहीं प्लानिंग बना रहे कि भैया घूमने चले जाते, तो थम जाइए। अभी आपको ही पता कि उधर के रास्ते बंद कर दिए गए, रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि आंधी तूफान के कारण वजह से पहाड़ है जो गिर रहे हैं, जिसके वजह से रास्ते बंद कर दिए गए हैं। तो मॉनसून में तो देखिए हमें कहीं भी घूमने बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, जब मौसम सही हो जाए तभी आप प्लानिंग करिए बाहर घूमने। और साथ ही साथ इसके बाद में लेकर आने वाली हूँ आप सभी के लिए कड़क सवाल। कड़क सवाल के बीच मेरे पास कुछ मैसेजेस हैं, उनको भी शामिल करेंगे फिर आप सभी के बीच। आज का कड़क सवाल फैंटास्टिक होने वाला है, अगर आज आप आंसर नहीं बताया तो पक्के देशवासी नहीं आप। चलिए फिलहाल विकी सागर जी का मैसेज आता है, रीना जी जानकारी अच्छी है, और जो आपने मैंगो के बारे में बात करी है वो हमारे इंडिया के मैंगो है, विदेशों में भी जाते हैं। बिल्कुल जी सही कहा आपने, विदेशों में भी जाते हैं हमारे इंडिया के जो मैंगो है। और साथ ही साथ इनका कहना है कि स्टेशन की तरफ अभी इतना जाम नहीं है, हल्का फुल्का है, क्या बात है। अगले मैसेज की बात करूं तो बेबी राधिका जी कनेक्ट होती है, और इनका कहना है कि मैं आपके प्रोग्राम में शामिल हूं, थैंक यू सो मच। मुरादाबाद यूपी से रणवीर सिंह जेठालाल जी कनेक्ट होते हैं, गाने बहुत अच्छे प्ले करते हैं। और अगले मैसेज की बात करूं तो बबली अनजान, गीता कश्यप, भाभी लक्ष्मी कश्यप, संतोष कश्यप, रीना मैम, हम आपके प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं। ओके जी, शुक्रिया। हेलो रीना मैम, गुड वाली इवनिंग है, इवनिंग मस्ती शो में आप कैसे हो, बिंदास गाने सुना रही हो। ललिता कश्यप जी कनेक्ट होती है नवीन नगर मुरादाबाद से, चाय पी लीजिए। अरे बिल्कुल, आज तो सच में मेरा भी मन कर रहा है चाय पीने का, सच में भिजवा दीजिए आज तो आप। और इनका कहना है कि मैम आपने राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जो जानकारी दी बहुत अच्छी लगी, थैंक यू सो मच जी। मैम आपका शो बहुत अच्छे से सुनती है, बहुत अच्छी बात है जी। शाम का मौसम भी बहुत अच्छा है, एनर्जेटिक है आपका शो, थैंक यू सो मच जी। और इस बीच तो मैं आप सभी के लिए कड़क सवाल भी लेकर आने वाली हूँ, रुक जाइए, थोड़ा वेट करिए, इंतजार करिए। दीपक जी कनेक्ट हो गए हैं मुरादाबाद से, और इनका कहना है कि आपका शो बहुत अच्छा लग रहा है, और जो आपने फ्लैग के बारे में जो जानकारियां दी है, राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जो आपने बताया है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज ही के दिन हमारा जो उसका राष्ट्रीय ध्वज यानी कि सही अनुमति मिली थी उनको फहराने के लिए, बिल्कुल सही कहा आपने। और साथ ही साथ अगले मैसेज की बात करूं तो ये राहुल जी कनेक्ट होते हैं मुरादाबाद से, और इनके कहने के जो आपने मैंगो के बारे में बात करी है मैम, मुझे तो सच बताऊं सब मुझे भी मैं मैंगो काट के मतलब खाना पसंद नहीं है, लेकिन मैं उसको पन्नी हाथ में पन्नी पहनकर मतलब उसको छीलते हैं ये, फिर उसको पीसेस में काटते हैं, फिर उसका मैंगो शेक बनाते हैं, कमाल की बात है, क्या बात है जी। मतलब हाथ नहीं धोना होता सर, जो आप हाथों में पन्नी पहन कर आप मैंगो काटते हैं, गलत बात है सर, ये तो गलत बात है। देखिए आप खाते भी है ना, खाते क्या पन्नी मुंह में डाल के फिर खाते हैं क्या, ताकि गले में भी ना लगे सीधा पेट के अंदर ही जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत बात है सर। चलिए फिलहाल एक और गाना सुनते हैं, चल बा बसल फीले ले रे, उसके बाद कनेक्ट होते हैं श्रोताओं। लेकिन उससे पहले कुछ कमर्शियल एड ब्रेक का टाइम हो गया है, और आज का जो सवाल है बहुत ही फैंटास्टिक है, और 15 अगस्त भी बिल्कुल बहुत ही करीब, बहुत ही नजदीक। तो चलिए फिलहाल कमर्शियल एड ब्रेक, उसके बाद कनेक्ट होते कड़क सवाल के साथ।
1: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
2: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
3: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे आईटीएम यूनिवर्सिटी मुरादाबाद।
4: नैक द्वारा ए ग्रेड एनआईआरएफ में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक।
3: डिप्लोमा से पीएचडी तक सभी शिक्षा एक कैंपस में।
4: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई।
3: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी।
4: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
5: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।

0: क्या बात है जी, शाम को ऐसे गाने सुनकर ना सच में बड़ा ही मजा आ जाता है, आनंद हो जाता है, यानी कि शाम मजेदार हो जाता है। दिस साइड आरजे रीना एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। समय की बात करूं तो 6:00 यानी कि 24 मिनट हो चुके हैं। इवनिंग मस्ती शो में आप कनेक्टेड श्रोता आरजे रीना के साथ, और आज का सवाल बहुत ही धाकड़ और बहुत ही मजेदार और बहुत ही आसान होने वाला है।
1: तेरी सेवा करेंगे।
0: तो चलिए आज का मजेदार सवाल क्या है आपको पता चले जा, आपको बताते हैं। यानी कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज के बीच बने अशोक चक्र में कुल कितनी तिल्लियां होती हैं? सिर्फ और सिर्फ आज ये आपको बताना है कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कुल कितनी तिल्लियां होती हैं, फ्लैग में कुल कितनी तिल्लियां होती है, सोचिए और मैसेज करिए। नंबर है 9837896896 पर आपने मैसेज करना है। आज पता चल जाएगा कि आप असली देश वासी है, देशभक्त है। अगर आपने आज बता दिया कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज के बीच में अशोक चक्र में कुल कितनी तिल्लियां होती है, तो आप असली भारतीय नारी है। चलिए फिलहाल अगला गाना सुन

0: हाय हाय क्या बात है जी, उड़ी उड़ी जाए दिल की पतंग, देखो उड़ी उड़ी जाए। लेकिन देखिए जी, अगर आप पतंग उड़ाते हैं तो सोच समझ के उड़ाइएगा, क्योंकि जो मांझा होता है ना, वो बहुत ही ऐसा होता है कि जैसे आपके हाथ भी अगर उसमें उड़ते हुए में लग जाए उसमें, तो आपके हाथ भी कट सकती है। इसीलिए अगर आप उड़ा रहे हैं पतंग तो कुछ चीजें ध्यान रखिए, क्योंकि पहले के टाइम में कॉटन की सूतलियां बनती थी, अब वो कॉटन की नहीं होती है। और गली मोहल्ले में अगर आप उड़ा रहे हैं तो उसका भी ध्यान रखिए, क्योंकि कुछ नहीं पता आपको पतंग कट के कहाँ गिरेगी, और वो शायद सड़क पर गिरे तो सोचिए किसी को भी लग सकती है। और साथ ही देखिए, नीट का एग्जाम है वो आ चुका है, और आज अपने मुरादाबाद में जी और नीट की जो तैयारियां है और भी आसान हो गई है, क्योंकि आकाश इंस्टीट्यूट में आज बच्चों के लिए सेलिब्रेशन रखा गया, ताकि बच्चे जो टॉपर बच्चे हैं उनको सम्मानित किया गया, अवार्ड मिला उनको, और जो और भी यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए मोटिवेशन है कि देखिए कोई भी जरूरी नहीं, अगर आप पढ़ रहे हैं तो पूरा दिन रात लगे रहिए 24 घंटे पागलों की तरह, हम पढ़ रहे हैं लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, पढ़िए। लेकिन आपको 24 घंटे नहीं पढ़ना है, अगर आप 2, 3, 4 घंटे भी पढ़ रहे हैं ना, तो ये समझ कर पढ़िए कि जैसे कि मैं फोन चला रहा हूँ, जैसे हम फोन में मग्न हो जाते हैं ना, हमें पता नहीं रहता कि समय कितना निकल गया, क्या टाइम हो गया, कब 4 घंटे निकल जाते, बिल्कुल भी नहीं पता चलता है। इसीलिए इसी तरह अगर आप पढ़ रहे हैं तो 4 घंटे ही, 2 घंटे ही भले पढ़िए, 1 घंटे भी पढ़िए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपका फोकस सिर्फ और बुक में होना चाहिए, और कहीं नहीं। ऐसी जगह, एक ऐसे रूम में बैठो जहां आपको थोड़ी सी भी आवाज गूंजने की नहीं आती है, साइलेंट होता है वहां पर, कहते हैं ना पिन ड्रॉप साइलेंस, जब पिन भी गिरे तब भी आपको ना सुने। ऐसी जगह पढ़िए जहां आपको बिल्कुल शोर शराबा ना आए, सिर्फ 2-3 घंटे पढ़िए लेकिन अच्छे से पढ़िए। जैसे आज आकाश इंस्टीट्यूट वालों ने इतना सेलिब्रेशन रखा बच्चों के लिए, उनको मोटिवेट करा, और आगे जो नीट की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए प्रेरणा है कि आप करना चाहते हैं तो अच्छे से करिए। सपोर्ट के लिए हर कोई खड़ा होता है, फैमिली वाले तो इनफैक्ट बहुत ज्यादा खड़े होते हैं, वो अपनी जरूरतमंद चीजें भूल जाते हैं, लेकिन बच्चों के लिए हमेशा जी जान लगा देते हैं, ताकि बच्चे आगे पढ़े, आगे बढ़े, देश का नाम रोशन करें। चलिए फिलहाल में कुछ कमर्शियल ब्रेक का टाइम हो गया श्रोताओं, उसके बाद लौट कर आते हैं।
1: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
2: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है, क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
3: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
4: शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे आईटीएम यूनिवर्सिटी मुरादाबाद।
5: नैक द्वारा ए ग्रेड एनआईआरएफ में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक।
4: डिप्लोमा से पीएचडी तक सभी शिक्षा एक कैंपस में,
5: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई।
4: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी।
5: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
6: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।

0: थोड़ी देर पहले आप कौन सा काम कर रहे थे, आपको ये भी याद नहीं रहेगा। तो इसीलिए देखिए, नींद हमें तारे ताजी रेवड़ी,
1: वो और वो गर्मा गर्म गजा जैसे ठंड की ऑफिशियल मिठाई है।
2: आपको पता है दोस्तों, मेरठ की रेवड़ी और गज्जक सिर्फ मिठाई नहीं, एक विरासत है। यहाँ पीढ़ियों से परिवार इस काम में जुड़े हुए हैं। कई दुकानें ऐसी हैं जहाँ दादा से लेकर पोते तक यही कारोबार संभाल रहे हैं।
1: और एक खास बात, मेरठ की रबड़ी और गजक को GI टैग भी मिल चुका है।
2: GI यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, मतलब यह उत्पाद अपने क्षेत्र की विशेष पहचान रखता है। जैसे दार्जिलिंग की चाय, वैसे ही मेरठ की गजक।
1: यानी कोई भी गजक बना ले, लेकिन मेरठ वाली बात हर किसी में नहीं होती आरजे रीना।
2: अब बात उस स्वाद की जो नो चंदी मेले की जान है, नान खटाई।
1: उफ, घी से भरी हुई, ऊपर पिस्ता और मुंह में जाते ही घुल जाने वाली।
2: लेकिन क्या आपको पता है, नान खटाई की कहानी काफी दिलचस्प है।
1: जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है नान खटाई शब्द फारसी भाषा से आया है। नान मतलब ब्रेड और खटाई यानी बिस्किट जैसी बेक्ड चीज।
2: और भारत में इसे देसी स्वाद मिला। इलायची, देसी घी, बेसन, सूजी और फिर पैदा हुई वो नान खटाई, जिसके बिना मेला अधूरा लगता है।
1: मेरठ का नौचंदी मेला सिर्फ एक मेला नहीं है, भावना है।
2: और इस मेले की सबसे बड़ी पहचान नान खटाई और हलवा पराठा।
1: मैं तो मेलों में झूले से ज्यादा नान खटाई के स्टॉल ढूंढता था।
2: और मैं तो पैकेट घर लेकर आती थी।
1: मेरठ के पुराने बाजारों में आज ऐसी दुकानें मिल जाती है जहां कई पीढ़ियों से यही मिठाइयां बनाई जा रही हैं। इन मिठाइयों की खुशबू लोगों को दूर दूर से अपनी ओर खींच ले आती है।
2: नान खटाई एक तरह का पारंपरिक भारतीय बिस्किट है। यह बाहर से हल्की कुरकुरी और अंदर से नरम होती है। इसे मैदा, सूजी, घी, चीनी और इलायची से बनाया जाता है।
1: कहा जाता है नान खटाई शब्द फारसी भाषा से आया है। नान मतलब रोटी और खटाई यानी बिस्किट।
2: मेरठ की नान खटाई खास इसलिए मानी जाती है क्योंकि इसमें देसी घी का भरपूर इस्तेमाल होता है। पुराने समय में इसे मिट्टी के तंदूर में पकाया जाता था, जिससे इसका स्वाद और खुशबू दोनों अलग होते थे।
1: सबसे पहले घी और चीनी को अच्छी तरह फेटा जाता है, फिर उसमें मैदा, सूजी और इलायची मिलाई जाती है। छोटे छोटे गोल आकार देकर इन्हें धीमी आंच पर बेक किया जाता है।
2: जब यह पकती है तो इसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाती है।
1: मेरठ में नान खटाई सिर्फ खाने की चीज नहीं है, बल्कि मेहमान नवाजी का भी हिस्सा है। घर में आए मेहमान और चाय के साथ नान खटाई परोसी ना जाए, ऐसे कैसे हो सकता है।
2: अब तो बात करते हैं रेवड़ी की। दोस्तों, सर्दियों का मौसम और रेवड़ी, यह रिश्ता बहुत पुराना है। रेवड़ी तिल और गुड़िया चीनी से बनाई जाती है। यह छोटी छोटी गोल मिठाई होती है जो खाने में कुरकुरी और स्वाद में बेहद शानदार लगती है।
1: मेरठ की रेवड़ी में तिल की गुणवत्ता और गुड़ का संतुलन बहुत ही अच्छा माना जाता है। यहाँ की पारंपरिक दुकानों में आज भी हाथ से रेवड़ी बनाई जाती है।
2: सबसे पहले गुड़ या चीनी को गर्म करके गाढ़ी चाशनी बनाई जाती है, फिर उसमें भुने हुए तिल मिलाए जाते हैं। इसके बाद छोटी छोटी गोलियों का आकार दिया जाए।
1: यह काम बहुत तेजी और कुशलता से करना पड़ता है क्योंकि मिश्रण जल्दी सख्त हो जाता है।
2: तिल में कैल्शियम और आयरन भरपूर मात्रा में होता है। स्वाद में यह शरीर को गर्म रखता है और ऊर्जा देता है।
1: इसीलिए पुराने लोग कहते थे, सर्दी में तिल खाया करो, शरीर को ताकत दिया करो।
2: अब बारी है मेरठ की मशहूर गज्जक की। गज्जक उत्तर भारत की एक पारंपरिक मिठाई है जिसे खास तौर पर ठंड के मौसम में खाया जाता है। यह तिल, गुड़ और घी से बनाई जाती है।
1: बहुत लोग रेवड़ी और गज्जक को एक जैसा समझ लेते हैं, लेकिन दोनों अलग हैं। रेवड़ी छोटी और सख्त होती है, जबकि गज्जक परतदार और हल्की कुरकुरी होती है।
2: यह सिर्फ मिठाई नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा और पुराने स्वादों की पहचान है। इसमें छिपा है अपनापन, मेहनत और भारतीय खान पान की खूबसूरत विरासत।
1: अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि मेरठ की मिठाइयों की चर्चा अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है।
2: तो दोस्तों, इसकी वजह है कि उत्तर प्रदेश सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन यानी एक जनपद एक व्यंजन योजना।
1: और इसमें सिर्फ बड़े उद्योगपति नहीं, बल्कि छोटे हलवाई, घरेलू महिलाएं, स्टार्टअप्स और युवा उद्यमी भी शामिल हो सकते हैं। मतलब अब शर्मा जी की गजक सीधे दुबई और लंदन भी जा सकती है।
2: और यही तो लोकल टू ग्लोबल का असली सपना है।
3: भैया नमस्कार।
4: नमस्कार
3: भैया, ये जो एक योजना आई है सरकार की, एक ODOC योजना, इस योजना के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे बींगा व्यापारी?
4: ये बहुत अच्छी

0: योजना ये सरकार की तरफ से है, क्योंकि इसमें क्या है कि जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वन टेस्ट ये चीज है, एक जनपद एक स्वाद, हमारा मेरठ स्वाद नगरी है और उसी नगरी का एक पेश है नांगटाई। नांगटाई एक ऐसा व्यंजन है जिसमें ना कोई केमिकल है ना कुछ है, इसमें सिर्फ बेसन है, बूरा है और बाकी प्यार है मेरठ का भरा हुआ। तो इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो इससे क्योंकि हम जैसे छोटे व्यापारियों को प्रोत्साहन मिल रहा है और युवा होने के नाते हमें आगे को और स्टार्टअप के और मौके मिल रहे हैं, क्योंकि जब गवर्नमेंट हमें हर चीज़ सहायता देती है, चीज़ करती है, मदद देती है, तो उसमें हम भी एज सिक्योर हो जाते हैं कि अगर मान लो हमें कुछ करना है तो हमें पता है कि गवर्नमेंट से हमें मदद मिल जाएगी। और गवर्नमेंट के साथ साथ हमें जैसे पैकेजिंग के लिए आइडिया मिल रहे हैं और बहुत चीज़ है, तो वो हमें डे बाई डे नई नई गाइडलाइंस मिलती रहती हैं उससे।
1: और साथ ही अब जैसे भारत में तो नानकटाई मशहूर है ही, अब वैश्विक स्तर पर पहचान बनने वाली है इस योजना के माध्यम से।
0: जी बिल्कुल, वैसे स्तर पर बिल्कुल बनेगी, क्योंकि अब जो हम यहाँ पर रह रहे हैं मेरठ पे, अब जो मेरठ का युवा बाहर जाके अमेरिका रहने लग गया, कनाडा रहने लग गया, वो उन्हें जो होती थी वहाँ पर जाके बोली एक क्रेविंग होती थी कि मीठा नांगटाई से खानी है या रेवड़ी से खानी है, उन्हें मंगानी है। तो अब क्या है, इस चीज़ से जब ये आ जाएगी, अब हमें भी फ्लेक्सिबिलिटी और मिल गई, ब्रांडिंग मिल गई, हर चीज़ मिल गई, तो उससे बहुत फायदा पड़ेगा।
1: तो योगी सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का किस तरह से आप शुक्रिया अदा करना चाहेंगे?
0: मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का तो हृदय गहराई से धन्यवाद करते हैं कि आपने इस स्कीम को चालू करा और इससे आपने युवाओं को प्रोत्साहन दिया, छोटे व्यापारियों को प्रोत्साहन दिया, बहुत धन्यवाद।
2: दोस्तों, जब कोई विदेशी पहली बार मेरठ की रेवड़ी खाएगा, उसे सिर्फ तिल और गुड़ का स्वाद नहीं मिलेगा, बल्कि उसे मिलेगा भारत का दिल।
3: उसे महसूस होगा कि यहाँ की गलियाँ, यहाँ के मेले, यहाँ की ठंड और यहाँ के लोग,
2: क्योंकि खाना सिर्फ पेट नहीं भरता, वो आपको संस्कृति से भी जोड़ता है
3: और शायद इसीलिए हर शहर का स्वाद उसकी पहचान बन जाता है।
2: तो दोस्तों, अगली बार जब आप रेवड़ी खाए तो याद रखिए, ये सिर्फ मिठाई नहीं, मेरठ की विरासत है।
3: और कोने में जाने वाला कल यही स्वाद न्यूयॉर्क, पेरिस और टोक्यो की दुकानों में भी बिक रहा हो।
2: लोकल स्वाद, ग्लोबल अंदाज।
3: तो दोस्तों, आप सुन रहे थे आपका अपना फेवरेट कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। ये है आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। श्रोताओं, अब लेते हैं हम आपसे जाने की इजाज़त, फिर मिलेंगे एक और नई कड़ी में कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
4: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
5: प्लीज।

बात का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

नमस्ते आदाब, वेलकम करती हूँ आप सभी का हमारे कार्यक्रम विशेष बातचीत में। दोस्तों, इस दिन को मनाने की खास वजह लोगों के बीच ब्रेन ट्यूमर को लेकर जागरूकता फैलाना है, जिससे कि लोगों को इस बीमारी की पहचान हो सके और समय रहते वो अपना इलाज करा सके। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि इस दिवस की मनाने की शुरुआत जो है वो साल 2000 में जर्मन ब्रेन ट्यूमर एसोसिएशन के द्वारा की गई थी। और आज के इस स्पेशल डे पर आगे की बातचीत हम जारी करेंगे ब्रेन ट्यूमर स्पेशलिस्ट बीएमसी हॉस्पिटल के डॉक्टर मोनीत अग्रवाल जी के साथ, जो कि एक न्यूरोसर्जन है। एफएम मुरादाबाद के स्टूडियो में आपका वेलकम है सर।

0: नमस्कार
1: जी। नमस्ते सर, क्योंकि मैंने आपका नाम पहले ही बता दिया है, लेकिन फिर भी हमारे श्रोताओं को एक बार अपने बारे में जानकारी दें।
0: मैं डॉक्टर मोनित अग्रवाल, मैं न्यूरो सर्जन हूँ और इस समय BMC हॉस्पिटल मुरादाबाद में कार्यरत हूँ। मेरी ट्रेनिंग जापान से हुई है और उसके बाद मैंने मैक्स हॉस्पिटल साकेत में, मेदांता गुड़गांव में, मेरठ में सुभारती मेडिकल कॉलेज में, फिर मुरादाबाद में साई हॉस्पिटल में रहा हूँ और अब मैं BMC हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। मेरी रुचि अगर ऑपरेशन में देखा जाए, ब्रेन में देखा जाए, तो ब्रेन ट्यूमर सर्जरी या फिर स्पाइन सर्जरी, ट्रॉमा सर्जरी, एनोरिज्म सर्जरी इनमें है। और अमूमन देखा गया है कि ब्रेन ट्यूमर्स अब दिनों रात बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं।
1: जी जी, तो सबसे पहला सवाल हमारा आपसे है कि ब्रेन ट्यूमर क्या है?
0: ट्यूमर, जब भी हम ट्यूमर की बात करते हैं, इसका मतलब है अनियंत्रित ग्रोथ होना, वही ट्यूमर होता है। ऐसे ही ब्रेन में है, जब ब्रेन के सेल्स जो होते हैं वो अनियंत्रित कंट्रोल्ड होते हैं और तेजी से बढ़ते हैं, तो उसे हम ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। क्योंकि ब्रेन हमारा स्कल में, मतलब हड्डी के अंदर बंद है, एक बंद डिब्बे में है, तो जब उसमें चीज बढ़ती है तो प्रेशर डालती है, जिसके वजह से हमारे कुछ कार्य कम होने शुरू हो जाते हैं हमारे, और हमारी याददाश्त कंट्रोल होना, सब चीजें बहुत कम हो जाती हैं। तो एक प्रेशर इफेक्ट होता है और ब्रेन का हर हिस्सा एक काम करता है अपना, अगर उसने उस काम को छोड़ दिया तो फिर हमें वो चीज सामने दिखाई देती है जो उसे सिम्टम्स की तरह हमें सामने आता है। तो इसीलिए ब्रेन ट्यूमर अपरामयिक बहुत घातक है, क्योंकि वो तेजी से बढ़ता है और हमें मानसिक रूप से बहुत नुकसान पहुंचाता है वो।
1: ओके, तो बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। अगला सवाल हमारा आपसे है कि ब्रेन ट्यूमर होने की कोई निर्धारित उम्र है या किसी भी उम्र में हो जाता है?
0: ब्रेन ट्यूमर के लिए कोई निर्धारित उम्र नहीं है, ये किसी उम्र में हो जाता है, ये बच्चों से लेकर बड़ों तक, बूढ़ों तक समय पाया जाता है। हर उम्र में इसके अलग अलग टाइप्स हैं जो चीज पाई जाती हैं। बच्चों में अलग तरह के ट्यूमर्स होते हैं, बड़ों में अलग तरह के ट्यूमर्स होते हैं।
1: अच्छा सर, इसका कोई विशेष कारण?
0: अमूमन तो इसको जीन्स में बदलाव या म्यूटेशन ही देखा गया है, मोस्ट कॉमन कारण वही है। लेकिन अब हम कुछ टाइम से देखते हैं कि रेडिएशन, ये एक बहुत बड़ा कारण है। किसी भी मरीज के बहुत ज्यादा सीटी स्कैन हो, एक्सरेज हो, या वो रेडिएशन के आसपास रहता हो, जैसे आजकल मोबाइल यूज करना, ये अपने आप में देखा गया है कि बहुत बड़ा कारण बनता जा रहा है ब्रेन ट्यूमर होने का। ये पाया गया है कि जहाँ टावर्स लगे हुए हैं मोबाइल के, वहाँ के आसपास के लोगों में इसकी संख्या बड़ी है। कुछ सालों में इस चीज को पाया गया है। तो मुझे लगता है कि रेडिएशन से बच के रहना बहुत जरूरी है और व्यायाम करना, ये सब बहुत जरूरी चीजें हैं अगर हम चाहते हैं कि हम उनकी रोकथाम कर सकें।
1: जी, तो आज जैसा कि वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे है, और इस पर हम आपसे अगला सवाल ये जानना चाहेंगे कि पूरे वर्ल्ड में ब्रेन ट्यूमर कितने प्रतिशत लोगों में पाई जाती है?
0: अगर हम पूरे विश्व की, वर्ल्ड की बात करें, तो अमूमन ये देखा गया है कि ये अमूमन 1 लाख में से 11 लोग जो हैं वो इस बीमारी से प्रभावित हैं, जो अपने में बहुत बड़ी संख्या है। और इंडिया में इसे पाया गया है कि करीब अमूमन 28,000 लोग इस बीमारी से हर वर्ष ग्रसित होते हैं और जिनमें 24,000 लोगों की डेथ होती है। ब्रेन ट्यूमर सबसे खतरनाक ट्यूमर में से है। आप सोचते हैं कि पूरा हमारा शरीर जो है वो, हमारा हर चीज जो है हमारे ब्रेन से काम करती है, अगर वहीं का कोई पार्ट काम नहीं कर रहा, तेजी से ग्रो कर रहा है, तो खतरनाक है। इवन अब इसे कई जगह तो स्किन के ट्यूमर से भी ऊपर पाया गया है। इंडिया में सबसे कॉमन जो हम मानते हैं माउथ का कैंसर मानते हैं, अब उसके बाद इसका नंबर आना शुरू हो गया है।
1: तो संख्या बहुत बड़ी है जैसा कि आप बता रहे हैं, और लोगों को इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जागरूक कर सकें, बस ऐसी हमारी कोशिश है, और आप लोगों की कोशिशें तो लगातार जारी हैं। अगला सवाल ये है कि महिला या पुरुष, कौन सी कैटेगरी में ब्रेन ट्यूमर ज्यादातर शिकायतें पाई जाती हैं?
0: इसमें ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है कि चीज महिला में या पुरुष में ज्यादा पाई जाती है। अमूमन बर्तल, हाँ, टाइप्स ऑफ ट्यूमर्स चेंज हो जाते हैं, जैसे मेनिन्जियोमास टाइप ट्यूमर है जो कि फीमेल्स में या महिलाओं में ज्यादा पाए जाते हैं, और ग्लायोमास है जो पुरुषों में ज्यादा पाए जाते हैं। इनमें मतलब ऐसा कोई डिफरेंस नहीं कर सकते कि ये ट्यूमर है ये महिलाओं में ज्यादा रहेगा या पुरुषों में ज्यादा रहेगा या बच्चों में ज्यादा रहेगा, ये अलग अलग है, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है इस चीज।
1: अच्छा, जैसा कि आपने बताया अभी कि ब्रेन ट्यूमर के प्रकार भी अलग अलग होते हैं, तो कुछ नाम बता दीजिए।
0: जैसे मैंने बताया, मेनिन्जियोमास हैं, ग्लायोमास हैं, न्यूरोमास हैं, शोनोमास हैं, मेटास्टेसिस हैं, इस तरह से अत्यंत हेमेंजियोमास हैं, हेमेंजियोब्लास्टोमास हैं, रिनोफेरेंजियोमास हैं, इस तरह के कई ट्यूमर्स हैं। शायद इसका हमारे श्रोताओं को इतना ज्ञान की जरूरत नहीं होगी, लेकिन उन्हें ये समझना बहुत जरूरी है कि ये चीज बढ़ती जा रही है और जिसका रोकथाम हो या जैसी पता चले उसका तुरंत इलाज हो,
1: जी, जैसा कि आपने कहा कि जैसे ही पता चले इसका तुरंत इलाज हो, तो हम ये जानना चाहेंगे कि इसके लक्षण क्या हैं, लोग पहचाने कैसे।
0: देखिए, इसके लक्षण बहुत आम लक्षणों में से है। आपको सर दर्द होता है, रोज होता है लोगों को सर दर्द, तो इसका एक बहुत बड़ा लक्षण सर दर्द है। उल्टी आना है, घबराहट होना है, चक्कर आना है, और याददाश्त कम होना है, हाथ पैरों का कम मूवमेंट होना है, कम दिखाई देना है, बोलने में दिक्कत आना है, मुंह का टेढ़ा होना है। इस तरह कई लक्षण हैं जो हम ब्रेन ट्यूमर में भी देखते हैं, और ये हमें कई और बीमारियों में दिखते हैं। ये एक डॉक्टर ही आपको, एक न्यूरोसर्जन ही आपको अच्छी तरह बता पाएगा कि ये चीज किस सिम्टम्स, जो सिम्टम्स हैं, ये ब्रेन ट्यूमर कैटेगरी में बैठते हैं या नहीं बैठते। पर जैसे ही आपको कोई लक्षण दिखाई दे, आपको मेनली उल्टियां, अगर सर में दर्द उल्टियां बहुत हो रही हैं, तो आप तुरंत किसी न्यूरोसर्जन को दिखाएं, क्योंकि एक चांस है कि ब्रेन ट्यूमर ना हो।
1: जी, बहुत ही खतरनाक बीमारी है, और लक्षण तो आपने बताए। हम उम्मीद करते हैं श्रोताओं को समझ में आई होगी, और अगली बार से अगर ऐसे लक्षण उनको दिखाई देंगे तो जरूर वो जांच कराएंगे जाके हॉस्पिटल में। अगला सवाल हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ब्रेन ट्यूमर जैसा कि बहुत खतरनाक बीमारी है, तो इससे बचने के क्या क्या उपाय कर सकते हैं?
0: देखिए, ब्रेन ट्यूमर से बचना, क्योंकि ये मेनली जीन्स म्यूटेशन की वजह से ज्यादा होता है, तो इसलिए बचना तो मैं कहूँगा कि इतना नहीं है, क्योंकि ये तो जेनेटिक ही होना है चीज। लेकिन अभी भी मोबाइल का यूज कम करें, पहली चीज। रेडिएशन से दूर रहें, फिर अल्कोहल का या स्मोकिंग का सेवन कम करें, क्योंकि अगर कुछ होता भी है तो हमारी हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम हेल्दी रहेंगे तो उसे फाइट कर सकते हैं। हमारी इम्यूनिटी डेवलप रहती है, जब हमारी इम्यूनिटी डेवलप कम हो जाती है तो ये सब चीजें, बीमारी धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं। तो इसलिए हेल्दी लाइफस्टाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस, और कोशिश करें कि मोबाइल का यूज कम करें और रेडिएशन से थोड़ा दूर रहें, सही नींद लें और व्यायाम करते रहें, वो बहुत जरूरी है इसके अंदर।
1: क्या बात है, तो उम्मीद है दोस्त इस चीज का पालन जरूर करेंगे जो अभी डॉक्टर साहब ने हमें बताया। अगला सवाल ये बता दीजिए, इस बीमारी का उपचार क्या है?
0: देखिए, सबसे पहला तो हमें इसका पता लगाना बहुत जरूरी है। जो पता लगाने के लिए हम कर सकते हैं, एक तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन है जो न्यूरोसर्जन कर सकता है आपका, और उसके बाद सीटी स्कैन जो सबसे पहले डायग्नोसिस होती है, फिर एमआरआई जो हमें और अच्छी तरह बता पाती है, फिर एंजियोग्राफी है, पेट सीटी स्कैन है, कई तरह के और हमें जांचें हैं जो हम करके पता लगाएं कि ब्रेन ट्यूमर कहाँ पर है, कितना बड़ा है, कितना नुकसान पहुंचा रखा है, क्योंकि सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। जब इनका पता चलेगा तभी इसका प्रॉब्लम इलाज कर पाएंगे। अब हम इलाज की बात करते हैं, तो ब्रेन ट्यूमर का सबसे बड़ा इलाज, सबसे अच्छा इलाज तो सर्जरी ही है, पर अब कुछ नई पद्धति भी आई है। जैसे हम गामा नाइफ कर सकते हैं, मतलब हम रेडिएशन को, किरणों को एक तीव्र गति से एक पॉइंट पर भेजें, तो उस एरिया को वहाँ पे छोटा कर सकता है, जला जा सकता है, सो उसे हम रोकथाम कर सकते हैं। इसी में आगे डेवलप हुआ है साइबर नाइफ, जो कर सकते हैं, जो कि ज्यादा एडवांस है गामा नाइफ से भी। नाइफ हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हम एक से कट कर रहे हैं उसको, इसीलिए हम उसे नाइफ वर्ड यूज करते हैं उसके लिए। और अगर हम ये करते हैं तो हम उस ट्यूमर की रोकथाम कर सकते हैं, टाइम पे कर सकते हैं उसकी। अब रोबोटिक सर्जरी का भी इसके अंदर धीरे धीरे रोल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है।
1: जी जी जी, तो बहुत सारे आपने उपचार बताए हैं, बहुत सारे तरीके बताए हैं। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि आप बीएमसी हॉस्पिटल में कार्यरत हैं अभी, तो यही जानना चाहेंगे कि ब्रेन ट्यूमर को लेके वहाँ पे पेशेंट के लिए क्या क्या फैसिलिटीज मिलती हैं?
0: वहाँ बहुत उत्तम फैसिलिटीज हैं, हम काफी ब्रेन ट्यूमर्स ऑपरेट करते हैं, हमें वो सारी फैसिलिटीज हैं जो एक हॉस्पिटल में चाहिए होती हैं, एक एडवांस सेंटर में चाहिए होती हैं ब्रेन ट्यूमर्स के लिए, और पेशेंट्स रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं हमारे। और इस चीज है कि जो भी फैसिलिटीज आपको चाहिए वो सारी हैं, आईसीयूज, ओटी, ट्रेंड स्टाफ, सब कुछ वहाँ मौजूद है, सब इन्वेस्टिगेशन हो सकती हैं, तो वहाँ आपको किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
1: सर, इस बीमारी को लेके एक छोटा सा मैसेज जो हमारे पब्लिक को देना चाहते हैं आप?
0: मैं अपनी जनता को कहना चाहूंगा कि जब भी उनको सर में दर्द हो, उल्टी लगे, या उनमें जरा भी घबराहट हो और उनको लगे कि कुछ अमूमन अलग चीज हो रही है, उनसे जो रूटीन करते हैं उससे कुछ अलग हो रहा है, हाथ पर काम कम कर रहे हैं या आंखों से दिखना कुछ कम हुआ है, तो तुरंत उसको कभी भी देर ना करें, उसे फर्स्ट वार्निंग साइन समझें और तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। अमूमन कहते हैं कि एक सर में दर्द हुआ, हमने गोली खा ली, दर्द की गोली खा ली, दर्द निवारक दवा ले ली, दर्द ठीक हो गया, उल्टी गोली खा ली, ठीक हो गया वो चीज, पर अंदर अंदर वो पनप रहा होता है। और आप समझिए, बहुत खतरनाक बीमारी है, जब 28,000 लोग साल के इसे ग्रसित होते हैं और 24,000 मर जाते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी खतरनाक बीमारी है। और इसे जितनी जल्दी रोकेंगे उतनी जल्दी फायदा होगा मरीज को, सर्जन को भी ऑपरेशन करने में आसानी है और ज्यादा बेनिफिट होगा। अगर आप लेट करेंगे तो ऑपरेट के बाद ही ज्यादा बेनिफिट नहीं होता है इसका। और ऐसी बीमारी, और कई ट्यूमर्स तो जो बेनाइन होते हैं, अगर हमने निकाल दिया पूरा, तो आपकी लाइफ नॉर्मल है, तो जितनी जल्दी उसे करेंगे उतना अच्छा है। तो मेरा मानना है कि जरा भी आपको सिम्टम लगे या एक साइन दिखे आप तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, ये बहुत जरूरी है आपके लिए जिससे कि आपकी जिंदगी बचाई जा सके।
1: ये थे हमारे साथ बीएमसी हॉस्पिटल के डॉक्टर मोनित अग्रवाल जी। बहुत ही कीमती वक्त निकाला इन्होंने हमारे पब्लिक को, ये एक छोटा मैसेज दिया जिससे लोग जागरूक हो सके और समय रहते अपना इलाज करा सके। FM मुरा

0: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
1: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सांसें सही, जिंदगी सही।
2: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड मुरादाबाद।
3: सनी डे,
4: इट इज अ सनी डे।
3: ओ सनी, शेड्स दे यार।
4: यार सॉरी।
3: और फिर मिला है तुलसी?
4: कितने ब्रो, मेरी तुलसी कुमारी को क्या पता है ही नहीं यार।

0: Here is how I created
1: पहले से ज्यादा तेज, आसान और पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने अविनियम प्रक्रिया के दूसरे चरण के अंतर्गत प्राथमिकता क्षेत्र 21 पर विस्तृत अध्ययन किया, जिसमें 18 विभागों को शामिल किया गया और सिंगल विंडो प्रणाली पर उपलब्ध 95 प्रमुख सेवाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि सरकार का सूचना प्रौद्योगिकी विभाग डिजिटल तकनीक और बेहतर कार्य प्रणाली के जरिए लोगों तक तेज, आसान और नागरिक केंद्रित सरकारी सेवाएं पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रहा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि देश का तिरंगा राष्ट्र की एकता, अखंडता, बलिदान और स्वाभिमान का गौरवशाली प्रतीक है। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के दमकल विभाग ने आज अटल आदर्श प्राथमिक विद्यालय और अटल आदर्श विद्यालय में अग्नि सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में छात्रों और विद्यालय के कर्मचारियों को आग से बचाव, सुरक्षित तरीके से बाहर निकलने की प्रक्रिया, आपातकालीन स्थिति में कार्रवाई और आग बुझाने वाले उपकरणों के सही इस्तेमाल के बारे में जरूरी जानकारी दी गई। दिल्ली नगर निगम ने आज मजनू का टीला क्षेत्र में आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उद्घाटन किया। निगम ने कहा कि ये केंद्र स्थानीय नागरिकों को सुलभ, समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराएगा, जिससे क्षेत्र की स्वास्थ्य सुविधाएं सुदृढ़ होंगी। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने आज नई दिल्ली स्थित कर्तव्य भवन में आयुष्मान आरोग्य शिविर का आयोजन किया। मंत्रालय ने बताया कि इस शिविर में कर्तव्य भवन 1 में कार्यरत अधिकारियों, कर्मचारियों, गृह व्यवस्था कर्मचारी और सफाई कर्मियों के लिए निशुल्क स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था की गई। इस शिविर का उद्घाटन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव आराधना पटनायक द्वारा किया गया। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने आज पटियाला हाउस न्यायालय के पीछे स्थित एक आधुनिक सार्वजनिक शौचालय का उद्घाटन किया। एक रिपोर्ट।
2: श्री चहल ने बताया कि लगभग 42 से अधिक वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाले NDMC क्षेत्र में वर्तमान में 364 सार्वजनिक स्वच्छता इकाइयां संचालित हैं, जिनमें 200 से अधिक सार्वजनिक शौचालय, 40 सामुदायिक शौचालय और 33 सार्वजनिक मूत्रालय शामिल हैं। उन्होंने बताया पटियाला हाउस न्यायालय के पीछे स्थित यह सार्वजनिक शौचालय लगभग 50 वर्ग मीटर क्षेत्र में 22 लाख की लागत से आधुनिक सुविधाओं से बनाया गया है। श्री चहल ने बताया कि आधुनिक सुविधा में महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग ब्लॉक बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि पुरुष ब्लॉक में 3 शौचघर, 5 सेंसर आधारित यूरिनल और महिला ब्लॉक में 3 शौचघर की व्यवस्था की है। शिवांग की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए विशेष शुक्ला।
1: दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA द्वारा आज DDA कर्मजीवी आवास योजना 2026 का शुभारंभ किया गया। प्राधिकरण ने बताया कि इस आवास योजना के अंतर्गत नरेला के पॉकेट 11 में स्थित 1200 से अधिक रहने योग्य फ्लैटों पर 25% की विशेष छूट प्रदान की जाएगी। प्राधिकरण ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य कामकाजी पेशेवरों के लिए घर का स्वामित्व अधिक किफायती और सुलभ बनाना है तथा राष्ट्रीय राजधानी में नियोजित शहरी विकास और समावेशी विकास के प्रति DDA की प्रतिबद्धता को और सुदृढ़ करना है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के सभी स्टेशन अब यात्रियों के लिए खुल गए हैं। इससे पहले दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सुरक्षा कारणों से 17 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए थे। इनमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, झंडेवालान, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, ITO, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल थे। दिल्ली के करोल बाग में एक इमारत की ऊपरी मंजिल पर आग लग गई। दिल्ली अग्निशमन सेवा ने बताया कि आग पर काबू पाने के लिए दमकल गाड़ियां भेजी गई हैं। दिल्ली पुलिस ने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है। पुलिस ने बताया कि ऊपरी मंजिल पर बने एक पेइंग गेस्ट में फंसे दो छात्रों को सुरक्षित निकाल लिया गया है और एक छात्र को मामूली चोटें आई हैं। अग्निशमन सेवा ने कहा कि अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है और बचाव अभियान जारी है। दिल्ली सरकार ने सभी सरकारी अस्पतालों की मॉनसून स्वास्थ्य तैयारी की समीक्षा के दौरान आवश्यक दवाइयों का पर्याप्त भंडार, पैथोलॉजी और जांच सुविधाएं तथा चिकित्सा संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने मॉनसून के दौरान डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया सहित अन्य मौसमी बीमारियों के खतरे को देखते हुए सभी अस्पतालों को पूरी तरह सतर्क और तैयार रहने को कहा है। इसके अलावा अस्पतालों की नियमित निगरानी और किसी भी स्तर की लापरवाही पर कड़ी विभागीय कार्रवाई के भी निर्देश जारी किए गए हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज फिलीपींस के मनीला में आयोजित क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। एक संयुक्त वक्तव्य में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। साथ ही आसियान की एकता और केंद्रीय भूमिका के लिए अपने अटूट समर्थन की पुष्टि की।
0: In this era of volatility and disruption,
3: उथल पुथल के इस दौर में आपूर्ति श्रृंखला पर सबसे अधिक दबाव दिख रहा है। ऊर्जा, भोजन और स्वास्थ्य सुरक्षा को अब हल्के में नहीं लिया जा सकता। इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करना बहुत जरूरी है। वर्ष 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष के तौर पर मनाया जाएगा। साथ ही भारत और आसियान दोनों ही अपने भविष्य को लेकर उम्मीद से भरे हैं, इसलिए चुनौतियों का सामना करते हुए भी हमें मौकों पर पूरी तरह ध्यान देना चाहिए।
0: इवन वाइल एड्रेसिंग चैलेंजेस,
1: नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा से नई दिल्ली में मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने बताया कि मेघालय की हवाई संपर्क को मजबूत करने पर उनकी मुलाकात सार्थक रही। बैठक के दौरान उन्होंने शिलांग हवाई अड्डे पर रनवे के विस्तार और नए टर्मिनल भवन के निर्माण के साथ साथ उड़ान योजना के अगले चरण में राज्य भर में हवाई अड्डों और हेलीपोर्ट के बुनियादी ढांचे को उन्नत करने पर भी चर्चा की। राजधानी दिल्ली में आज दिन के समय कई क्षेत्रों में हल्की वर्षा हुई। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25.8 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग ने कल बादल छाए रहने और कुछ जगहों पर हल्की बारिश के साथ हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा पेपर लीक सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित। सरकार ने कहा, युवाओं के भविष्य की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने डीडीए कर्मजीवी आवास योजना का शुभारंभ किया। दिल्ली नगर निगम ने मजनू का टीला क्षेत्र में आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उद्घाटन किया। और दिल्ली सरकार ने सभी सरकारी अस्पतालों में आवश्यक दवाइयां और चिकित्सा संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
3: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
4: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
4: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेस 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
1: कॉल 7500153841।
5: आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो। मैं हूं आपका दोस्त आनंद, और एक बार फिर से आपकी शाम को खूबसूरत बनाने के लिए कुछ खूबसूरत लोगों को स्टूडियो में हम लेकर हाजिर हो गए हैं। हमारे बीच में एक बहुत ही कमाल के कलाकार मौजूद हैं, जो आज आपकी शाम को और भी खूबसूरत और भी शानदार बनाने वाले हैं। तो दिल थाम के बैठिए मेरे दोस्त, और साथ में अखिल भैया भी मौजूद हैं स्टूडियो में, और आज हमारे बीच में शाम को और भी ब्यूटीफुल बनाने के लिए कमल शर्मा जी हैं। तो और वो क्या करते हैं, उनका बैकग्राउंड है, मैं चाहूंगा कि हमारे श्रोताओं को वो जरूर बताएं अपने बारे में। और मैंने ऐसा सुना है कि वो पहले भी रेडियो पे आ चुके हैं, तो यानी कि उनकी आवाज पहली बार नहीं जा रही है श्रोताओं आपके कानों में, हो सकता है पहले भी आपने उनको सुना हो। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में, कैसे हैं आप? बहुत बहुत वेलकम है।
6: मैं बहुत बढ़िया हूँ, धन्यवाद आपका बहुत बहुत इंट्रोड्यूस कराने के लिए। मेरा नाम कमल शर्मा है।
5: जी कमल शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम आनंद है। मुझे अपना नाम भी तो बताना पड़ेगा ना अखिल भाई, बहुत जरूरी है क्योंकि हम जिनसे बात कर रहे हैं उनको पता तो होना चाहिए।
7: आपका नाम आनंद है और यहाँ आनंद मैं सीन चल रहा है।
5: देखो A4 आनंद, A4 अखिल, NK4 कमल शर्मा जी। तो सर कैसे हाल चाल है आपके?
6: बहुत बढ़िया।
5: अरे वाह, जैसे मैंने बताया अपने श्रोताओं, क्योंकि आप पहले भी आ चुके हैं, तो पहले आप आ चुके हैं या मैंने मतलब वैसे फ्लो फ्लो में बोल दिया?
6: नहीं, पहले आ चुके हैं।
5: अच्छा, प्रोग्राम, यानी कि आपने प्रोग्राम कर दिए हमारे स्टूडियो में, लेकिन मेरा और आपका फर्स्ट टाइम संवाद हो रहा है।
6: मे बी शायद टाइम
5: नहीं, हाँ मे बी हो सकता है, लेकिन मैं नहीं मिला सर से, इसलिए मैं, मेरे को लगा शायद आप पहली बार आए हैं।
6: नहीं, हमारे जो प्रोग्राम रिकॉर्ड होते थे ज्यादा संडे में होते थे,
5: संडे में हमारी छुट्टी होती है ना, यही
7: संडे इज लाइक फंडे ना।
5: सही बात है,
6: क्योंकि संडे में शायद कोई ऐसा स्पेशल प्रोग्राम होता नहीं है, तो इसलिए दोपहर में हम लोग उसकी रिकॉर्डिंग करते थे।
5: अच्छा जी, रिकॉर्डिंग वाला शो, अब समझ गया मैं। चलो बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा लगा आज आप आए। तो आज हमारे श्रोताओं को आप बहुत कुछ सुनाने वाले हैं, हमें सूत्रों से पता लगा है।
6: सूत्रों से
5: लोगों ने हमें ऐसा मैसेज दिया है कि आज जो है कमल शर्मा जी हंसाने वाले हैं, और हमारे जो पड़ोस अखिल भैया बैठे हैं वो भी कुछ जो है आज बढ़िया सी चटपटी बातें करने वाले हैं। क्यों अखिल भैया, अपने बारे में थोड़ा बताओ। जी अखिल भैया बताओ जरा।
7: मैं अपने बारे में यही बताना चाहूंगा कि मेरे अंदर भी एक शायरी और एक पोइट्री वाली चीज है। मतलब क्या, मुझे भी उन चीजों से बहुत प्यार है और बहुत लगाव है, मैं बहुत सुनता भी हूँ इन सब चीजों को, और जो मेरे साथ है ना वो चलती फिरती आती है, मतलब एकदम एट रैंडम आती
5: है, रैंडम आती है,
7: और मैं एकदम आपको सुना देता हूँ। तो ये तो मेरे पास अच्छा मौका है।
5: मैं तो अखिल जी को जितना मैं जान पाया हूँ, ये वो आदमी, इनको जहाँ शिफ्ट कर देते हो वहीं शिफ्ट हो जाते हैं। इनको शेरो शायरी में डाल दो आप वहीं शुरू हो जाते हैं, इनको RJ में डालो, इनको इंस्टाग्राम की रील में डालो ये वहाँ फिट हो जाते हैं। आज ही ये मेलोडी खा के आए हमारे साथ इंस्टाग्राम पे, ये मतलब ऑलराउंडर वाले हैं, बढ़िया वाले, जबरदस्त इंसान। तो सर आपका हम स्वागत करते हैं, और हम चाहेंगे कि हमारे सुनने वालों को आप भी थोड़ा अपने बारे में बताएं।
6: मेरा नाम कमल शर्मा है
5: जी।
6: मैं यहाँ मुरादाबाद में ही जॉनसन जॉनसन सर्जिकल सेल्स में पॉइंट हूँ।
5: अरे वाह।
6: तो जैसे कभी बोलता हूँ तो लोग ये सोचते हैं कि भाई एक तरफ ये और एक तरफ लिखना, तो ये कैसे पॉसिबल हो पाता है?
5: जी ये तो मेरे दिमाग में भी चल रहा है कि कैसे पॉसिबल होता होगा,
6: बट ये है कि अब अगर हम इस चीज को मैनेज कर पाते हैं, कुछ ऐसा कर पाते हैं, तो अच्छी चीजें निकल रही है। अगर दोनों विपरीत छोरों को मिलाकर हम एक नई चीज निकाल रहे हैं,
7: नहीं तो ये अच्छी बात है। ये तो आप ऐसे कहते हैं कि ये भी एक तरीके से जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स है।
5: करेक्ट करेक्ट, और ये भी एक क्रिएटिविटी है कहीं ना कहीं। और सर जो इंसान का लगाव होता है ना जिस चीज से, वो उसके लिए समय भी निकाल लेता है और टाइम भी मैनेज कर लेता है।
7: कभी कोई ऐसा वाक्य हुआ है आपके साथ कमल जी कि आप वहाँ बैठे हो और आपने वहाँ पे अपने सेल के, अपने प्रोडक्ट के साथ साथ शायरी भी सुना दी हो?
6: नहीं नहीं अब तो ऐसा है ना कि जो खासम खास लोग हैं सब जानते हैं कि हाँ कमल कुछ लिखता है, तो जैसे कभी कभी बैठे होता अच्छा है चल उसको सुना दो चल, तो फिर वो उस समय ये है कि अब आप उसमें मुकर नहीं सकते
8: अंदर का जो शायर बाहर आ ही जाता
6: वो,
8: है
6: नहीं नहीं वो तो काफी बार आ चुका है
8: अच्छा
6: तो काफी बार आ चुका है ये इतना तो बार आ गया कि एफएम पे भी आ गया।
8: अरे वाह बहुत बढ़िया। तो सर आज मैं भी सुनना चाहूंगा आपके वो अच्छी अच्छी शायरी और जो आपका अंदाज है उसको अपने श्रोताओं के साथ, तो आप कैसे शुरुआत करेंगे क्या कुछ खास सुनाएंगे आज?
6: तो पहले तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा अपना परिचय दे दूं कुछ पंक्तियों
8: मैं वही चाह रहा हूँ बिल्कुल जबरदस्त होना चाहिए सर मजा आ जाएगा। बिल्कुल सर पंक्तियों के माध्यम से दीजिए।
6: तो लीजिए पेश है कि जीवन अपना क्या है कमल, जीवन अपना क्या है कमल बस चादर एक झीनी है।
8: वाह।
6: जीवन अपना क्या है कमल बस चादर एक झीनी है, खुशियां मिले या गम हमको अब जैसी है जीनी है।
8: क्या बात है।
6: खुशियां मिले या गम हमको अब जैसी है जीनी है, कुछ कोरे पन्ने हैं जिन पर शब्दों के रंग भरने हैं।
8: वाह।
6: कुछ कोरे पन्ने हैं जिन पर शब्दों के रंग भरने हैं है। और अदरक वाली चाय कमल सुबह शाम पीनी
7: है। अरे क्या बात बहुत खूब।
8: मजे की बात ये कि आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस भी
6: बिल्कुल,
8: है।
6: बिल्कुल बिल्कुल
8: ये तो आपने
6: या मजे को रिलेट किया
8: हाँ, मैं भाई आप सुबह हमने सेलिब्रेट किया और देखिए चाय की बात भी हो गई है, तो हम आपको चाय पिलाकर ही भेजेंगे और अदरक भी डलवाएंगे आप चिंता ना करें। समझ गए हम आपकी बात आपकी शायरी से। तो श्रोताओं ये जो मस्ती है जो फन है वो लगातार बरकरार रहेगा इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। रुकते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद आएंगे। आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 आरजे आनंद अखिल और कमल शर्मा जी के साथ।

0: और फिर से वेलकम बैक है आज हंसने के लिए और कुछ प्यारी प्यारी बातें सुनने के लिए और सुनाने के लिए हमारे स्टूडियो में इस वक्त उपस्थित हैं कमल शर्मा जी। सर एक बार फिर से आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद सर
0: जी। अदरक वाली चाय तो आपने हमें याद दिला दी, आप उम्मीद करेंगे कि हमें पिलवाई भी जाए क्यों अखिल जी?
2: बहुत बहुत सही कहा आपने।
0: नहीं लेकिन इस वक्त कमल सर कह रहे हैं कि नहीं बेटा इस टाइम पे चाय आप हमें पिलवाइए, हमें ज्यादा जरूरत है, हम आपके गेस्ट हैं। जी सर।
1: यस सर।
0: जोक सपाट तो चलता रहेगा श्रोताओं, फिलहाल कमल सर हम आपकी तरफ आना चाहेंगे। आपने चार पंक्तियां सुनाई लेकिन वो जबरदस्त वाली थी, अब कुछ और हो जाए हमारे श्रोताओं के लिए बढ़िया सा, जो अपने हाल फिलहाल में कुछ अच्छा लिखा हो।
1: हाल फिलहाल में क्या, बस अभी अपने घर से यहाँ तक आते हुए दो लाइनें दिमाग में आई थी।
0: अरे वाह, यही तो खूबसूरत होती है, खूबसूरती एक कलाकार की। जी सर।
1: कि बुढ़ापा कह रहा है जवानी दे दो।
0: वाह
2: क्या बात है।
1: बुढ़ापा कह रहा है
0: जवानी दे दो
1: और आत्मा कह रही है एक गिलास ठंडा पानी दे दो।
0: बहुत ही बढ़िया, क्या बात
2: बहुत
0: है।
2: बढ़िया, बहुत बढ़िया।
0: पानी की बोतल है कि ठंडी?
2: बगल वाला, बगल वाला नाई कह रहा है कि भाई साहब कलर हाँ। वाली डाई दे दो।
1: चलिए मैं आपको गली करवा लिया था, वो मैंने गली करवा लिया था।
0: हाँ सर को देख के लग रहा है बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया।
2: आनंद तुम्हारी तरफ से शायरी बोलना चाहूंगा
0: सर। बिल्कुल, मैं तो बोल नहीं पाता हूँ, आप मेरी तरफ से।
2: मैंने पिछली बार तुम्हारी तरफ से बोली थी, इस बार
0: बिल्कुल बिल्कुल श्योर सर।
2: मैं अभी अपने सभी श्रोताओं से कहूंगा कि जो मेरे शब्द हैं वो कहीं ना कहीं आनंद के शब्द हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, वो समझ रहे हैं, जहाँ पे जूता पड़ने की बात आएगी वो अखिल जी के शब्द हैं, आप थोड़ा समझ जाइएगा।
2: तेरी डीपी पे आज भी दिल जाता है।
0: वाह।
2: तेरा ऑनलाइन आना मौसम बदल जाता है।
0: वेरी नाइस।
2: अब मोहब्बत खतों में कहाँ मिलती है जनाब, अब तो टाइपिंग टाइपिंग में ही दिल बहल जाता है।
0: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। फिलहाल तुम टाइपिंग टाइपिंग नहीं कर रहे, हम बातें बातें कर रहे हैं और वो भी हमारे कमल जी के साथ। बहुत ही अच्छा अखिल भैया आपने बताया, और ये अखिल जी ऐसे बीच बीच में अपने मजेदार शायरी से आपको हंसाते रहेंगे। और एक बार फिर से हम कमल सर की ओर आगे बढ़ेंगे। जी सर, आपने वो दो शब्द तो सुना दिए जो आपके जहन में अभी आए, और बड़े मतलब इस्तफाक की बात है कि एकदम रियल वाले थे।
2: अच्छा,
0: ऐसा लग रहा है
1: अचानक दिमाग में आया था,
0: अचानक तो आया, लेकिन ऐसा लग रहा है मैं भी ये बात कहने वाला हूँ थोड़े दिन के बाद।
1: रस्ते में
0: ठंडा पानी, ठंडा पानी पिलवाएंगे, चिंता ना करो आप। जी सर, आप थोड़ा सा कुछ और नया सुनाइए सर।
1: सर नया क्या सुनाऊं, बस
0: जो आपके पास है आज आप वो सुना दीजिए।
1: नाम की वजह से मतलब लोगों की नजरों में रहता हूँ हमेशा।
0: अरे वाह क्या बात है, आज से हम भी आपको अपनी नजरों में रखेंगे। आप
2: नहीं, मगर ये खिले हुए तो बहुत टाइम से हैं।
1: उसका कारण तो जानो ना।
0: जी जी सर प्लीज।
1: कि सामाजिक रूप से तो बहुत अच्छा लगता है
0: जी,
1: कमल कमल कमल।
0: जी जी जी।
1: अगर आप उसका पॉलिटिकल एंगल देखें तो फिर कमल, अच्छा पिछले 12 साल से इन्होंने तो जान खा रखी है, खाते ने रखी है।
0: समझ सकते हैं सर, लेकिन आज हमने आपको इसलिए बुलाया क्योंकि ये वाले जो कमल है इनकी खूबसूरती कुछ अलग ही है।
2: हाँ।
0: तो आप अपनी बातों से और अपने शब्दों से इस कमल की खूबसूरती को और बढ़ा देंगे सर आज की शाम।
1: तो लीजिए चार पंक्ति इसी के नाम पे लीजिए।
0: बिल्कुल सर।
1: कि रोज एक किस्सा नया सहने की आदत हो चुकी है।
0: वाह।
1: रोज एक किस्सा नया
0: सहने
1: की आदत हो चुकी है। क्या करें हमको भी अब कहने की आदत हो चुकी है।
0: क्या बात है जी।
1: क्या करें हमको भी अब कहने की आदत हो चुकी है
0: जी।
1: और हर कदम पर नई सियासत है कमल के नाम पर।
0: वाह।
1: हर कदम पर नई सियासत है कमल के नाम पर। जिंदगी लगता है तू भी भाजपा सी हो चुकी है।
0: अरे क्या बात है, बहुत ही बढ़िया जबरदस्त।
1: तो मैं तो इसको मतलब एक बहुत अच्छा, हम लोग जो होते ना लिखने वाले वो बड़े मतलब चारों तरफ निगाह रखते हैं कि कहाँ से सब्जेक्ट मिले लिखने का।
0: करेक्ट, कहाँ से कंटेंट मिले, ऑब्जर्व करते रहते हैं आसपास में चल क्या रहा है।
1: मेरे साथ एक प्लस पॉइंट गए माइनस पॉइंट गई है, मैं सुबह कम से कम आधा पौना घंटा अखबार पढ़ता हूँ, दो अखबार।
0: बहुत ही बढ़िया,
1: ताकि एक नई चीज आपको पता चलती है, सब्जेक्ट आपको मिलता है कि आपके पास पड़ोस में क्या हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या हो रहा है, राष्ट्रीय स्तर पे क्या हो रहा है।
0: ये तो सर रेडियो में बताते हैं, ये हम रेडियो में भी बताते हैं सर।
2: अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तो आजकल जरा आनंद जी बताएंगे क्या हो रहा है।
0: हम भी रिसर्च करते रहते हैं देश विदेश में क्या चल रहा है, ग्लोबली क्या चल रहा है दुनिया में, क्योंकि लोगों को रेडियो का सुनने का फायदा भी तो होना चाहिए।
1: अब कोई सोचे कि 1 रुपए की टॉफी मशहूर हो गई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे।
0: सही बात है सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, आजकल की शादीशुदा लोगों के बारे में कुछ है आपके पास पंक्तियां, बड़े परेशान रहते हैं आजकल।
1: दुखती रख क्यों छेड़ दिया आपने?
0: अरे मैं आपकी बात नहीं करना चाहता,
1: ये जरूरी था।
0: मैं सोच रहा हूँ जब आप आए हैं तो कुछ सुन लेते हैं।
2: एक बार भाभी ने इनसे पूछा भी,
1: नहीं हंसी माहौल का,
2: कितना प्यार करते हो आप हमें
0: जी,
2: तो इनका पता जवाब क्या है?
0: हाँ जी,
2: जितना फोन 1% बैटरी होने पर चार्जर से प्यार करता है।
0: ये तो जबरदस्त वाली बात कर दी आपने भाई साहब, बहुत ही जबरदस्त। अखिल भैया ने जो शायरी सुनाई है उससे तो मेरा मन कर रहा है कि मैं जल्दी शादी करूं और फिर मैं इस पे जरूर चर्चा करूंगा। फिलहाल तो अभी मेरा कोई इरादा नहीं है दोस्तों। जी अखिल भैया, आप अपनी शायरी को थोड़ा संभाल के रखें, बाद में सुनूंगा। जी कमल सर, आप थोड़ा कुछ फरमाएं, चार पंक्तियां आपकी कुछ बढ़िया सी हो जाएं।
1: तो जो आपने बात करी ना शादीशुदा वालों
0: की, जी जी,
1: तो वो दर्द थोड़ा बाद में खोलेंगे, भी हंसी खुशी का माहौल चल रहा है।
0: अगर आप चाह रहे हैं कि अभी जो है लोगों का दिल वैसे ही टूटा है आजकल, बहुत
2: जाके इन्हें बेलन ना चलाना पड़े,
0: हो सकता है इनके ऊपर चल जाए भाई, कुछ भी हो सकता है।
1: हंसी खुशी का माहौल है तो अच्छी लाइनें निकलती रहनी चाहिए।
0: अच्छी वाली सुना दो, पॉजिटिव वाली, मजा आ जाएगा।
1: कि अच्छा, मैंने जैसे बताया ना कि हम लोग तो सब्जेक्ट ढूंढते रहते हैं,
0: हाँ जी हाँ जी,
1: तो ये कुछ पंक्तियां हैं मैंने लिखी थी कोरोना में।
0: अरे वाह,
1: क्योंकि सब्जेक्ट था बहुत बड़ा सब्जेक्ट,
0: बहुत
1: था
0: बड़ा टॉपिक,
1: और हम लोग तो क्योंकि ढूंढते रहते हैं तो हमारी तो अपॉर्चुनिटी थी बहुत बड़ी।
0: बिल्कुल सर,
1: देखिएगा कि जब भी मिलता हूँ किसी से खुल के मिलता हूँ,
0: वाह,
1: जब भी मिलता हूँ किसी से खुल के मिलता हूँ, मैं जमाने की हवा के साथ चलता हूँ।
0: वाह जी वाह,
1: जब भी मिलता हूँ किसी से खुल के मिलता हूँ, मैं जमाने की हवा के साथ चलता हूँ, और वैसे मुझे पाबंदगी अच्छी नहीं लगती, वैसे मुझे पाबंदगी अच्छी नहीं लगती, बस ढक के चेहरा आजकल घर से निकलता हूँ।
0: वाह क्या बात है, बहुत
2: क्या बात है, बहुत खूब
0: शानदार, और एक मैसेज भी दे दिया, आजकल गर्मियां बहुत है तो चेहरा ढककर ही निकले, ये हो सकती है,
1: ये बात आज भी लागू हो सकती है।
0: एग्जैक्टली, इसीलिए मैंने बोल दिया। वेल दोस्तों, अभी रात में तो खैर आपको धूप नहीं मिलेगी, तो आप चेहरा उघाड़ कर भी चल सकते हैं।
2: आनंद जी, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा।
0: प्लीज सर पूछिएगा।
2: इस मॉडर्न एरा, जो मॉडर्न एरा चल रहा है अभी अपना,
0: जी जी,
2: उसमें प्यार तो बहुत जल्दी हो जाता है।
0: हाँ जी,
2: जो ट्रस्ट है ना आपस में,
0: हाँ हाँ,
2: वो धीरे धीरे क्यों जल्दी खत्म होता है आपके हिसाब से?
0: मैं इस पे जरूर अभी लौट कर आऊंगा तो अपनी टिप्पणी करूंगा, लेकिन श्रोताओं भी एक म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, छोटा सा, बिल्कुल इस पे अपनी ओपिनियन दूंगा, अपनी टिप्पणी करूंगा, अपनी राय दूंगा, अपनी पूरी वार्ता दूंगा, आप चिंता ना करें। बट अभी रुकते एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के लिए, उसके बाद वी कम बैक। आपके हिम्मत जाइए, सुन रही आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: वेलकम बैक हियर वंस अगेन, यू आर लिस्निंग टू एफएम मुरादाबाद। और एक शाम की धमा चौकड़ी मचाने के लिए मैं और मेरे साथ स्टूडियो में दो लोग और हैं, एक को आप जानते हैं, दूसरे को भी आप पहचान ही चुके हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कमल शर्मा जी की और साथ में अखिल जी भी मौजूद हैं। और आज हम बातें कर रहे हैं बहुत सारी आपकी शाम को बेहतरीन बनाने की, कुछ शेर व शायरी से और कुछ जेन्युइन बातें दिल से जुड़ी हुई, प्यार से जुड़ी हुई। जैसे अभी अखिल भाई ने कुछ मेरे पे सवाल छोड़ा था, क्या था आपका क्वेश्चन भैया?
1: मेरा सवाल बस इतना सा है कि इस मॉडर्न एरा में प्यार बहुत जल्दी हो जाता है
0: जी,
1: मगर जो ट्रस्ट है वो धीरे धीरे खत्म होता है।
0: ट्रस्ट धीरे धीरे
1: खत्म हो जाता है।
0: हाँ,
1: ऐसा क्यों?
0: क्योंकि मुझे प्यार नहीं हुआ इसलिए मुझे वो ट्रस्ट भी नहीं पता है। सॉरी, मैं माफी चाहूंगा गाइस, अगर आप में से कोई ये टॉपिक पे कुछ भी कहना चाहता है तो वो इमीडिएटली इंस्टाग्राम पे आके मुझे बताओ ताकि मैं इनको इसका जवाब दे सकूं। वेल आगे बढ़ते हैं। और शायद मुझे लगता है ट्रस्ट इसलिए भी खत्म हो जाता है क्योंकि ट्रस्ट करने वाले लिए अब दुनिया बची नहीं है यार अखिल भाई, मुझे ऐसा लगता है टू बी ऑनेस्ट। मगर अगर मैं अपने तरीके से देखूं तो बहुत ट्रस्ट करके देख लिया लोगों ने एक दूसरे के ऊपर, बदले में सिर्फ एक ही चीज मिलती है, धोखा
1: दगा।
0: तो इसलिए लोग जो है करते नहीं है ट्रस्ट। खैर, हमारे बीच में सीनियर सिटीजन बैठे हैं एक सर, हम उनसे पूछ लेते हैं। आओ घूम फिर के जरा सर के पास चलते हैं। कौन सर, आप बताइए इसके विषय में जरा, जो अखिल सर ने पूछा है अभी।
2: अखिल सर धीरे धीरे उसी विषय पे पहुंचना चाह रहे हैं,
0: आप समझ गए ना,
2: शादी के बाद वाली
0: जल्दी
2: है ना,
0: मैं ज्यादा उखाड़
2: मैं उस हिस्से को भी छूना नहीं चाह रहा।
0: हाँ,
2: मैं सोच रहा हूँ हंसी खुशी का माहौल है तो थोड़ी बातें ऐसी चलती रहे।
0: नहीं, ये उसमें भी खुश हो जाते हैं, ये वो उसमें के आदमी है, आप चिंता ना करें।
2: तो चार पंक्तियां देखिएगा
0: जी सर,
2: क्योंकि शादीशुदाओं की बात चल रही है तो चार पंक्तियां समर्पित किसको हो सकती है,
1: ये तो बाय डिफॉल्ट है,
0: समझदार है।
2: देखिएगा कि लगता है मौसम शहर का अब सुहाना हो गया।
0: वाह
1: क्या बात है।
2: लगता है मौसम शहर का अब सुहाना हो गया, गुनगुनाए होठ जब भी एक तराना हो गया।
0: वाह जी वाह,
2: गुनगुनाए होठ जब भी एक तराना हो गया। वैसे तेरी मौजूदगी जीवन का हिस्सा है मेरे।
0: क्या बात है।
2: वैसे तेरी मौजूदगी जीवन का हिस्सा है मेरे, बैठ कर संग चाय पीना तो बहाना हो गया।
1: क्या बात है,
0: बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूब, बहुत ही खूब जी। अखिल जी, आप इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे?
1: मैं इसमें
0: हाँ, मैं आपसे भी पूछता रहूंगा, आपने बहुत सारी गूगल बाबा साइज निकाल के रखी हुई है सुबह से। हाँ,
1: तेरी आवाज आज भी कानों में रहती है।
0: वाह,
1: तेरी बातें अब भी रातों में रहती हैं। तू दूर होकर भी दूर नहीं मुझसे, क्योंकि तू मेरी हर धड़कन में रहती है।
0: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस। मैं समझ सकता हूँ कौन रहती है, इस विषय में हम बात नहीं करेंगे जी। कमल सर,
2: यस सर,
0: आप अब और क्या स्पेशल सुनाने वाले हमारे श्रोताओं को, आप जो है

0: खराब हो जाती है, ऑलमोस्ट यही हो रहा है आजकल,
1: बिगड़ जाती है
0: एब्सोल्युटली सर, क्योंकि वही रीजन है ना, सामने वाला चाह रहा है तू आ, वो चाह रहा है कि भैया नहीं तू आज इस
1: पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले ट्रेन आप। निकल गई ट्रेन चली गई लखनऊ से,
0: सही कह रहे हैं
1: बनारस,
0: इससे पहले हमारी ट्रेन निकल जाए हम सर आपके पास वापस आ जाते हैं। आप प्लीज कुछ सुनाइए हमारे लिसनर्स को और बढ़िया जबरदस्त सा श्रोताओं के लिए।
1: अगर जी अगर मेरे दोस्त राघव पंक्तियां सुन रहे हो तो मैं चार पंक्तियां उनको ये समर्पित करना चाहूंगा,
0: डेडिकेट करना चाहूंगा कि जरूर सुन रहे होंगे
1: कि महफिल का हर शेर उभरता उसका था,
0: अरे वाह,
1: महफिल का हर शेर उभरता उसका था, एक क्षमा थी, एक क्षमा थी हर परवान का था, एक समा थी हर परवाना जिसका था, वैसे तो हम भी उसके दीवाने थे,
0: जी गजब,
1: वैसे तो हम भी उसके दीवाने थे
0: जी,
1: चलो बताओ वो दीवाना किसका था।
0: अरे वाह क्या बात है राघव जी, देख लो सवाल छोड़ के जा रहे हैं सर, मैं पूछ लूंगा फोन करके आपसे। लास्ट टाइम राघव जी आए थे सर हमारे स्टूडियो में भी रिसेंटली, बहुत ही बढ़िया उनके साथ भी एक संवाद लगा हमने किया, अखिल भाई आप भी थे, बहुत अच्छा सेशन किया उन्होंने और बहुत ही कमाल किया, जबरदस्त लिखते हैं बोलते हैं,
2: ये चीज देखे ना वो एज अ प्रोफेशनली वो एक एडवोकेट है, तो उनके यहाँ भी हल्की सी छाप थी रिश्तों को कैसे टूट रहे हैं और कैसे उसे बचा रहे हैं। और हमारे केमिस्ट साहब हैं हमारे इधर, सर्जिकल सारी सप्लाई इनके हाथ में है, तो इनके में भी वही छाप आ रही है हल्की हल्की सी कि कैसे किसी की तोड़ा है और कैसे किसे जोड़ना। आप क्या कहेंगे आनंद जी?
0: नहीं मैं, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है टू बी वेरी ऑनेस्ट सर आपसे मुलाकात करके, और जो हमारे श्रोता हैं जो हमारे लिसनर हमें सुन रहे हैं आई एम श्योर उनको भी बहुत आनंद आ रहा होगा, और बस यही है छोटी छोटी चीजें हैं जो इंसान को हंसाती है, बट सबसे खूबसूरत चीज मुझे लगती है एक आर्टिस्ट की कि जब वो लिखते हैं ना चार चीजों को सोच के जो वो लिखते हैं और जब उनसे एक नई चीज बनती है उसकी बात ही अलग होती है। शायद अब आप जो सुनाने वाले हैं वो भी कुछ ऐसी ही होगी आई एम श्योर।
2: वो कहती थी हमेशा साथ रहेंगे,
0: वाह,
2: वो कहती थी हमेशा साथ रहेंगे
0: जी,
2: अब उसकी स्टोरी में कोई और नजर आता है,
0: अरे वाह,
2: और हम आज भी वही पुराने स्क्रीनशॉट संभाले बैठे हैं।
0: बहुत ही बढ़िया, मुझे दिखा देना मैं भाभी को दिखा दूंगा।
2: हाँ तुमसे तो कुछ कहना ही गुना है, तुम तो हर बात पे एकदम जो है ना
0: भाभी को ले आते हैं,
2: बिल्कुल गृह मंत्री को ही पकड़ लेते हो, छोटे मोटे मंत्रियों को पकड़ा करो एकदम गृह मंत्री तुम।
0: अरे गृह मंत्री जो कर सकते हैं ना वो छोटे मोटे मंत्री नहीं कर सकते ना, इसलिए हम सीधा वहीं पहुंच जाते हैं मेन पॉइंट पे। सर आप कुछ कह रहे थे?
1: अब अखिल भाई इतने समय से वो पन्ना खोलना चाहते, थोड़ा सा तड़का उसका लगा देता हूँ।
0: अरे सर बिल्कुल डेफिनेटली डेफिनेटली
1: तो तैयार है अखिल जी सुनने के लिए।
0: हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
1: कि जाने कैसे लेख लिखे थे किस्मत ने तकदीरों में,
0: क्या बात है
2: बहुत खूब,
1: जाने कैसे लेख लिखे थे किस्मत ने तकदीरों में, मिलकर भी वह मिलना सका जो था हाथों की लकीरों में।
0: वेरी नाइस,
2: क्या कहा है,
1: मिलकर भी वो मिल ना सका जो था हाथों की लकीरों में, लिखे हुए को किस्मत में वो अब तक समझ नहीं पाया, लिखे हुए को किस्मत में वो अब तक समझ नहीं पाया, घूम रहा लेकर कुंडली पीरों और फकीरों में।
0: अरे बहुत क्या बात है, बहुत ही खूब, बहुत ही
1: जाने कैसे लेख लिखे थे किस्मत ने तकदीरों में, संगी साथी छूट गए, संगी साथी छूट गए, सब रिश्ते नाते टूट गए, बेरंग जिंदगी लगती है कोई रंग नहीं तस्वीरों में।
0: अजी वाह,
1: जाने कैसे लेख लिखे थे किस्मत ने,
0: जबरदस्त,
2: बहुत खूब,
0: बहुत खूब, बहुत खूब।
1: और जो आपने धोखे वाली बात करी
0: जी सर,
1: कि दिल अंदर छलनी छलनी है, दिल अंदर छलनी छलनी है
0: जी,
1: पर बाहर से कोई घाव नहीं,
0: क्या बात है,
1: पर बाहर से कोई घाव नहीं, जाने कितनी धार बची है समय की इन शमशीरों में। शमशीर मतलब तलवार,
0: जी जी,
1: जाने कितनी धार बची है समय की इन शमशीरों में, और कोई दर्द भला कैसे समझे दिल के टूटे अरमानों का, कोई दर्द भला कैसे समझे दिल के टूटे अरमानों का, रांझे की चिंता किसको है सब घिरे हुए हैं हीरों में।
0: अरे क्या बात है, गजब गजब शानदार,
1: जाने कैसे लेख लिखे थे किस्मत ने तकदीरों में, और कोई किस्मत बदल नहीं सकता
0: जी,
1: कोई किस्मत बदल नहीं सकता, कोई होनी पलट नहीं सकता, क्या पता कमल कुछ हो जाए शायद उसकी तदबीरों में, जाने कैसे लेख लिखे थे किस्मत ने तकदीर।
2: बहुत
0: वेरी नाइस सर, बहुत ही शानदार सर, पूरी हो गई
2: अंदर से, अंदर से निकल के
0: सर, लग रहा था और सुनता ही रहूं मैं तो, इतनी शानदार थी ये, वाह जी वाह, गजब,
2: अंदर से निकल के आई है,
0: बहुत ही बढ़िया, एकदम नेचुरल, बहुत ही शानदार सर, बहुत ही आनंद आ रहा है आपके साथ, बड़ा मजा आ रहा है मुझे तो। और मैं बस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद वापस लौट कर आता हूँ श्रोताओं, और हम उसके बाद सर से कुछ पंक्तियां सुनेंगे दोस्ती के ऊपर। आज के टाइम में कहते हैं दोस्ती दोस्ती नहीं रही है, अब जमाना सेल्फिश हो गया है, आजकल जमाना मतलब ही हो गया है, तो थोड़ा सा इस विषय में भी हम सुनते हैं सर के दिल के जज्बात क्या लिखते हैं वो इस पर, बट अभी नहीं, एक से ब्रेक के बाद लौट के आते हैं। आपके हिम्मत जाइए, सुनते रहिए आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए गुनगुनाते रहिए।

0: वेलकम बैक यू वंस अगेन, एक बार फिर से आपकी शाम को और शानदार बना रहे मैं अखिल जी और साथ में हमारे कमल शर्मा जी। कुछ प्यारी प्यारी बातें वो कर रहे हैं आज की शाम, और वो बातें जो शायद कहीं ना कहीं आपके दिल को छू रही होंगी श्रोताओं, और जो शायद इस वक्त सुन रहे हैं उन आपको भी भैया दिल से हमारा सलाम है। अगर आप भी यहाँ पहुंचना चाहते हैं तो हो सकता है अगला स्टेज अगली कुर्सी आपकी नाम हो। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बस हमारे इंस्टाग्राम पे आके हमें एक छोटा सा मैसेज करना है। अगर आप कुछ बेहतरीन लिखते हैं, आप कुछ बेहतरीन सुना सकते हैं, आपको लगता है कि यार मैं भी कर सकता हूँ बढ़िया शेर शायरी, तो मुझे भी मौका मिलना चाहिए, तो आप इंस्टाग्राम फॉलो कीजिए, एफएम मुरादाबाद 89.6 के नाम से मिलेगा, या आप मेरे इंस्टाग्राम पे आके भी मुझे डीएम कर सकते हैं। रेडियो वाला आनंद 95 के नाम से मिलता हूं, वहां पर भी आप हमें बता सकते हैं। अगर आपके अंदर कोई भी बढ़िया सा शेर व शायरी का टैलेंट है, या आप कुछ बढ़िया लिखते हैं, या किसी ऐसे पर्सनालिटी को जानते हैं जिसके अंदर ऐसा टैलेंट है, तो डेफिनेटली हम चाहेंगे वो रेडियो के माध्यम से जन जन तक पहुंचे। क्यों अखिल भाई?
1: बिल्कुल सही बात, और इसी बात से मेरे को एक बात याद आ रही है,
0: प्लीज
1: कि मैं सभी अपने दोस्तों से और उनके दोस्तों से भी बात कहूंगा कि इस बात को याद रखें, जो सच्चा प्यार है कभी खत्म नहीं होता।
0: क्या बात है,
1: बस लोग मजबूर हो जाते हैं। तो ऐसा ही है कुछ कि जो प्यार सच्चा करने वाला है ना, उसका एक अलग है, उससे आप किसी से मैच नहीं करवा सकते।
0: गॉट इट, आई एग्री विद यू 100%, सही बात है। अब सच्चा प्यार मिलता नहीं, वो बात अलग है, है ना?
1: कह सकते हैं।
0: ये भी सच्चाई है, बाकी अपना अपना लक है। क्यों कमल सर?
2: बिल्कुल
0: है ना। अच्छा कमल सर, अभी हमने ब्रेक पे जाने से पहले बात करी थी फ्रेंडशिप के बारे में, मैं बोल रहा था दोस्ती के बारे में, कि लोग कहते हैं कि आजकल दोस्ती जो है पहले वाली नहीं रही, मतलब ही होगी है, जहां काम होता है वहीं दोस्ती होती है, उसके बाद दोस्ती टाटा बाय बाय, तू किसका दोस्त, तू मेरा कौन सा दोस्त, वो चीजें चल रही है बेसिकली। अब भाई देखो कलयुग का टाइम है, बट मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है, सच्चे दोस्त भी हैं आज की दुनिया में। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे?
2: दोस्ती एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है
0: जी, ठीक है,
2: दो लोगों के बीच में,
0: ठीक है
1: भाई, मुझे तो
2: सिर्फ एक के दम पर नहीं चल सकती।
0: करेक्ट, वन साइड तो हो ही नहीं सकती, चाहे प्यार हो या
2: डेडिकेशन, दोनों का होता है।
0: एब्सोल्युटली,
2: आपका भी, सामने वाले का भी,
0: सामने वाले का
2: भी। वो बॉन्डेशन आपकी सही है तो फिर तो दोस्ती हमारे।
0: कभी कभी ऐसा होता है ना सर, राह चलते हैं हमें कुछ लोग मिलते हैं, हमारी वाइब मैच होती है, हमें लगता है वो हमारे लिए बहुत ही बढ़िया दोस्त है, या सामने वाले को लगता है वो पर्सन हमारे लिए बहुत बढ़िया है, और इस चक्कर में कई बार फ्रेंडशिप हो जाती है, बट वो पता चलता है कि वो एक तरफ से ही थी, दूसरी तरफ से था ही नहीं।
2: अब वही कह सकते हैं ना कि हर चीज के दोनों साइड होते हैं।
0: हाँ करेक्ट,
1: कहीं कहीं दिमाग नहीं लगाया जाता ना,
2: डाकर भी है, लेटर भी है,
1: कहीं दिल लगाए जाते हैं, कहीं दिमाग लगाया जाता है, तो हर तरह की दोस्ती है, आप चाहे दिल लगाएं या दिमाग लगाएं।
0: सही बात है, बिल्कुल, मैं आपसे दोस्ती करूंगा, आप टेंशन न ले, दिल तो नहीं लगा सकता।
2: हमें थोड़ी ना पता था कि उम्र के 4500 साल में हम अखिल भाई मिल जाएंगे,
0: सोचने
2: और चिपक जाएंगे बिल्कुल हमारे साथ।
0: तो सर दोस्ती में कुछ बढ़िया सी चार पंक्तियां हो जाए सर, जो दोस्त आपस में बैठ के इस वक्त गाड़ी में हमें सुन रहे हैं।
2: दो पक्के दोस्तों के बीच में कुछ कंफ्यूजन है।
0: अच्छा,
2: पक्के दोस्त हैं लेकिन किसी विषय को लेकर कंफ्यूजन है दोनों के बीच में।
0: हाँ।
2: तो एक दोस्त कुछ पंक्तियों के माध्यम से अपनी बात दूसरे तक पहुंचा रहा है
0: जी,
2: हालांकि उसमें उसका प्यार ही कह लीजिए, गुस्सा नहीं है उसका।
0: ओके, बहुत ही खूबसूरत,
2: कि बदला वक्त जमाना बदला,
0: बदला वक्त जमाना बदला हाँ जी,
2: उसने आना जाना बदला।
0: वाह,
2: बदला वक्त जमाना बदला, उसने आना जाना बदला, इससे अच्छा बदले खुद को, इससे अच्छा खुद को बदले,
1: क्या बात,
2: उसने ठौर ठिकाना बदला।
0: वाह,
2: ठौर ठिकाना मतलब जो उसके रहने की जगह है
0: वो बदला,
2: उसने ठौर ठिकाना बदला,
0: ठीक है।
2: पहले उसने देखे सपने, पहले उसने देखे सपने, बाद में बदली आंखें,
1: अच्छा,
2: फिर लिखी एक नई कहानी और किरदार पुराना बदला।
0: वाह
1: क्या बात,
0: क्या बात है,
2: फिर लिखी एक नई कहानी और किरदार पुराना बदला, हरदम पाने की चाहत, मतलब आदमी में लालसा होती है कि ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए।
0: करेक्ट करेक्ट,
2: कि हरदम पाने की चाहत अब उसको इस हद ले आई कि नए दोस्त पाने की खातिर उसने यार पुराना बदला।
1: क्या
0: वाह क्या बात है,
1: बहुत खूब, मतलब एक तरीके से इन्होंने एकदम एक 95% वाला सच बोल दिया इन्होंने,
2: कि नए दोस्त पाने की खातिर उसने यार पुराना बदला, सड़कें बदली, गलियां बदली, बदले सारे रास्ते, सड़कें बदली, गलियां बदली, बदले सारे रास्ते, घर की सभी दीवारों का उसने रंग दोबारा बदला।
0: वाह,
2: घर की सभी दीवारों का उसने रंग दोबारा बदला, और खुद अपना आकाश बनाकर, खुद अपना आकाश बनाकर अपनी चमक दिखाने को कल उसने सबसे छिपकर बदले चांद सितारा बदला,
0: बदले चांद सितारा बदला जी सर।
2: तो खुद अपना आकाश बनाकर अपनी चमक दिखाने को कल उसने सबसे छिपकर बदले चांद सितारा बदला। और आखिरी पंक्तियां देखेगा, कि मैं लिए कलम और एक कागज, मैंने कलम और एक कागज, बस इसी सोच में बैठा हूं, मैं लिए कलम और एक कागज, बस इसी सोच में बैठा हूं कि उस पल में क्या होगा अगर वो शख्स दोबारा बदला।
1: क्या बात है, बहुत खूब, बहुत
0: बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस। इन पंक्तियों में कुछ ऐसी बातें भी हैं जो मुझे लगता है कि आप हमारे श्रोताओं को बता सकते हैं, आई थिंक।
2: नहीं मतलब जैसे मैंने पहले बोला ना, डेडिकेशन है दोस्ती तो दोनों तरफ से,
0: करेक्ट। वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात आ गई ना जो आपने बताया,
2: तो डेडिकेशन दोनों का है।
0: करेक्ट करेक्ट।
2: मैं समझता हूँ कहीं भी कोई कंफ्यूजन है किसी भी साइड से तो वो क्लियर हो जाना चाहिए।
0: करेक्ट। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि सामने वाला इंसान चाहता ही नहीं है, तो फिर वो कंफ्यूजन बढ़ जाता है सर।
2: इसलिए जो भी कोई कोई ऐसा पॉइंट है दोनों को कहीं पिंच कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको सॉर्ट आउट करना चाहिए, वरना वो कहीं ना कहीं बढ़ता रहेगा।
0: करेक्ट। और वो इतना बढ़ेगा कि एक दिन वो रिश्ता ही खत्म हो जाएगा।
2: रिश्ता खत्म हो जाएगा,
0: है ना। वो मतलब रिश्ता कम और वो टॉक्सिक ज्यादा हो जाएगा।
2: बिल्कुल।
1: हमेशा आपके जो जितने भी पुराने दोस्त है ना, जो भी आपके साथ बैठे हैं, जो इस समय भी आपके साथ मौजूद हैं, चाहे गाड़ी में मौजूद हैं, चाहे बाइक पे मौजूद हैं, चाहे कहीं बैठे हुए हैं, कहीं भी एक टाइम टुगेदर आप लोगों का चल रहा है, तो वो क्या है, पुराने जो दोस्त होते हैं वो ना एक गानों की तरह होते हैं, पुराने अच्छे गाने जो आप जिनकी बात आप हमेशा सुनना चाहते हैं, जिनको आप हमेशा गुनगुनाना चाहते हो। और जो आपके नए नवेले दोस्त बनते हैं ना, वो एकदम एक फ्री ट्रायल की तरह होते हैं, वो बस फ्री पैक आपका खत्म हुआ नहीं और वो आपके गायब हो गए।
0: आपका सब्सक्रिप्शन लिया, उसके बाद जैसे ही आपका टाइम गया खत्म। चलो रुकते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के लिए। मेरे दोस्त, ये गाना आपके लिए प्ले कर रहा हूँ। जितने भी मेरे श्रोता साथी हैं, जो मेरे प्यारे दोस्त हैं, उनके लिए एक दोस्ती वाला गाना, इतनी सुंदर बातें हो गई हैं, तो ये गाना उसके बाद लौट कर आते हैं।

0: आंदोलन में बदलना चाहिए और देश के युवाओं को इस परिकल्पना की नींव बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और संबद्ध क्षेत्रों में विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने युवाओं में मादक पदार्थों के सेवन की गंभीर समस्या से निपटने के महत्व पर भी बल दिया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा में हंगामे के बीच सदन ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी को मॉनसून सत्र के शेष समय के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया। पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने कहा कि कल्याण बनर्जी ने महिला सांसदों को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक और असंसदीय टिप्पणी की।
1: आज श्री कल्याण बनर्जी ने हमारी महिला सांसदों के साथ असंसदीय भाषा एवं असंसदीय टिप्पणियां की है, जिसकी लिखित शिकायत माननीय अध्यक्ष जी को प्राप्त हुआ है। ये सदन की गरिमा के विरुद्ध है।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है।
2: सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन और किस नियम के तहत होना है, माननीय स्पीकर महोदय सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए।
0: राज्यसभा में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को सदन चलाने में सहयोग करना चाहिए। सदन के नेता जेपी नड्डा ने विपक्ष के आचरण की कड़ी निंदा करते हुए इसे अत्यधिक गैर जिम्मेदाराना और लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध बताया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मॉनसून सत्र के लगातार तीसरे दिन विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित होती रही। व्यवधान के कारण लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो सका। दोनों सदनों में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं चल सका। सरकार की ओर से बार बार यह आश्वासन दिए जाने के बावजूद कि वह नीट पेपर लीक मामले से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष ने अपना विरोध जारी रखा। आज लोकसभा की कार्यवाही 3 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 4 बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि उन्होंने दोनों पक्षों के विचार सुने और सरकार खुले मन से चर्चा करने के लिए तैयार है। उन्होंने विपक्षी दलों से कार्यवाही बाधित करने के बजाय विस्तृत चर्चा में भाग लेने का आग्रह किया। अनुपम मित्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शनों पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं की भावनाओं और चिंताओं के प्रति संवेदनशील है।
4: यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के छात्रों और नौजवानों को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार विद्यार्थियों और नौजवानों की आकांक्षाओं को पूरा करने और उनके कल्याण के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारे छात्रों की हर चिंता को सुनना, उसका समाधान करना, यह हम सबकी जिम्मेदारी है।
0: उधर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि छात्रों का संघर्ष वास्तविक है और वे बदलाव की मांग कर रहे हैं।
5: हम जनरल मोशन मांग रहे हैं ताकि ठीक से डिस्कशन हो। आप 8 घंटे के लिए वंदे मातरम डिस्कस कर सकते हैं, तो आप लंबे समय के लिए ठीक ढंग से और जनरल मोशन पे ये इशू भी डिस्कस कर सकते हैं।
0: सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कहा है कि सरकार से नीट परीक्षा लीक मामले पर युवा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करने का आश्वासन मिलने पर वे अपना अनशन समाप्त कर देंगे। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह को लिखे पत्र में श्री वांगचुक ने कल रात अस्पताल में उनसे मिलने के लिए दोनों मंत्रियों का आभार व्यक्त किया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च के दौरान कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और दिल्ली पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। न्यायालय ने अधिकारियों को सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी सहित पुलिस कार्रवाई से संबंधित सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। सरकार ने दिल्ली में विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान लोगों के मरने के सोशल मीडिया के दावों का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इन दावों को असत्य बताया है। दिल्ली पुलिस ने पुष्टि की है कि प्रदर्शन के दौरान किसी की मौत होने की कोई खबर नहीं है। दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के सभी स्टेशन अब यात्रियों के लिए खुल गए हैं। इससे पहले दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सुरक्षा कारणों से 17 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रेल सुरक्षा में सुधार, बुनियादी ढांचे के रखरखाव और आधुनिक तकनीकों के उपयोग से रेल दुर्घटनाओं में भारी कमी आई है। लोकसभा में आज एक लिखित प्रश्न के उत्तर में श्री वैष्णव ने कहा कि वर्ष 2014-15 में हुई 135 रेल घटनाओं की संख्या घटकर इस वित्त वर्ष में अब तक केवल 2 रह गई है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा संबंधी गतिविधियों पर व्यय 2013-14 में लगभग 39,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 2026-27 में 1,20,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। पिछले 2 वर्षों में सरकार ने अश्लील सामग्री प्रदर्शित करने के आरोप में देश भर में 50 OTT प्लेटफॉर्म को सार्वजनिक पहुंच से बाहर कर दिया है। लोकसभा में सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुर्गुन ने कहा कि सरकार शिकायतों के आधार पर ऐसे मध्यस्थों और OTT प्लेटफॉर्म के खिलाफ नियमित रूप से कार्रवाई करती है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में तोतापुरी आमों की खेती, प्रसंस्करण और विपणन प्रणाली में व्यापक सुधार के लिए विस्तृत निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश तीनों राज्यों में तोतापुरी आम उत्पादक किसानों की आय में लगातार हो रही गिरावट की शिकायतों के मद्देनजर जारी किए गए हैं। अयोध्या में आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की हुई बैठक में मंदिर प्रबंधन, दान प्रणाली, मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति, ट्रस्ट में रिक्त पद भरने और धार्मिक समिति के पुनर्गठन से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। ट्रस्ट ने कहा कि श्रद्धालुओं की आस्था पहले की तरह ही अडिग है और मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या स्थिर है। पश्चिम बंगाल सरकार ने 7वें वेतन आयोग का गठन कर दिया है। आयोग राज्य सरकार और सरकारी सहायता प्राप्त संगठनों के कर्मचारियों तथा पेंशनभोगियों के वेतन, भत्ते, पदोन्नति और पेंशन से संबंधित संशोधनों की सिफारिश करेगा। आयोग अगले 6 महीनों के भीतर राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। छत्तीसगढ़ में अब अग्निवीर सैनिकों को पुलिस विभाग में आरक्षक, वन विभाग में वनरक्षक और जेल विभाग में प्रहरी की सीधी भर्ती में 10% आरक्षण मिलेगा। इसका लाभ उन अग्निवीरों को मिलेगा जो 4 वर्ष की सेवा पूरी कर वैध सेवा प्रमाण पत्र के साथ सेवामुक्त हुए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। कल हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा और राजस्थान में भी तेज बारिश होने की संभावना है। वहीं असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा सहित पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में भी इसी तरह के मौसम की स्थिति बने रहने का अनुमान है। सिक्किम के नामची जिले के समरदुंग स्थित सुरंग में बचाव दल ने 8 और शव बरामद किए हैं। अब तक 13 शव बरामद किए जा चुके हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: नामची जिले के NSPC की टनल के अंदर फंसे लोगों को बचाने के लिए आज तीसरे दिन भी रेस्क्यू दल काम कर रही है। कम विजिबिलिटी और मीथेन गैस के लीकेज के वजह से शवों को निकालना मुश्किल हो गया है। इस बीच सिक्किम सरकार ने मरने वालों के पार्थिव शरीर उनके परिवारों को सौंप दिए है। केंद्र सरकार के अलावा सिक्किम सरकार और NSPC ने मरने वालों के परिवारों को मुआवजा देने का ऐलान किया है। घटना के समय टनल के अंदर कम से कम 25 लोगों के फंसे होने की आशंका है। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
0: कश्मीर में आज अनंतनाग जिले के लाल चौक इलाके में आतंकी हमले में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई। हमले के बाद सुरक्षा बलों का पूरे इलाके में तलाशी अभियान जारी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मृतक पुलिसकर्मी को श्रद्धांजलि देते हुए दोषियों को सजा दिलाने का आश्वासन दिया है। भारतीय नौसेना ने कर्नाटक के कारवार में स्वदेशी रूप से निर्मित माहे श्रेणी का एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट INS मालवन को शामिल किया है। ये नौका जलमग्न निगरानी, पनडुब्बीरोधी युद्ध अभियानों और कम तीव्रता वाले समुद्री अभियानों के साथ साथ बारूदी सुरंगों को नष्ट करने की क्षमता से लैस है। 80% से अधिक स्वदेशी घटकों से निर्मित ये नौका आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को बल देती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तरी मैसेडोनिया में आज स्कोपिया शहर के संग्रहालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि संघर्ष, असहिष्णुता और विभाजन से जूझ रही दुनिया में गांधी जी के संवाद, करुणा और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के आदर्श अत्यंत प्रासंगिक बने हुए हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठकों के दौरान कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचावास्केज से मुलाकात की। श्री सोनोवाल ने कहा कि दोनों देश बेहतर भविष्य के लिए परस्पर संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। चीन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने हमवतन उन्नति हुड्डा को हराया, वहीं आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अलवी फरहान को शिकस्त दी। इस बीच पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन का मुकाबला जापान के युशी तनाका से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लक्ष्य सेन ने पहला गेम अपने नाम कर लिया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमित गोयल।
7: बम्बे शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.9% के नुकसान से 715 अंक लुढ़क कर 76,755 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.8% की गिरावट से 191 अंक गिरकर 23,996 के स्तर पर बंद हुआ। एनएसई मिड कैप सूचकांक में 1% से अधिक और स्मॉल कैप सूचकांक में 1.5% से अधिक की गिरावट दर्ज हुई। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 33 पैसे के नुकसान से 96.57 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर रहा।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने आज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 61 वर्ष करने पर विचार करने का निर्देश दिया। न्यायालय की पीठ ने पूरे देश में जिला न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु को 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने की समान मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत का सपना जन आंदोलन में बदलना चाहिए और देश के युवाओं को इसकी नींव बनाना चाहिए। सरकार संसद में नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार। युवाओं के विरोध प्रदर्शनों का राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने की आलोचना की। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित। विपक्ष ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। दिल्ली उच्च न्यायालय ने संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा। मौसम विभाग ने कल गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
1: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
2: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।

0: ¡Cállate!
1: नमस्कार दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त अखिल और आप सुन रहे हैं दिल से दिल तक अखिल संग, जहां बातें होती हैं दिल की, एहसासों की और रिश्तों को जिंदगी के साथ निभाने की। तो कहते ना, कभी कभी रिश्ते भी जो है ना थोड़े से खूबसूरत रखने चाहिए, बातें करती रहनी चाहिए, दिल से दिल मिलते रहने चाहिए। आज भले ही आपको बारिश और छोटी छोटी बूंदें नहीं मिली हो, मौसम थोड़ा सा खुल सा गया हो, सुबह उठने के बाद रहता है यार, एक आँख खोल के देखते हैं कि भैया आज कैसा हो रहा है।

मौसम बाहर निकलते समय कैसा रहेगा। तो बादले आज जो थे ना, बादलों ने भी थोड़ा इधर उधर डाइवर्ट हो गए, बोले चलो साहब आज थोड़ा आगे पीछे घूम के आते हैं, कब तक मुरादाबाद के ऊपर बरसते रहेंगे। तो आज हम लाए हैं एक नया टॉपिक, करेंगे उस पर भी बात, मगर उससे पहले लेंगे आप लोगों के हालचाल। अगर कहीं फंसी हो गाड़ी तो ज़रूर हॉर्न बजा के बताइए साहब, आपकी कब आएगी निकलने की बारी, और हम लोगों को भी दीजिए अपडेट, और अपने नाम के साथ मैसेज करिए कि कहाँ पे है थोड़ा सा जाम और कहाँ है बिल्कुल स्मूथ। 9837896896 पे आते हैं इस गाने के बाद, तब तक मिलाइए हमें नंबर और करिए अपने दिल की बात, फिर बताएंगे आज हम किस बारे में करेंगे आप लोगों से बात। चलिए साहब मिलते हैं बहुत इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: एक बार फिर से स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। अभी जो आप गाना सुन रहे थे, अगर बता सकते हैं मस्त पंजाबी गाना कौन सी मूवी का था तो पता चलेगा कि सर आपको याद है पुराने मस्त वाले गाने भी, तो हमें मैसेज करेगा 9837896896 पर, बताइएगा इस मूवी का नाम, और अगर मूवी का नाम निकला सही तो मिलेगा कोई ना कोई इनाम। तो आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो है ट्रस्ट। हाँ जी, भरोसा, एक ऐसी चीज़ जो अपने साथ बैठे हुए वाले के पास हमेशा रहती रहती है। आपके पास जो आपके साथ सुनने वाला है, हमेशा उसके ऊपर आपको भी भरोसा रहता है कि हाँ यार, ये मेरी भी तो सुनेगा नहीं सुनेगा। जैसे आपको एक भरोसा रहता है कि आज FM पे अखिल के साथ आप अखिल की बात आपकी सुनेगा या नहीं सुनेगा, तो ठीक वही है एक भरोसा। भरोसा ना बिल्कुल शीशे की तरह होता है, एक बार अगर टूट जाए तो जुड़ तो ज़रूर जाता है, मगर दरारें हमेशा याद दिलाती रहती हैं। तो हाँ, अगर आपके साथ भी कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो या कभी कुछ लगा हो कि यार मैंने इतना भरोसा रखा था टूट गया, तो ज़रूर हमें शेयर करें अपने दिल की बात और बताएं। 9837896896 पे करेंगे अपने दिल की बात। हमारे साथ हैं हमारे लिसनर, पूछते हैं वो क्या मस्ती कर रहे हैं आज। हेलो, दिल से दिल तक अखिल संग, कैसे हैं आप, क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम धैर्य है।
0: धैर्य जी, क्या कर रहे हैं आप?
1: कुछ
0: तो कर रहे होंगे साहब।
1: नहीं, कुछ नहीं।
0: आज कुछ करा आपने ऐसा, कुछ कहते हैं कि याद रहो कि आज मैंने ये किया, जल्दी जल्दी पीरियड में अपना होम क्लास वर्क जो था वो एकदम भूल गया करने, मगर फिर एकदम मैंने क्लास में बैठ के कर लिया।
1: नहीं, मतलब आज
0: ऐसे
1: कुछ हुआ नहीं है।
0: आज कुछ हुआ नहीं, आज बारिश भी नहीं हुई ना, आज तो फिर जाना ही पड़ गया होगा स्कूल।
1: क्या
0: मैं कह रहा हूँ, आज बारिश भी नहीं हुई तो आज स्कूल तो जाना ही पड़ा फिर आपको, वरना फिर कैंसिल भी कर सकते थे जाना।
1: हेलो, आपके आवाज़
0: मैं कह रहा हूँ, आज बारिश नहीं हुई ना, इस चक्कर में आपको स्कूल तो जाना पड़ गया। हाँ, वरना कैंसिल हो जाता ना, अगर खूब तेज बारिश हो जाती थोड़ी बहुत कल की तरह। बिल्कुल सही। अच्छा, आपके पास ऐसा कोई दोस्त जिसपे एकदम आप आग बंद करके उसकी कॉपी में से कुछ भी लिख लेते हो कि अगर मैं आज स्कूल नहीं गया तो अपने दोस्त से कॉपी ले ली, इतना भरोसा वाला है आपके पास कोई ऐसा दोस्त? है धैर्य? धैर्य, तुम्हारा नेटवर्क कहाँ चला गया है? हेलो, तो लगता है दोस्तों धैर्य जो है ना उस दोस्त को ही ढूंढने चले गए हैं कि हाँ भाई कहाँ है वो दोस्त, उसी को कॉल मिलाने चले गए। चलिए कोई बात नहीं, खैर करते हैं आगे की बातें और सुनते हैं एक बढ़िया सा गाना। तब तक आपको भी कुछ याद आए ऐसा भरोसे के ऊपर तो ज़रूर हमसे शेयर करें 9837896896 पे, और बताएं कि क्या है, कौन सा ऐसा है दोस्त, ऐसी बात, या ऐसे कहते ना कुछ होती हैं सिर्फ भरोसा दोस्तों पे और अपने परिवार वालों पे नहीं होता, खुद पे भी कुछ एक भरोसा होता है, और कभी कभी वो चीज़ें याद आती हैं कि हाँ यार मैंने अपने पे भरोसा रख के ये चीज़ करी है और वो पॉसिबल हुआ है। तो ज़रूर हमारे साथ शेयर करें और बताएं अपनी बात, और अगर कोई बर्थडे भी विश करनी हो ना किसी अपने दोस्त को तो बता देना, आज कर देंगे हम उसे बर्थडे विश भी। तो चलिए इस गाने के बाद मिलते हैं, बढ़िया सी बातें करते हैं और मस्ती करते हैं साहब।
2: Oh my God, this is original.

0: तो एक बार स्वागत है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे। और अपडेट्स जो है ना, शायद आप लगता है आज गाड़ी में इस मूड में नहीं है कि कहीं निकला जाए। जाम में अगर फंस गए हैं तो फंसा ही रहना जाए, बताया ना जाए, दूसरे को पता भी नहीं चले कि कहाँ फंसे हुए हो। पता चला घर पे पहुँच के पड़ गई डांट, बाद आप हम तब भी पता निकाल लेंगे कहाँ फंसे हुए हैं आप। तो आज हमारे एक और लिसनर हैं जो हमसे अभी बात करना चाह रहे हैं, चलिए करते हैं उनसे बात। हेलो दिल से दिल तक अखिल संग, कैसे हैं आप?
1: हेलो दिल से दिल तक, सबसे पहले सर आपको मेरा मोहब्बत भरा नमस्कार।
0: धन्यवाद साहब, हमारा भी मोहब्बत भरा नमस्कार आपको।
1: सर बहुत अच्छे हैं, आपसे बात हो जाती है, आप ही केंद्र के प्रोग्राम सुन लेते हैं सर, और भी अच्छे हो जाते हैं। सर मैं यही केंद्र सुनता हूँ मुरादाबाद, फिलहाल हमारे रामपुर भी है, वहाँ पे मैं कॉल तो ला देता हूँ, मैं सुनता नहीं हूँ।
0: कोई बात नहीं साहब, ये आपने इतनी अच्छी बात
1: है। वहाँ पे हर एक गाना नहीं मिलता सर, वो काफी टाइम लगा देते हैं गाना ढूंढने में। आपके मतलब सिस्टम है यूट्यूब के माध्यम से, बनवाते हैं लैपटॉप के माध्यम से सर, मतलब सही नहीं लगता मुझे वो।
0: चलिए साहब, आप तो बिल्कुल ही सारी बातें, मतलब सारे मन पसंद के गाने जब मिल जाते हैं ना एक जगह पे, तो मिला लेनी चाहिए कॉल। हम तो यही कहते हैं कि जो जो चीजें
1: गाना, सर कुछ गाने ऐसे होते हैं जो हम सोचते हैं कि हमें ये गाना सुनना है, वो गाना नहीं मिला तो फिर कॉल लगाना।
0: कोई बात नहीं साहब, आप कभी दिल से एकदम उधर भी बोलेंगे ना तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं से वो ढूंढ के बजा ही देंगे। चलिए खैर कोई बात नहीं, मगर आज बताइए आप कर क्या रहे हैं?
1: सर मैं इस टाइम खाना खा के और छत की हवा ले रहा हूँ, साथ में प्रोग्राम सुनने अकेला बैठा हूँ बिल्कुल। सर
0: छत पे हवा कैसी चल रही है?
1: एकदम मस्त, जैसे एसी लगा हुई है।
0: सही है साहब, सही है।
1: पांच दिन से काफी अच्छा मौसम हो रहा है।
0: तो सही है साहब, आप एसी मतलब आप नेचुरल एसी के मजे ले रहे हैं आप पूरे पूरे।
1: जी जी सर, ऊपर को देख रहे हैं बादलों को, तो काले पीले हरे सफेद सभी रंग के नजारे आ रहे हैं काफी।
0: तो आपने अभी तक हमारे बात करते करते समझ में आया कि हम किस बारे में बात कर रहे थे आज?
1: सर आप बात कर रहे हैं भरोसा।
0: क्या बात है, हाई साहब आप सुनते पूरे एक्टिवली हो, आप नेटवर्क पूरे पहुंच रहे हैं आपके पास।
1: जी जी पूरे आ रहे हैं सर।
0: चलिए
1: और सर पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि भरोसा किसी पे करना चाहिए।
0: हाँ करना तो चाहिए भरोसा, बिना भरोसे के कैसे चलेगा काम?
1: सर मुझे तो लगता है ना किसी से भरोसा करना चाहिए सर, मुझे भी 22 साल हो गए इन्हीं चक्रों में, दोस्ती करना छोड़ना भरोसा करना।
0: सर आप
1: मेरा तो कोई
0: भरोसा जो है गलत जगह कर रहे हैं, खुद पे भरोसा रखिए ना, खुद पे भरोसा करें आप।
1: सर मैं किसी और पे नहीं करता हूँ, मुझे खुद का भरोसा, जैसे मैं सोचता हूँ जैसे मैं हूँ ऐसे बंदा सामने वाला, मैं सामने वाला सर मेरी तरह नहीं निकलता।
0: तो कोई नहीं, वो कभी ना कभी आपका अपना खुद का भरोसा भी सही हो जाएगा और सामने वाला बंदा भी आपके भरोसे के काबिल बन जाएगा। थोड़ा सा समय दीजिए, कोई बात नहीं, 20 साल 22 साल आपने दिए हैं, थोड़ा सा और साल दीजिए, क्या पता कहीं ना कहीं कोई ना कोई भरोसे वाला बंदा आपको मिल ही जाए।
1: पर मैं धोखा खा चुका हूँ ना भरोसा करके सर, मैं इसलिए पूछ रहा था आपसे करना चाहिए।
0: हाँ हाँ सर क्यों नहीं करना चाहिए,
1: भरोसा तो अपने के पे करना चाहिए, गैर तो कह रहा है।
0: जब धोखा खाएंगे तब तब कुछ ना कुछ मिलेगा सीखने को।
1: सर यार दोस्त बहुत दूर की चीज रही, जो घर के हैं मैं चाहता हूँ कोई पता ना कब कौन क्या कांड करते हैं।
0: सही कह रहे हो साहब, मगर
1: कहने का मतलब यह है किसी पे भरोसा मत करो बिल्कुल भी। कोई रात में बुलाए, रात देर रात में 9 बजे 10 बजे वहाँ पे आ जा, तो सर या तो 2-4 बंदा जाने, सिंगल को जाना चाहिए कहीं से कहीं तक भी।
0: आप तो बिल्कुल मत निकलना, क्योंकि आपके गांव के आसपास कहीं तेंदुआ निकला है तो फिर तो तीनों चारों का ही भरोसा टूट जाएगा। तो आप तो वैसे भी अकेले मत निकलना साहब, चाहे रात में 9 बजे कॉल करे, चाहे 10 बजे कॉल करे, चाहे आधी रात आपको बुलाए,
1: टेंडवा कोई नहीं जा रहा सर, मैं पशुओं से काफी मोहब्बत करता हूँ, मैंने बतलाया था।
0: हाँ हाँ आप तो पशुओं से बहुत प्यार करते हैं, ये भी अच्छी बात है, पशु भी आपसे
1: मिल भी जाते हैं, काफी प्यार करते हैं, वो मेरे पीछे पड़ जाते हैं, मतलब कुछ करते सर ऐसा कोई नहीं, आग दोनों तरफ बराबर लगती है ना।
0: कुछ पशु आपसे प्यार करे अच्छा है, मगर सारे ही पशु आपसे प्यार करने लगे वो अच्छा नहीं है ना।
1: सर कोई नहीं।
0: तो बताइए आज कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
1: सर मैं आज गाना सुनूंगा, एक मूवी है औलाद के दुश्मन, अरमान कॉलेज के सर, मैं बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, मैं तेरा दीवाना हूँ तू मेरी दीवानी है, क्या चीज मोहब्बत है दिल हार के जाना है सर, आज के सॉन्ग में ये वाला सॉन्ग प्ले कर देना।
0: मैं तेरा दीवानी तू मेरा दीवाना
1: दीवाना है, मूवी का नाम है औलाद के दुश्मन।
0: औलाद के दुश्मन का तो एक गाना वो भी है, मैं तुमसे प्यार किया, वो भी बहुत सुंदर गाना है। कुमार शानू जी की आवाज में है। और
1: सुना था बहुत पहले, मैंने सुना था इसका दूसरा सॉन्ग, तो उन्होंने वाला सॉन्ग सुना था। ये गाने काफी फेमस हुए हैं मुरादाबाद में।
0: हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो जरूर आपकी आपकी क्या, हाँ हाँ जरूर
1: आपको सही लगा प्ले कर दो।
0: जरूर जरूर जरूर जरूर, आपका आपकी फरमाइश जरूर पूरे होंगे, मगर ध्यान रखिए और भरोसा जरूर रखिए, जरूर एक दिन जो है वो भरोसा आपका, कहते हैं ना कि पूरा होगा, और कहेंगे आप ही कॉल करके कहेंगे कि हाँ जी अखिल भाई मैंने एक भरोसा रखा था और वो आज पूरा हुआ।
1: मैं धोखा खा चुका हूँ, धोखा नहीं खाता तो मैं भरोसा कर लेता, मैं अब नहीं करता हूँ किसी से भी।
0: तो अब आप एफएम मुरादाबाद पे भरोसा करिए 89.6 पे कि आपका आपके गाने बिल्कुल भरोसे वाले प्ले होते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद
1: करते हैं, मुरादाबाद के अंदर हमें कभी भी धोखा नहीं देगा।
0: बिल्कुल सही बात, तो हुआ ना देखा, तो आप अब तो आप ये भी अब ये नहीं कह सकते कि आपने किसी पे भरोसा रखा और उसने आपका तोड़ा, तो आप ये कह सकते नहीं भाई भरोसा रखिए और एफएम मुरादाबाद पे जरूर रखिए भरोसा, ठीक है?
1: जी जी जी, कभी धोखा नहीं मिलेगा, फायदा ये सुनने में कोई नुकसान नहीं है।
0: धन्यवाद सर, धन्यवाद, चलिए आपकी फरमाइश करते हैं।

सिक्स पे करेंगे यही बात दिल से दिल की कि क्या है आपके भरोसे की कहानी। तब तक के लिए सुनते हैं प्यारा सा ये गाना जो फरमाइश में मूवी का नाम है औलाद के दुश्मन और गाने के बोल हैं मैंने तुमसे प्यार किया।

0: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
1: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
2: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
1: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
2: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेज 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
3: कॉल 7500153841।

0: एक बार फिर से स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे। मैं हूं आपका दोस्त अखिल और आप सुन रहे हैं दिल से दिल तक अखिल संग। तो चलिए, अब थोड़ा सा टाइम हो गया हमारे पास, प्यार भरे मैसेजेस जो आए हैं उनसे कुछ मुलाकात कर लें, उनके बारे में भी कुछ बात कर लें। साहब, हम पे पहला मैसेज आया है ललिता जी का, कहती है मूवी का नाम है नो प्रॉब्लम। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, वो मूवी का नाम ही नो प्रॉब्लम है। और वो जो डांस था ना, वो बहुत ही मस्त वाला डांस था, मस्त पंजाबी गाना जिसका नाम था, और सारे ही एक्टर्स संजय दत्त और सुनील शेट्टी सब सरदार जी के उसमें, कहते ना ड्रेस में, और सरदार जी की जो होती है आपकी पिक्चराइजेशन, उसमें कितने मस्त, कितने अच्छे लुक में वो पसंद आ रहे थे, नज़र आ रहे थे। आगे लिखती हैं, हेलो अखिल सर, गुड वाला इवनिंग है, आप कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आपकी आवाज़, बोलने का अंदाज़ बहुत प्यारा है। धन्यवाद, धन्यवाद ललिता जी। ललिता कश्यप नवीन नगर मुरादाबाद से, हम आपका शो सुन रहे हैं, वेलकम टू धमाकेदार एंट्री हुई है। सर, आपके सॉन्ग सुनाने का तरीका बिंदास है, सुनाते रहिए आप। बहुत बढ़िया सर, मैं तो सिर्फ गाना बजाता कर रहता हूँ, किसी दिन गाना सुनाऊंगा आपको, ज़रूर सुनाऊंगा ललिता जी। बहुत ही अच्छा मैसेज किया है। हमारे पास एक मैसेज आया है रामपुर से, वो ये कहते हैं, अखिल भाई मेरी मम्मी पर मुझे दुनिया से ज़्यादा भरोसा है। क्या बात कही है आपने, माँ से बड़ा भरोसा और दुआ दोनों कहीं और नहीं मिलती हैं। एक मैसेज है हमारे पास हरतला कॉलोनी से रीना जी का, क्या बात है, एक रीना जी हमारे पास भी हैं यहाँ पे स्टूडियो में। मेरा एक दोस्त 15 साल से मेरे साथ है और आज भी अगर एक फ़ोन उसे मिलाऊं तो छट से कॉल उठा लेता है। क्या बात है रीना जी, और दोस्ती का नाम ही ऐसा, कहते हैं ना दोस्त वर्ड ही ऐसा है कि असली आपने दोस्त नहीं एक दौलत कमाई है। तो ऐसे ही हम तो चाहते हैं आपकी हर कॉल उठाता रहे, और कोई कॉल उठा भी नहीं पाए ना तो थोड़ी देर बाद कॉल बैक कर ले, उसमें गुस्सा मत हो जाना आप। हमारे पास एक प्यारा सा मैसेज और आया है, इनका नाम है अकरम। अकरम जी लिखते हैं, प्यार में मेरा तो भरोसा टूट गया है, क्या करूं? अरे सर अकरम जी, आप कैसे ऐसे वसीम अकरम बन जाएं साहब, आप हर इंसान ना एक जैसा नहीं होता है, भरोसा टूटने के बाद ही ज़िंदगी रुकती नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपसे एक से भरोसा टूट गया तो दूसरे पे नहीं कर सकते। अभी वही बात हमारे एक लिसनर के साथ हो रही थी, थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा समय चाहिए होता है, और वो भरोसा आपको, कहते हैं ना खुद पे तो भरोसा रखो तो वो सामने वाले पे भी भरोसा आपको मिलेगा ज़रूर। तो चलिए अपने एक लिसनर से बात करते हैं, क्या कहते हैं, वो बहुत देर से हमारे साथ लाइन पर हैं, कहीं उनका भरोसा हमसे ना टूट जाए। हेलो दिल से दिल तक अखिल संग, कैसे हैं आप?
1: बस आपका दुआ है सर, मेहरबानी है, आपसे बात हो जाती है, आपकी प्यारी आवाज जो खींच जाती है।
0: क्या बात है सर, मैंने आपसे कहा था कभी खेच खेच के कभी आप रामलीला मैदान तक मत आ जाना। अच्छा, हमारे दर्शकों को अपना नाम बताइए और बताइए आप कहाँ से बोल रहे हैं, और वो नाला जरूर बताइएगा कौन सा नाला है आपके घर के आसपास।
1: मोहम्मद उस्मान और साजिद गुप्ता की जारत के पीछे लगभग नाला है।
0: तो क्या कर रहे हैं आज, आज कोई शायरी सुना दीजिए पहले, उसके बाद सबको पता चल जाएगा कि ये हमारे जो हैं परमानेंट लिसनर हैं जो इतनी बढ़िया शायरी करते हैं।
1: मेरे अजीब, जरा एतवार कर लेता, मैं एक छलांग में दरिया को पार कर लेता, मैं जिंदगी के गिराने में हो गया बलहुना में अपने अपने आप से मिलता तो प्यार कर लेता।
0: क्या बात है,
1: मेरी सदा है तू, मेरी पहली और आखिरी वफा है तू, चाह है तुझे चाहत से भी बढ़कर कर मेरी चाहत और चाहत की है।
0: क्या बात है साहब, ये मैं एक पेपर और पेन लेकर लिखना भूल गया, कहीं आज मैं लिख ही लेता आपकी शायरी। इतनी बढ़िया शायरी, इतनी लंबी शायरी आज आपने कह दी है। जो प्यार और ये चाहत वाले वर्ड थे ये तो समझ में आ गए, बाकी जो है ना सब इधर उधर से चले गए मेरे तो आज। और बताइए सर आप। हेलो सर, आवाज आ रही है आज आपको? नहीं आ रही आज, लगता है आपने खाना नहीं खाया है।
1: नहीं, आपकी आवाज बराबर सुन रहा है सर।
0: शायरी बहुत आपकी अच्छी थी, मैं ये कह रहा हूँ कि आज कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप?
1: मेरा नाम जोकर के जीना या मरना या।
0: सर मेरा नाम तो अखिल है सर, मैं यही जीऊंगा यही मरूंगा आपके आसपास। बहुत ही बढ़िया आपने गाना बताया, और ये गाना सच में कमाल का गाना है, बहुत ही बढ़िया साकिब साहब। उस्मान जी हमें आपकी भी आवाज, आपकी भी बात बहुत अच्छी लगती है, और कभी कभी कहते हैं ना, कभी इंतजार करते हैं कि कुछ ना कुछ हंसी की बात हो जाए तो आपकी कॉल आ जाती है, और सच में दिल से कहते हैं ना, दिल की बात सुन ली जाती है, तो दिल की बात आप ही के पास से निकल के आती है। धन्यवाद उस्मान जी। तो श्रोताओं ये जुड़े थे हमारे साथ उस्मान साहब, उन्होंने कहते हैं हर बार अगर इनसे हम शायरी ना सुने तो हमें भी कुछ फीका फीका सा लगता है। तो चलिए जाने से पहले एक आखिरी बात आपसे भी करनी है, तो ज़रूर मिलाएं 9837896896 पे, करेंगे आपसे भी एक दिल की बात और आपकी एक फरमाइश का भी गाना प्ले होगा। तब तक ये सुनते हैं बढ़िया सा गाना और उसके बाद मिलते हैं आपसे जल्दी से, ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे।

0: एक बार फिर से स्वागत है एफएम 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे आपका अपना रेडियो स्टेशन साहब। आप जहाँ कर लेते हैं अपनी दिल की बात सुना देते हैं, दो चार कह देते हैं यार कि आज तो मेरे को अपना मनपसंद गाना सुनना है। जी हाँ, तो हम हैं तैयार। आप करें हमसे बात, अपने दिल की बात पहुँचाएं हमारे तक और ज़रूर वो पहुँचेगी सबके पास। कहते हैं कि कभी कभी थोड़ा सा ना समय भी देना चाहिए अपने आप को, और जो भरोसा होता है ना वो रिलेशनशिप में, ऐसा नहीं कि बस प्यार सिर्फ आई लव यू बोलने से नहीं चलता साहब। प्यार जो है ना थोड़ा सा समय मांगता है। रिलेशनशिप का भी एक असली फाउंडेशन है ट्रस्ट। तो थोड़ा सा भरोसा रखें अपने रिलेशनशिप पे, थोड़ा सा समय दें तो ज़रूर उस भरोसे पे सामने वाला आपके साथ कितना आगे तक जाता है ये आपको तभी पता चलेगा जब उसे थोड़ा सा समय भी देंगे। मोहब्बत की बुनियाद भरोसे पर टिकी है, शक की हवा आए तो दीवार गिर जाती है। तो ऐसा ही होता है कुछ प्यार में भी। और चलिए जाने से पहले अपने आखिरी कॉलर से हम बात करते हैं कुछ दिल से दिल तक और देखते हैं क्या बात बताएंगे आज। हेलो, दिल से दिल तक अखिल संघ, कैसे हैं आप, क्या नाम है आपका?
1: हेलो, गुड इवनिंग सर।
0: गुड इवनिंग जी, क्या नाम है आपका?
1: मैं अफरोज फातिमा बोल रही
0: हूँ। अफरोज फातिमा जी, कैसी हैं आप, कहाँ से बोल रही हैं इस समय?
1: मैं अक्षर
0: कंट्रोल
1: जिला मुरादाबाद से बोल रही हूँ।
0: तो इस समय क्या कर रही हैं आप?
1: कुछ नहीं सर, बस आपका शो सुन रहे हैं और बस 10 बजे के बाद हम जा रहे हैं, सोने की तैयारी कर रहे हैं।
0: बिल्कुल सही बात। तो आज आपको पता ही चला होगा कि हम शो में कैसी बातें कर रहे हैं और किस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, तो जरूर बताइए उसके ऊपर बारे में कुछ।
1: जी सर, आपका जो टॉपिक है बहुत ही अच्छा है और आपका शो बहुत अच्छा लग रहा है, सुनकर भी बहुत अच्छा लग रहा है हमको।
0: धन्यवाद, धन्यवाद फातिमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा आपने इतने अच्छे शब्द बोले। तो बताइए भरोसे के ऊपर आप क्या कहेंगी, कोई ऐसा दोस्त, कोई ऐसी सहेली या कोई ऐसा, कहते हैं ना आपके घर परिवार में कि जब कहते मैं तो आग बंद करके भरोसा कर लेती हूँ। अखिल जी,
1: सर सबसे पहले तो कोई भी इंसान हो, सबसे पहले तो माँ बाप होते हैं जिनसे औलाद आग बंद करके भरोसा करती है और वो भरोसा कभी तोड़ते नहीं है अपने बच्चों पे।
0: बिल्कुल सही बात।
1: उसके बाद आते हैं दोस्त, तो दोस्त सब ऐसे नहीं होते हैं सर जो भरोसे लायक हो, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं कि उनसे भरोसा नहीं किया जा सकता।
0: अच्छा जी, तो कोई ऐसी बात बताएं या कोई ऐसी शायरी सुनाएं जो आज हम पता चल जाएं कि हाँ फातिमा जी जो हैं आज ये अपने भरोसे के बारे में कहना चाह रही हैं।
1: जी सर, जिन लोगों के दिल टूटे हुए ना सर, मैं उन्हीं लोगों के जितने भी हैं उन सारे लोगों को आज ये शायरी डेडिकेट करती हूँ। मैं उन्हीं के लिए कुछ लेकर आई हूँ और उन्हीं के लिए सुनाना चाहती हूँ।
0: तो एक बात ध्यान रखिएगा, जो पहले आपने दिल टूटने वालों के लिए सुनाई है ना, उसके बाद आपको जो जिनके दिल जुड़े हुए हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ सुनाना पड़ेगा।
1: जी सर, मैं
0: ऐसा नहीं है जिनके आज दिल आपकी शायरी सुन के जिनके दिल जुड़े हुए हैं वो भी कहें यार दिल इससे अच्छा तोड़ ही लेते हैं। ठीक है
1: सर, क्या है ना मैं मतलब दो शायरी नहीं कर पाऊंगी, मेरी तबीयत थोड़ी खराब है ना इसलिए।
0: हाँ तो एक शायरी, चलिए आज आज एक शायरी कर लीजिए, फिर अगली बार जब कभी मौका मिलेगा तो हम आपकी दूसरी शायरी भी सुनेंगे।
1: हाँ बिल्कुल, वैसे तो मैं सर हर बार मैं अपनी दोस्त के लिए लेकर आती हूँ, लेकिन ये शायरी मैं उनके लिए नहीं बोलूंगी क्योंकि ये उनके टाइप की नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों के दिल टूटे हुए हैं।
0: जरूर जरूर सुनाइए सुनाइए इरशाद।
1: जी सर, अर्ज किया है, ये लम्हे इश्क और मस्ती के सदा पाबंद नहीं रहते, ये लम्हे इश्क और मस्ती के सदा पाबंद नहीं रहते, सदा खुशियाँ नहीं रहती, हम सरगम नहीं रहती, जरा देखो ये दरवाजे पे दस्तक कौन देता है, जरा देखो ये दरवाजे पे दस्तक कौन देता है, मोहब्बत हो तो कह देना यहाँ अब हम नहीं रहते, मोहब्बत हो तो कह देना यहाँ अब हम नहीं रहते।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया शायरी और बहुत ही कहते हैं ना मतलब बिल्कुल दिल से निकली हुई है। तो कहीं ना कहीं दिल टूटे हुए हैं, चलिए इस पे तो कभी और बात होगी। और हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका कोई गाना जो आपके इस टूटे हुए दिल को मतलब इस शायरी के बाद हम सुने और अच्छा लगे?
1: जी सर, कि सर आज मैं सॉन्ग सुनना चाहती हूँ, साजन मेरे साजन तेरी दुल्हन सजाऊंगी।
0: क्या बात है, साजन साजन तेरी दुल्हन।
1: जी
0: बहुत बढ़िया, तो ज़रूर फातिमा जी ये ज़रूर प्ले करते हैं। और धन्यवाद आपने इतनी अच्छी शायरी सुनाने के लिए और हमसे कॉन्टेक्ट करने के लिए।
1: जी सर आपका भी बहुत बहुत थैंक यू, आपने मेरी कॉल रिसीव की।
0: धन्यवाद धन्यवाद। तो दोस्तों हमारे साथ थे फातिमा जी। फातिमा जी ने इतनी अच्छी शायरी सुनाई है कि आज अगर भरोसा ना करें और दिल टूट जाए तो कम से कम खुद पे तो भरोसा रखिए। तो चलिए इसी के साथ अब हम लेना चाहेंगे आपसे इजाज़त। और एक हमारे पास मैसेज आया हुआ है, वो ज़रूर अपने लिसनर का हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। भावना जी हमें मैसेज लिखती हैं, हाय नमस्ते सर जी, कैसे हैं आप, जय श्री राम जी आपको। जब छोटों को बड़ों का आशीर्वाद मिल जाए तो ज़िंदगी ही बदल जाती है, वही अगर बड़ों के छोटों का प्यार उनकी दुआएं मिल जाए तो उनका हर पल खूबसूरत हो जाता है। आज हमारी ओर से आपको और आपके परिवार को ढेर सारा प्यार और ढेर सारी दुआएं। बहुत बहुत धन्यवाद भावना जी, और ऐसे ही आपको भी खूब सारा हमारी तरफ से प्यार और खूब आपके परिवार के लिए खूब सारी भगवान खुशियां लेकर आए। एक सॉन्ग आप सुनना चाहेंगी, मैं ज़रूर आपको सुनाऊँगा कल। कल आपको पहला सॉन्ग आपकी फरमाइश का ही सुनाया जाएगा भावना जी। और आज के लिए अब बस अब हम चाहेंगे हमें इजाज़त दीजिए, आज हम चलना चाहेंगे, हमारा टाइम पूरा हो गया। पता चला कि बाद में आवाज़ आई, भाई साहब हमें और भी गाने सुनने हैं, अब आप जो है फटाफट खिसको। तो जी कल फिर मिलेंगे नई चीज़ें और नई टॉपिक के साथ, तैयार रहिएगा इसी नंबर पर 9837896896 FM मुरादाबाद, आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। हम कहें तो सबसे पहले स्वयं को इस काबिल बनाओ कि स्वयं पर भरोसा कर सको, जब होगा स्वयं पर भरोसा तभी तो जीत पाओगे दूसरों का भरोसा। क्या बात कही है, क्या बात, बहुत ही अच्छी बात कही है भावना जी आपने। और कल मिलेंगे दोस्तों ठीक इसी समय 9 बजे आपके साथ दिल से दिल की बातों के लिए।

अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज योर कैप्टन स्पीकिंग। आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है। हमारा क्रू आपका बहुत ख्याल रखेगा, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि अपनी चोली टाइटली बांध लें ताकि दिल बाहर ना गिर जाए।

0: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सांसें सही, जिंदगी सही।
1: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
0: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना, आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
0: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।

जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सांसें सही, जिंदगी सही।

0: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे ITM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद
1: NAC द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक
0: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में
1: चाहे फार्मेसी हो मैनेजमेंट कंप्यूटर इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी लॉ एग्रीकल्चर साइंस एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई
0: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी
1: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट
2: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077